दिखाई दे, जब बात करते हैं तो भी उसमें बाप दिखाई दे, क्योंकि मधुबन में यज्ञ सेवा का बल और फल बहुत मिलता है। लेने वाला लेवे लेकिन मिलता है, लेने वाले जितना ले सके, परंतु बाबा कहे ले या न ले मिलता ही है। संस्कार को देखने या संस्कार मिलाने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। संस्कार को मिलाने में, संस्कार को देखने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाप दादा को हर मधुबन के बच्चों से विशेष प्यार है। क्यों क्यों प्यार है? बाप के स्थापन किए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। बाप के स्थापन किए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। मधुबन निवासियों को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है और दूसरा जो मधुबन में आने वाले चाहे ब्राह्मण चाहे नई आत्माएं आती है उन्हों की सेवा का यज्ञ सेवा है, साधारण सेवा नहीं है, यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य भी मिलता है। एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिलता है, दूसरा जो आने वाले ब्राह्मण है या नई आत्माएं हैं उन्हों की सेवा का चांस मिलता है, और तीसरा यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य भी मिलता है। अगर कोई भी मधुबन निवासी, कितना बाबा महत्व बताता है यज्ञ सेवा का मधुबन वालों के लिए, अगर कोई भी मधुबन निवासी अपने बाप दादा की श्रीमत पर अमृत वेले से रात तक श्रीमत प्रमाण चलता है तो उनको एक्स्ट्रा मधुबन वाले खुद जाने नहीं जाने अलबेले रहे तो भी मधुबन का सेवा का पुण्य मिलता जरूर है। अगर श्रीमत पर एक्यूरेट चले तो एक्स्ट्रा पुण्य मिलता जरूर है। मधुबन निवासी बनना साधारण बात नहीं है। चाहे कोई कैसा भी काम कर रहा है, चलो सफाई करा रहा है, लेकिन ऐसे साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ से ही मधुबन में ही सभी को परमात्म प्यार प्राप्त होता है। इसलिए सिवाय मधुबन के बाप कहां भी नहीं आता, सिवाय मधुबन के बाप कहां भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाबा कहे इस यज्ञ से ही मधुबन में सभी को परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। ये मधुबन को बाप के आने का, मिलने का, मिलाने का पाठ नूंदा हुआ है। यह मधुबन ही बाप के आने का, मिलने का और मिलाने का पाठ यहीं नूंदा हुआ है। तो हर एक मधुबन वाले अपने पुण्य के खाते को जानो, पहचानो और उस महान प्राप्ति स्वरूप बनो। कुछ भी हो, आपका काम है बड़ों तक पहुंचाना। अगर कोई ऐसी बात हो तो बाबा कहते आपका काम है बड़ों तक पहुंचाना। पहुंचाया अर्थात दिल से निकाल दिया, पहुंचा दिया और दिल से खत्म, फिर वो भावना अंदर में नहीं रहनी चाहिए। आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है, बाबा कहते अगर आप अंदर में समझते हो कि मैंने बात बता दी फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा। आपने तो बता दिया, जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। आप निश्चिंत रहो, देना आपका काम है, लेकिन सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है और ही व्यर्थ संकल्प चलेंगे। इसलिए दे दिया और निश्चिंत हो जाओ, समाप्त हो गया।
आपकी जो जिम्मेवारी है वह आप करो, पहुंचाओ, लेकिन पहुंचाने के बाद पहुंचाना भी रीति प्रमाण। मधुबन निवासी ब्राह्मण हो, ऊंच हो, अपने मर्तबे को जान ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सब आपके कर्तव्य को सुनकर और भी सीखे। मधुबन निवासी के ऊपर सभी को भावना है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा, मधुबन निवासी के ऊपर सभी को भावना है, तो ऐसी भावना वालों को भावना का फल दिखाओ। मधुबन वालों में बाप दादा जानते हैं कि कोई कोई बच्चे बहुत मर्यादा पूर्वक स्वपुरुषार्थी, बाप से स्नेही बन सहयोग देने वाले भी बच्चे हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। बाप दादा की चाहना क्या है मधुबन निवासियों के प्रति? बाबा पूछते हैं, बाप दादा की चाहना क्या है मधुबन निवासियों के प्रति? मधुबन निवासी हर बाप का बच्चा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन अपने चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दे कि हम मधुबन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य को प्रसिद्ध करो क्योंकि यज्ञ निवासी हो। परमात्मा ने क्या रचा पहले? यज्ञ रचा, और यज्ञ की धरनी निमित्त मधुबन है। जानते हो ना मधुबन की महिमा? जो जानते हैं मधुबन की महिमा वह हाथ उठाओ। बाप दादा यहां सामने टीवी पर देखते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं, बाप दादा उन्हें देखकर खुश होते हैं, सभी अटेंशन देते हैं, लेकिन और अटेंशन देके सबको संतुष्ट करो। अब कहे, सभी अटेंशन देते हैं लेकिन और अटेंशन देके सबको संतुष्ट करो, तो विश्व को संतुष्टि की किरणें पहुंचे। यह भी कार्य निमित्त वालों को करना है। जो निमित्त हैं, उन्हों को अपने अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देते हैं, लेकिन उन्हों में शक्ति ऐसी भरो जो बाप से शक्ति ले, आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए जो भी आए वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कैसे कोई कार्य हो जो आने से ही अनुभव हो, कुछ देखने से ही अनुभव हो, कुछ सुनने का अनुभव होता है, योग का अनुभव होता है, लेकिन वायुमंडल का भी अनुभव हो। यह अटेंशन निमित्त बनी हुई आत्माओं को रखना है, उनकी विशेष सेवा है। वायुमंडल को बनाना, बाबा कहते हैं ये उनकी विशेष सेवा है। स्वयं अगर योगयुक्त बन वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहते हैं तो उनका प्रभाव सेवा स्थान पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे बाप दादा व बड़े निमित्त आत्माओं का वायुमंडल वाइब्रेशन पड़ता है ना, बाप दादा का वायुमंडल बदलता है ना। बाप दादा आते ही सारे घर का वायुमंडल जैसे बदल जाता है ना, तो हर बच्चे को वायुमंडल बनाने का, क्योंकि अभी अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। तो पहले बाबा ने मधुबन निवासियों को मधुबन का महत्व बताया, और फिर सेंटर वालों को भी, जो सेंटर्स के निमित्त भाई बहने हैं, उनको भी बाबा ने इशारा दिया
के सेंटर्स के वायुमंडल का भी

शकल से वाइब्रेशन से जान जाते हैं, क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव उन्हों की बुद्धि में है, नॉलेज का भी प्रभाव है। इसलिए जो भी मीटिंग में आए हैं, हर एक जिम्मेवार हो। बाबा कहते हर बच्चा जिम्मेवार हो, नहीं तो मीटिंग में नाम क्यों डाला। हिम्मत है ना, तब आपका नाम हुआ ना। इसीलिए अपना फर्ज प्रत्यक्ष करो, करने चाहते भी हो, बाप दादा जानते हैं, करने का प्रयत्न भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा प्रयत्न को बढ़ाओ। समझा? अभी बाप दादा सबकी रिजल्ट देखने चाहते हैं, मधुबन वाले या मीटिंग वाले, दोनों के रिजल्ट देखने चाहते हैं। जो जगत अम्बा का विशेष पुरुषार्थ रहा, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना। आपकी दीदी का यही शब्द था, अब घर चलना है, अब घर चलना है। आपकी दादी का यही संकल्प रहा, अब कर्मातीत होना है, कर्मातीत होने के क्लासेस कराना, कर्मातीत का उमंग दिलाना। आपके पांडव जो गए, उन्हों का भी यही दिल में संकल्प रहा कि हमें जो पांडवों को विजयी कहा जाता है, तो पांडवों का जो लक्ष्य रहा और है भी कि जो गायन है विजयी पांडव, पांडव कहो तो क्या याद आता है, विजयी। चाहे अक्षौणी सेना थी तो भी पांडव शब्द कहने से विजयी याद आती है। पांच पांडव लेकिन विजय। कैसा भी वायुमंडल हो, अक्षौणी सेना का वायुमंडल था, लेकिन पांडव पांडव पति की श्रीमत से विजयी बने और विजयी का नाम बाला किया। अभी वही पांडव विजयी बन औरों को भी विजयी दिलाने वाले। तो पांडवों को देख करके बाप दादा खुश होते हैं। किस बात में खुश होते हैं? कि शक्तियों के साथी है, शक्तियों को सहयोग दे आगे बढ़ाने में साथी है। पांडव शक्तियों के साथी है, शक्तियों को सहयोग दे आगे बढ़ाने में साथी है। जैसे बाप ने शक्तियों को शिव शक्ति का मंत्र दे कंबाइंड बनाया, ऐसे पांडव भी शक्तियों को, जो पांडवों में विशेषता है, उस विशेषताओं में शक्तियों को सहयोग देके आगे रखने वाले अच्छे हैं और सदा अच्छे ते अच्छे बन आगे बढ़ने वाले हैं। बाप दादा आज आपके स्नेह को देख, आप सबको स्नेह का हार पहनाते हैं। बाबा बच्चों का स्नेह देख सबको स्नेह का हार पहनाते हैं, बस आप भी हर एक को स्नेह सहयोग का हार पहनाओ, बाहों का हार नहीं। बाबा कहते हैं बाहों का हार नहीं, अर्थात बाकी नहीं पहनना, गले नहीं लगना, दिल में सहयोग का हार पहनाओ, है ना। एक दूसरे को सहयोग दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे की जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए। तो गलतियां नोट नहीं करो, किसी की गलतियों को नोट नहीं करो, लेकिन सहयोग के नोट से जेब भरा हुआ होना चाहिए। कहां भी देखो सहयोग चाहिए तो सहयोग का नोट दे दो। है जेब में? पूछते बाबा, सहयोग के नोट है जेब में, भरा हुआ है? किसा जेब भरा हुआ है, खाली तो नहीं है? आप सहयोग का नोट दो और वह आपको दुआओं का हार पहनाएंगे। हम सहयोग दें और वो रिटर्न में दुआओं का हार पहनाएंगे। आपके एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं और बाप सूक्ष्म वतन निवासी इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपकी एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं और बाप सूक्ष्म वतन निवासी दोनों इंतजार

विचार कर रहे हैं, आपको उन्हों का संकल्प पहुंचता है? वह डेट मांगते हैं। आपकी बड़ी बड़ी दादियां और दादाएं दोनों डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हों को डेट देंगे? देंगे, पहली लाइन बताओ, डेट देंगे कि कहेंगे वेट एंड सी? हर एक को इसमें क्या करना है? हर एक अपने रहे हुए संस्कारों का संस्कार कर लो। समय समीप आ जाएगा। समय को समीप लाने का यही तरीका है। जो विघ्न डाल रहा है रहे हुए संस्कार, तो अभी जब दूसरे बारी सीजन शुरू होगा उसमें दिन है, काफी दिन है, रोज कोई ना कोई संस्कार का संस्कार कर देना। एक एक का करते जाओ, एक एक संस्कार का संस्कार करते जाओ, इतने दिन है। तो कौन कहता है अगली बारी जब बाप दादा आए तो हम हाथ उठाएंगे, संस्कार का संस्कार हो गया उसमें हम हाथ उठाएंगे? वह हाथ उठाओ, हो गया, हाथ तो उठा रहे हैं। बाप दादा एडवांस में बहुत बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान। सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, पवित्रता की क्षमा सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जलती रहे। जरा भी हलचल में नहीं आए, अचल। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। स्मृति ही समर्थी का आधार है और जहां समर्थी है वहां माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। अच्छा, ओम शांति।

0: ओम शांति। हम सभी को इस अंतिम जीवन में चारों ओर से अनासक्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि घर जाने का समय समीप है। सभी जानते हैं कि हमारी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी होने को है और हमें सब कुछ यहीं छोड़कर ईश्वरीय खजानों से भरपूर होकर घर जाना है। लोग तो कहते हैं, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, परंतु हम न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे। संपूर्ण स्वरूप में आए थे और सर्व खजानों से संपूर्ण होकर ही संसार से जाएंगे। तो क्योंकि जाना है तो यहाँ से पूरी तरह अनासक्त रहना है। जो अनासक्त रहेंगे उन्हें जाना सहज होगा। बाबा उन्हीं के लिए कहते हैं, मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर बड़े प्यार से घर ले जाऊंगा। क्योंकि जो अनासक्त होते हैं उनकी बुद्धि कहीं भी अटकी हुई नहीं होगी और वो सहज इस देह से न्यारे हो सकेंगे। अन्यथा आत्मा इस देह में उलझ जाएगी और उसको निकलने में बहुत कष्ट होगा, सजाओं की ज़्यादा अनुभूति होगी। तो अभी से हम प्रैक्टिस करें, जो कुछ हमारे पास है उसमें अनासक्त होने की। चाहे जो कुछ हमारे पास है, धन है, सुंदर साधन है, बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, कुछ भी, उन सभी को देखकर हम उनमें ये भाव धारण करें कि ये सब विनाशी हैं, पहले ये हमारे पास नहीं थी, अब हैं और कुछ समय के बाद भी नहीं रहेंगी। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ और इन सब से बहुत कहीं ज़्यादा सुंदर मुझे प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा अभ्यास करने से हमें गुड फीलिंग होगी कि हम वस्तुओं को यूज तो करेंगे, हमारे पास सब चीज़ें तो होंगी, पर हम कहीं बंधे हुए नहीं होंगे, हम अनासक्त होंगे। आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए अनासक्त होना, निर्मोही होना, ममत्व से मुक्त होना, ये परम आवश्यक है। वैसे भी हम जानते हैं हमारा अंतिम पेपर नष्टो मोहा होने का ही होगा। जिन्होंने लंबा काल स्वयं को देह से न्यारा किया है, वही इस अपनी देह से, देह के ममत्व से मुक्त हो पाएंगे। और जिन्होंने लंबा काल आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया होगा, स्वयं को अशरीरी बनाने वाले और दूसरों को आत्मा देखने वाले, दूसरों के प्रति जो मोह ममता रहती है उससे भी सहज ही मुक्त होते जाएंगे। तो आइए हम सभी इस सुंदर साधना को अपना लें कि हमें इस संसार में साक्षी रहकर विचरण करना है। साक्षी भाव बहुत श्रेष्ठ भाव है। सब कुछ करते हुए भी मानो हम कुछ नहीं करते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी मानो हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। इस संसार में रहते भी, संसार में तो हम रहते हैं पर जैसे कि संसार हम में नहीं रहता है। संसार की इच्छाएं तृष्णाओं से हम मुक्त हो गए हैं, यही एक सच्चे योगी की पहचान है। इसका अभ्यास करने से हमारे जीवन में दिव्यता आती जाएगी, अतींद्रिय सुखों की ओर हम चलते जाएंगे। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, मेरी 5000 साल की यात्रा पूरी हुई और मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि यात्रा के अंतिम समय में स्वयं भगवान मेरा साथी बन गया और अब सब कुछ छोड़कर मैं आत्मा निराकार रूप में उड़ती हुई जा रही हूँ अपने धाम। पहुंच गई अपने शांति धाम में, शांति धाम की गहन शांति की अनुभूति में, शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। तो बार बार अभ्यास करेंगे मुझे सब कुछ छोड़कर वापिस अपने धाम चलना है। ओम शांति।
1: अभी बजे हैं सुबह के 6।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। दोस्तों, सुबह की यह सुंदर वेला, हम सब मन से और तन से बहुत फ्रेश हो गए हैं और अमृतधारा सुनने के लिए उत्सुक भी है। ऐसे समय पर हो जानी चाहिए एक बहुत सुंदर सुविचारों की और कहानी की श्रृंखला। तो दोस्तों, आज का सुविचार है, नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली है, जल चट्टानों से अधिक शक्तिशाली है और प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, नम्रता जो एक बहुत महान गुण है और सचमुच देखा गया है कि नम्रता के कारण कई बातें जो है वो आसान हो जाती है जिंदगी में, और अगर नम्रता नहीं दिखाई तो छोटी सी बात भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, हम अमृतधारा में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उस पर बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, एक अलग सा चिंतन आपके सामने रखते हैं, और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने जो सुविचार आज सुनाया वो बड़ी नम्र चित्त से मैंने सुना। चित्त नम्र होना चाहिए, मन नम्र होना चाहिए, शीश झुकना चाहिए, और ये सब जब होता है तब सब कुछ आसान हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नम्रता एक गुण है। नम्रता कोई अपेक्षा नहीं करती, कोई मांग नहीं करती कि दूसरा मेरे साथ नम्रता से पेश आए या ना आए, मुझे क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये नम्रता के ऊपर जब मैं आपकी बातें सुन रहा तब मुझे लगा कि अगर हर कोई ये गुण धारण करे तो सब झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, और हर झगड़े की जड़ जो है एरोगेंस है, अहंकार है, और वो छोड़ने के बाद जब हम नम्रता धारण करेंगे तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, सही बात है, और मुझे लगता है इसीलिए आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो भी नम्रता के ऊपर ही है। विनम्रता की जीत इस प्रकार से होती है, बहुत ही सुंदर कहानी है जो रामायण की कहानी है। कहते हैं कि मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाथ जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अप्रतिम योद्धा था वो, जिसके पास कई सारे दिव्यास्त्र थे। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने के लिए गए। उस समय राम जी प्रभु जी पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जी अभी कुछ समय है, यह तो प्रातःकाल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, ये पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ, जो पहला व्यक्ति आपको मिले उसी से अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, आशीर्वाद की जगह भिक्षा। लेकिन प्रभु राम जी की आज्ञा थी कहो, उनकी इच्छा थी कहो, लक्ष्मण जी को तो जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने निकले तो उन्हें सबसे पहले कौन मिला? रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार मांगना तो था ही, यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी तो मार ही देते थे, परंतु वे उनसे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे ही दिया। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिए। दोस्तों आगे क्या होता है हम जरूर सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कथा हम सुन रहे हैं। आप सब ने भी कुछ न कुछ मन में जरूर विचार किया होगा आगे क्या होता है। तो दोस्तों, जब भगवान राम को लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर अर्पित कर दिया, तत्पश्चात राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी के भी समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों को कोई भी काट नहीं सकता था। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया, हनुमान जी ने पूछ ही लिया, प्रभु जी, वह भिक्षा का मर्म क्या है? दोस्तों, तब भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैं लक्ष्मण को जानता हूं, वह क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो, मैं जानता था। मेघनाथ, ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने केवल विनम्रता ही काम कर सकती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण जी ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था, यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे भी क्षमा कर देता। भगवान रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता की शक्ति संचय का भी मार्ग है, वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात बताई है एक छोटे से गुण के द्वारा। विनम्रता अगर हम धारण करें तो हर काम जो है वो कितना सुचारू रूप से होता है। ज्ञानेश्वर जी, आपको कैसी लगी कहानी?
1: भक्ति जी, कहानी कोई भी हो, चाहे श्रीमद् भागवत की हो, रामायण की हो, महाभारत की हो, हर कहानी में कुछ ना कुछ हमें सीख जरूर लेनी है। और आपने जैसे बताया कि ये कहानी के ऊपर अगर कोई बहस शुरू करेगा कि क्या विनम्रता हर जगह हर पल संभव है और कल्याणकारी है, विशेष रूप से युद्ध में अगर सामने से कोई गोली चला रहा है और मैं विनम्र होके उसको प्रणाम करूं तो क्या गोली से बच जाऊंगा, ऐसी अगर बहस छिड़ती है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि हर कथा, जैसे मैंने कहा कि रामायण हो, भागवत हो या महाभारत हो, उसमें से मुझे क्या लेना है जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए एक शब्द का प्रयोग जो कहानी में किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, धर्मयुद्ध। जो धर्मयुद्ध होता है उसमें ये सब चीजों की जरूरत है। धर्मयुद्ध क्या होता है? धर्मयुद्ध जो धर्म से लड़ा जाता है। आजकल के जमाने में धर्मयुद्ध लड़ा ही नहीं जाता, लेकिन शत्रुओं के साथ जो जंग होती है आजकल की, उसके लिए ये कहानी नहीं है। ये कहानी ये है हमारी जिंदगी में जो जंग होती है उसके लिए। हमारी जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ जंग होती है, कुछ ना कुछ लड़ाई होती है, युद्ध होता है, चाहे वो शब्दों का टकराव होते रहता है। जैसे दो अस्त्र एक दूसरे से टकराते हैं, वैसे हमारे शब्द भी एक दूसरे से टकराते हैं। और उस समय अगर मैंने नम्रता धारण की तो क्या होगा, विजय प्राप्त होगी। इसलिए भिक्षा का संबंध जो राम जी ने बताया वो ये है कि भिक्षा मांगते समय भी मुझे नम्रता चाहिए, भिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे को देते समय भी नम्रता चाहिए, और फिर आशीर्वाद लेना है। दूसरों से जब दुआ लेते हैं उसका बहुत फायदा होता है। इसलिए हमेशा कहते हैं आप कुछ भी ना दो लेकिन कम से कम दुआएं तो दो, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसमें कोई रुपयों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुफ्त में हम दे सकते हैं। बाकी धनराशि देना और किसी को कुछ दान देना वो हर किसी को संभव होता है नहीं होता है, लेकिन दुआएं देना बहुत संभव है। और जितनी दुआएं आप देंगे उससे कई गुना ज्यादा दुआएं आपको प्राप्त होती है, और यही सीख इस कहानी के द्वारा ले सकते हैं ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी आपने सही कहा, और इसीलिए विनम्रता जीवन में जो भी धारण करता है वो महान होता है। विनम्रता झुकना नहीं है बल्कि विनम्रता से इंसान की जो मानसिक शक्ति है वो बहुत ऊंचा स्तर को प्राप्त करती है। चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शुरू करते हैं चिंतन श्रीमद् भागवत कथा पर। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, हम बहुत ही सुंदर दशम स्कंद का 28वां अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें भागवतकारों ने वरुण लोक से नंद जी को श्री कृष्ण ने किस प्रकार उड़ा कर लाया, इसका सुंदर वर्णन है। शुकदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास जब नंद बाबा ने किया और भगवान की पूजा भी की, तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर वे स्नान करने के लिए यमुना जल में चले गए। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, उनको ये मालूम नहीं था कि ये असुरों की वेला है और इसके कारण ही रात के समय यमुना जल में वो घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास उन्हें ले गया। अब ज्ञानेश्वर जी, ये असुरों की वेला इसका क्या मतलब है? क्या हम एक अच्छी भावना से, श्रद्धा से उपवास या कोई भी व्रत करने के बाद जब नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उस भावना का, उस श्रद्धा का प्रभाव बड़ा है या असुरों की वेला का प्रभाव बड़ा है?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भक्ति जी आपने। वैसे आपने जो कहा एक हद से काफी सही है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जब भगवान का नाम ले तब हर घड़ी जो है वो शुभ होती है। इसलिए कहते हैं कि तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवगम स्मरामि। लक्ष्मीपति, इसका मतलब भगवान को जब हम स्मरण करते हैं तब हर घड़ी जो है वो पवित्र और शुभ होती है। लेकिन फिर भी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में ये बताया गया है कि वसुदेव जी जो है वो पूजा पाठ करने के बाद रात के प्रहर में यमुना नदी में गए। ऐसे कहते हैं कि दिन में वैसे हर घड़ी शुभ है, फिर भी निगेटिविटी जो है, नकारात्मक भावना जो है, नकारात्मक संकल्पों की शक्ति जो है वो कुछ समय में ज्यादा होती है। जैसे कहते हैं कि सुबह का समय ब्राह्म मुहूर्त तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? हमें मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशंस भी सकारात्मक होती है, नकारात्मक वाइब्रेशंस तो ही हुई रहती है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि 10 से 12 रात में 10 से 12 बजे तक अगर हम समय देखें तो उस समय नकारात्मक संकल्प, नकारात्मक वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसलिए हम भले शुभ संकल्प करते हैं लेकिन शायद हमारी शक्ति उस समय उतनी नहीं होती। अगर उतनी शक्ति हमारी है कि उसके ऊपर भी हम हावी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए शायद ये मार्गदर्शन है कि हम अगर कोई कार्य करें तो ये कार्य ऐसी घड़ी में ना करें। विशेष रूप से नदी में स्नान करना है और रात का समय है, 10 से 12 बजे तक अगर हम नदी में स्नान करने का प्रयास करें तो वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा और मन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। शायद यही भागवतकार दिखाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुबह का समय, प्रातः समय, उसको कहते हैं कि हमेशा ही उठने के बाद भगवान का नाम लो। लेकिन उसी साथ रात के लिए हमेशा ही कहते हैं कि रात का अंधेरा, घना अंधेरा, काला ये जो रंग है, ये भी एक नकारात्मकता दर्शाता है। तो शायद भागवतकारों ने हमें यह भी एक बात सूचित की है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है? जैसे ही वो नंद बाबा को पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गया, तो यहाँ व्रज नगरी में नंद बाबा के खो जाने की बात चारों ओर फैल गई। सारे गोप श्री कृष्ण जी और बलराम जी के पास आए और उन्होंने कहा, हमारा तो अभी आप पर ही भरोसा है, आप नंद बाबा को जल्दी से जल्दी यहाँ लेके आओ, ये नगरी उनके बिना सुनसान लग रही है। ऐसे कहते हुए वो रोने लगे, याद करने लगे उनको। अब जैसे ही श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना, ये उन्होंने जान ही लिया कि वरुण का कोई सेवक उन्हें ले गया होगा। वे वरुण जी के पास सीधे चले गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए हैं, उनके यहाँ पधारे हैं, वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनकी पूजा की, आनंद से खेल उठते हुए उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। उनके साथ वो वार्तालाप करने लगे कि आज तो मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सचमुच मैं धन्य हो गया हूँ। और फिर आगे कहने लगे कि मेरा ये सेवक बहुत ही मूढ़मती है, अनजान है, बेचारा अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता है, इसीलिए वो आपके पिताजी को लेके आया, तो कृपा करके आप उनके अपराध को क्षमा कीजिए। आपके पिताजी के प्रति मैं भी बहुत प्रेम भाव रखता हूँ और मैं सचमुच इसके लिए अपराधी भी हूँ, और मुझ दास पर आप कृपा कीजिए। देखिए दोस्तों, हर जगह भागवतकारों ने यह बात बताई है कि प्रकृति के पांचों तत्व भी भगवान के सामने किस प्रकार से नतमस्तक होते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनके द्वारा कोई भूल हो गई, उनके सेवक के द्वारा भी कभी कोई भूल हो गई, तो वो भगवान के सामने

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, यहाँ वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति का नंद बाबा ने जो भी ऐश्वर्य देखा, उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं ये भी जब देखा, उन्हें बड़ा विस्मय होने लगा। उनको लगा कि ये क्या बात है, मेरे पुत्र के प्रति सबका कितना आदर भाव है। और इस बात को उन्होंने बार बार अपने व्रजवासियों को बताना चाहा। दोस्तों देखिए, स्वयं भगवान एक मानव रूप धारण किए हुए अपना पार्ट कैसे निभा रहे हैं, जैसे हमने यह भी देखा एक बहुत सुंदर सुविचार के द्वारा कि हर एक का पार्ट होता है। जब नंद बाबा ने श्री कृष्ण के प्रति हर एक का इस प्रकार से आदर भाव देखा, सम्मान देखा, श्रद्धा देखी, और इतना ही नहीं कई सारे चमत्कार भी देखे, तो वे दरअसल समझ गए कि यही सचमुच भगवान है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, और भी एक बात के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ। मैं कथा की शुरुआत में बताया गया कि वरुण देव के जो सेवक है वो उन्हें लेके गए, लेकिन शब्दों का कौन सा प्रयोग किया, असुर। अभी वरुण देवता के रूप में पूजी जाती है और पूजन होता है वरुण का देवता के रूप में, इसलिए वरुण देवता बोलते हैं, लेकिन उनके सेवक असुर कैसे हो सकते हैं? इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो भागवतकार क्या संकेत करना चाहते हैं वो हमें समझना चाहिए। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये पांच तत्व हैं, तो वरुण भी एक तत्व है, और निसर्ग या प्रकृति जो है, प्रकृति का जो पांच तत्वों में एक तत्व है वरुण, वो देवता कब है? जब हमें जब चाहे तब वो आते हैं। बारिश होती है जब हमें बारिश चाहिए, किसानों के लिए बारिश बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो चाहिए तब आती है, तब वो देवता है। लेकिन अगर फसल तैयार है, काटने के लिए तैयार है, जमीन पर खड़ी है, और उस समय बारिश आ गई, क्या होगा? पूरी फसल बेकार हो जाएगी, और इसलिए उस समय की बारिश जो है वो देवता के रूप में नहीं असुर के रूप में दिखाई जाती है। तो देवता जो है वो हमेशा कल्याणकारी है, और असुर जो है वो अकल्याण करने वाले है। तो तत्व वही है, लेकिन उनका कार्य और समय अलग अलग होता है। और फिर अगर बारिश नहीं आती तो भी मुश्किल है, बारिश ज्यादा आती है तो भी मुश्किल है। बारिश समय पर आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय के प्रमाण नहीं आती तो क्या होगा, हमारी फसलों का नुकसान हो जाएगा। और आजकल के जमाने में आप सुनते हैं, देखते हैं कि बारिश कभी भी आती है और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और शायद इसी तरफ संकेत करते हुए उन्होंने असुरों की मिसाल दी होगी। लेकिन उसके बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं, वर्णलोक में जाते हैं, और उस समय उनका सम्मान होता है, तब मुझे लगता है कि जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि समय अच्छा है या बुरा है, समय बलवान है या नहीं है, समय शुभ है या अशुभ है, ठीक है हमने अशुभ घड़ी में कुछ कार्य किया, लेकिन फिर भी ये भागवतकार दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान का साथ ले, भगवान की प्रार्थना करें तो भगवान मदद करता है, और अशुभ घड़ी में भी अगर कुछ शुभ कार्य हम करने की कोशिश करें तो उसका अंतिम फल जो है वो अच्छा ही होता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि जैसे प्रकृति के पांच तत्व है, वैसे इसे कहते हैं पिंडी सो ब्रह्मांडी, हमारे अंदर भी पांच तत्व है। जब ये शरीर बहुत ही स्वस्थ है, अच्छी तरह से ये पांच तत्व कार्यान्वित है, तब हम कहते हैं कि हम हेल्दी है। लेकिन शरीर का एक तत्व भी अगर बिगड़ गया तो फिर जैसे कि वो हमें असुर लगने लगता है, और केवल एक तत्व के कारण भी हम बीमार पड़ जाते हैं, ये भी सारी बातें बहुत सोचने जैसी है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, ये सब बातें भी शायद भागवतकार हम सबको बताना चाहते हैं, जिन पांच तत्वों के द्वारा हमारा शरीर बना है और प्रकृति में भी जो पांच तत्व है, वो पांच तत्व जब अच्छे है, जब शुभ है, तब सब कुछ शुभ है। लेकिन अगर एक तत्व ने भी अपना समय परिवर्तन किया या अपना स्थान अगर छोड़ दिया तो वो भी तहलका मचा सकता है, अशुभ बन सकता है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, जैसे आपने कहा कि उसका बैलेंस होना चाहिए, पांच तत्वों का शरीर में बैलेंस रहता है, वायु का ज्यादा, वायु की प्रमाण जब ज्यादा होता है तब वायु का प्रकोप होता है और वात विकार हो जाते हैं। आजकल आयुर्वेद में हमें दिखाते हैं कि पांच तत्वों का अगर बैलेंस सही है तो बहुत अच्छा है। अग्नि तत्व अगर ज्यादा है तो फिर हम ज्वर निर्माण होता है, टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है, और जलक तत्व अगर ज्यादा होता है तो भी क्या होता है, बहुत सारी तकलीफ होती है। पानी अच्छा है लेकिन अगर फेफड़े में पानी चला गया तो बहुत बुरा है। पानी अच्छा है जब वो उदर में है तब अच्छा है, जिह्वा में है तब अच्छा है, लेकिन और कहीं जगह चला गया तो फिर वो मुश्किल है। तो स्थान, जैसे आपने कहा, समय और स्थान हर तत्व का निश्चित होना चाहिए और वो बैलेंस होता है तब शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: दोस्तों, कितनी सुंदर बात है, हम इस पर बहुत गौर करें। और भागवतकार हमें हर रीति से एक जागरूकता भी देते हैं, एक नया चिंतन भी देते हैं, और उसके साथ साथ मन को किस प्रकार से शक्तिशाली बनाए तो हमारा तन भी दुरुस्त हो जाए, हम तंदुरुस्त हो जाए, अगर मन दुरुस्त है तो, ये बात भी बखूबी बताते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं भक्ति आज के लिए अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे औषधि दुर्व्यसन अर्थात मादक द्रव्यों के व्यापक युवाओं के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर। हमने देखा कि किस प्रकार से व्यसन से ग्रस्त होकर युवा अपने भविष्य को अंधकारमय बनाते जा रहे हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें इस अंधकार से मुक्त किया जाए, उन्हें इस समस्या से मुक्त किया जाए और समाधान की ओर ले जाया जाए। और आप जानते हैं कि हमें समाधान की ओर ले चलने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। तो आइए इस चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। दाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता जी, कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ये जो मादक द्रव्य है युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एक व्यापक तौर पे जैसे हम देखते हैं कि प्रभाव तो समाज का भी पड़ता है, लेकिन एक प्रभाव जहां सबसे ज्यादा वो सीखता है, उसका पड़ता है युवाओं के ऊपर, वो है उनका परिवार। जब वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स, खास करके पिता या दादाजी, चाचा जी, मामा जी, ये सब चीज भी उसका सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाल मन में या युवा मन में ये बात अवश्य आती है कि जो चीज़ मेरे बड़े कर रहे हैं वो चीज़ मैं भी अपने जीवन में लूं। जैसे मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव की बात करूं तो मैं जब अपने आसपास देखा करता था, हमारे मित्र देखा करते थे कि हमारे बड़े सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं और बहुत सुंदर छल्ले निकाल रहे हैं अपने मुख से, तो हमारे अंदर भी आता था कि हम भी ये करके देखें। अब उनसे कह तो नहीं सकते थे कि हमें भी दो, हम भी पिएंगे, तो हम ये किया करते थे कि कागज की बीड़ी बना करके फिर हम लोग एकांत में जाके छुप के वो पिया करते थे और धुआं निकाला करते थे
1: और खुश होते थे।
0: बहुत खुश हुआ करते थे कि हम भी धुआं, भले हमें बहुत खांसी आती थी लेकिन फिर भी खुश होते थे कि हम भी धुआं निकाल रहे हैं। तो ये जो एक परिवार या परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: हाँ, देखिए, ये जिम्मेदार हैं परिवार और परिवार का परिवेश इन चीज़ों के लिए। और अगर हमें युवकों में बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति को रोकना है तो हमें इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। माँ बाप को सचमुच बहुत सावधान और बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा। आप जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक सत्य घटना याद आ रही थी। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, सच्ची बात है ये। उसको देख देख कर उसके लड़के ने पीनी शुरू कर दी और लड़का उसके साथ ही पी के साथ साथ घर आता था। अब उसको नशे में पता तो चलता था कि मेरा लड़का बिगड़ रहा है। आखिर उसने इतनी समझदारी का परिचय दिया कि खुद शराब छोड़ दी और फिर बच्चे को भी प्रेरित किया शराब छोड़ने के लिए। उनके घर में शांति आ गई
0: जी।
1: तो जिम्मेदार हैं सचमुच माँ बाप और परिवार का परिवेश। इसलिए जो ये आजकल एक फैशन बन गया है सभ्य समाज में कि जी डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, इनकी अवेयरनेस उनको भी होनी चाहिए। इसको एक सभ्यता का सूचक न मान के पतन का कारण माने और समाज में ऐसी व्यवस्था को बनाएं ताकि नव युवकों को अच्छी प्रेरणा मिल सके।
0: मतलब परिवार के कम से कम जो बड़े हैं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो छोटे हैं उनके ऊपर ये गलत प्रभाव ना डालें, क्योंकि वो इन चीजों का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से छोटों के मन में,
1: छोटे बच्चे, बिल्कुल जब वो छोटे बच्चे हैं ना 8-10 साल के
0: जी,
1: तब उनकी जो मनोवृत्ति है या जो उनकी विवेक शक्ति है वो दूसरों से जल्दी सब कुछ ग्रहण करती है। ये बड़ा नेचुरल है, बिना कहे और वो उन्हें डांटे डपटे भी तो भी इसका असर नहीं पड़ता है। वो जरूर कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये पी रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा,
0: कुछ अच्छा
1: जरूर हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, और हो सकता है हमें बड़े होकर तो ये पीना पड़ेगा ना, तो क्यों ना अभी से चालू कर दिया जाए।
0: अच्छा, एक ह्यूमन नेचर भी तो है भ्राता जी ये, कि वो हर नई चीज को टेस्ट करना चाहता है या देखना चाहता है, आजमाना चाहता है कि वास्तव में ये चीज है क्या जो हमारे और साथी या बड़े कर रहे हैं।
1: बिल्कुल यही है। लेकिन मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है युवकों को जानने के लिए, क्योंकि हम युवकों को एजुकेट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि आज समाज में बहुत सारे जो अपराध बढ़ रहे हैं जिससे सरकारें भी तंग हैं और चिंतित हैं, और पुलिस भी जिसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस करेगी क्या, उनके पास तो जब केस हो गया तब आएगा ना। लेकिन वो हो गया पहले के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम अपने युवकों को एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें।
0: वैसे भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: तो मैं ये बताऊं, देखिए, चाहे मारकाट होती है
0: जी,
1: चाहे अपहरण होते हैं, चाहे रेप्स होते हैं, जो बड़े बहुत सुर्खियों में आ गई थी पीछे ये चीजें, तो इन सब के पीछे ये नशे कहीं ना कहीं अवश्य काम कर रहे हैं। तो मैं एक चीज के लिए युवकों को सावधान करूंगा कि ये जितने भी व्यसन हैं, ये मनुष्य के अंदर कामुक वृत्ति को बहुत बढ़ाते हैं, जो मनुष्य को बलात्कार की तरफ ले जाता है। और ये एक बहुत हिंसक प्रवृत्ति है। और तब ऐसी स्थिति आती है कि मनुष्य न तो भविष्य के बारे में कुछ सोच पाता, तुम जेल में रहोगे या फांसी पर चढ़ोगे, तुम्हारे परिवार बदनाम होंगे, या तुम घर वालों को मुंह भी नहीं दिखा पाओगे, पकड़े गए तो क्या होगा, ये उसका विवेक संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। और उस टाइम वो इतना इस आवेग में आ जाता है कि वो तुरंत कर बैठता है, फिर भले ही जीवन भर पछताता रहे, उसका सारा ही जीवन अंधकार में चला जाए या वो फांसी पर चढ़े, जैसे अब कई केस हो गए, लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये व्यसन काम वासना को बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई काम वासना मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत घातक है, जो उसे बीमार भी करेगी, अनहेल्दी बना देगी पूरी तरह, उसके विवेक के विकास को रोक देगी और उसकी टोटल जो सफलता है जीवन की, टोटल जो उसकी उन्नति है, उसमें ये एक बहुत बड़ा बैरियर बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। हम देखते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, युवक भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मैं देखता हूँ जिनके जीवन में काम वासना जितनी कम रही, वो उतने ही उन्नति की ओर तेजी से अग्रसर हुए। बड़े बड़े काम उन लोगों ने किए जो इन वासनाओं से मुक्त थे, चाहे वो एक लंगड़ा व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया, चाहे बहुत अक्षम माने जाने व्यक्तियों ने बड़े बड़े ऐसे काम कर दिखाए जो सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर पाए थे। तो एक ही चीज मैंने देखी उनमें कि बहुत सारे लोगों में ये पवित्रता की भावना बहुत अच्छी थी। तो युवकों को इस बारे में सावधान रहना है।
0: ये बात बहुत सुंदर प्रातः जी आपने कही कि व्यसन केवल उन तक सीमित नहीं है, लेकिन उनके परिवार को भी, समाज को भी ये प्रभावित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि उनके अंदर के जो ये विकार हैं, खासकर वासना है या बलात्कार के केस, हिंसा या अन्य प्रकार के जो भी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ये व्यसन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हम लोग एक जेल में गए थे प्रातः जी, वहाँ एक कैदी से जब बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं व्यसन करता था, इसीलिए मैंने ये हत्या का कार्य किया। तो ये देखने में जरूर आता है कि कहीं ना कहीं ये रीजन बन रहा है।
1: बिल्कुल, जेल में तो अगर जाएं आप 100 लोगों का इंटरव्यू लें तो उनमें से 90 ऐसे ही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं व्यसनों के शिकार थे और उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर या उसके अधीन होकर उन्होंने अचानक कोई काम कर दिया और फिर जीवन भर पछताते ही रहते हैं।
0: निश्चित रूप से उसके अंदर भी, क्योंकि वो यंग एज में था, वो 25 साल का युवा था,
1: विवेक शक्ति उनके, विवेक शक्ति उनके पास है। जब वो दूसरों की बातें सुनते हैं, अखबारों में कहीं सुनते हैं, तो सचमुच उनको कितना बुरा लगता होगा ये हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसे जेलों में बंद बहुत युवक पश्चाताप की अग्नि में भी जलते रहते हैं।
0: जी, एक सर्वे ये कहता है ब्रता जी कि आज भारत के जेलों में लगभग 8 लाख कैदी हैं और उनमें से 2 लाख कैदी युवा हैं, और कहीं ना कहीं इन व्यसनों के कारण ही आज वो इस यातना को भोग रहे हैं या अपने भविष्य को अंधकार में पा रहे हैं। और एक और सर्वे आया है ब्रता जी, उसमें ये कहा गया है कि जो लोग व्यसनों का सेवन करते हैं उनके ब्रेन के सेल्स डैमेज होते चले जाते हैं। आपने जब विवेक शक्ति के नाश की बात कही तब मुझे ये ध्यान में बात आई। तो ब्रेन के सेल्स जैसे जैसे डैमेज होते चले जाते हैं तो हमारे शरीर के अन्य सेल्स तो निर्मित हो जाते हैं, लेकिन ब्रेन के सेल्स फिर से निर्मित नहीं होते। इस कारण उनका भविष्य और ज्यादा अंधकार में होता चला जाता है और विवेक शक्ति उनकी नष्ट होती चली जाती है। तो एक बहुत बड़ा पहलू है जो व्यसन के दुष्परिणाम के रूप में सामने आ रहा है।
1: बिल्कुल, मैं भी पीछे जेल में गया, मुजफ्फरनगर यूपी में है
0: जी।
1: तो युवकों का ही संगठन रखा वहाँ, जब भी मैं जाता हूँ तो जेल में एक प्रोग्राम जरूर रखते हैं। तो बहुत सारे युवक आए, लगभग 300। तो मैं देख रहा था, मैं ध्यान से सबके चेहरे भी देख रहा था जब मैं बोल रहा था, तो किसी के चेहरे पे पूरा ही डिप्रेशन था, किसी के चेहरे पर संपूर्ण पश्चाताप था
0: जी।
1: कोई बहुत ही रोने को तैयार हो रहे थे, बिल्कुल जैसे आंसू उनके गिरेंगे ऐसी स्थिति उनकी बनती जा रही थी, बहुत भावुक होते जा रहे थे। क्योंकि राखी का त्योहार होता है, हमारी बहनें राखी बांधने जाती हैं, उनको अपनी बहनें याद आती हैं और जरूर उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। तो ये सत्य है कि व्यसनों से ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं और ब्रेन कमजोर होने से ब्रेन ही तो सारे शरीर को भी कंट्रोल कर रहा है, मनुष्य अस्वस्थ भी होगा, उसकी निर्णय शक्ति भी बहुत छीन पड़ जाएगी, उसकी सोच विचार करने की शक्ति भी नहीं रहेगी और वो इस संसार में ऐसे विचरण करेगा जैसे जानवर विचरण करते हैं।
0: जी जी जी, एक दुष्परिणाम को कंप्लीट रूप से लोगों के सामने या युवाओं के सामने रखने की बहुत आवश्यकता है प्रातः जी। हम एक चर्चा तो ये करते हैं कि शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं ये जो भी व्यसन है, लेकिन परिवार, समाज, राष्ट्र या आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है।
1: टोटल संपूर्ण रूप से नुकसानदायक है और वास्तव में तो हमारी एजुकेशन में ही इसके दुष्परिणामों की चर्चा होनी चाहिए। यह हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इसके बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है, गांव-गांव में जाता ही है, स्कूल कॉलेजों में हमारे युवक ही जा रहे हैं जो युवकों को सिखा रहे हैं कि इन व्यसनों से तुम कैसे मुक्त रहो और इसके दुष्परिणामों की हम एक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा उनको जानकारी दे रहे हैं। तो इससे बहुत सारे युवक सचमुच समझ जाते हैं और बहुत सारे युवक लिख के प्रतिज्ञा करते हैं, अगर उनकी जेब में सिगरेट है तो सिगरेट दान करके जाते हैं कि आज से हम नहीं पिएंगे, और कई लोग उसको अपनाते भी हैं। तो हमारे ऐसे आदर्श युवक ही इस कार्य में लगे हुए हैं जो वास्तव में जिनके जीवन को देखकर दूसरे युवकों को लगता है कि सचमुच हमें भी तो ऐसा युवक बनना चाहिए जो देश के काम आ रहे हैं, जो समाज को कुछ सिखा रहे हैं, जो अपने देश को कुछ दे रहे हैं और व्यसनों से मुक्त हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इन व्यसनों के कारण गरीबी से गुजर रहे थे, जिनके परिवारों में व्यसनों के कारण शिक्षा नहीं आ पाई है क्योंकि बाप या और कोई व्यक्ति शराब में ही सारा पैसा उड़ा देते थे तो शिक्षा नहीं हो पाई। तो देखिए देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जहां हमारी सरकारें हर व्यक्ति को शिक्षित करना चाहती हैं, वहाँ अच्छे अच्छे लोग जो पढ़ने योग्य हैं, जो बुद्धिमान बच्चे थे, जो आगे चलकर बहुत अच्छे व्यक्ति बन सकते थे, इस शराब के व्यसन के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा हुई नहीं। तो इससे उस परिवार को आर्थिक नुकसान बहुत, उस परिवार में अशांति बहुत और बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में। एक जगह गुजरात में ही मुझे ले गए, हमारे पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है पालनपुर, उसके गांव में मुझे ले गए तो रात को प्रोग्राम था, तो बताया इस गांव में हर गली में रात को शराब पीकर लोग आते थे और आधी रात तक लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहनों से बात की, ब्रह्मा कुमारी बहनों से, और उन्होंने वहाँ प्रोग्राम किया और जब मैं गया था उस सेंटर को, वहाँ खुले एक वर्ष हो गया था, उसका वार्षिक उत्सव था, तो मुझे बताया कि अब इस गांव में कोई रात को झगड़ा नहीं होता, संपूर्ण शांति हो गई है। तो देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि अगर मनुष्य को सचमुच कुछ सिखाया जाए तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, वो सीखने को तैयार रहता है, उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, उसको केवल ये कहा जा रहा है सिगरेट न पियो, इससे नुकसान हो जाएगा, शराब न पियो, लेकिन अगर ठीक रीति से उसको एजुकेट किया जाए, उसको मारपीट भी की जाती है
0: जी,
1: लेकिन वो उसके इतना वश हो जाता है कि मारपीट उसको कुछ नहीं लगती, कहेगा लो भाई मार लो मैं तो पी लेता हूँ फिर से। तो एजुकेट करना, इसके दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराना, इसकी बहुत आवश्यकता है और हमारे युवक तो इस सब्जेक्ट में, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यही है कि उन्हें आनंद की सही परिभाषा हमें समझानी पड़ेगी और जो बड़े हैं वो इसका उत्तर दे नहीं पाते,
0: वो मुस्कुरा के
1: उत्तर दे देते हैं, ऐसा तुम भी ले लो आनंद, लेकिन ये आनंद तो नहीं है, ये तो आनंद को दस्त करने वाला है एक विष है। तो हमें सच्चे आनंद की परिभाषा उन्हें देनी होगी और सच्चा आनंद कैसे मनुष्य के जीवन को विकसित करता है। सच्चा आनंद इसमें नहीं कि आपको नशा हो गया और आप बेफिक्र हो गए और अपने को बादशाह समझने लगे और आप ऐसा देखने लगे मैं तो स्वर्ग में हूँ, ओहो सुंदर डांस हो रहे, परियां नाच रही हैं, ये सब आनंद नहीं है, ये तो बहुत क्षणिक चीजें हैं। वास्तव में जैसे मैंने कहा कि हमें अपने ब्रेन की स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी, हमें युवकों को सिखाना पड़ेगा, आनंद तो सुंदर विचारों से उत्पन्न होता है, आनंद तो किसी की भलाई करने से उत्पन्न होता है, आनंद तो किसी असहाय को सहारा देने में, सहयोग देने में, किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को मुसीबत से बाहर निकालने में जो गुड फीलिंग होती है, आनंद तो उसको कहा जाता है। आनंद तो एक सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है और जो साधनाओं के मार्ग पर रत हैं उन्हें जानना चाहिए कि आनंद तो सुंदर विचारों के द्वारा और मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा प्राप्त होता है, व्यसनों के द्वारा नहीं। तो ऐसी एजुकेशन अगर उन्हें दी जाए, और जिन माँ बाप को वो कह रहे हैं कि तुमने तो आनंद ले लिया, अब हमें लेने दो, हमारी बारी है, उन्हें ये चीजें जाननी चाहिए और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, खोल के बताना चाहिए कि आनंद नहीं हमने लिया, हमने तो जीवन को नष्ट कर दिया है। तो बच्चे भी समझेंगे सचमुच इससे जीवन को हम नष्ट कर देंगे। बाप को ही कहना चाहिए कि तुम पहले पढ़ो, तुम पहले योग्य बनो, फिर इन सब चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, अपना अनुभव सुनाना चाहिए बड़ों को कि हमने बचपन से या युवा काल से व्यसन लेकर कैसे अब हम मजदूर बन गए हैं, कैसे अब हम चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, हमने तो जीवन नष्ट कर लिया, अब तुम इससे नष्ट।
0: मतलब अनुभव युक्त बातें अपने बच्चों के सामने, युवाओं के सामने रखें कि हमने ये टेस्ट किया तो इसके क्या दुष्परिणाम हुए, किस प्रकार हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ नहीं बना पाए, और अब हमारे अनुभवों से आप सीखो कि आप इसमें ना पड़े, आप एक अच्छे राह पे चले। लता जी, कई बार कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि आप ये तो कहते हैं कि व्यसन न करो, लेकिन ये दुकानें, ये फैक्ट्रियां ही पहले क्यों नहीं बंद कर दी जाती हैं जिनमें इनका उत्पादन हो रहा है, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो लोगों में ये बात आमतौर पर ये प्रश्न उठते ही हैं और वो कहते ही हैं कि यहाँ ये समाप्त हो जाए तो ऑटोमेटिक ये बात समाप्त हो जाए।
1: देखिए, जैसे लोग हंसते हैं ना कि सिगरेट की डब्बी पे लिखा रहता है सिगरेट पीना हानिकारक है, तो ऐसे ये बातें तो हैं, ये सरकार की बात है, उनको उसे आमदनी हो रही है या कुछ लोगों के अपनी इंडस्ट्री चल रही है।
0: सर्वे ये भी आया है कि सरकार को जितना ज्यादा इससे लाभ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि एक कैंसर के पेशेंट को जितना ज्यादा उस पे खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो जितनी आमदनी नहीं हो रही है उससे कहीं ज्यादा तो खर्च करना।
1: बिल्कुल यही बात है कि अगर हमारे ऊपर के लोग भी सात्विक विचारधारा के हो जाएं और इस सत्य को वो समझ लें। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक छोटी सी आमदनी को देखकर या कुछ लोगों का बिजनेस धंधा चल रहा उसको देखकर उन्हीं लोगों में से लाखों लोगों को इसका बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। तो इसमें एक जो सुंदर सिद्धांत है अध्यात्म का, वो सबको जान लेना चाहिए कि गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी भी सुखकारी नहीं होता है, वो उसी तरह से नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में अगर लोग इस पर ध्यान दें, अगर हमारी सरकारें भी इस सत्य को स्वीकार कर लें, तो वो शायद इन चीजों को बंद भी कर सकते हैं, पर ये काम उनका है। जैसे हमारे यहाँ पास पड़ोसी राज्य में गुजरात में नशा मुक्ति है
0: जी,
1: शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी, तो बहुत फायदा है। यद्यपि कुछ लोग राजस्थान में आ जाते हैं, माउंट आबू में आ जाते हैं पीने खाने, लेकिन वो कभी कभी आएंगे ना, साल में एक आध बार आएंगे, त्योहार पे आ जाएंगे, लेकिन इसका वहां अच्छा प्रभाव है। तो हम देखते हैं जब हम गुजरात में जाते हैं तो हमें भारत के और अन्य क्षेत्रों से एक अलग तरह का माहौल दिखता है, अलग वाइब्रेशंस मिलते हैं, लोगों का व्यवहार कुछ अलग दिखता है, लड़ाई झगड़े कहीं होते हुए नहीं दिखते, और उनकी जो भाषा है वो इतनी स्वेट नजर आती है कि हम सोचते हैं हम तो यूपी से हैं, वहां की लठमार भाषा और इनकी मधुर भाषा में कितना अंतर है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रभाव व्यवहार पर बहुत पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बता जी, एक बात तो ये रही कि चलिए गवर्नमेंट भी इस स्तर पर अपना कार्य करे, मीडिया भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है युवाओं को, जैसे फिल्म में, टेलीविजन में, पत्र पत्रिकाओं में, जो जब वो एक्टर्स को या बड़ों को इस प्रकार से धूम्रपान करते हुए देखता है तो उसका भी सीधा प्रभाव उसके मानस पटल पे पड़ता है, और वो सोचता है कि जैसे ये भी एक प्रेस्टीज इशू बना लेता है उसे कि ये कर रहे हैं तो हम भी वैसा करें, क्योंकि एक प्रकार से सिनेमा जो है समाज के ऊपर बहुत गहरा छाप छोड़ता ही है।
1: हमारा मीडिया जो है उसमें भी आजकल का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एक्चुअली समाज का निर्माण कर रहा है, चाहे गलत तरीके पर उसको ले जा रहा है, चाहे उसको महानता की ओर वो अग्रसर करे, ये भी शक्ति उसके पास है, क्योंकि आजकल उसी का जमाना है। रही बात फिल्म एक्टर्स की, मैं तो अपने युवकों को कहूंगा तुम अपना आदर्श उन्हें ना बनाओ, हमारे देश में महान पुरुष भी तो बहुत हुए हैं
0: जी,
1: अब के महात्मा गांधी और भी हमारे बहुत सारे अच्छे नेता भी जो थे, चलो आज नहीं भी हैं कुछ ऐसे अच्छे लोग, लेकिन हमारे नेता भी तो बहुत अच्छे थे तत्कालीन, हमारे धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे देश में बहुत महान हुए हैं, इतिहास महान पुरुषों से भरा पड़ा है, उनको आप अपना आदर्श बनाएं तो इस चीज से काफी मुक्त होंगे। बाकी मीडिया के लिए मैं कहूंगा कि मीडिया को, विशेषकर चैनल्स को, इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि केवल पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। पैसा किसी देश को महान नहीं बना सकता हमेशा, ठीक है, पैसा एक आवश्यकता है, लेकिन वो समाज को सिखा क्या रहे हैं। उनकी हर चीज से युवक सीख रहा है, उसकी चिंतन की धारा बदल रही है, उसका व्यवहार करने का तरीका बदल रहा है, उसका चलना, उसका एक्ट करना बदल रहा है। तो हमारे देश में मैं जो खुल के कहना चाहता हूँ कि जैसे न्यूज के बारे में कहा जाता है कि कुत्ते ने मनुष्य को काटा, वो कोई न्यूज नहीं है। किसी मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया, वो फटाफट आएगा, सारा दिन चैनल पे वही आता रहेगा, वंडर ऑफ टुडे, एक मनुष्य ने कुत्ते को काटा। तो देखिए ऐसी बात है कि अच्छे समाचार भी बहुत हैं,
0: बहुत
1: बहुत हैं, अगर उनको भी थोड़ा हाईलाइट किया जाए तो समाज कुछ ज्यादा सीखेगा। इसलिए इस मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने देश के निर्माण में, अपने युवकों को महान बनाने में, अपने युवकों को सद्मार्ग पर ले जाने में। और अब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, व्यसनों से पूरी तरह छुड़ा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हमारे चैनल्स, अगर वो 6 मास भी अच्छी चीजें दिखाने लगे, उसका दुष्प्रभाव ही दिखाने लगे। हंसी की बात कि एक शराबी नाली में पड़ा है और कुत्ते ने टांग उठा के, अगर इस सीन को दिखा दें तो अनेक युवक सीख जाएंगे कि कितनी दुर्गति हो रही है शराबियों की। और इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दें 6 मास, तो आधे युवक 6 मास में ही व्यसनों को तिलांजलि दे देंगे।
0: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है भ्राता जी, क्योंकि ये भी हमारे 4 आधार स्तंभों में से एक स्तंभ है मीडिया। और यदि इसमें इस प्रकार के, चाहे व्यसनों के दुष्परिणामों को लेकर के या कुछ सुंदर बातों को उनके सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ी होगी वो एक अच्छे मार्ग पर, सद्मार्ग पर।
1: बिल्कुल, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारी पार्लियामेंट अगर ऐसा कानून बना दे कि वो सीन आपको नहीं दिखाने हैं जिससे युवकों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है, जिससे बलात्कार को बढ़ावा मिलता है, ऐसे चैनल्स पर, ऐसे समाचारों पर अगर पार्लियामेंट की ओर से प्रतिबंध लगा दिया जाए, और जो वो कर सकते हैं तो ये काम बहुत सहज हो सकता
0: है। बिल्कुल भ्राता जी, केवल एक लाइन लिख दिया जाता है आजकल कि भाई धूम्रपान या शराब पीना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे लगता है केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे आगे बढ़ना होगा। मीडिया को भी अपना उत्तरदायित्व समझना होगा समाज के प्रति, कि वो समाज को एक अच्छी दिशा में, युवाओं को एक अच्छी दिशा में जाने के लिए अच्छे समाचारों के साथ साथ इन चीजों को पूरी तरह से अपने न्यूज से और साथ ही साथ फिल्मों से भी।
1: बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे मेडिकल वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि किस व्यसन से ब्रेन पर, शरीर पर कैसा कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके सीन दिखा दिए जाए, मेडिकली एजुकेट कर दिया जाए युवकों को, तो बहुत सारे युवक समझदार होते हैं। मैं युवकों को ऐसा नहीं मानता कि वो कोई कहीं भी बहने के लिए तैयार है। हमारे युवक बहुत बुद्धिमान है और भारत तो बुद्धिमानों का देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये संपूर्ण सत्य है। तो मीडिया से हमारे युवक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे और निश्चित रूप से देश इस महामारी, मैं इसको महामारी कहता हूँ, इससे मुक्त हो सकेगा।
0: जी जी जी, बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने रखी हैं। इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आपने बहुत सुंदर बातें हमारे सामने, हमारे युवाओं के सामने आज रखी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से व्यसन हमें सचमुच एक नशे के साथ साथ हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ की तरह है, और हम ये समझते हैं कि किसी ना किसी रूप में इससे मुक्त होना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, ताकि समाज और राष्ट्र एक सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। आप सब बहुत समझदार हैं, अक्लमंद हैं, आपका जीवन आपके अपने हाथ में है। आप स्वयं निर्णय करें कि निर्व्यसनी जीवन श्रेष्ठ है या व्यसन युक्त जीवन श्रेष्ठ है। हमें अपने जीवन के माध्यम से अपने परिवार को, अपने समाज को, राष्ट्र को और अंततः सारे विश्व को एक सुंदर संदेश देना है। तो आए मशाल थाम लें और आगे बढ़ें संपूर्ण निर्व्यसनी जीवन की ओर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में।
3: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
4: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरे। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत आप जान रहे थे कि व्यसनों के प्रयोग से कैसे होते हैं ब्रेन सेल्स के डैमेज। इस विषय पर आदरणीय सूरज भाई जी ने प्रकाश डाला, होस्ट थे आदरणीय रुपेश भाई। कैसा लगा ये कार्यक्रम, क्या सीखा अपने आप, हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15। इस कार्यक्रम में इस नंबर पर कॉल करके आज के गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हम आपके साथ। कल आप सभी आज रमेश जी के साथ मिले, और इससे पहले आपने राखी के अवसर में बहुत सारे प्यार इकट्ठा किया था जो आप सभी ने रेडियो मधुबन पर कल शेयर किया। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

शक संवत 1948 है, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया रविवार है, विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 30 अगस्त सन 2026, सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है, राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक है, द्वितीया तिथि प्रातः 9:36 तक, उपरांत तृतीया तिथि का आरंभ है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अगले दिन तड़के 3:44 31 अगस्त तक और उपरांत रेवती नक्षत्र का आरंभ है। शूल योग अगले दिन तड़के 3:46 तक, उपरांत गंड योग का आरंभ है। गरज करण प्रातः 9:36 तक, उपरांत वणिज करण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात मीन राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:58 पर और सूर्यास्त का समय 6:45 पर है। चंद्रोदय का समय 7:57 पर और चंद्रास्त का समय 7:44 पर है। सूर्यदेव सिंह राशि में स्थित है और चंद्रदेव मीन राशि में स्थित है। 3:55 से 4:41 तक ब्रह्म मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:47 तक। अमृतकाल 10:56 से अगले दिन तड़के 12:32 पर रात्रि को है। तो ये कुछ बातें आज के पंचांग के अनुसार, और इस्लामी हिजरी है 1448, 16 रबीउल अव्वल इतवार मुकदम आज के दिन है। आज लघु उद्योग दिवस भी है, लघु उद्योग दिवस स्मॉल इंडस्ट्री डे प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के समग्र आर्थिक विकास में कार्यनीति महत्व को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। लघु उद्योगों के लिए सरकार से नीति समर्थन की प्रवृत्ति लघु उद्यम वर्ग के विकास हेतु सहायक और अनुकूल रही है। तो प्रत्येक वर्ष स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को मनाया जाता है।

और इस बार थीम है कि ऑनर टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs टू द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है, वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको सलाम करने का इस बार का थीम है। रोजगार सृजन और उद्यमिता में लघु उद्योग के योगदान है जो इंडिया के इकोनॉमी पर, उसको सम्मानित करना है। लेते हैं यहाँ पर फटाफट एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पर। गुड मॉर्निंग आबू।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं, मौसम की मिजाज जान लेते हैं। जयपुर में 34 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। और वहीं पर उदयपुर में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है। आबूरोड में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। बारिश छाए रहेंगे आसमान पर। माउंट आबू में 23 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक जा सकता है। रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है आबू रोड में भी और माउंट आबू में भी। पाली जिले में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की बहुत कम संभावना है। जोधपुर में भी 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, अधिकतम 34, बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। सूरत में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना भी ना के बराबर है। और मेहसाना में भी बादल छाए रहेंगे आसमान पर, 26 डिग्री न्यूनतम अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना 50% से कम है। राजकोट में 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। रात्रि के समय वर्षा की संभावना 60% तक है, दिन के समय ना के बराबर है। बात करें गांधीनगर अहमदाबाद के बारे में, 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। वहीं पर राजधानी दिल्ली में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। कोलकाता में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना 99% तक है, जोरदार बारिश होने की संभावना है कोलकाता में। बेंगलुरु में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, जोरदार बारिश होने की संभावना है। और वहीं पर मुंबई में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकते हैं। थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है आज के दिन। चेन्नई के बारे में बात करें तो यहाँ पर 55% से ज़्यादा संभावना है एक दो बौछार होने की। 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है। जिला सिरोही में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे बारिश के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माय लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट, शेयर इट विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट।
0: अभी बजे हैं सुबह के 8, स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

0: 8:01 रेडियो मधुबन की घड़ी पर अभी 8:02 हो गई है और रविवार के इस खूबसूरत सुबह में आपका फिर से स्वागत है 107.8 FM पर सुप्रभात। अगर आज आपका सफ़र ट्रेन से है या फिर कोई अपना ट्रेन से कहीं आने वाले हैं या जाने वाले हैं तो सफ़र शुरू करने से पहले एक बार जान लीजिए रेल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। कौन सी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही है और किस ट्रेन का आगमन या प्रस्थान कब है और यात्रा से जुड़ी कुछ ज़रूरी अपडेट्स भी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। आइए चलते हैं माबुरु रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ। माबुरु रेलवे स्टेशन पर 8:31 पर आने वाली गाड़ी है ग्वालियर से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 2257 संख्या वाली गाड़ी है, 6 मिनट मामूली देरी से चल रही है। आरावली एक्सप्रेस 1402 8:30 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 पहुंचने वाली है 9:05 पर। गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचेगी। 9:45 पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस पहुंचने वाली है 1924 16209 अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 10:10 पर पहुँचने वाली है। वहीं पर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। 11:00 प्रयागराज गांधीग्राम जाने वाली स्पेशल ट्रेन 0411 पहुंचने वाली है और दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या है 19412 11:30 पर पहुंचेगी। गांधीग्राम से जोधपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19032 11:53 पर 1:03 देरी से चलती हुई संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचने वाली है। गांधीनगर से दौलतपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19411 12:55 पर ऑन टाइम चल रही है पहुंचने वाली है ऑन टाइम 12:55 पर दोपहर बाद। जन्मभूमि एक्सप्रेस 19107 दोपहर बाद 1:30 पर पहुंचेगी। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 ऑन टाइम 2:10 पर पहुंचेगी अबुरुड रेलवे स्टेशन पर। योगा एक्सप्रेस 19031 दोपहर बाद 3:00 अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारियां हम जान रहे थे। तो सफ़र चाहे छोटा हो या फिर लंबा, सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी सफ़र को बनाती है आसान और सुहाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM और इस मोड पर एक हमारे श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्कार दीदी, गुड मॉर्निंग आबू।
0: गुड मॉर्निंग भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है, आपके कार्यक्रम को सुनकर के आनंद ले रहे हैं। मेरा भी एक भजन है सर, सुना दे रहा सर।
0: कोशिश करेंगे,
1: जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान
0: जी।
1: समय मिले तो सुना देना सर, समय नहीं मिले तो कोई बात नहीं
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद,
1: मेरा प्यार भरा नमस्कार,
0: शुक्रिया, नमस्ते नमस्ते। तो ये थे हमारे भूरीलाल जी और बहुत सही टाइम पर उन्होंने कॉल किया एंड हमेशा ही करते हैं और सुनते रहते हैं रेडियो मधुबन। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM।

तारों भरी नामे ने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए जानते हैं सोने और चांदी के क्या कुछ हालचाल हैं। 24 कैरेट के बारे में बात करें तो टोटल अमाउंट है 182,719 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से, और वहीं पर 22 कैरेट स्टैंडर्ड गोल्ड के बारे में बात करें तो 167,503 रुपये है। 18 कैरेट है 137,082 रुपये सोने के कीमत है यहाँ पर। वहीं पर चांदी के बारे में बात करें तो चांदी है पर किलोग्राम 255,000। प्लैटिनम के बारे में बात करें, प्लैटिनम पर 10 ग्राम है 55,900 रुपये। तो ये कुछ बातें सोने और चांदी के बारे में कर रहे थे। आइए, इस मोड़ पर एक श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते थे लेकिन फिल वक्त उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाई है। चलते हैं हम पेट्रोल और डीजल के बारे में जानने के लिए कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के क्या कीमत है। उससे पहले एक और श्रोता हमारे मध्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग सुभाष भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ दीदी। रक्षाबंधन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा, रेडियो मधुबन द्वारा सभी बहनों भाइयों द्वारा प्रस्तुत बहुत ही अच्छा हुआ। और आज केवल और आप में जो भाई बहन का दो छोटे छोटे क्लिप है वो बहुत ही अच्छे लगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत शब्द कम पर उसमें भावना आज बहुत ही बड़ा।
0: धन्यवाद, उसे लिखा था आरजे आरुषि जी ने
1: जी। रेडियो के प्रोग्राम के बारे में जो बहुत कुछ कहने लायक है, बड़ी मजने वाली है, बहुत ही अच्छा नाचा मुक्ति के बारे में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और सभी को नमस्कार दीदी, ओम।
0: नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सुभाष भाई फ्रॉम मुंबई से, उनके महाराष्ट्र से। बात करें अगर हम प्लैटिनम प्राइसेस के बारे में, 10 ग्राम के हिसाब से 55,900 रुपये जैसे हमने जाना। अभी हम चलते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के ऊपर नज़र डालते हैं। पेट्रोल है राजधानी दिल्ली में क्या है और अन्य राज्यों में क्या है, ये भी हम जान लेते हैं।

राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल प्राइस है 113 रुपये 19 पैसे, यानी कि 53 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर डीजल प्राइसेस के बारे में बात करें तो 98 रुपये 25 पैसे 47 पैसे की बढ़ोतरी हुई है डीजल की राजधानी जयपुर में। एलपीजी सिलेंडर है 945 रुपये 50 पैसे डोमेस्टिक और कमर्शियल है 2765 रुपये 50 पैसे 192 रुपये कम हुई है कमर्शियल 19 केजी वाले एलपीजी। सीएनजी के बारे में बात करें राजधानी जयपुर में 96 रुपये 50 पैसे पर केजी है और पीएनजी है 49 रुपये 50 पैसे। ये कुछ हमने सिल्वर प्राइसेस, गोल्ड रेट्स, प्लैटिनम, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के बारे में जाना। आइए जानते हैं मुद्रा जगत के में क्या कुछ हालचाल है। एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी है 95 रुपये 61 पैसे, एक यूरो के मुकाबले 110 रुपये 73 पैसे लगभग 111 रुपये है और एक जीबीपी के हिसाब से 129 रुपये 100 एडी के हिसाब से। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में बात करें तो लगभग 26 रुपये हैं, एक रियाल के हिसाब से 25 रुपये 40 पैसे हैं। एक एयूडी के हिसाब से और एक एईडी के हिसाब से, एक एईडी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के हिसाब से 26 रुपये हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से लगभग 68 रुपये हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी रुपए के साथ, अलग अलग कंट्रीज में रुपए के क्या कुछ रेट्स चल रहे हैं। लेते हैं यहाँ पर अल्फराम, मिलते हैं अल्फराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे जॉब रिलेटेड वो भी हम जान लेते हैं। लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026 यानी कि कल इंडियन आर्मी टेरियर साइबर के रिलेटेड ये टैलेंटेड युवाओं को साइबर सुरक्षा के लिए चुना जाएगा। योग्यता कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग में रुचि रखने वाले रिसर्चर और प्रोफेशनल हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय सेना और टेरिटोरियल आर्मी की ओर से टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 राष्ट्रीय स्तर की साइबर सिक्योरिटी हैकथन और टैलेंट हंट में साइबर सुरक्षा कोडिंग के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना, शॉर्टलिस्टिंग में 1 से 10 सितंबर तक और ग्रैंड फिनाले 6 से 8 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं साइबर क्वेस्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर www.cyberchallenge.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026। और वहीं पर बैंकिंग सेवा के बारे में बात कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे मौका है इंडियन बैंक्स में। वेबसाइट पर आप देखते रहिए। UPSC EPFO में APFC के 80 पदों पर भर्ती की जाएगी। लास्ट डेट 11 सितंबर है और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये ग्रुप ए पद है। भर्ती के लिए आयोग की ओर से स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2026 जारी किया गया है। भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर को पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी, लेकिन अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11 सितंबर 2026। www.upsc.gov.in पर जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद APFC भर्ती का आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें। एम्स के फैकल्टी के पदों पर भर्ती 12 सितंबर तक करें आवेदन। 12 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। एम्स जोधपुर ने विभिन्न विभागों में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निमंत्रित किया है। भर्ती में मेडिकल फैकल्टी के अलग अलग पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एम्स जोधपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और वहीं पर BEL डिप्टी इंजीनियर के 2 पदों पर भर्ती है। रैडर SBU गाजियाबाद के लिए फिक्स्ड टर्म डिप्टी इंजीनियर के 2 पदों पर भर्ती निकली है। नियुक्ति फिक्स्ड टेन्योर आधार पर होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1174 पदों पर भर्ती निकली है। 16 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। और वहीं पर SBI में जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली थी। लास्ट डेट इसके 26 अगस्त था जी। कुछ भर्ती निकली थी जिनके लास्ट डेट चले गए हैं। और UPSC में मेडिकल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 पदों पर भर्ती होगी। 1 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल एजुकेशन विभाग यूपी एलोपैथी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1156 पदों पर भर्ती निकाली है। तो UPSC की वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट नंबर D1/E1/2026 के तहत ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे जॉब्स के साथ। लेते हैं यहाँ पर फटाफट से ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के हम कुछ आसपास के घटनाक्रम सूचनाएं आप तक पहुंचाएंगे। सिरोही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल और इसके साथ साथ पेडियाट्रिक्स सर्जरी यूरोलॉजी और ब्रांड स्पेशलिस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रेडियोथेरेपी के पदों के लिए मुख्य सूची जारी की गई है। वहीं पर 2 सितंबर को परीक्षा आज अपलोड होंगे प्रवेश पत्र। आरपीएससी की सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगा। ओएमआर के 5वें विकल्प के लिए 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। प्रवेश पत्र 30 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर एसएसओ पोर्टल पर अपलोड होंगे। और इसके साथ साथ एएनएम की 1650 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सत्र 2026

0: और ये ग्राउंड पर जैन जी और ये बातें हम आपको बता रहे हैं सिरोही आबू रोड भास्कर के जरिए। और वहीं पर सिरोही में राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई सिरोही में राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर को दोपहर 1 बजे राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन और इस मैकेनिक, डीजल फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, महिला वर्ग, सोलर टेक्नीशियन ट्रेड में प्रवेश होंगे। माउंट में मौसम ने बदली करवट, धूप धुंध का खेल। स्वच्छ स्कूल रेटिंग में 100% भागीदारी जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। जिले के सरकारी, निजी, CBSE और केंद्रीय विद्यालयों के लिए स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2026-27 के तहत स्व मूल्यांकन पूरा करना अनिवार्य है और मान्य यूराइस स्कोर वाले स्कूल को पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। और रेटिंग जल उपलब्धता एवं संरक्षण, शौचालय सुविधाएं एवं स्वच्छता, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, परिसर का रख रखाव एवं संचालन, व्यवहार परिवर्तन, मिशन लाइफ गतिविधियों के आधार पर रेटिंग मिलेगी। तो ये कुछ सूचनाएं जो जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। और वहीं पर मेंस परीक्षा के बाद 7 दिन UPSC के प्रश्न पत्रों का होगा निःशुल्क विश्लेषण। जोधपुर में संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित IAS प्रमुख परीक्षा 2026 अंतिम चरण में है। और कल ऑप्शनल विषयों की परीक्षा खत्म होने के साथ ही मेंस का चरण पूरा हो जाएगा। इस मौके पर दिग्विजय IAS जोधपुर ने प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए खास शैक्षणिक पहल की घोषणा की है। माउंट अबू से गुजरात लौटते समय पेड़ से टकराए कार, टोलनाके से पहले हुआ हादसा। और वहीं पर स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कासिंद्रा मार्ग पर एक रिसॉर्ट के पास झाड़ियों में मिले युवक के शव की दूसरे दिन भी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए 5 एक्सपर्ट टीम बनाई है। थाना प्रभारी कमलेश गहलोत जी ने बताया कि शुक्रवार को रिसॉर्ट के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला पड़ा है। शरीर पर चोट के निशान है। शुरुआती जांच में मारपीट कर हत्या की आशंका है। और इसके साथ साथ श्रावण मास की पुनहाती पर महादेव मंदिर में प्रसादी भटाना में तो जिले में बहुत सारे कार्यक्रम किया जा रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता भी, दौड़ और कबड्डी स्पर्धा में छात्रों ने दिखाया दमखम। आबू रोड राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय में माई भारत केंद्र सिरोही एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते लाशने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR News Hindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIR News Hindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें तीन सवाल। क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर है और जिसमें हम लोग खास करके अपने मन और शरीर को कैसे हम लोग हील कर सकते हैं, तो इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो फिलॉसफी है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप डाइटिशियन भी हैं, नेचुरोपैथ भी हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। किस तरह से हमारा नेचुरल डाइट जो है हमें हेल्प करता है इस विषय को लेकर, और बॉडी में किसी भी तरह का अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तो हम लोग कैसे उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं आसान घरेलू तरीके अपनाकर, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को हम लोग जो है डाइट में अगर एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं या हम रिप्लेस करते हैं तो चीज़ें जो है अच्छी हो जाती हैं। तो वही बातें हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का विषय है कि टू हील माइंड एंड बॉडी। तो भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपका। ओम शांति। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग रूबरू होंगे। संतोष जी, हमेशा की तरह आप सभी की सेवा में उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। और अभी हमारे साथ अनघा और अंजना जी हैं, आप भी बहुत अच्छे गाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक गीत के द्वारा हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अनघा अंजना जी, मैं चाहूँगा कि आप एक गीत स्वागत में संतोष जी और डॉक्टर भवानी जी के स्वागत में सुनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है।
0: ना भी आया
1: ना भी आया।

0: को बहुत सारा रिफाइंड शुगर अगर हम यूज करते हैं, उसके अलावा चाय कॉफी अगर हम ज्यादा लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि हम ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये सब करने से हमारी जो इम्यूनिटी जो है डाउन होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको टैकल करने का तरीका क्या है? तो आज इस रेडियो मधुबन के माध्यम से मैं कुछ विशेष टिप्स देना चाहूंगी जो बहुत यूजफुल भी है और बहुत सिंपल भी है। तो फिजिकल हेल्थ को हील करने के लिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसे हमें खाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारा सिस्टम है, हर एक सिस्टम को हमें क्या कहते हैं, नेचुरली डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो नेचुरल डिटॉक्स हम कैसे करेंगे? शुरुआत हम लिवर डिटॉक्स से करते हैं। लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और उसको डिटॉक्स करते रहना बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसकी फंक्शनिंग सही होती जाएगी। तो लिवर में कुछ गड़बड़ी है, सबसे पहले तो ये हमें पता कैसे चलेगा? उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि जब हमारे मुंह से, जिसको हम बैड ब्रेथ कहते हैं ना, जिसे स्मेल आती है, तो बहुत लोग समझते हैं कि हमारे दांत में प्रॉब्लम है, ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम है, कैविटी हो गया होगा, तो ये समझ के बार बार ब्रश करते हैं। लेकिन आप देखना, ब्रश कितने भी बार कर लो या आप कुछ यूज कर लो मुंह में, बहुत लोग च्युइंगम चबाते हैं कि मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो लिवर जब हमारा कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू होता है या कुछ उसमें गड़बड़ी होनी शुरू होती है, तो एक मुंह से अलग से स्मेल आता है। वो इसलिए कि हमारा लिवर जो है बहुत अमोनिया बनाने लगता है, जिसका स्मेल हमारे मुंह से आता है। तो वो एक आप साइन कह लें, सिम्टम कह लें कि इसकी जरूरत है। दूसरा है कि बार बार इंडाइजेशन और ब्लोटिंग, मतलब पेट जो है फूलते रहता है बिना बात किए, आपने ऐसा कुछ हैवी फूड खाया नहीं, लेकिन बहुत इंडाइजेशन होते रहता है रेगुलरली, पेट फूलते रहता है, बहुत ब्लोटिंग होती रहती है, मतलब लिवर में कुछ गड़बड़ है।
1: बिल्कुल
0: सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो स्किन है, वो चेहरा हो, हाथ हो, जनरली चेहरे और गले पे देखा गया वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, जिसका मतलब है हमारे लिवर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो अब घबराने की बात नहीं है, कोई कुछ छोटे छोटे हम घर पे आराम से नेचुरल रेमेडीज कर सकते हैं। तो इसको इसको एक तरह से मैं कहती हूँ इनएक्सपेंसिव वे टू डिटॉक्स द एंटायर बॉडी। तुम लिवर से शुरुआत करते हैं, सिंपल तरीका। और लेकिन आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जोश, कुछ गलत टेक्निक्स, मतलब बताई चीज को गलत तरीके से ले लेते हैं। तो ध्यान से आप सुनिएगा इसमें। हाँ, गलत किया तो फिर ये वो कहानी थी ना कि दो बहनें होती हैं राजकुमारियां, तो कोई कहता है कि 3 बार अगर डुबकी लगाओगी उस नदी में तो बहुत सुंदर बन जाओगी। तो बड़ी बहन जो है, छोटी बहन, 3 डुबकी लगा के सुंदर होके, खूबसूरत होके निकलती है। तो बड़ी बहन सोचती है 3 में जब ये खूबसूरत हो गई है तो मैं ज्यादा डुबकी मारू, तो ज्यादा डुबकी मारती है तो बदसूरत बन के निकलती है। ऐसी बचपन में दादी कहानी सुनाया करती थी। गलत हमें कुछ टेक्निक यूज नहीं करना। तो अभी करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज काला मुनक्का होता है, जिसको हम ब्लैक रेजिन्स कहते हैं। तो ये जो काली किशमिश होती है, इसको हमें लेना है। किस तरह से लेना है? अभी ऐसे नहीं है कि रमेश भाई जी ले रहे हैं तो वो भी 2 चम्मच ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ तो मैं भी 2 चम्मच ले रही हूँ, कोई अभी जैसे हमारे संतोष भाई जी, ये ऐसे नहीं। सबका अलग अलग एक क्वांटिटी होता है। वो इसलिए हम सबकी हाइट हेल्थ अलग अलग है, मतलब हाइट और वेट अलग अलग है, हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। तो उसके लिए हमें अपना हिसाब कैसे हम क्वांटिटी देखें। तो हमारी जो ये मुट्ठी होती है ना, सबकी अपनी अपनी मुट्ठी की एक साइज होती है, तो इतना एक मुट्ठी आपका जो हाथ है, आप किसी और के लिए अपने घर पे नहीं कर सकते, अपने लिए ही करना। तो एक मुट्ठी आपने इस तरह से काली किशमिश यानी कि ब्लैक रेजिन्स आपने लिया, 400 ml पानी लेना है, और रात में इसको आप भिगा के रख देना, मतलब
1: बिल्कुल
0: सबसे से कम 7 से 8 घंटा वो भीगना चाहिए। सुबह उठकर आप उसको इतना बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि वो 400 ml जो है 200 ml पानी बन जाए। उसके बाद जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म आप उस पानी को पीना, और वो जो काली किशमिश है उसको चबा चबा के खाना है, और ये एम्प्टी स्टमक खाली पेट में करना है। और इसको करना कितने दिन है? सिर्फ 3 दिन, मतलब आप रेगुलर कंटिन्यू मत करते जाना। और ये बहुत हैवी हो जाता है, तो जिस दिन जो 3 दिन आप करते हैं उन 3 दिन आप नाश्ता मत करना, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। ये हम लिवर को डिटॉक्स कर रहे हैं नेचुरली। ये तो बहुत एक टेस्टी सा तरीका है लिवर को डिटॉक्स करने का, लेकिन जो डायबिटिक है वो इस टेस्टी तरीके को अपना नहीं सकते। तो डायबिटिक्स के लिए, जिनको डायबिटीज है उनके लिए आपको त्रिफला, ये नॉट सो टेस्टी वाला टेक्निक है, लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास, अब डायबिटीज अब जो हो गए हो तो त्रिफला चूर्ण जो होती है वो आपको 1 चम्मच लेना है। रात को 1 गिलास पानी में आप भिगाना, सुबह उसको बॉईल करना, बॉईल कर उसको पीना, ये भी 3 दिन। तो हर 3 महीने में एक बार आप 3 दिन के लिए इसको करना, तो लिवर हमारी अच्छी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। ठीक है, ये नंबर 1। सेकेंड, हमारा जो लंग्स है, लंग्स को भी रेगुलर डिटॉक्स करना होता है। तो लंग्स को रेगुलर डिटॉक्स करने के लिए ना बहुत अच्छा सा टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपके आसपास जब कोई होगा तब ये टेक्निक मत करना, क्योंकि वो समझेगा जानबूझ के ये लोग ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। तो टेक्निक ये है कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस ली, फिर हमको एक खांसी आती है, तो हम खांसते हैं ना करके, तो हम मुंह में रुमाल रख के कपड़ा रख के खांसते हैं, तो ये खांसी हमें जबरदस्ती लानी है। थोड़े जोर से हमें लंबी गहरी सांस ली अभी तो हम लोग वर्चुअल स्क्रीन पे, अगर मैं आपके पास हूँ तो कुछ होगा नहीं। तो हम जब जोर से खांसते हैं तो आप देखना हम एकदम अंदर से वो खांसी निकलती है, तो ये हमारा लंग्स जो है इससे लंग्स की सफाई होती है, डिटॉक्स होता है। तो ये एक बहुत इजी सा तरीका। दूसरा है अनुलोम विलोम, तो लंग्स को डिटॉक्स करने का ये एक बहुत सिंपल मेथड है। तीसरा जो है स्किन, स्किन सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। स्किन को डिटॉक्स करना मतलब ब्लड साफ रखना, ब्लड को प्योरीफाई करना है। ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए फिर से एक टेस्टी और एक नॉट सो टेस्टी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। टेस्टी टेक्निक ये है कि गाजर और ऑरेंज का जूस, अभी ऑरेंज का सीजन नहीं है तो सिर्फ गाजर का जूस आप बना के पी सकते हैं, और आपको बहुत फास्ट अपने स्किन को, स्किन पे ग्लो लाना है, स्किन को बहुत अच्छा करना है, तो ब्लड को प्योरीफाई करना है। उसके लिए बेस्ट है करेला, करेला और धनिया पत्ता मिलाकर इसको थोड़ा पानी डाल के आप मिक्सी में इसको अच्छी तरह से चला के इसको आप स्ट्रेन कर ले छलनी से, और इस जूस को एम्प्टी स्टमक सुबह पिए। ये आप कितने भी दिन पी सकते हैं, ऐसा नहीं है 3 दिन 4 दिन आप, क्योंकि ये आप पीना शुरू करेंगे तो कम से कम 3 महीने अगर आप पियेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये स्किन के लिए है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हम जिसको हम रोज रोज तकलीफ देते हैं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारी जबान कहती है भाई लाओ लाओ और लाओ, पेट कहता है ना ना मत दो, लेकिन हम सुनते नहीं है, देते रहते हैं। तो हमारे पेट बेचारा वो कितना स्ट्रेन लेता है ना, स्ट्रेस लेता है। तो पेट के लिए सबसे बेस्ट है अदरक जो होती है, अदरक को आप, क्योंकि गर्मी का मौसम है आप कहोगे और गर्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेना जरूरी है। हल्का सा अदरक आप घिस के ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो आप डाल लें उसमें खाना खाने के पहले, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के पहले बिल्कुल थोड़ा सा मुंह में डाल के आप चबा लें, उसके बाद आप अपना नाश्ता लंच डिनर करें तो अच्छे से पेट में डाइजेशन होगी। दूसरा है सौंफ, सौंफ को आप चबाते रहना, च्युइंगम चबाने की बहुत फैशन हो गई है। आप मुंबई में आएंगे ना सारे यंगस्टर्स कॉलेज के स्कूल के आपको च्युइंगम चबाते हुए दिखेंगे। तो मैंने अपने घर पे रूल बनाया है, घर में जो बच्चे हैं उन लोगों को सिर्फ सौंफ दे के भेजती हूँ, तो सौंफ चबाते हैं। तो सौंफ जितना आप चबाओगे, हमारे इंडियन कल्चर में हमें पता है फूड हैबिट में डाइजेशन अच्छी होती है। तो ये कुछ सिंपल टेक्निक्स है जिससे हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं।
1: जी, भवानी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किस तरह से हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे आपने बताया है, और सभी लोग कर सकते हैं ऐसा आपने बताया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप बताते हैं या कोई बताता है डॉक्टर वगैरह, तो वो चीज़ें या तो क्लिनिक में जाके ही हो सकता है या फिर आपको हॉस्पिटल वाइज होके फिर करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीका जो आपने बताया कि आप काला जो किशमिश है उसको भिगो के रखिए और फिर सवेरे उसको जो है पी सकते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं आप बहुत ही सिंपल करके बताए हैं तो अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग जैसे कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो उस समय हमें क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए या पहले प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहिए?
0: हाँ, जैसे आपकी अगर कुछ, जैसे एग्जांपल चलिए, लूज मोशंस अगर स्टार्ट हो गए तो वो टाइम पे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है घरेलू नुस्खे नहीं कर सके, पर जनरली हम लोग घबरा जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आई तो फटाफट वो ठीक होनी चाहिए, तो हम मेडिसिन्स की ओर ही भागते हैं। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि हम कुछ नेचुरल करके देख लें, पर ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो आप पहले अपना जो भी तरीका है, जो क्विक तरीका आप उसको हील करना चाहते हो वो आप करके, फिर मैं ये कहना चाहती हूँ ऑडियंस को जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुन रहे हैं, कि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम आए फिर हम स्टार्ट करें। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना प्रोवर्ब, तो पहले से आप शुरू कर दीजिए। अभी जैसे एग्जाम्पल, टचवुड मैं कहूंगी, अभी मुझे कुछ है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन क्यों फिर आगे आए, वेट क्यों करें? तो करते रहे ना, 3 महीने में एक बार, कौन सी दिक्कत है, बहुत आसान है। थोड़ा सा अदरक रोज खा लिया आप, चलिए अदरक भी आपको घिस के खाने को टाइम नहीं है तो अदरक का पाउडर तो रहता है, तो उसको आप ले लीजिए और गर्म पानी में मिला के, तो ऐसे सिंपल सिंपल तरीके हम, मुझे लगता है, अपनाना चाहिए पहले से ही, ताकि आपको कोई बीमारी छू ना सके। तो ये मैं बॉडी को हील करने के टेक्निक्स बता रही थी, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बहुत सिंपल सिंपल है, जो करते रहना चाहिए, क्योंकि कैसे होता है कि हम बीच बीच में हम छोड़ देते हैं, तो छोड़े बगैर आप नई नई चीजें है ना डिटॉक्स करने के लिए ट्राई करते रहना। उसमें एक और तरीका है जिसको ऑयल पुलिंग कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको आयुर्वेद में गंडूष या कवल कहा जाता है। तो गंडूष कवल दो अलग अलग है, पर उसको इंग्लिश में एक ही कहा जाता है, ऑयल पुलिंग। सो गंडूष का मतलब एक होता है कि आपने मुंह में, मुंह के अंदर आपने ऑयल भरा, तेल भरा, और आपने पूरा मुंह ऐसे भर के आपने रखा है। दूसरा होता है कि आपने मुंह में तेल डाला और एक साइड से दूसरे साइड, जिसको हम स्विशिंग कहते हैं, ऐसे आप उसको करते
1: जी
0: हो। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है। इस किसके लिए मैं आपको एक, आपको मजेदार बात कहना चाहूंगी। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सब लोग घर पे ही थे, और तो कुछ था नहीं, घर के काम करना है और फिर ये सब करना है, तो मैंने ऑयल पुलिंग के बारे में सालों से मैं सुनती आ रही थी, पर मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया था। और जब तक तो कोई भी चीज मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करूं तो मैं उस कॉन्फिडेंटली उस बात को बोल भी नहीं पाती हूँ, तो पहले मैं ज्यादा
1: जी
0: बोलती भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो अभी फुर्सत है, करके देखे, तो मैंने स्टार्ट किया। तो पहले तो वो 2-3 मिनट से ज्यादा मुंह में रखना बहुत लगता इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ा के वो 25-30 मिनट तक हो गया। तो बहुत सिंसियरली 2 से 2.5 साल, मतलब मैंने शुरू का तो लॉकडाउन पूरा पूरा, उसके बाद भी मेरा कंटिन्यू चलता रहा, तो कम से कम 2 से 2.5 साल मैंने किए वो। और मैंने बाद में रियलाइज किया इस बात को, ये मुझे बहुत टाइम के बाद, 2 साल के बाद में रियलाइजेशन हुआ, मुझे है ना हमेशा दांतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता था, हमेशा बचपन से। तो कभी हर 6-6 महीने में जाना, रूट कैनाल कराना, फिर कुछ फिलिंग करना, ये रेगुलर हो गया था मेरा। मैंने रियलाइज किया लॉकडाउन में, एक दिन भी ना तो मुझे सेंसिटिविटी हुई, ना कुछ तकलीफ हुई दांत में, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम अच्छी तरह से वो ठीक होने, मतलब हो गया। अभी तक, मतलब कितना भी तो थोड़े साल भी हो गए, अभी तो कुछ टाइम से मैंने रेगुलर भी नहीं हूँ, लेकिन टचवुड वो इतना अच्छे से ऑयल पुलिंग की वजह से हुआ। ये मुझे पता नहीं था कि दांत के प्रॉब्लम्स इससे ठीक होते हैं, जैसे है ना। तो हाँ, अब ये भी, और दूसरी बात मुझे और फनी लगी कि मेरे चश्मे का नंबर कम हो गया, तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया तो पता चला इसको आयुर्वेद में ऊर्ध्व चतुर्वत कहते हैं। ये वर्ड भी बड़ा डिफिकल्ट था, मुझे संस्कृत कोई खास आती नहीं है। तो ऊर्ध्व चतुर्वत का मतलब होता है कि यहाँ गले से लेकर ये जो अपना सिर तक का जो पोर्शन है, इसमें जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे आंख है, नाक है, कान है, सर है, जो भी है, तो सब पे ये इफेक्टिव है ऑयल पुलिंग। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती कि आप लोग शुरू कर दीजिए ऑयल पुलिंग, 5 मिनट भले करें लेकिन बहुत जबरदस्त उसका असर होगा।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता और दर्शक मित्र जो हैं इस बात को ध्यान में रखें और ऑयल पुलिंग का जो सिस्टम है उसे 5 मिनट 10 मिनट रात में तो आराम से कर सकते हैं, सोने के पहले आप 10 मिनट तो आराम से रख ही सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करें, है ना, फिर जैसे आपको छुट्टी का दिन है सैटरडे संडे उस टाइम पे 2-3 बार आप कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप इसको करिएगा। आइए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप सवाल डाल सकते हैं। तो कविता जी ने मैसेज करके बात लिखा है कि अच्छा आपने बताया पहले से ही हमें हेल्दी रहना है, अदरवाइज बीमार पड़ने के बाद तो इलाज तो करना ही है। ऑयल पुलिंग का प्रयोग राइट रिपीट की जाए मैम। अच्छा, चलिए नीता जी लिखती हैं कि ऑयल पुलिंग कैसे करें उसके बारे में। बस जो तेल, एक्चुअली में कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा अच्छा है ये हमने बताया, तो उस ऑयल को थोड़ा सा 2-3 चम्मच जो है आप मुंह में रखिएगा, फिर पकड़ के रखिए उसको, है ना, और जितना ज़्यादा समय तक, आधा घंटा आपको बोला है लेकिन आधा घंटा शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल होगा, आप 10 मिनट ही जो है पहले दिन कीजिए, दूसरे दिन फिर थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, ऐसे करके आधा घंटा तक अगर आप अपने ऑयल को मुंह में पकड़ के रखते हैं, और स्विचिंग करना मतलब ऑयल इधर उधर कर सकते हैं, नहीं तो आप मुंह फुला के रख सकते हैं हनुमान जी की तरह, और आराम से जो है आधा घंटा आपको उस पोस्चर में रहना है। तो ये है, तो आइए संतोष जी मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग वापस निकलते हैं। जी
2: ओम शांति। सांसों के तार तारी में प्रभु प्यारे को पिरो लो, सांसों के तार तारी में

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, आध्यात्मिक गीत।
0: थैंक
1: आयुष नाम जी ने भी याद भेजा है, नेताजी ने भी याद भेजा है, और कविता जी ने, संध्या पवार ने भी याद भेजा है आप सभी को, कविता जी ने भी याद भेजा है। तो आइए, आप सभी अगर कुछ सवाल, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे उसके ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं, ताकि आप इस चीज को समझ सके और नेचुरली हम लोग कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस विषय को जान सकते हैं। तो आइए, इंदु जी के भी याद किया है गुजरात से, कॉन्ट्रैक्टर इंदु भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने अभी अभी घुटने का रिप्लेसमेंट आपका हुआ है, शायद आपने किया है, तो घुटने के प्रॉब्लम्स में नी रिप्लेसमेंट करना कितना उचित है, या इसके लिए कुछ पहले से अगर हम प्रिकॉशन ले तो नी रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए भवानी जी, डॉक्टर जी।
0: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है अभी। तो प्रॉब्लम बढ़ने के बाद में जैसे हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं है, तो सर्जरी के लिए हमें जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर हमने शुरू से ही थोड़ा सा अपने हेल्थ पे अगर ध्यान दिया, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो नी आपको जैसे घुटने, जॉइंट पेन, जिसको शुरुआत तो जॉइंट पेन से होती है, फिर आर्थराइटिस, उसके बाद गाउट, उसके बाद में घुटने घिस जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम शुरुआत में ही, यानी कि टाइम रहते रहते, जैसे यंगर एज में, जैसे आपके घर में आप जो लोग जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, आप अपने अपने घरों में इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। बहुत ही सिंपल है, मैं कहती हूँ कि हर एक ने करना चाहिए, जो हमारे पुराने जमाने के लोग करते थे। अगर आपको याद हो ना, तो हमारे पुराने जमाने के लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो पान खाते थे। तो पान में चूना और सुपारी मिला के, मुझे भी याद है, और सुपारी भी कैसी थी पता है, वो मोटी मोटी ब्राउन आती थी। तो मेरे दादा दादी है ना, वो ऐसे हाथ में लेके बैठते थे, बट स्टाइल से कट करते थे उसको, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे। ऐसे देखने में लगता था बड़े क्या ऐसे गांव के हैं, धोती पहने हुए ये। तो मैं तो कहती थी अपने दादा दादी को कि आप अपना स्टाइल चेंज करो, मेरे फ्रेंड्स आते तो आपका मजाक उड़ाते, पैंट शर्ट पहना करो। वो कहते क्यों
1: जी
0: करो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चूना जो है, जिसको इंग्लिश में स्लेक लाइम कहते हैं, ये सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, नेचुरल कैल्शियम। तो हम पान नहीं खाते हैं माना आज के दिन में, लेकिन हम उस चूने को तो यूज तो कर सकते हैं। तो चूने को
1: बिल्कुल
0: यूज करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, मैं तो कहती, एक डिब्बा है ना 20 रुपए का चूना, आप छोटी, इतना बड़ा डिब्बा तो 6 महीना चलता है, उसको कुछ भी नहीं होता, उसको बेचारे को फ्रिज की भी जरूरत नहीं, वो बाहर पड़ा रहेगा वो। तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा लेकर के, आप जैसे आपने अपनी दाल बना ली, दाल अपने गैस बंद करने वाले हैं, वो टाइम,
1: जी
0: जैसे 4 लोग हैं घर पे, इतना सा, इतना मतलब 1/4 चम्मच बोलते ना, इतना थोड़ा सा आप उसमें डालना और गैस को बंद कर देना और उसको मिक्स करना। आपकी सब्जी बन गई है, लास्ट में आप डाल देना, मिक्स कर देना। सपोज आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, क्योंकि ये सब चीजें ना जल्दी जल्दी याद नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल पानी तो हम लोग पीते रहते हैं सारा दिन। तो घर पे जब आप हैं, एक टाइम तो आप कुछ टाइम तो घर पे रहेंगे ना, पूरा दिन तो ऑफिस में नहीं रहते, तो थोड़ा सा कुनकुना पानी या गर्म पानी लेना, उसमें चूना मिक्स कर देना और पी लेना। वो माइक्रो मिनरल है, इतना सा ही हमारे बॉडी को चाहिए। लेकिन हम रेगुलर अगर इस तरह से चूना लेते रहेंगे अपने फूड में, अपने डाइट में, तो कभी भी हमें कैल्शियम से रिलेटेड ना डेफिशिएंसी ना प्रॉब्लम होगी। तो आपके जो घुटने हैं ना, स्वस्थ रहेंगे। ये शुरुआत में अगर कर लिया, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जो
1: जी
0: आपने सवाल पूछा, उसका ये जवाब है।
1: तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, और इंदु कॉन्ट्रैक्टर जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में मैडम दे रही हैं, और बहुत ही अच्छा गीत संतोष जी ने गाया है, ऐसा मैसेज दिया है, थैंक यू।

0: दिमाग भी ठंडा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नारियल पानी। नारियल पानी आप पी ले, वो भी आप सुबह, मतलब ये जो भी जूस होता है ना, सुबह आप 11 बजे के पहले पिए तो ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा तरीका है गुलकंद। गुलकंद जो है ना, वो हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो गुलकंद भी चीनी वाली गुलकंद नहीं, आजकल तो ऑर्गेनिक गुलकंद जिसमें बिना चीनी के होती है, शुगर फ्री, जो ऐसे वाले गुलकंद बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, या तो आप घर पे ही बना सकते हैं। गुलकंद बहुत पेट को ठंडक देता है। तो आप अपने कोई भी, जैसे आप कुछ भी अपने दूध में मिला दिया, पानी में मिला दिया, या आपने स्मूदी बना ली, या जूस कुछ किसी में डाल दिया, मीठा आपको पसंद है, तो गुलकंद पेट को ठंडक देगा। और इस तरह से ना, नॉर्मल जो वाटर है, रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं पिए आप, रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए। तो उसमें आप सौंफ जो होती है, सौंफ को डाल के रखे 3-4 घंटे के लिए, वो पी ले आप। बहुत सारे इन्फ्यूज्ड वाटर हम लोग कहते हैं इसको हमारे न्यूट्रिशन के लैंग्वेज में। तो हम पानी में ही कुछ ऐसी चीजें डाल दें समर में स्पेशली, ठीक है? तो एक तो तरीका इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने का, कि आप 1 ग्लास पानी लेना, उसमें ना इतना साइज का एप्पल, बस एक पीस एप्पल उतना डालना, थोड़े से पुदीने के पत्ते, उसको आप 3-4 घंटे छोड़ देना, फिर उस ये पत्ते को और एप्पल को निकाल के फिर ये पानी पी लेना। ये इन्फ्यूज ड्रिंक पेट को ठंडक पहुंचाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा 2 चम्मच सौंफ आपने डाल दिया, 3-4 घंटे रखा, वो आपने पी लिया, पेट को ठंडक पहुंचाएगा। फिर जो पम्पकिन के सीड्स होते हैं, ये पेट को इसी तरह से भिगा के रखना आप 2-3 घंटे, और पानी को पी लेना, सीड्स को आप फेंक देना। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपके पेट को ठंडक भी देगा, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, 100% रिजल्ट वाला है। तो ये आप पियोगे तो आपकी बीपी भी नॉर्मल होने लगेगी। तो ये कुछ, और जूस है, फ्रेश जूस है, तो ये सब चीजें, और बटर मिल्क है, छाछ, ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में। तो सुबह के वक्त दही ले लें, दोपहर को छाछ ले लें, तो ये सब आपके पेट को कूल कूल रखेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने पेट को कूल कूल रख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका आपने बताया, और निश्चित तौर पे आप सभी इस चीज को कर सकते हैं। इसके साथ में कई बार हमारा जो खाना है यहाँ पर ऑयली या फिर ऐसी चीजें हो जाती है जो फूड कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं होता है, तो इसका कैसे हम लोग ध्यान रखें? क्या हम लोग कुछ चूने की तरह कुछ मिला दे तो सब ठीक
0: तो आप पूछ रहे सवाल ये हो कि ऑयली जो हम खा लेते हैं, अभी तक
1: जाए?
0: तो सुनाई नहीं दिया क्या ऑयली वाला आपने?
1: नहीं, बहुत ज्यादा ऑयली खाना वगैरह खा लेते हैं या फूड कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं खाते हैं, तो वो जैसे कि अभी गर्मी है तो दही चावल खा लेते हैं, या फिर नींबू राइस या फिर मैंगो राइस, ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो चीजें कितना फ्रूटफुल है, क्या फिर उसको अगर कर खाते हैं तो क्या करना चाहिए?
0: ये दही राइस तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट ही रिसर्च है। तो दही राइस आपको शायद पता नहीं, जिस साउथ इंडियंस, हमारी जो कम्युनिटी होती है, साउथ इंडियन कम्युनिटी, तो
1: जी
0: एक
1: जी
0: पूरा, आजकल कोई नहीं करता है ये सब, पुराने
1: हाँ
0: जमाने में करते थे, मैंने खुद देखा है, मेरी मम्मी को, नानी दादी को। तो चावल ज्यादा खाते हैं ना साउथ में, तो
1: हाँ
0: चावल एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उस चावल
1: हाँ
0: को क्या करते हैं, उसको उसमें पानी डाल देते हैं रात को, और उसको साइड में रख देते हैं, पूरी रात
1: हाँ
0: भिगाया रहता है। फिर सुबह क्या करते हैं, उस पानी के साथ ही उसमें दही डालते हैं, और उसको अच्छी तरह से मैश करके सुबह सुबह खाली पेट, ये जितने भी आप देखेंगे ना साउथ में जाएंगे, ये बहुत कॉमन नाश्ते की तरह होता है सुबह, क्योंकि लोग पता सुबह सुबह चावल कैसे लोग खाते हैं, पर ये है ना पुराने जमाने में, वो आजकल तो बहुत ही बहुत रेयर आपको दिखेगा ये, तो उसको वैसे ही खा लेते, उसमें नमक वमक कुछ नहीं डालते। एक एक चीज होती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जैसे अचार वचार होता है ना, तो वैसे खट्टी सी एक चीज होती है, ये एक फल होता है, उसको थोड़ा सुखा के बनाया जाता है, ब्लैक सॉल्ट वगैरह डाल के, तो वो कॉम्बिनेशन खाया जाता है साउथ में। ये चीज

0: मुझे है ना बहुत, क्योंकि मैं खुद ये ना मुझे पसंद नहीं करती थी, मैं बचपन में मैं खाती नहीं थी कभी, और अभी जब मैंने रिसर्च पढ़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ है कि कर्ड राइस, इस तरह का कर्ड राइस, पुराने चावल का जो अगर आप खाओगे तो विटामिन B12 की लेवल बॉडी में बहुत बढ़ती है। ये पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया, जब बड़े बोलते थे तब मैं नहीं खाती थी, अभी मैं नया शुरू कर रही हूँ इतने सालों के बाद। तो कॉम्बिनेशन में कर्ड राइस तो समर के लिए बेस्ट है, लेकिन शाम के वक्त नहीं, आप दोपहर को सुबह इस तरह से ले सकते हैं। और दूसरा है कि जो आप नींबू राइस कह रहे हैं या जो मैंगो राइस, ये सब हेल्दी है, तो ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, ये तो हम
1: जी
0: फिजिकल
1: जी
0: लेवल पे कह रहे हैं कि टिप्स की किस तरह से आप अपने बॉडी को हील कर सकते हो, लेकिन माइंड के लेवल पे भी हमें थोड़ी हीलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड मैं बहुत
1: बिल्कुल
0: थैंकफुल हूँ रमेश भाई जी आपके लिए, आप मुझे इतना अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये चाहती हूँ कि हर ऑडियंस सुने इस बात को, क्योंकि मैं एज अ डाइटिशियन इतना सारा नॉलेज रखा हुआ था फूड का, और मैं करती भी हूँ सब कुछ फॉलो, करती थी शुरू से, लेकिन मैं
1: बिल्कुल
0: सोचती थी फिर भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते थे, बीच बीच में होता है ना। ऐसे मैं अपने आप को कंप्लीट हेल्दी करके उस टाइम पे मैं बोलती नहीं थी, कुछ ना कुछ शुरू रहता था। मैंने इस बात को रियलाइज किया जब मैंने कोर्स किया ब्रह्मा कुमारीज में आके, फिर मैंने योग सीखा, फिर राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, फिर अपने मन पे कैसे काम करना होता है, ये सब जब मैं समझने लगी, तो जब मैं माइंड के लेवल पे वर्क करने लगी, तब मैंने देखा कि हेल्थ, जो जिसको हम कंप्लीट हेल्थ कहते हैं ना, वो अचीव किया। तो हम बॉडी के लेवल पे हर कोई मेहनत करता है आजकल, क्योंकि बहुत ईजी हो गया सब कुछ, तो गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाता है, और बहुत लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करते भी हैं,
1: बिल्कुल
0: डाइट पे
1: बिल्कुल
0: ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेंटल लेवल पे है ना उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा अपने माइंड के लेवल पे भी अपने आप को हील करना शुरू करें, जिसके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि गट ब्रेन कनेक्शन का मीनिंग ही वो है। माइंड अगर ठीक है तो पेट ठीक रहेगा, पेट ठीक है तो माइंड भी, ब्रेन भी ठीक रहेगा, सही है ना। बचपन में आपको याद होगा ना, जब हम एग्जाम देने जाते थे तो फिर दही चीनी रेडी रखते थे ना बड़े मम्मी दादी, तो वो
1: बिल्कुल
0: दही क्या प्रोबायोटिक है, वो पेट में जाएगा तो पेट खुश है, पेट खुश है तो दिमाग खुश है, तो ऐसे हमें माइंड को भी हील करना पड़ेगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता दर्शक मित्रों को अच्छा लग रहा है। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक और बात, ENT के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या डाइट है? जैसे आपने वो ऑयल पुलिंग वाली बात बता दी, और खास ENT के लिए कुछ है क्या जो तीनों चीजों को, कई लोग है ना ईयरबड्स वगैरह ये करते हैं, कई लोग तो फिर चाबी डाल देते हैं कुछ भी,
0: हाँ,
1: अब वो ऐसे कहते हैं कि नेचुरली कान तो अपने आप ही खुद को क्लीन करता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ENT का कुछ जो है क्या किया जाए, या ऑयल पुलिंग जैसा कोई और सिस्टम है जिससे हमारी ENT के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए?
0: ENT के लिए तो बेस्ट तो ऑयल पुलिंग है। दूसरा जो होलिस्टिक मेथड है वो
1: जी
0: है हमिंग साउंड। हम जब
1: अच्छा
0: हमिंग साउंड करते हैं, तो हमिंग साउंड कैसे करना है कि जैसे बीज हमिंग साउंड, पर उसके लिए ना एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या है कि आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते वक्त ये जो टिप ऑफ द टंग है ये
1: जी
0: आपको ऊपर ऊपर की तरफ टच होना चाहिए, जब आप टच करेंगे ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा, फिर जब हम वो जो हमिंग साउंड करते हैं बहुत इफेक्टिव होता है। तो जब हमिंग साउंड, पहला तो ऑयल पुलिंग ENT के लिए, सेकेंड है हमिंग साउंड करना, थर्ड है ओम, ओम चैंटिंग, ओम चैंटिंग भी अ ओम, जब हम चैंट करते हैं 11 बार 21 बार, तो उससे भी उस ध्वनि से भी ये क्लियर होती है, ये ENT की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये तो हो गया एक होलिस्टिक अप्रोच। लेकिन हम जब फूड की बात करते हैं तो हमारे ईयर्स नोज थ्रोट, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी है ना ठंडी चीज नहीं ले, क्योंकि हमें एक आदत हो गई ठंडा ठंडा के, गर्मी का भी मौसम है तो ठंडा कुछ भी होता है ना वो तामसिक होता है। जैसे फूड को कैटेगराइज करते हैं ना, तामसिक राजसिक सात्विक। जैसे पानी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: लिया, पानी जो है फ्लोइंग होता है, वाटर फ्लोइंग होता है, कहीं भी आप डाल उसका शेप लेगा तो वो वाटर जो है राजसिक है, वो फ्लो करते रहता है, बहते रहता है। उसी वाटर को जब हम फ्रीजर में डालते हैं और वो आइस बन जाता है तो वो तामसिक है, और वही वाटर जब हम बॉईल करते हैं और वेपर निकल के ऊपर उड़ता है तो वो सात्विक बनता है। तो आप याद रखना, कभी भी ठंडी चीज आप लोगे तो इन तीनों को इफेक्ट करेगा, तो ठंडी चीजों को जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। और दूसरी बात है बहुत ज्यादा खट्टा, मतलब एक्सेस खट्टा बहुत अच्छी बात है, उसमें टार्टरिक एसिड होता है जो जरूरी है, लेकिन ओवर खट्टा हम खाते हैं ना, चटपटा मुंह, जब जबान बहुत वो टंग मचलने लगता है तो बहुत वैसे खटपट चटपटा लेंगे तो उसमें भी फिर यूएनटी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कुछ कुछ सिंपल सिंपल हम चीजें ध्यान रखें तो हमारा ये यूएनटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर भवानी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या करना है वो आपने बताया। ठंडी चीजें अवॉइड करें और उसे गर्म करके फिर आप अगर पीते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा एक्सेस खट्टा की जरूरत नहीं है, थोड़ा खट्टा चल जाएगा जो आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो ईएनटी प्रॉब्लम भी आपके खत्म हो जाते हैं, और गर्मी के मौसम में कूल कूल रहने के लिए आपको बहुत सारी टिप्स मिल गए हैं। तो उसमें से कोई चीज जो आपको अच्छी लगती है उसका प्रयोग करें, और अगली बार हमें जरूर मैसेज करके बताइएगा। तो संतोष जी थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत गाने के लिए, एंड डॉक्टर भवानी जी फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूंगा आपको सब बातें जो है क्लियर हुई होगी, नहीं तो एक बार एपिसोड रिपीट करके पूरा ध्यान से सुने, कागज पर लिख लें ताकि मिस ना हो कोई चीज और गलत क्रिया ना हो आपसे। तो प्रॉपर जैसे बताया गया वैसे आप करेंगे तो आपका हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आपके हाथ में है। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में रखें, किसी और को या फिर डॉक्टर के हाथ में मत सौंपिए, क्योंकि आप भी नॉलेजफुल हैं और आपको नॉलेज मिल भी रहा है, तो इसका उपयोग करें। वैसे नॉलेज इज पावर कहा जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है ना, तो दोनों चीजें नॉलेज से मिल जाती है। तो ये आपका डॉक्टर का पैसा बच जाएगा तो आपका इनकम हो गया, और ये पावर भी बनेगा जब आप इसका प्रयोग करके अपने लाइफ को अच्छे सेट करेंगे, हेल्दी बनेंगे, है ना। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार।
1: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
2: बस मजे में।
1: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
2: हाँ दीदी।
1: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
2: मेरा बचपन गुजरात में।
1: गुजरात में कहाँ पर?
2: पालनपुर।
1: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
2: गुजराती छो।
1: सुवात छी है। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
2: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
1: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
2: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
1: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे, थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं। कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
2: 8 भाई।
1: आपका नंबर कौन सा बनता है?
2: मैं तो लास्ट में हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे हो, तब तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
2: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
1: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर, 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
2: 7वां नंबर। हाँ 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
1: बचपन में ही।
2: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे है इनके।
1: सॉरी बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
2: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
1: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
2: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
1: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
2: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। और मम्मी भी बेचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे। ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
1: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
2: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी,
1: क्योंकि 8 भाई बहन है इसलिए।
2: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
1: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
2: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
1: सर्विस किस में करते थे?
2: ये चपरासी की।
1: स्कूल में?
2: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
1: अच्छा तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए, भाई नहीं पीना चाहिए?
2: छोटे छोटे थे क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
1: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
2: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ कहाँ ध्यान देवे। ओ मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
1: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
2: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ न कुछ काम।
1: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
2: नहीं कौन करने वाला है मदद आजकल।
1: नहीं जैसे आपके भाई बहन, ऐसे बड़े भाई बहन?
2: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था, झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
1: पिताजी तो व्यसनी थे लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने, आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया?
2: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। और इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने, हम 5 बहनें थी, तीन भाई थे। तो फिर शादीशुदा हो गया तो फिर इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी तो मम्मी इन सबका टेका लेके सहारा लेके हमारे को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
1: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
2: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने, पर पढ़ाई नहीं करी। हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए। कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
1: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
2: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदियां संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा। हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने। फिर पैसे थोड़े घने मिले तब मम्मी के पास में ही है।
1: अच्छा, अभी भी आपने मम्मी के पास ही रहते हैं?
2: हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां एक लड़का।
1: जल के मर गए
2: तो फिर
1: कुछ हादसा हुआ क्या?
2: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई। सारा हमारा पियर में वही संभालती, भाभियां नहीं संभालती, हमारी छोटी लड़की संभालती है।
1: अच्छा, बहुत देखो, कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
2: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में ही थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
1: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
2: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले।

0: भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे मान ही नहीं भावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
1: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
0: हाँ इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको, घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता।
1: वो कहते ना त्याग उन्होंने भी किया ना।
0: इसने जीवन त्याग कर दिया, इसने शादी था घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते हैं कि नहीं हमारे मम्मी पापा यही है।
1: जी जी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जा करके मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन सुन लेते हैं गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू
1: बहू
0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं, और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे। तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
5: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
4: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहे, बड़े हो ही नहीं।
5: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
4: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके। तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
5: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए, थोड़ा घना मम्मी ने करा। फिर भाई ने नौ सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। फिर सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
4: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
5: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर करके, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी काम काज करने के लिए।
4: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
5: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
4: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: 15-16 साल की थी।
4: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी? तो शादी करके आप सीधे आबू आए?
5: सीधे आबू आए।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
5: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
4: मतलब कैसे, जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
5: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
4: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
5: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
4: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
5: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, मैंने भी डट के सामना करा।
4: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
5: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जीती मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
4: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, या परिवार वालों का दबाव था?
5: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलूं। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झेला है।
4: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
5: नहीं देखा था, इन्होंने देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी कि मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे करते थे।
4: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी?
5: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला ने सारा करा।
4: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
5: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए, फिर ऐसे ही छोटी मजूरी करी, धंधा करा, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे, जैसे तैसे करके थोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया बनाया मैंने।
4: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
5: मैंने 5-6 साल बाद।
4: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया, तो 5-6 साल आपने क्या किया घर के कामकाज?
5: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
4: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू मैं होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोजी। तो कभी आपके साथ ही ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
5: हाँ, होता था, बहुत होता था, कोई सगे वाले आते थे करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी, फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए, दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया, करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
4: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपये लिए मंथली?
5: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े कर रहे मैंने।
4: ये कितने साल पहले की बात होगी?
5: ये होगी दीदी, ज्यादा टाइम के,
4: तो 250 रुपये में सारा ही काम।
5: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
4: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
5: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती, 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं, वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश ब्रश करवा के चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती, तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती, तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते बंद करके, मैं काम करके आती।
4: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननन दियर, फिर इनको कौन सा?
5: तो शादी हो गई थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे, इसके आदमी तकलीफे देते थे तो भाई के घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको, जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको, कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं ही संभालती हूँ दोनों बहनों को।
4: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? गॉड्स ब्यूटीफुल आंसर वॉज द थिंग दैट सरप्राइजेस मी द मोस्ट अबाउट दीज ह्यूमन बींग्स इज दीज ह्यूमन बींग्स दे वेयर देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ चलिए, ओके हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके एक और बार करेंगे, वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वे बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है और वो है, जब मैं कहूंगा वन तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए, ओके? ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट? भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना? जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके? यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
3: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
2: जी जी, अब तो इतने साल हो गए जो
3: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी। ये हिंदी क्या बोलते है क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते है हिंदी ये लोग। अब सब समझ गई हूँ।
2: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी? क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
3: नहीं, मेरे पेयर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी शराब बरब पीते थे, करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे 5 लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर

0: यहाँ तो दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं क्या बोले, हमारी कास्ट में ही दी सब जगह पांचों बहनों के।
1: जी जी हाँ, सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा,
0: ठीक
1: यही सोचा होगा।
0: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं, पर तकलीफें तो घनी हैं।
1: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे? आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
0: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को। ऐसे ही घूंघट में रहना, करना, मान सम्मान से रहना, ये राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
1: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
0: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
1: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
0: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको। दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझते थे कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
1: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
0: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
1: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
0: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
1: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
0: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना है ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो, कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो इसीलिए फिर मैंने काम धंधा जारी रखा।
1: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
0: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
1: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
0: 2-3 बज जाते थे सोते करते, सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के, फिर 9 बजे में थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती है।
1: सुबह 9 बजे?
0: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
1: बहुत काम करते थे। तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया, वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
0: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी, पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
1: खुददारी से जीवन जिया,
0: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया, मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
1: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है, काम करना गुनाह नहीं है लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
0: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
1: जी जी, तो आपके जैसे बेटियाँ भी है, तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटियाँ पढ़ रही है?
0: नहीं, मेरी 2 बेटियाँ ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
1: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की, पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
0: हाँ, 7वीं क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूल छोड़ दी। फिर
1: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
0: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारी काम करा दोनों बहनों ने।
1: देखिए, पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
0: नहीं, सरकारी स्कूल थी, पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चों ने फिर मम्मी कहे तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
1: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
0: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई फिर सगाई करी शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। छोटी वाली थी इसने 8वीं पास करी है, इसने छोटी वाली ने वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इन्हों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी फिर, तो फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
1: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते?
0: हेल्प करती मेरे साथ।
1: तो अभी आप क्या करते हो काम?
0: अब बेटा कमाता है तो थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे, बेटी अभी जाती थी काम पे फिर इसने छोड़ दिया, छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती इसने छोड़ दिया अभी।
1: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
0: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
1: जी जी बिल्कुल। तो प्रवीणा जी, और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं वंदे मातरम कार्यक्रम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

0: ही पड़ी हूँ।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है। बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
2: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संकट करा है, बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो। और काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है काम।
1: तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
2: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते है। तो ऐसे कुछ मांगते है तो दे देते है, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती। अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छो करते है, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने। मैंने शान से जीवन शान से ही वही रहना है मेरे को, इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा अब मत काम करो।
1: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
2: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई। मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ, सबके सामने हंस के सामने आई हूँ। तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियाँ खुश ही थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती। ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है वहाँ पे भी, पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी।
1: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटे वाले को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
2: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है नौवीं में आया है। तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे कैसे करे अभी सोच रहे, इसकी फीस बीस जमा करनी है और सोच रहे वहां तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको तृप्त कर देंगे।
1: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
2: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है, खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने।
1: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो।
2: हाँ दीदी, तो दे रही है अभी, कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के। तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है।
1: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
2: हाँ, अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ, मैं मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
1: बच्चे आपका कहना मानते?
2: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं, मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे देवे, एक रोटी देवे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
1: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
2: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
1: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
1: जी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद

को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं, अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

अभी कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देशवासियों को संबोधन मन की बात के जरिए 11:03 रेडियो मधुबन की घड़ी पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से

0: उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास के एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपलें और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था, इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरवैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है। इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर

0: गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मित्र संदीप शर्मा और मेरे साथ हैं
2: संयुक्ता बैनर्जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आज हम बात करेंगे आदि विद्रोही धर्मवीर भारती की। कोई ऐसी कथा कहो साधु।
2: रेडियो आजाद हिंद के द्वारा प्रस्तुत शब्दों के शिल्पकार भी आप सुनेंगे,
1: गुणगान करें।
3: अभी आपने जो कविता की पंक्तियां सुनी, उनमें उपयोग किए गए कुछ विशेष शब्दों से आपको आभास हो गया होगा कि आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कथाकार, नाटककार, कवि, समीक्षक, निबंधकार, पत्रकार और पद्मश्री और अनेक सम्माननीय पुरस्कारों से नवाजे गए लेखक धर्मवीर भारती जी के विषय में और उनके व्यक्तित्व की पूरक पत्रिका धर्मयुग के बारे में।
1: श्रोताओं, धर्मवीर भारती स्वयं में एक संस्थान का पर्याय हैं, जिनके हस्ताक्षर एक सदी के कपोल पर सुरक्षित हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। भारती जी के लेखन का दायरा इतना विस्तृत है, उनकी लेखन प्रतिभा का स्वरूप इतना व्यापक है कि किसी एक पहलू पर चर्चा करने के लिए भी शब्दों को समेटना सरल नहीं है। इससे पहले कि हम उनकी योगदान, उनके कार्यक्षेत्र और साहित्य में सुरक्षित उनके अनमोल योगदान के विषय में बात करें, थोड़ी बात उस दौर की, उन परिस्थितियों की, उन तेजी से बदलते हालात की, जब थकी मांदी एक सदी अपनी उम्र की आखिरी सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा रही थी
3: और एक नई सदी का सूरज अपनी चमक दमक, अपने पूरे आबोताब के साथ क्षितिज पर छा जाने के लिए बेचैन होकर तीस कदमों से प्रगति की, आजादी की, नवीनता की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब था। जरा सोचिए पीछे मुड़कर उस दौर के बारे में, जब आज की तरह न तो पत्र पत्रिकाओं का इतना रंगीन बाजार था, न टेलीविजन, न कोई वेब सीरीज, न मोबाइल, न प्रिंटिंग मशीनें, न जीने के लिए सुख साधन, अर्थात मध्य वर्ग के लिए गरीबी का दौर था। आम लोगों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों की पहुंच दुर्लभ थी। संक्षेप में, पूरा देश ही सीमित संसाधनों के साथ अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से संघर्षरत था।
1: हम आपको बता दें, धर्मवीर भारती के पूर्वज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खुदागंज कस्बे के जमींदार थे। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में 1926 25 दिसंबर को हुआ। वो बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। घर की दयनीय स्थिति और पिता की बीमारी ने उनकी संवेदनशीलता को इस सीमा तक बढ़ा दिया कि वो बचपन में ही काम तलाशने लगे थे, कुछ कमाना चाहते थे। उन दिनों वो अपना नाम धर्मवीर वर्मा लिखते थे। स्कूल में शिक्षा के दौरान उन्होंने भारती लगाना शुरू किया। जब वो 8 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और माता का देहांत भी होने के कारण वो बहुत टूट गए।
3: ऐसे धर्मवीर भारती बचपन से लेखक थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तो रामायण महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। किसी प्रकार स्कूली शिक्षा के बाद जब बीए में आए तो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करते और साथ में लेखन भी शुरू कर दिया। शुरुआत पत्रकारिता से की। बीए करने के बाद अपने पहले गुरु राम कुमार वर्मा की छत्रछाया में पत्रकारिता की बारीकियां सीखी। इलाहाबाद में ही अभ्युदय दैनिक पत्र का संपादन का कार्य भी किया। भारती जी रामायण, महाभारत और गीता जैसी कालजयी रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। तो मार्क्स से भी, लेकिन मार्क्स की अधीरता उन्हें पसंद नहीं थी। वे अंग्रेजी में शेले, कीट्स और ऑस्कर वाइल्ड से बहुत प्रभावित थे।
1: धर्मवीर भारतीय सृजन को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें सृजन की ललक हो। कहते हैं, भूख खुनेजी गरीबी हो, मगर आदमी की सृजन शक्ति सबसे ऊपर उसकी ताकत है। इसलिए अति संघर्षशील जीवन और जीवन में उतार चढ़ाव उन्हें कभी डिगा नहीं पाए। कहते हैं, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है। हो चुकी हैवानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। लो, तुम्हें फिर से नया विश्वास देता हूँ, नया इतिहास देता हूँ।
3: धर्मवीर भारती को यात्राएं करने का शौक, टहलने और लोगों से बातें करना पसंद था, और पसंद था किसी की व्यथा सुनकर उसकी मदद करना। इसी आदत के कारण उन्होंने वास्तव में एक इतिहास रचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें संबल दिया। उनकी सादी सरल भाषा, सहजता, आत्मीयता उनके व्यक्तित्व के सुनहरे गुण थे, जिसको तराशने सवारने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साहित्यिक माहौल और वहां के ज्ञानी एवं समर्पित शिक्षकों और पठन पाठन के शौकीन सहपाठियों और दोस्तों ने सहयोग किया। उन्होंने लेखन शुरू किया और साथ ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अधीन सिद्ध साहित्य में PhD भी प्रारंभ की।
1: जिंदगी ने करवट ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में धर्मवीर भारती ने नौकरी शुरू की। इसी दौरान अपनी लेखन प्रतिभा के परिणाम स्वरूप कहानियां, नाटक और निबंध लिखने लगे। ये सब पसंद किए जाने लगे और वो प्रख्यात होने लगे। उन्हें प्रेम की सौगात भी मिली। उन्हें लगा कि प्रेम ने उन्हें वो खुशी का खजाना दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, और ललक भी। लेकिन इस पहले असफल प्रेम ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस त्रासदी का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया और ना ही किसी झूठी तसल्ली के सहारे तलाश किए। दिल टूटने नहीं दिया और साहित्यिक गतिविधियों में और अधिक रुचि लेने लगे। लेखन को कर्मस्थली बनाया और कविताओं से ख्याति प्राप्त करने के साथ महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर केंद्रित उनका काव्य नाटक अंधा युग उनकी कालजयी रचना बनी। अब धर्मवीर भारती ख्याति के शिखर पर पहुंच चुके थे। वो आदि विद्रोही के नाम से प्रसिद्ध होने लगे।
3: श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले इस संदर्भ में बात की कि देश सामाजिक और आर्थिक मंच पर जबरदस्त बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। मध्यम वर्गीय समाज में पठन पाठन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, मगर साधन सीमित थे। ऐसे वातावरण में खुशवंत सिंह जी ने बम्बई में कुर्तुल एन हैदर जैसी महान लेखिका के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सौजन्य से एक अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली का प्रकाशन शुरू किया। लेखक अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन पाठक वर्ग सीमित था। वीकली संभ्रांत पाठकों में तो लोकप्रिय थी, मगर मध्यम वर्ग को उनकी भाषा शैली में उनकी रुचि की पत्रिका की आवश्यकता थी। भारती जी की ख्याति चरम पर थी, इसीलिए इलस्ट्रेटेड वीकली के साथ साथ टाइम्स ग्रुप ने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का प्रकाशन शुरू किया और धर्मवीर भारती को पत्रिका के संपादक के रूप में चयनित किया। भारती जी के लिए धर्म युग एक मील का पत्थर बनी और मध्यवर्गीय और हिंदी भाषी पाठकों के लिए एक मशाल।
1: श्रोताओं, धर्मयुग के रंग रूप को संवारने, पठन सामग्री का चयन करने, गंभीर विषयों पर सामाजिक स्तर पर हर वर्ग द्वारा पढ़ने योग्य बनाने के लिए धर्मवीर भारती ने अथक मेहनत की। एक स्तरीय साप्ताहिक पत्रिका ने हर उम्र, हर वर्ग, हर परिवार के लिए सामग्री जुटाकर छापना बहुत कठिन काम था। धर्मयुग में शुरू से ही मृणाल पांडे एवं राजेश जोशी जैसे लोगों की रचनाएं प्रकाशित हुई। अब आप पत्रिका के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। धर्मयुग के स्वरूप को भारती जी ने इस प्रकार निखारा कि उसमें साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान कथा, कॉमिक्स और वो भी रंगीन चित्रों से सुसज्जित, यात्रा वृतांत, डब्बू जी का कार्टून कॉलम, फैशन की दुनिया से लेकर नितांत घरेलू कलेवर के साथ साथ ही पत्रिका हर घर की आवश्यक सामग्री का हिस्सा बन गई।
3: सप्ताहांत धर्मयुग का इंतजार परिवार के हर सदस्य को रहता था। उसके कवर पेज का तो कहना ही क्या था, वो बोलता कवर पेज होता था। ये मानिए, अगर आपको उस दौर का कोई पाठक मिल जाए

0: शक्ति जी पत्रिका का स्तर गिराना नहीं चाहते थे, मुनाफा था नहीं, अतः उन्होंने दुखी मन से पत्रिका के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। इस प्रकार धर्मयुग के साथ भारती जी का 1960 से शुरू किया गया सफर समाप्त हो गया और इस पत्रिका से जुड़े और लगातार अपने साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध मोहन राकेश, शिवानी, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और अनेक प्रसिद्ध लेखक बहुत प्रयासों के बाद भी उसे आर्थिक संकट से नहीं उबार पाए। धर्मवीर भारती का सृजन कार्य अपने चरम पर था। अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन की जिम्मेदारी से अलग होना, उसे बंद होते देखना एक दुखद अनुभव था, परंतु इसी काल में लिखी गई अपनी कालजयी रचनाओं के कारण वो एक महान कहानीकार, कवि और नाटककार के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके।
1: गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के महान लेखक होने का एक दस्तावेजी प्रमाण बन गए। इन्हीं दिनों एक फील्ड रिपोर्टर के रूप में भारत पाक के उस युद्ध की रिपोर्टिंग की जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। भारती जी का व्यक्तिगत जीवन बिना किसी उथल पुथल सीधा सपाट गुजर रहा था कि 1954 में उनके जीवन में साथी के रूप में कांता भारती का पदार्पण हुआ। एक पुत्री परमिता के पिता भी बने, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और बाद में उन्होंने पुष्पा भारती से विवाह किया और एक बेटे किंशुक और बेटी प्रज्ञा के पिता होने का गौरव प्राप्त किया।
0: बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती कविता में साहित्यिक रंग ज्यादा खोजते थे। फिराक गोरखपुरी, जो स्वयं एक महान शायर थे, लेखक थे, उन्होंने धर्मवीर भारती की लोकप्रियता का आकलन करके रोमांटिक कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, मगर वो कहां समझौता करना चाहते थे। एक तो उन्हें साहित्यकारों द्वारा बनाया गया कोई संगठन पसंद नहीं था, दूसरा कविता में रोमांस उनको अपने नजरिए से पसंद था। कविता अर्थात जो दिल को तसल्ली दे और रूह को तड़पा दे, जो दूसरे के दर्द को आत्मसात करने की शक्ति दे, वो एक जीवट व्यक्ति ही नहीं, एक जीवट कवि, लेखक और नाटककार भी थे। जो भी लिखते दिल की गहराइयों से लिखते और रूह के सारे रंगों से सजाते, डूब कर लिखते, दुखांत लिखते, तो उसे अपने आंसुओं और दिल की धड़कनों से इतना जीवंत बना देते कि पाठक को अपनी व्यक्तिगत व्यथा के चित्रण का आभास होता। सहजता, सरलता, आत्मीयता और सजीवता उनके लेखन को अलग कलेवर के रूप में प्रस्तुत करते।
1: धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार होने का भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान और महाराष्ट्र गौरव सम्मान से भी आप नवाजे गए। देश विदेश और स्थानीय संस्थाओं से अनेक पुरस्कारों से उनका इतना सम्मान हुआ कि उसकी गाथा यहाँ आपको सुनाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD पूरी करने के बाद जब प्राध्यापक नियुक्त हुए तो बहुत कम समय में उनकी मशहूर दो कृतियां नदी प्यासी थी, एकांकी नाटक संग्रह, और प्रख्यात कृति चांद और टूटे हुए लोग प्रकाशित हुई। मुर्दा गांव तो इसी दौरान कनुप्रिया और देशांतर के प्रकाशन से थोड़ा पहले बाजार में आ चुके थे। इसी तारतम्य में कविता संग्रह में ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, आघन और अनेक कविता संग्रह छप चुके थे। इन सब कृतियों में कनुप्रिया, जो एक प्रबंध काव्य है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सराहा गया।
0: श्रोताओं, धर्मवीर भारती की दो कृतियां गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की पहली पसंद थीं और अब भी हैं। युवा वर्ग में गुनाहों का देवता की लोकप्रियता सुधा और चंदर के प्रेम की एक दुखांत प्रेम कथा होने के कारण बहुत सराही गई। इसके अतिरिक्त उनकी ना भूलने वाली कृतियों में 1969 में गली का आखिरी मकान कला प्रियता का अद्भुत नमूना है। इसी प्रकार उनकी बेहद प्रसिद्ध कृति अंधा युग का जिक्र इसलिए आवश्यक है कि अंधा युग देश की स्वतंत्रता के बाद आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता और पाश्चात्य मूल्यों का आम जनमानस की मानसिकता के संतुलन में जीवंत चित्रण है। ये वो नाटक था जिसने हिंदी रंगमंच पर धूम मचा दी थी और धर्मवीर भारती को साहित्य जगत में उच्चतम स्थान प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर दिए थे।
1: जैसा कि पहले भी संदर्भ आया है कि

0: जी पाश्चात्य साहित्य के और रूसी साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। गोर्की, डिकेंस, बाल्जक, विक्टर ह्यूगो, शैली और कीट्स उनके प्रिय लेखक थे। इन लेखकों की कृतियों के उनके द्वारा किए गए अनुवाद बहुत सराहे गए। उनकी कृतियों पर, कविताओं पर एज्रा पाउंड, एलिजाबेथ जेनिंग और ऑडन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का उनके द्वारा किया गया अनुवाद भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। धर्मवीर भारती जी की असंख्य कृतियों में संगमरमर की एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती मध्यम वर्गीय पाठकों के लिए सहजता से उपलब्ध साहित्यिक खजाने थे। एक ऐसा पाठक वर्ग दीवानगी की सीमा तक उनके द्वारा लिखित नाटक, कविताओं, निबंध, वृत्तांत आदि को पसंद करने वाला बन गया कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगा। आम जनमानस की सोच, दृष्टिकोण और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव ऐसा कोई साहित्यकार नहीं डाल पाया था जैसा सरल भाषा में उपलब्ध उनकी साहित्यिक धरोहर ने किया। उनकी कहानियों में, कविताओं में पाठक कहीं अपने मन की भावनाओं की प्रतिछाया देख पाते हैं।
1: बेहद जीवट और घुमक्कड़ स्वभाव के धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व, उनकी सादगी और चेहरे पर ज्ञान के तेज के कारण सहसा ही आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वो राह चलते साधारण से साधारण व्यक्ति से बहुत आत्मीयता से बात करते। महान साहित्यकार होने का कोई आडंबर उन्हें छू तक नहीं पाया था। यात्राएं उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की। सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशन कमेटी के निमंत्रण पर वो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए। 1962 में जर्मनी और भारतीय दूतावास के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा की। मॉरिशस में वहां की जनता के बीच दोस्ताना अंदाज में उनसे बातचीत की। संवाद के द्वारा उनकी समस्याओं को लगभग भारत की समस्याओं के ही समान जानकर उनके निराकरण पर बात की।
0: अनेक विदेश यात्राओं के बाद अपनी जीवटता के बल पर बीमार होते हुए भी बीमारी का कोई लक्षण चेहरे पर दिखाई नहीं देता था। जब वो बहुत बीमार थे तो 3 हार्ट अटैक आने के बाद भी स्वयं को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर जिंदगी हथेलियों से फिसल रही थी। और इस प्रकार 1990 में धर्म युग की ये मशाल बुझ गई। मगर धर्मवीर भारती को, जो स्वयं को आदि विद्रोही कहते थे, उन्हें हिंदी साहित्य के लेखक के सीमित दायरे से निकालकर एक महान साहित्यकार के रूप में संसार के साहित्यिक पटल पर स्थापित कर गई।
1: उन्हें न कोई भूल सकता है न भूलेगा। वो जिंदा है हर घर में, जहां धर्म युग की प्रतियां एक बेशकीमती खजाने की तरह सुरक्षित हैं, बिल्कुल उसी प्रकार उनकी यादें सुरक्षित हैं। वो जिंदा हैं अपनी कृतियों में। वो आदि विद्रोही थे जो कभी नहीं मर सकते। श्रोताओं, अजीब इत्तेफाक है कि वो जिस पत्रिका से जुड़े उसका नाम धर्मयुग था। उनकी लिखी जो सबसे अधिक कृति प्रसिद्ध हुई उसका नाम अंधायुग था। वाकई वो एक युग प्रवर्तक थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिनका यशोगान युगों युगों तक किया जाता रहेगा। हम आज उनके जाने के इतने साल बाद भी उन्हें इस तरह याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों के शिल्पकार कभी कहीं नहीं जाते। अपनी कृतियों के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो शब्दों के शिल्पकार में आज समय यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए मुझे, यानी अपनी रेडियो मित्र संदीप शर्मा
0: और मुझे संयुक्ता बैनर्जी को।
1: तो श्रोताओं, अगली बार मिलेंगे फिर किसी और शब्द शिल्पी के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। आलेख था डॉक्टर शमा न्याजी का। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो मुझे और संयुक्ता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद,
0: देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। जीवन एक सुख दुख चढ़ाई उतराई का खेल है। प्रत्येक मानव जीवन में खुशी या गम के पल आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान हर समय गम की अनुभूति में ही अगर रहे तो सुख का अनुभव कब कर सकेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि संगीत ही एकमात्र सहारा हो जाता है ऐसे पलों को सहजता से गुजारने के लिए। वर्तमान समय विभिन्न साधनों द्वारा मन को प्रफुल्लित तो किया जा सकता है, मगर सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं कि बिना संगीत के जीवन अधूरा है। ऐसे ही हर पल को जीने के लिए संगीत रूपी आधार को सिखाने के लिए हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, जितने सारे लिसनर है सबको प्रणाम करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने संगीत का आधार या संगीत का हमारे जीवन में क्या रोल है,
1: हाँ जी,
0: इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की। तो सच में जीवन में अगर संगीत न हो तो हम गेस कर सकते हैं कि क्या हो जाता।
1: हाँ जी, सुख दुख का खेल में अगर कुछ तो चाहिए, दवाई चाहिए। संगीत एक दवाई जैसी है
0: जी।
1: अगर संगीत हर समय काम काज करते, उसके धंधा धुरी में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन के टाइम हम संगीत सुन सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, भारीपन जो होता है मन की, जो भारीपन हो वो निकल जाते हैं।
0: जी जी जी, बहुत बड़ा फायदा है संगीत का हमारे जीवन में।
1: हाँ जी।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा नया राग लेकर आए हैं?
1: हाँ, आज बहुत सुंदर राग है पटदीप।
0: पटदीप?
1: हाँ हाँ जी, बहुत सुंदर राग। इसमें जैसे कि हमने पहले भूमपलासी राग सिखाए थे, उसमें गा और नी कोमल था
0: जी,
1: लेकिन खाली उस राग को अगर नी शुद्ध नी में बदल दिया जाए तो पटदीप राग हो जाते हैं।
0: बस इतना सा फर्क,
1: बस, क्योंकि वो भी ठाट काफी है, इसमें भी ठाट काफी है। तो खाली नी सा गामा पानी सा नी धापा मागारे सा एक जैसी है, लेकिन खाली इसमें नी शुद्ध है।
0: ओके।
1: पटदीप राग में नी शुद्ध है और गा कोमल है, और भीमपलासी में गा नी दो कोमल है
0: जी।
1: तो इसको थोड़ा हम परिचय देते हैं पटदीप राग की। ठाट है काफी, तो औरफ संपूर्ण की जाती है। वादी जो है, वादी स्वर है पा, और समवादी है सा। समय जो है दिन में चौथा प्रहर, मतलब 3 से 6।
0: अच्छा।
1: इसमें हम बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा है पटदीप राग।
0: ओके।
1: शांत प्रकृति का राग है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें गा कोमल सर है और बाकी सब सर शुद्ध है। अच्छा, हम क्या करते हैं अभी थोड़ा आरोहण अवरोहण करके सुनाते हैं, पकड़ करके सुनाते हैं लिसनर को, ठीक है? अगर लिख लेते हैं तो अच्छा है।

0: इसमें जो है भीम पलासी, अगर हम करते हैं नी सा गा रे सा, ये भीम पलासी है
1: जी।
0: और अगर हम करते हैं नी सा गा रे सा, खाली ये अंतर है भीम पलासी राग के साथ, जो प्रदीप राग जो है
1: जी।
0: इसका अंतर है, बाकी सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो लिसनर को बहुत अच्छा से ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध नी है, नीसा गा कुमल है, मापा नीसा और अब संपूर्ण है सानी धापा मागा रीसा।
1: सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब समानता है।
0: समानता है
1: जी।
0: ठीक है, अभी क्या करते हैं लिसनर, अगर किताब पेन से लिख लेते हैं, स्वर लिपि देंगे
1: जी,
0: तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अभी जितना हम ऊपर जाएंगे चढ़ते जाएंगे थोड़ा तो टफ आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये ताल तीन ताल की है, लेकिन इसका जो मुकरा जो होता है, हमने कभी फाक से लेते हैं, कभी सोम से लेते हैं, लेकिन हम सोम से फाक से नहीं लेते हैं। तीन ताले जब गिरते हैं, जैसे ना तीन तीन ताल, बारह मात्रा से उठाना है, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, मतलब मुकरा है पांच मात्रा की।
1: ओके,
0: तीन ताल जो है, तीन ताल जब लास्ट ताली गिरेंगे उसके पहले मात्रा से लेना है, मतलब पांच मात्रा से लेना है, मुकरा पांच मात्रा की है। तो हम बोल सकते हैं तो सम पांच मात्रा की बात गिरेंगे, पा मा पा गा मा, लिसनर को शायद याद है गा कोमल है
1: जी,
0: पा मा पा गा मा पा, ये जो पा है इसके ऊपर सम गिरते हैं। ठीक है, पा मा पा गा मा पा नी ई ई सा आ रेनी सा, रेनी एक साथ है, ऊपर की सा है, रे ऊपर की है, रेनी सा ऊपर की है, धा धा पा पा मा पा गा आ, ये तक है फर्स्ट जो लाइन है इसका है। अगर पा आते हैं बीच में, पा है वो पांच मात्रा की जो है, हमने पूरा मात्रा ले लिया, सोलह मात्रा ले लिया, फिर से मैं दोहराती हूँ कैसे करना है, पा मा पा गा मा पा नी ई ई सा आ रेनी सा धा धा पा पा मा पा गा आ नी सा, ये जो नी है नीचे का है, नी सा गा मा पा नी ई सा ऊपर की है, धा पा आ पा मा पा गा मा, फिर से ओ आएंगे, जैसे हमने पांच मात्रा किया। जब हम उसको स्वर में सजाएंगे या बोल से सजाएंगे तब लिसनर को शायद पता लगेगा,
1: चल जाएगा जी।
0: तो अंतरा भी दे देती हूँ, अंतरा क्या करते हैं, हम फाक से लेते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे पांच मात्रा की है, जब हम करेंगे ना वो लिसनर को पता पड़ जाएगा। तो फाक से शुरू करेंगे, मा पा गा मा पानी सा सा नी ई सा गा, ये जो ऊपर की है, सा ऊपर की है, गा की ऊपर की है, नी ई सा गा रेसा नी धा पा, रेसा जो है ऊपर की है, मा पा गा मा पानी सा सा ऊपर की है, सा सा नी ई सा रे ऊपर की है, रे सा रे नी सा रे ऊपर की है, सा ऊपर की है, नी धा पा पा मा पा गा मा, ये जो है पांच मात्रा जो है इसमें आ गया, पा मा पा गा मा, ये मुकरा है, पा मा पा गा मा, हम जब करेंगे ना पता पड़ जाएंगे
1: जी।
0: तो हम शुरू करते हैं, ठीक है।

0: ये हमने स्थाई जो है स्थाई को दिखाया, अच्छा। अभी अंतरा करना है।
1: ओके श्यामली जी, अंतरा हम आपसे जरूर सुनेंगे, सीखेंगे भी।
0: हाँ जी,
1: लेकिन अभी समय कहता है एक अल्प विराम लेते हैं और उसमें हम अपने श्रोता मित्रों को एक सुंदर सा मीठा सा गीत सुनाते हैं पट्टदीप राग से संबंधित। श्रोता मित्रों, आप इस गीत का आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने पटदीप राग के बारे में श्यामली जी से सुना और अभी हम उनसे आगे भी जानकारी लेंगे। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है और आगे आप हमें क्या सिखाने वाले?
1: हाँ, हमने जो अंतरा जो स्वर लिपि दे दिया वो थोड़ा सुनाते हैं
0: जी।
1: कैसे उसको फाक से शुरू करते हैं। थोड़ा पहले तो पांच मात्र की मुकरा करेंगे, करने के बाद सोम गिरेंगे, सोम के और भी आठ मात्र करेंगे, तब जाके फाक आएंगे। तो हमने पा नी किया है, उसके बाद सा आ रे नी सा हमने किया है। वो अगर निकल देते हैं लिसन की सुविधा की लिए कि पानी वो जो नी लगा देना है
0: ओके
1: रखना है ठीक है। हम करके सुनाते हैं।

0: अभी शायद लिसनर को मैं
1: समझ में आ गया होगा,
0: समझ में भी आ गया। अब अगर नहीं भी होता है तो अगर जो तबला ठेका बजाते हैं अगर उनसे सलाह करते हैं या गुरुजी के पास तो शिक्षा लेना ही है, तबला जो ठेका दे रहे हैं वो जो ये है तबलिया है वो आपको दिखा देंगे।
1: अच्छा,
0: वो भी आपको
1: वो भी गाइड कर सकते,
0: गाइड कर सकते, क्योंकि ताल में उठाना है। पहले पांच मात्रा की मुकरा है, उसके बाद सोम कहाँ गिरता है, कहाँ से वो अंतरा लेना चाहिए। हाँ, पूरा हमने नी किया, साड़ यानी सा नहीं किया है, नी पूरा उतना तक करना है जो सुंदर लगता है। अगर साड़ यानी सा अच्छा नहीं लगता है, जो अगर हम अगले एपिसोड में आप जब बंदिश बना देंगे, बैठा देंगे, तब जगह और भी पक्के हो जाएंगे। अच्छा। अगर इसमें आ कर सकते हैं, जितना आ करेंगे उतना उसको समझ में आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, मेहनत मुक्त हो जाएंगे जब हम बंदिश दे देंगे।
1: कोई भी राग हो मगर उसको आकार के साथ किया जाए तो ज्यादा सहजता हो।
0: अच्छा, हाँ, जी।
1: तो श्यामली जी आगे आप क्या सिखाना चाहेंगे?
0: मैं एक प्रदीप राग के ऊपर छोटे से गीत करना चाहती हूँ।
1: अच्छा,
0: कृष्ण जी का जो छोटे जो बचपन है उसके ऊपर आधारित है।
1: ओके।
0: हम करते हैं बोलते हरी मधुर बोल।
1: ओके,
0: बहुत सुंदर है। मैं प्रदीप राग के ऊपर करती हूँ,
1: मगर ये बंदिश के आधार पर आप नहीं?
0: ना ना, ये छोटे से गीत के जैसे करती हूँ।
1: ठीक है जी।

0: श्यामली जी, ये छोटा सा गीत तो आपने सुनाया, लेकिन जाते जाते आप बिना गीत सुनाए तो नहीं जा सकते।
1: हाँ जी, एक बहुत अच्छा फिल्म है चुपके चुपके
0: जी,
1: उसमें जो चुपके चुपके चल रही पूरे भैया जो गीत है,
0: अच्छा
1: लता जी का है कंपोजिशन, बहुत सुंदर। तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है
0: जी जी।

0: ये समय भी चुपकी चुपकी चुपकी आगे बढ़ते
1: है। लगे तो अच्छा है।
0: नहीं, लिसनर को जरूर अच्छा ही लगता होगा क्योंकि आप चुन चुन के हर राग के गीत लाते हैं और बहुत दिल से गीत को गाते हैं तो दिल तक छूता है। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको चुपके से इजाजत और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
2: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
2: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
2: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: जाह्नवी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, वीर वीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
2: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम, तू कर।
3: घूम नहीं दादी, ग्रूव।
2: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
2: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास? पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
10: कम उम्र?
4: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
8: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
10: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
4: लो आ गए वो।
11: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
12: हाँ, बढ़िया
11: चलो,
12: बढ़िया
11: बहुत अच्छा।
12: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
11: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
13: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
11: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
13: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
12: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
11: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए,

0: जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी। ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
1: हाँ, जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से। कितना कमाती हैं दीदी, आप बताइए जरा।
2: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो, वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ, सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
3: राजकुमारी जाओ, सबके लिए नाश्ता लगा दो।
4: हाँ, जाती हूँ।
3: कहाँ जा रही हो? किचन उधर है।
4: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
3: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
4: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
3: इसी बात का तो डर है।
4: हा? कुछ कहा आपने?
3: नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
4: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
3: क्या?
4: अरे मजाक कर रही थी।
3: राजकुमारी, घर में वैसे ही कितना टेंशन है, और तुम?
5: भैया, इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
3: चल ठीक है, अब नाश्ता करने चलें।
6: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं, उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है। लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
7: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
6: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
8: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

करते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

है वही, ये कैसे समझाऊं मैं? मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं? बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं? बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं? कोई और कैसे समाऊं मैं?

श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है दो महान क्रांतिकारी नेताओं कनकलता बरुआ और कन्हाई लाल भट्टाचार्य जी पर। असम के लोगों ने अगस्त क्रांति में खुलकर भाग लिया था। पहले तो उनका आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक और केवल प्रदर्शन तक ही सीमित था, लेकिन जब पुलिस और फौज ने उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो असमिया लोग भी भड़क उठे और उनके सत्याग्रह आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। श्रोताओं, असम की क्रांति की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, मगर फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति

असम के गोपुर गांव की जनता अपने गांव के थाने पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए बढ़ चली। लगभग 5,000 ग्रामीण उस जुलूस में शामिल थे। उस जुलूस में स्त्रियां भी थीं और बच्चे भी शामिल थे। बढ़ता हुआ ये जुलूस थाने के सामने पहुंच गया। थाने पर पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता था। तब जुलूस दो भागों में विभक्त हो गया और दो दिशाओं से नाले को पार करके जुलूस फिर एक होकर थाने के फाटक की ओर आगे बढ़ने लगा। जुलूस के आगे कनकलता बरुआ नाम की एक 14 वर्ष की बालिका तिरंगा झंडा लेकर नेतृत्व कर रही थी। उसे रोकने के लिए थानेदार भी अपने सिपाहियों के साथ फाटक के पास पहुंच गया। तब कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, श्रोताओं, कनकलता के साहस की कहानी आगे बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल सुनते हैं ये देशभक्ति रचना। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हम बात कर रहे थे असम की क्रांति की और कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग तो हमारे भाई हैं, हमें रोकने के स्थान पर आप लोग भी हम में सम्मिलित हो जाइए, हम सब लोग मिलकर थाने पर राष्ट्रीय झंडा लगाएंगे। लेकिन थानेदार एक बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, वो किसी को भी थाने के अंदर नहीं आने देगा। तब इस पर कनकलता भड़क गई और कहा, पुलिस स्टेशन तो जनता की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति के रक्षक यदि जनता का कहना नहीं मानेंगे तो जनता उन्हें हटा देगी और अपनी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह कनकलता शहीद हो गईं।

श्रोताओ, गीत सुनने से पहले हमने जाना कि थानेदार की बात कनकलता ने नहीं मानी और वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गईं। थानेदार को ललकारते हुए कनकलता फाटक के अंदर जाने लगीं। तब कनकलता की जबरदस्ती देखकर थानेदार ने उन पर गोली चला दी और कनकलता वहीं शहीद हो गईं। कनकलता को गिरते हुए देखकर मुकुंद काप्ता नाम के एक नौजवान ने उनके हाथ से झंडा ले लिया और वे आगे बढ़ने लगे। तब मुकुंद काप्ता को भी गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए। अब तो जनता के धैर्य का बांध टूट गया और कई तरफ से लोग थाने के अंदर एक साथ पहुंचने लगे। तब पुलिस वालों ने भी अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। लोग गोलियां खाकर गिरते रहे और आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक दल थाने की इमारत पर चढ़ने में सफल हो गया और वहां उसने शान के साथ तिरंगा झंडा लगा दिया। इस संघर्ष में लगभग 60 व्यक्ति शहीद हुए। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारी आजादी के दीवाने क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी।

अब चर्चा करते हैं एक और क्रांतिकारी नेता कन्हाई लाल भट्टाचार्य जी की। न्यायमूर्ति आर आर गार्लिक उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे जिसने 2 फरवरी 1931 को दिनेश गुप्त को फांसी का दंड सुनाया था। दिनेश गुप्त ने कलकत्ता में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर सिंपनसन को उसके कार्यालय में ही गोली से भून डाला था। वही न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय 27 जुलाई 1931 को अपने इजलास में एक मामले की सुनवाई में व्यस्त थे। वे ये देख नहीं पाए कि 20 वर्ष का एक दुबला पतला युवक कब एक दरवाजे से इजलास में प्रविष्ट हुआ और गवाह के कटघरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और न्यायमूर्ति गार्लिक को निशाना बनाकर 2 गोलियां उन पर छोड़ दी। श्रोताओं, न्यायमूर्ति पर हमले की चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल वक्त है कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत का।

श्रोताओं, गीत सुनने से पहले हमने कार्यक्रम में जाना कि न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय पर एक व्यक्ति ने गोलियां छोड़ दी। पहली गोली तो खाली चली गई, पर दूसरी गोली न्यायमूर्ति महोदय के मस्तक पे लगी और वे अपनी कुर्सी से वहीं लुढ़क गए। इजलास में सीआईडी का एक सिपाही नागरिक वेश में उपस्थित था। उसके पास भी रिवॉल्वर था और उसने अपनी गोली उस युवक पर छोड़ दी, पर उसका निशाना चूक गया। अब युवक ने एक गोली उस सिपाही पर छोड़ी, जो उसके कंधे पर लगी और वो भूमि पर गिर गया।

मृत्यु से प्राप्त कीजिए। श्रोताओं, मृत युवक का चित्र अखबारों में छपवाकर उसकी सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तब मालूम चला कि उनका वास्तविक नाम कन्हैयालाल भट्टाचार्य था और वे 24 परगना के माजिलपुर के रहने वाले थे। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारे आजादी के वीर क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

0: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम होबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: मैंने घोड़ा लियो मैं।

0: श्रोताओं, आज की शाम और शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परंतु हमें मालूम है कि सूरज फिर उगेगा, उम्मीद फिर जगेगी और इस संसार में रोशनी फिर से आएगी, ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका समय हमेशा का दोस्त शरद, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम इस बार लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो जुनून। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी 107.8 एफएम पर हम लेकर आते हैं फिर से जुनूनी को, जो समाज में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन की बात कर रहा है और एक नव चेतना की बात कर रहा है। वो युवा है, वो अधेड़ है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है और वो आगे बढ़ चुका है अपने जीवन को बदलने और दूसरे अपने आसपास के अपने भाई बहनों के जीवन को बदलने। तो ऐसे ही जुनूनी के साथ मैं आज राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर से हैं हमारे साथ कोमल। आइए जानते हैं कोमल की कहानी। कोमल, आप हमारे साथ हैं और फिर से हमने बात शुरू की है हमारे प्रोग्राम जुनून में। फिर से कुछ दिनों बाद हम जुड़े हैं और लेकर आए हैं हम सबका फेवरेट शो, जो हमें भर देता है चेतना से, उम्मीद से, नव जागरण की चेतना से, जीवन को बदलने और इस समाज को नई दिशा देने के रास्ते पे चलने की उम्मीद देता है हमारा कार्यक्रम जुनून। और जुनून में आप हैं हमारे साथ इस पर। तो कोमल, बताइए अपने बारे में कि क्या आपकी कहानी है और आप क्या करते हैं उदयपुर में।
1: सबसे पहले नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच मुझे ये मंच पर आज मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, मेरा नाम कोमल है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करूं, और जब उनके साथ कोई हिंसा होते देखती थी तो दिल को बहुत दर्द होता था। और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इनका कैसे मदद करूं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों से मिलती गई, अलग अलग एक्सपीरियंस आते गए कि किस तरीके से उनका सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक ऐसा कम्फर्ट एरिया उनको प्रोवाइड करवाती थी जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात, यहाँ मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। और उनको मैं इतना स्पेस देती थी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट देती थी कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं उनकी सीनियर हूँ। वो मुझे अपनी एक बड़ी बहन मानते थे और हर चीज शेयर करते थे, और मैं अपने लेवल तक जो उनको सजेशन दे सकती थी, सलाह दे सकती थी, वो मैं अपने लेवल पे देती। उसमें मैं कोई लीगल एडवाइस जैसे वकील का है, ये सजेशन पहले उनको नहीं देती। देन उसके बाद में मैं उदयपुर की एक विकल्प संस्थान है जो बहुत सालों से महिलाओं और बच्चियों के लिए काम कर रही है और उनका बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन में, उनके मेंटल हेल्थ में, या उनको कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहाँ पे उनका बहुत सपोर्ट करती है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज है जो मेरे लिए इंस्पायर भी हो सकती है, और जहाँ पे विकल्प ने मदद किया है वहाँ पे भी उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो मैं कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मंच पे।
0: हम सुनेंगे उन कहानियों को और उन बातों को, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी क्या है, कोमल की कहानी क्या है।
1: मेरी कहानी तो यही है कि मैं अभी सेवा का काम करती हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, न मैं सरकार से कोई मदद लेती हूँ। मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो मेरे काम को देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो मेरा सहयोग करते हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में भी मदद करते हैं। कुछ गरीब ऐसी फैमिली होती है जिनको उनके बच्चे जो है बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बारिश में आते हैं बिना स्लीपर्स के, गर्मी में आते हैं उनको हम लोग स्लीपर्स पहनाते हैं। सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में बच्चे नंगे बदन स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने कुछ मुहिम चला के उनको स्वेटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भारत में हम लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं है कि मेरा पैसा मेरे तक, ये सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में गरीबी खत्म नहीं हो। लेकिन मैं मेरे लेवल पर, हमारे मुहिम के लेवल तक या हमारे टीम के द्वारा हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे, ये मेरा स्टोरी है।
0: नहीं, आपकी कहानी में तो बात है कि कोमल कैसे तैयारी, कोमल में ये बात चेतना कहाँ से आई है, ये समाज परिवर्तन की बात करने की बात जो है, ये आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई?
1: आज से 3-4 साल पहले मैं बस्ती में गई थी लड़कियों से बात करने के लिए कि कैसे मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक दादी से मिली थी मैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिनके बेटे की डेथ हो गई, उनकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके पक्के मकान में रह रही थी। और उस टाइम पे मैं गई थी, बारिश का मौसम था, और वो जो दादी थी वो झोपड़ी में रह रही थी, उसके जो सामान जो था वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने उस दादी से बात किया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरती गई, जैसे जैसे मैं बस्तियों में जाती गई, मुझे लगा कि मैं दुनिया में भेड़ चाल चलने के नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकूं। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कल्पनाएं जागने लगी कि मैं अलग अलग जगह जाके लोगों की मदद करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी। और धीरे धीरे मेरी मुहिम में लोग जुड़ने लगे, लोग मेरी मदद करने लगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप मुझे सहयोग कीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भावना, ये फीलिंग जो मेरे अंदर आई, उसको थोड़ा टाइम लगा है। क्योंकि पहले जब मैं लोगों से कपड़े कलेक्ट करके लाती थी, घर पे रखती थी, तो मम्मी वगैरह डांटते थे कि कहाँ से लेके आई, कहाँ इनको कलेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ता गया। आज मेरे परिवार का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट बन चुका है कि वो मेरे हर समय मेरी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। आज कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले पापा मुझे व्हीकल की चाबी दे देते, फोर व्हीलर की, ये गाड़ी लेके जाओ, कहाँ तुम्हें किसकी जरूरत है वो लेके जाओ। और मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा सपोर्ट करता है। और इस समाज ने भी, और बहुत सारे एनजीओ से जिन्होंने मुझे मंच पे सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं हो पाए।
0: बहुत बढ़िया दर्शकों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, जो कि है माउंट आबू की वादियों से। और आप सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम जुनून को रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन पर भी, तो जाएं और डाउनलोड करें रेडियो मधुबन। तो हमारे साथ हैं आज हमारी इस कहानी में जुड़ने वाली कोमल, और कोमल बता रहे हैं कि अपने एक जुनून को, कि वो कैसे थे, पुराने सामान, पुराने कपड़े लोग घरों से लेते हैं तो उनके काम में नहीं आ रहे हैं, और लेकिन वो किसी और व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने का साधन बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है कोमल, इसमें आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं?
1: अभी चैरिटी वाला अच्छा चल रहा है। चुनौतियाँ पहले बहुत आई थी, क्योंकि उनको डीप एरिया में जाना, ले जाना, लोगों से कनेक्ट होना, और पहले लोग मेरे से बहुत कम कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे बच्चे देखती थी वहां पे मुझे लगता था मुझे कपड़े देने, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो लोगों तक मैसेज पहुंचाना पड़ता था कि मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है। तो बहुत चुनौतियां भी आई थी, कुछ फाइनेंशियल भी चुनौतियां आई थी कि कैसे उस एरिया में पहुंचा जाए। उसके लिए हमें व्हीकल भी करना होता था, व्हीकल के लिए मैं उस टाइम पे जॉबलेस भी थी। तो उन चुनौतियों से मैंने डरकर अपने मुहिम को स्टॉप किया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा मेरे से जितना हो पड़ेगा करूंगी। लेकिन अभी वो चुनौतियां सारी हट चुकी है, और अभी मेरे साथ बहुत सारा मजमा जुड़ चुका है, बहुत सारे टीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और लोग मेरे से सामने से जुड़ना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ इस मुहिम में पार्ट लेना चाहें।
0: तो ये कैसे चलता है ये कार्यक्रम, इसमें कैसे आप जरूरतमंद की मदद करते हैं और कैसे उनको चिन्हित करते हैं, कैसे ढूंढते हैं?
1: पहले तो हमें बस्तियों में जाना पड़ता था, खुद से ढूंढना पड़ता था, एफर्ट मारना पड़ता था। बट अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रीन सोल फाउंडेशन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने कम से कम मुझे 1000 स्कूल बैग, 1000 स्लीपर्स और 1000 मैट्स जो होते हैं वो मुझे डोनेट करने के लिए दिया। तो मैंने गोगुंदा, उदयपुर और सायरा स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मैंने डोनेट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं। तो अब वो सामने से बोलते हैं कि मैडम यहाँ जाइए, यहाँ आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में नीड है। तो अब मुझे बस्तियों की सर्च नहीं करना पड़ता, सामने से लोगों का कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप यहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं।
0: जी, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही है और क्या रिसोर्सेज आप इसमें लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्पेस है, या कैसे आप अपने घर से इसकी शुरुआत करी थी आपने, या अभी आप सामान कैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ रखते हैं सारे सामान?
1: पहले बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बीच में मैंने सोचा भी था कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैंने अपने घर पे ही स्टोर किया था, देन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका उदयपुर में एक शॉप चलता है, तो फिर हमने कपड़ों को वहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें हमारे पिताजी की वजह से जानते थे, क्योंकि मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं, तो उनकी वजह से हमारी पहचान थी, लेकिन आज हमें गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे ये वो दीदी है, अरे ये दोनों बहन वो हैं जो गांव में जाके लोगों को कपड़े डोनेट करते हैं। तो अब घर पे ही हमारे यहाँ सामान आ जाता है, लोग हमारे घर पे ही आके डोनेट करके जाते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं। और हमारे एक ही सोच रखा है कि हमारे पास जो टू व्हीलर है हमेशा उनमें एक बैग भरा रहता है, जहाँ पे हमें लग जाता है कि ये बच्चे हैं, नंगे पैर हैं, या इनके बदन पे कपड़े नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिनके राशन नहीं है, तो हम लोग उनको उसी टाइम हम लोग देते थे। हम वेट नहीं करते कि हम घर जाएंगे वापस लेके आएंगे, ऑलवेज हमारे बैग में सामान रहता है, हम लोग वहाँ डोनेट करते रहते।
0: क्या कहानी है आपको बताइए, उदयपुर में कैसी कैसी कहानियाँ आपकी नजर में है जो आपने देखी और तो लगता है कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है?
1: चैरिटी वाला तो कोई स्टोरी वही है, रैंडम मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन अभी जो मैं विकल्प संस्थान से जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज हमारा टॉपिक है नशा, इस नशे की वजह से इंसान हैवान बनता जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी, यानी माँ ने दूसरी शादी किया था, तब बच्ची अपने माँ के साथ आई थी अपने नए पिता के पास। वहाँ बच्ची की माँ की डेथ हो जाती है, बच्ची महज 8वीं क्लास में पढ़ती है और 13 साल की। उसके पिता 11 साल, जब बच्ची 11 साल से थी, उसके साथ गलत हरकतें करता था रात में। बच्ची ने अपने आस पड़ोस में बताया कि मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है, मैं पिता बहुत परेशान करते हैं, मैं घर से निकालो, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग क्या स्कूलों में सेशन करते हैं बच्चों के साथ पॉक्सो पे, यौन हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो किसी बच्ची के पास हमारा टोल फ्री नंबर था, उस नंबर पे बच्ची का कॉल आया, फिर हमने बच्ची का सर्च किया। जहाँ बच्ची किराए रहती थी उसके पिता को भनक लगी, पिता ने वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर पिता ने वहां से बच्ची को तीसरी जगह शिफ्ट किया, फिर पिता ने बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट की। हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने उसका पीछा किया, और जहाँ बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट किया गया वहां पे, मतलब ये बात मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है कि उस पिता ने पैसे के लिए अपनी बच्ची का सौदा किया। हर रात बच्ची को वो बेचता था पैसे के लिए, मज़ा 1000 रुपए के लिए अलग अलग पर्सन को बेचता था। हमें सूचना मिली, हमने कुछ गुप्तचर भी रखे, कुछ एजेंट भी रखे, हमें सूचना मिली कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हमने फिर उसका CWC में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने थाने में भी FIR दर्ज करवाई, पिता को पेश किया गया, बच्ची को पेश किया गया, बच्ची को काउंसलिंग करी गई और बच्ची ने हकीकत की जो बताई, और फिर बच्ची को शेल्टर मिला, पिता को जेल मिला। और इस तरीके से जो बच्ची थी, आज बच्ची को हमें देखते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्ची के जो चेहरे की रौनक थी वो हम वापस ला सके, और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो। आज बच्ची बहुत खुश है, जहाँ पे भी है वो शेल्टर में है, आज वो अपनी खुशी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, और उसकी जो जीवन की जो जर्नी होती है, जीवन की जो रूटीन है, वो चल रही है। आज बच्ची अगर हम भी मिल भी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमेशा खुश रहे। ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विकल्प संस्थान में आने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से, क्योंकि उसका पिता जो था वो नशे का आदत था, उसको पैसा चाहिए होता था, और वो पैसा कहाँ से लाए क्योंकि उससे कमाई होती नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद।
0: जी सर, तो इस पूरी बात में आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका वहाँ जुनून है कि कुछ बदल दें, समाज में कुछ बदलाव कर दें और कुछ लोगों के जीवन में रोशनी भर। तो इस प्रयास में आपने एक बच्ची की कहानी बताई, अब वो बच्ची की उम्र कितनी है अभी वर्तमान में?
1: अभी बच्ची 14 साल की है।
0: जी बढ़िया है, वो डेफिनेटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में अभी होगी और 18 साल तक वहाँ रहेगी। 18 के बाद आपके पास क्या योजना है उस बारे में भी हमें सोचना है। और सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि 19 साल तक उसको एक मदद मिलेगी, एक साल तक कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 19 साल के बाद उसको समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप क्यों ना उसकी अडॉप्शन की प्रक्रिया में आप सहयोग करें। और अडॉप्शन क्या आपने उसके लिए अडॉप्शन के लिए आवेदन किया है?
1: अभी नहीं किया सर।
0: CWC ने अपने
1: आदेश
0: जी आखिर तो बताओ, मैं आपको बताऊँ की देश में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक रेगुलेटरी एक्ट है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों का अडॉप्शन किया जा सकता है। और कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न और संपन्न पारिवारिक स्थिति से दंपति बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है और उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है और CWC और जिले के DCP यूनिट के माध्यम से अडॉप्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी, कोई बच्चा अगर आपको मिले तो आप उसको तुरंत पीडब्ल्यूसी तक बच्चे को पहुंचाएं, और यदि आपका भी बच्चा है और आप उसको नहीं रखना चाहते तो बच्चे को फेंके नहीं, हर जिले में अस्पताल में डीसीपी यूनिट में पालना गृह है, और पालना गृह में यदि आप बच्चे को छोड़ते हैं तो आप उसको किसी प्रकार की कानूनी उत्तरदायित्व आपके ऊपर नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा, आपकी गोपनीयता को भी रखा जाएगा। तो आप बच्चे को फेंके नहीं, जिले के अस्पताल में, जिले के डीसीपी यूनिट में रखे हुए पालना गृह में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो ये थी बात हमारे जुनून की, जुनून में हमारे साथ कोमल। तो कोमल, आप हमें कुछ और कहानियां बताना चाहें तो हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनमें जागरूकता का प्रसार हो।
1: स्टोरी में आपको बताऊंगी, हमारा मेन मकसद ये है कि महिला के अंदर जो समाज का डर है, समाज का डर इस वजह से है कि आज महिलाएं समाज के डर की वजह से बहुत सारी हिंसा सहती है, बहुत सारी मार सहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोलते कि से मेरा घर टूटेगा या मेरे समाज में बदनामी हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे घर टूटे हैं, बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया है, और इसका मेन वजह यह है, इसकी मेन रीजन ये है कि महिलाओं के अंदर डर है, समाज का डर। सबसे पहला डर उसके अंदर समाज का है कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले उंगली उठती है औरत के ऊपर। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन समाज का, आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद ने ये देखा है कि आज अगर गलती अगर लड़की की है या लड़के की भी है, लेकिन उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठाई जाती है कि लड़की की वजह होगी। अगर लड़की को बेवजह मारा भी जा रहा है तो समाज यही बोलेगा कि लड़की की ही गलती हो, तो लड़के ने हाथ उठाया होगा, उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिला है जो गुट गुट के जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको पता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हैं, अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसके बच्चे हैं वो घर घर के भीख मांगने लायक हो जाए, अगर वो अपने मायके जाके बैठती है तो वहाँ पे भी वो अपने भाई भाभी की नौकरानी बनके जिएगी, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। ये सारा चीज सोचने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजें सहन करती रहती है, बहुत सारी मार है, बहुत सारे अत्याचार सहन करती रहती है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बता। तो हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं के अंदर जो डर छुपा हुआ है, जो डर बैठा हुआ, उसको बाहर निकालना। हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका पुरुष आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके थप्पड़ मारो, बट एटलीस्ट आप ऐसा तो करते हैं कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप आवाज उठाए कि मेरी गलती नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, आपको किससे तकलीफ है, आप ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, बस वो आवाज उठा सकते। और इसमें 50% नहीं, मैं 80% मानूंगी कि जो रीजन है वो या तो समाज का है या किसी भी प्रकार के नशे का है, क्योंकि आदमी के जब नशे का टाइम हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो या फिर शराब का हो, अगर उसके नशे का टाइम हो जाता है और उसको उस टाइम पे नशा नहीं मिलता है, नशा करने का पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैंने इस नशे के ऊपर कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आप श्रोताओं के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। नशा वो चीज है, पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, नशा पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, नशा माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, बेटे की पढ़ाई और बेटी का बचपन छीन लेता है, नशा बहन का प्यार और भाई के अरमान छीन लेता है, बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है, और नशा अंत में व्यक्ति के शरीर से ताकत और ताकत से आत्मा छीन लेता है, और ये नशा नाश का द्वार होता है, और जो द्वार है वो आपकी बर्बादी और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला द्वार होता है, और एक बार नशे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो यही समझो कि आपको उसका अंत, उसकी मंजिल मृत्यु ही होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी तरह का नशा करता है, आप एक बार सोचिए कि नशे से कितने लोगों का जीवन खराब हो रहा है। आपने देखा होगा, नशा करने वाला झोपड़ी में रहता है और नशा करवाने वाला बंगले में रहता है। आपने कभी देखा होगा, जो शराब पीता है वो झोपड़ी में रहता है और शराब पिलाने वाला बंगले में रहता है, शराब पीने वाला साइकिल पे जाता है और शराब पिलाने वाला मर्सिडीज में जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नशा आपको बर्बाद ही करता है, कभी वो किसी का घर नहीं बनाता कि नशा करने वाला हमेशा सक्सेस होता है।
0: बहुत ही बढ़िया आपने कविता नशे को लेकर पढ़ी है, और जो विचार है आपके बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नशा है वो ऐसा करने वाले के लिए उसका जीवन भी ले सकता है और उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बताइए कि कोमल जी, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको नशे को दूर कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे नशे की दुकानें खुली हुई है या फिर जो इंटरनल बेस्ड हैं, उनकी सूचना देने वाले के लिए अगर आप 5,000 का या 10,000 का इनाम देना कि नशे की जो भी सूचना देती है उसको इनाम दिया जाएगा, तो आपको उसमें सुधार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे खुद चुपके आपको ये जो कॉलेज के पास, कैंपस के पास होते हैं, इंस्टीट्यूट के पास होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के पास होते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप है जो खुद चुपके ये नशे का धंधा करती है। उनको पैसों से मतलब होता है, तो हम लोग वहाँ मुहिम चला सकते हैं, स्कूल में कैंपेन कर सकते हैं, कॉलेज में कैंपेन कर सकते हैं, और उनको कुछ ऐसी पीपीटी दिखाई जाए, उनको डीपली ऐसे मैसेजेस दिए जाए, डीपली ऐसे वीडियोस शेयर किए जाए जो उनको बहुत दिल तक या बहुत इंटरनल उनको बहुत टच करे कि नशा करना बहुत खराब होता है। ऐसे इस मुहिम को चलाने के लिए हमें ऐसे इतने सारे यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे 18 से 25 साल के यूथ है उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनसे इंस्पायर होके बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो उनसे इंस्पायर होके अपना जो डिसीजन है नशा करना है उससे थोड़ा सा दूर हो पाए।
0: जी, तो नशे को लेकर जो आपकी बात है, वो विचार है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अभी नशे को लेकर क्या हालात है ग्रामीण इलाके में, कैसे आप देखते हैं युवाओं को, वो क्या कर रहे हैं, नशा किस प्रकार का नशा बढ़ रहे हैं?
1: अभी नशे का ये है कि उदयपुर में नशा पहले कुछ कुछ जगह पे होता, लेकिन वो टूरिस्ट सिटी बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो खुद अपने साथ लेके भी आते और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो युद्ध को लगा कि क्यों ना, क्योंकि युद्ध बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अगर टूरिस्ट आएंगे उनको रास्ते दे।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो जुनून, और जुनून में आपकी है फ्रीक्वेंसी 107.8 FM। बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तो कोमल बता रहे हैं कि कैसे नशा जो है वो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म के माध्यम से पहुंच रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए भी बात करते रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे देश में आगे बढ़े, यानी कि टूरिज्म भी रहे और वो जिम्मेदार टूरिज्म, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विकास को, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के हेरिटेज को और वहाँ के समाज को ना खराब करें, ऐसे टूरिज्म की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, सस्टेनेबल हो। लेकिन हमें जानने को मिल रहा है कि उदयपुर का जो पर्यटन मंत्री है उसने कहने की नशे में कॉन्ट्रीब्यूट किया, वहाँ के स्थानीय कोमल हमें बता रहे हैं। कोमल बताए कि कैसे पर्यटन ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है वहाँ के क्षेत्र में।
1: जी सर, तो उदयपुर सिटी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज वॉक है या फिर ऐसी हिस्टोरिकल पैलेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ही नहीं, इवन ऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो किसी भी तरह के नशे के एडिक्टिव होते हैं। अब उनको जो एडिक्शन होता है, उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर यहाँ आके वो केमिस्ट्री की शॉप से पूछते हैं या फिर किराना से पूछते हैं, और धीरे धीरे आप ये देखो ना कि अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी चीज के लिए 10 बार बोलेंगे कि ये चीज है क्या, तो शॉप वाले को लगेगा कि यार ये चीज मुझे रखनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट है, और धीरे धीरे वो गुपचुप भी उस चीजों को रखते हैं, और फिर उनको जो होते हैं बीच के जो डीलर होते हैं उनको भी हायर किया जाता है, और धीरे धीरे एक बार उनको अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एक बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तो युवाओं को लगता है कि उस पर्सन को लगता है कि यार पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा तो अब वो क्या ही पकड़े, और धीरे धीरे वो इस गिरफ्त में जाते हैं, और जब कोई लाके उसको सेल आउट कर रहा है तो वो कहता है कि एक बार मैं उसको ट्राई करूँ उसका टेस्ट कैसा है, और वही टेस्ट जो फर्स्ट टाइम का जो टेस्ट होता है वही आगे चल के उसके लिए एडिक्शन बन जाता है, और धीरे धीरे इस गिरफ्त में 18 से भी कम साल के, बहुत सोचने लायक बात है कि 18 साल से भी जो स्कूल गोइंग है 9th-10th के बच्चे वो भी नशे के शिकार होते जा रहे, जैसे स्मोकिंग जो है वो करते हैं, बियर पीते हैं, गांजा पीते हैं। इसका मेन कारण ये है कि उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और उनको पता है कि कहां से हमें ये चीज मिल सकती है, कहां से वो परचेस कर सकते हैं, तो सबसे मेन रीजन ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है।
0: जी, और किस तरह के उदाहरण आपने देखे? मैंने पिछले दिनों एक शराब की दुकान है वहां से छोटे बच्चों को, मैंने 12-13 साल के बच्चों को बियर खरीदते हुए देखा, और मैंने वहीं पर दुकानदार को मैंने विरोध किया। दुकानदार ने उसको फिर शराब देने से मना किया, अन्यथा अगर मैं नहीं रोकता तो वो दुकानदार उसको शराब बेच रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं जो हमारे दुकानदार हैं, जो शराब की दुकान पे काम करते हैं, उनको भी समझना है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल ना दे। और इसके साथ ही अगर ग्राहक भी ये घटना देख रहे हैं तो ग्राहकों का भी फर्ज बनता है कि वो छोटे बच्चे को वहां से शराब ना खरीदने दें और दुकानदार को भी मना कर दें। तो कुछ ऐसी ही बात है जो ये हम सबको पहल लेने की जरूरत है कि ऐसा कुछ होते हुए अपने इलाके में देखते हैं, खासतौर पर सरकार के द्वारा चलाई गई दुकान पर यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। और अब तो सरकार के भी पंचायती राज के रूल्स में भी है, यदि किसी गांव की 50% आबादी चाह ले तो वो अपने गांव के ठेके को अपने गांव से बाहर कर सकते हैं। और जरूरत है कि पंचायत में, ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव लिया जाए। क्या आप जानते हैं? तो इसलिए हम लेकर आते हैं ऐसा ही शोरूम जिसमें आप न केवल आप अपनी तकलीफ बता सकते हैं, अपने गाँव और अपने समाज के लिए, बदलाव के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में ऐसे ही क्रांतिकारी उदयपुर से कोमल, कोमल का नाम बड़ा कोमल है लेकिन उनके जो काम है उनमें दृढ़ता है, उनमें एक आत्मविश्वास है और उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून। कोमल आप बताइए कि आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उदयपुर को कैसे शहर बनाना चाहते हैं?
1: मेरा सपना ये कि मैं उदयपुर को क्लीन सिटी तो वो है, बट मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर में अभी बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें युवा लोग भटक रहे हैं। युवा लोग भटकने का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं, स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं, उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है। उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटके वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जैसे घूमना फिरना, दोस्त बनाना, होटलों में जाना, कैफेज में जाना, फैशनेबल कपड़े पहनना, इन चीजों की तरह उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर जब तक अपना करियर न बना ले वो इन चीजों में न पड़े, क्योंकि अभी इस जमाने में आपके इतना हाई कंपटीशन हो चुका है, किसी भी फील्ड में आप जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने की एज में वो करियर बनाने की एज में वो भटक जाते हैं। होटलों में घूमना, यारे दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, उस टाइम पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, इस वजह से वो भटक जाते हैं और इस वजह से उनका करियर नहीं बनता है और करियर नहीं बनने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ, मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि मेरा थॉट ये है कि जो बच्चा 5th क्लास में जो बुक पढ़ेगा हिंदी की, वो चैप्टर उसके 6th क्लास में काम नहीं आने वाला, क्योंकि 6th क्लास में हिंदी का चैप्टर डिफरेंट होगा। लेकिन उनको जो अदर एक्टिविटीज जो कराई जाती है, जो मोटिवेशनल उनको जो स्पीकर के द्वारा जो बातें सिखाई जाती है, वो उनके लाइफ टाइम तक काम आती है। जैसे उनको करियर गाइडेंस का है, या फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर उनका कोई सेशन होता है, या फिर सेल्फ डिफेंस वाला है, या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या उनकी अदर एक्टिविटीज है, स्किल डेवलपमेंट वाला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए तो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करे तो भी आगे चल के अपना करियर बना सके। अगर बच्चा बैंक फेल भी हो जाता है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, अगर बच्चा 10th फेल हो जाता है तो उसको फैमिली से, समाज से, स्कूल से, अपने फ्रेंड सर्कल से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तू तो फेल हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, ऐसे उनको गाइडेंस दे, ऐसा उनका सेशन स्कूल में चलाए करियर गाइडेंस का, कि बच्चा अगर नहीं होना चाहिए लेकिन इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है या उनके परसेंटेज डाउन भी होता है तो वो अदर स्किल को अपनाकर अपना लाइफ या फिर अपनी चॉइस है या फिर अपने जो सपने है उसको पूरा कर पाए।
0: निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक कंफ्यूजन होता है, वो एक ऐसी उम्र का दौर है जब आदमी अपने और अपने साथ साथ अपने मानसिक बदलावों से भी गुजर रहा होता है, तो और समाज के जो बदलाव है वो तो उसको प्रभावित कर ही रहे हैं, तो इन सारे अंतर्द्वंद के बीच वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है, तो वो समय होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले और उसको गाइडेंस के साथ साथ उसके हाथ को हुनर मिले और हाथ के हुनर के साथ साथ वो समाज और अपने देश के लिए कुछ कर पाए, और उसी समय यदि कोई नकारात्मक अनुभव उसको हो जाए तो वो जीवन भर उसे नहीं भुला पाता। और इसी तरह सब तरह की युवाओं के और बच्चों के जीवन को बदलने में लगी है हमारी आज की युवा कोमल, और कोमल के साथ हमने ढेर सारी बातें की। कोमल, हम बातचीत तो करते रहेंगे लेकिन आप ये बताएं कि कुछ और ऐसी कहानियां जो मैं आपसे आप चाहते हैं कि इस मंच पे रखी जाए और मैं आपसे नहीं सुन पाया और आप उसमें रुचि दिखाते हैं, थोड़ा बताएं इसको।
1: जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से, अगर ये मेरा मैसेज किसी पेरेंट्स के पास जा रहा है तो सबसे पहले मैं उस लड़की के माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शराबी है, किसी नशे का आदि है, तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी शादी न करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी तरह का नशा करता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाए, नशे से छुड़वाए, उसकी शादी न करें। आप सोचते हैं, मतलब लड़के के पिता माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, नहीं, क्योंकि आने वाली लड़की डॉक्टर नहीं है। आप आने वाली बेटी का भविष्य मत बिगाड़े। अगर आपके बच्चे की किसी तरीके की कोई नशे की आदत है तो किसी बच्ची का भविष्य आप खतरे में न डालें और उसमें सारी हकीकत उसको बताएं। दूसरा ये बोलना चाहती हूँ मैं कि बच्ची के माता पिता से कि आप अपनी बच्ची को धन दौलत न दे, दहेज न दे, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना संस्कार दे, इतना एजुकेशन दे कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ा हो सके और शादी के बाद वो किसी के सामने हाथ न फैलाए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो समय आने पर अपना खुद का और अपने परिवार का भी घर चला सके। ये मेरा निवेदन है। जी सर।
0: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये संदेश सभी बेटियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है कि वे भी जैसे ही अपनी उम्र में आगे बढ़े तो सिर्फ राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखे, वो भी अपने जीवन में एक मकसद बनाए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, मुझे देश के लिए उत्पादक नागरिक बनना है और मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका सपना अगर राजकुमार को पाना होगा तो हो सकता है कई बार आपको राजकुमार ना मिले और राजकुमार के बदले में एक नशे और युवा के रूप में एक आपको पति मिल जाए, तो ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अपने जीवन का मकसद जो है वो राजकुमार के संग विवाह करना ना होकर अपने जीवन का मकसद खेलों में कुछ अच्छा करना बताए, किसी की महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखें, आप देश के लिए किसी उत्पादक फैक्ट्री में काम करने का सपना देखें, आप इंजीनियर बनने का सपना देखें, आप नर्स बनने का सपना देखें, आप डॉक्टर बनने का सपना देखें और तो और आप देश की राजनीति में राजनेता बनने का सपना देखें। ये सपने तो कुछ काम के हैं। राजकुमार तो आपके जीवन में, आपका जब आप इस सफर पे चलेंगे तो उस सफर पे हम सफर तो आपके साथ आ ही जाएगा। तो और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे के साथ कौन नहीं डूबना चाहेगा, तो कुछ ऐसा ही हम सफर आपके साथ अपने आप ही डूबने के लिए मिल जाए। पहली बात तो है कि आप एक मजबूत सफर पे निकले, एक सफर पे निकले जिससे आपका जीवन और आपके आसपास के समाज का जीवन बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हमारी बेटियां ये भूल कर बैठती हैं कि वो जैसे ही बड़ी होती हैं तो राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना देख लेती और उन्हें कुछ नया सपना समाज के द्वारा बताया गया है। तो हमारे बीच में है कोमल जो इस तरह के गहरे विषयों पर हमारी बेटियों के साथ बात कर रही है और इस शो में तो हम पूरी दुनिया के साथ आज बात कर ही रहे हैं। तो ये ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतः समाज में बात नहीं की जाती है, लेकिन आज हम इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके बीच के सारे विषय लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं डॉक्टर, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि कोमल आप ये बताएं कि नशे को लेकर राजस्थान सरकार भी जल्दी ही 26 जून को अपने अभियान का आगाज करने जा रही है और नशे को लेकर एक अत्यंत गंभीरता के साथ चलाए गए अभियान में पूरा राज्य भागीदारी करेगा, सभी नागरिक जुड़ेंगे, सभी संस्थाएं के विभाग कॉर्पोरेट को भी इसमें जोड़ा गया है। आपको क्या लगता है, आप कि सरकार के साथ क्या नया किया जा सकता है नशा मुक्ति अभियान के अंदर? आप राजस्थान के सीएम अभी साथ हम आपके सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं?
1: मेरा मानना यह है कि सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कायदे बनाती है, लेकिन उसी को सरकार ही तोड़ देती है। जैसे कभी ब्लैक डे होता है, उस दिन शराब नहीं बेचने का नियम बना रखा है, शटर डाउन होगा, लेकिन पीछे की विंडो से शराब बिक रही है। और आप देखिए कि पीछे की विंडो से अगर शराब लिया जा रहा है तो वो पुलिस वाला खुद ले रहा है, जबकि वो सरकार का ही आदमी है। नियम यहीं से तोड़ना स्टार्ट होता है कि नियम बनाते भी आप है और तोड़ते भी आप है। अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया है तो उसको फॉलो आप कीजिए पहले, क्योंकि जब तक अगर मिनिस्टर वगैरह या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो लोकल पब्लिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस मुहिम में महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो आपको 100% तो नहीं मान सकती लेकिन 90% रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पुरुष नशे के जो आदी हैं वो उससे दूर हो सकते हैं। चांसेस है अगर उसमें इन्वॉल्व महिलाएं ज्यादा होगी 90% इस मुहिम में तो 90% बच्चे या फिर 90% पुरुष है नशे से छुटकारा पा सकते। मेरा तो मानना ये है। पर
0: बहुत बढ़िया कोमल, आपने हमसे बात की, आप ऐसे ही साथ काम करते रहे और अपने चैरिटी वाले काम में भी जुटे रहे और आपकी टीम को और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे रेडियो मधुबन की तरफ से भी शुभकामनाएं और उदयपुर को सुंदर नगरी, झीलों की नगरी को और सुंदर बनाते रहे। वहाँ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, समाज में आ रही विकृतियों और बदलावों पर भी अपनी सटीक नजर रखी जाए और तुरंत होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाए और उसमें समाज को जागरूक कर बदलाव के लिए आह्वान किया। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे साथ काम करते रहें। रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम और नमस्कार।
1: एक मैसेज मैं उन शराबी भाइयों को देना चाह रही थी कि 1000 की बियर की बोतल, 1000 की बियर की बोतल शराबी एक बार में खत्म कर देता है लेकिन वही 1000 रुपए का जो सिलेंडर आता है वो 2 महीने तक पूरे परिवार का खाना बन सकता है। तो शराबी भाई इस बात को सोचिएगा कि 1000 की बियर की बोतल एक बार में आपको काम में लेनी है या 1000 का सिलेंडर आपको अपने परिवार के लिए 2 महीने का खाना बनाने के लिए काम देना है, ये बात आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू और सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच शरद भाई आपका और कृष्णा बेन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कोमल, तो फिर से ऐसे ही हम एक जुनूनी के साथ आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट शो जुनून में और जुनून में फिर से नई बात होगी, एक नया आयाम होगा और एक नए जीवन को हम छुएंगे। तो फिर से मिलेंगे और दोस्त दोस्त सनी ने शरद जय हिंद।

मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जी री हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमाईचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर के युवराज और सेना नायक थे। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था और सदैव ही सफलता हासिल की थी। अंग्रेज अधिकारी टिकेंद्रजीत को हटाना चाहते थे, लेकिन मणिपुर के पूर्व सेना नायक जनरल थंगल ने युवराज को प्रेरित किया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का मन बना लिया। उन्होंने मणिपुर के लोगों को छोटे छोटे समूह में बांटकर छापामार टोलियां बना दी और गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करने लगे। तैयारियों की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को मिल गई। उन्होंने युवराज को चालाकी से गिरफ्तार करने की योजना बनाई, पर अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब न हुए। तब उन्होंने युवराज और जनरल थंगल को पकड़वाने के लिए हजारों रूपये के इनाम की घोषणा कर दी। इनाम के लालच में कुछ गद्दारों ने युद्ध नीति की गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा दी और अंग्रेजों ने मणिपुर पर चढ़ाई कर दी। एक तरफ मणिपुर जैसा छोटा राज्य था और दूसरी ओर विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की सेना। नतीजा वही हुआ जो होना था। अंग्रेज सरकार ने टिकेंद्रजीत सिंह और जनरल थंगल को गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया और सजा के तौर पर उन्हें मृत्युदंड मिला। 13 अगस्त 1891 को क्रांतिवीर टिकेंद्रजीत

0: सिंह और जनरल थंगल फांसी के फंदे को चूमकर शहीद हो गए।
1: अरे राजू चाय लेके आओ जल्दी से।
2: अरे दादा अपनी चाय वाय कहाँ है? और साथ में कुछ समोसे भी ले आना।
3: यार सुना है तू मणिपुर जा रहा है?
2: हाँ, कॉलेज की टीम वहाँ के सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने जा रही है।
3: अच्छा,
2: उसी में अपना भी सिलेक्शन हुआ है।
3: अच्छा एक बार बता, अपने ग्रुप से कौन कौन जा रहा है?
2: अपने ग्रुप से सोमेश, मणि और रेखा।
4: यानी गीत संगीत और नृत्य तीनों, मस्ती धूम और मजा सब एक साथ।
2: अरे सो तो होना ही है, मणिपुर जगह ही ऐसी है।
3: हाँ यार,
2: फिर सांस्कृतिक उत्सव का माहौल समझ लो, आनंद ही आनंद।
3: अच्छा एक बार बता, कितने दिन का टूर है?
2: पूरे 7 दिन का।
3: क्या बात कर रहे हो?
5: मणिपुर जा रहे हो बेटा, तो वहाँ युवराज टिकेंद्रजीत सिंह और जनरल थंगल की समाधि पे फूल जरूर चढ़ा के आना।
3: अरे तुम भी क्या बात कर रहे हो दादा, वहाँ ये संस्कृति के रंग बिखेरने जा रहे हैं, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने थोड़ी जा रहे हैं।
5: एक बात कहें बेटा?
3: हाँ कहो।
5: शहीदों को श्रद्धांजलि देना भी संस्कृति का ही एक हिस्सा है।
3: अच्छा,
5: लो तुम्हारी चाय और समोसे दोनों आ गए, हम चलते हैं।
2: अरे दादा कहाँ चले? अरे दादा हमें टीकेंद्र सिंह और जनरल थंगल का किस्सा कौन सुनाएगा?
5: किस्से तो हम तुम्हें 10 सुना दें, पर तुम्हारे पास समय तो हो?
2: अरे हाँ दादा समय तो है, लगता है दादा आप नाराज हो गए। अरे आप तो जानते ही हैं, शहीदों के किस्से सुनने के लिए तो हमने 10 काम छोड़ दिए हैं दादा। हाँ
3: हाँ ये ठीक कह रहा है दादा। हाँ सुनाइए ना दादा, आज युवराज टिकेंद्र सिंह और जनरल थंगल का ही किस्सा सुना दीजिए, फिर यदि यह इसका किस्सा सुनकर उनकी समाधि पर जाएगा ना तो पूरी श्रद्धा से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेगा।
5: अरे तुम लोगों की माया भी अजीब है। चलो सुनो, बात सन 1891 की है।
3: अच्छा,
5: टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर राज घराने के सबसे काबिल और बहादुर युवराज थे।
3: अच्छा,
5: और जनरल थंगल एक बुजुर्ग और सबसे सम्मानित भूतपूर्व सेना नायक थे। जनरल थंगल के मार्गदर्शन में ही टिकेंद्र ने कई लड़ाइयां जीती और वे उनके सामरिक सलाहकार भी बन गए थे।
2: दादा यदि टिकेंद्र सिंह युवराज थे तो फिर मणिपुर के राजा कौन थे?
5: ये तुमने ठीक बात पूछी। ये जानो कि मणिपुर के पूर्व शासक चंद्र कीर्ति ने 8 विवाह किए।
3: क्या कह रहे हो दादा, 8 विवाह?
5: हाँ, कई कई विवाह करना राजा महाराजाओं के लिए शान की बात हुआ करती थी।
3: अच्छा,
5: चंद्र कीर्ति के बाद उनकी पहली रानी के सबसे बड़े पुत्र शरद चंद्र राजा बने। टिकेंद्र तीसरी रानी के पुत्र थे, पर घर के कलह के कारण शरद चंद्र को राज त्यागना पड़ा और उनकी जगह उनके सौतेले भाई कुलचंद्र ने शासन संभाला। क्योंकि सब भाइयों में टिकेंद्र सबसे होशियार और सबसे बहादुर थे, सो कुलचंद्र ने राजा बनते ही टिकेंद्र को युवराज और सेना नायक घोषित कर दिया।
3: अच्छा,
5: राजा के सभी फैसले चंद्र कीर्ति टिकेंद्र की सलाह लेके ही करते रहते।
2: यानी चंद्र कीर्ति केवल नाम के ही राजा थे, असली शासन टिकेंद्र ही चलाते थे।
5: अब यूं समझो कि राज परिवार में चल रही कलह के कारण चंद्र कीर्ति का सारा ध्यान और बुद्धि अपने राज को बचाने की जोड़ तोड़ में लगा रहता था।
2: अच्छा,
5: फिर टिकेंद्र की योग्यता और राजा के प्रति वफादारी पे उन्हें पूरा पूरा विश्वास था। प्रजा की कोई भी समस्या या मसला आए तो सबसे पहले टिकेंद्र के पास ही पहुंचता था, जैसा कि सूरतों के कांड में हुआ।
6: तुम तो जंगल की छोटी बस्ती के लोग हो, क्या हुआ कोई विपदा आ गई क्या?
7: हाँ महाराज, हम जंगल की छोटी बस्ती के लोग ही हैं और भारी विपदा की गुहार लेकर आपके पास आए हैं हुजूर।
8: पहले तो साल में कभी एक आध घटना होती थी, पर अब तो ये रोज की बात हो गई है हुजूर, इसीलिए आपके पास विनती लेकर आए हैं।
9: देखो साफ साफ बताओ क्या हुआ।
8: क्या बताएं हुजूर, कल फिर एक अंग्रेज घुड़सवार बस्ती की लड़की को उठा कर ले गया। उसका अर्ध नग्न शव जंगल के खड्ड में मिला। बलात्कार के बाद उसे मार कर खड्ड में फेंक दिया गया हुजूर।
7: महाराज सुर तो रोज ही जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी और संध्या समय वापस लौट आती थी। कल रात देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी ढुलाई शुरू की गई, पर आज सुबह ही उसका शव खड्ड में मिला। महाराज
8: एक गड़रिये ने बताया, उसकी आंखों के सामने एक अंग्रेज घुड़सवार उसे उठाकर ले गया था। वो जोर जोर से लोगों को पुकार रही थी, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने इस घटना की सूचना पास की दूसरी बस्ती में भी दी थी हुजूर।
7: हाँ हुजूर, आज तक हम जंगल की संपदा बिना कोई विघ्न बाधा के उपयोग करते रहे हैं
8: जी,
7: पर अब तो ना ही जंगल सुरक्षित रहे हैं और ना ही हमारी मान मर्यादा और इज्जत ही।
8: जी हुजूर,
7: समझ में नहीं आता क्या करें हुजूर। आपकी ही आस है सो आपके पास गुहार लेकर आए हैं हुजूर।
8: जी हुजूर,
10: समस्या गंभीर है, पर आप लोग चिंता ना करें, हम पूरा इंतजाम करेंगे कि आगे से ऐसी घटना ना हो। लगता है इन बच्चात और सिरफिरे फिरंगियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। काका थंगल साहब, अंग्रेजों की राज विरोधी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है
11: जी।
10: फिर ये जो नया संकट उत्पन्न हुआ है वो ना केवल अत्यंत अपमानजनक है वरन भयंकर अपराध भी है। क्या किया जाए आप ही बताएं। मैं तो सोचता हूँ इन्हें सबक सिखाने के लिए अपने सहयोगियों से मंत्रणा की जाए।
11: युवराज जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें काका साहब का दर्जा दिए हुए हैं और हमारी राय लेते रहते हैं। सच तो ये है कि इस समय अंग्रेज सरकार का एक ही कार्यक्रम चल रहा है, राज्यों पर अपना आधिपत्य कायम करना। उनकी सारी गतिविधियां इसी एक सूत्री कार्यक्रम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। फिर यहाँ मणिपुर में शासन के गृह कलह में उलझे रहने का भी वे पूरा पूरा लाभ लेने की फिराक में रहते हैं। युवराज जी, मैं समझता हूँ अपने सहयोगियों से मंत्रणा करने का आपका विचार उत्तम।
10: ठीक है काका साहब, उत्तम विचार है।
5: युवराज टिकेंद्र जीत के बुलाने पर आखिर सैनिक अधिकारियों और वरिष्ठ मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए युवराज बोले,
10: अरे बिल्कुल ठीक,
12: मिट्टी में पूरे जो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं करना चाहिए, हमें हमें महाराज से
13: महाराज ये रक्षा करेंगे।
10: शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत। मेरे बहादुर मित्रों, अंग्रेज धूर्त तो है ही, पूरे एहसान फरामोश भी हैं। आपको याद होगा 1878 में जब नागाओं से उनका युद्ध हुआ था तब मैंने ही अंग्रेजों की सहायता की थी, उनके बीवी बच्चों की जान मैंने ही बचाई थी। इसी तरह धर्माधिपति थिम्बो से भी मैंने ही उन्हें बचाया था, पर इन अंग्रेजों ने इसका एहसान कभी नहीं माना।
12: युवराज, बल्कि 1886 में जब शत्रु से रक्षा के लिए हमने अंग्रेज सरकार से सहायता मांगी थी, उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। वो तो आपका रण कौशल था जो फिरंगियों की सहायता के बिना ही आपने शत्रु को पछाड़ दिया था।
10: नहीं नहीं, हमने क्या, आप सबकी वीरता ने ही शत्रु को पराजित किया था, तभी से अंग्रेज हमारी शक्ति से भयभीत होकर हमारी सत्ता पर आंख गड़ाए बैठा है
12: जी।
10: और अब तो उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। उसने एक मासूम अवला के साथ बलात्कार ही नहीं किया, वर्णों से मार कर निवस्त्र जंगल के खाड में पटक दिया। आखिर हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे और ये तमाशा देखते रहेंगे? जनरल थंगल साहब,
9: युवराज जी,
10: आप इस बारे में अपने विचार रखें।
9: युवराज, आज अंग्रेज की इतनी हिम्मत इसलिए हुई है क्योंकि मणिपुर का शासन ग्रह कलह में उलझा हुआ है। वो हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठाकर हमारे राज को हड़प लेना चाहता है।
10: ठीक कहा आपने,
9: हालात वो खुद पैदा कर रहा है और भागना होगा, जनता की जान माल की रक्षा ना कर पाना।
10: बिल्कुल
12: युवराज, आज तक आपने अपने अपूर्व शौर्य के बल पर सारी लड़ाइयां जीती हैं। वो आपके साहस और शौर्य से भली भांति परिचित हैं। उनकी राह में आप ही सबसे बड़े रोड़े हैं। अतः अंग्रेज सरकार आपको अपने मार्ग से हटाना चाहती है। तभी तो युवराज उसने महाराज कुलचंद्र को मणिपुर का शासक बनाने के लिए आपको राज्य से निर्वासित करने की शर्त रखी है युवराज।
10: लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंग्रेज अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
12: युवराज, पर अब तो अंग्रेजों ने अपनी सीमा ही लांघ दी है। कल की घटना तो हमारे लिए सीधी चुनौती है युवराज।
9: और ये चुनौती हमें स्वीकार है। युवराज, मणिपुर का बच्चा बच्चा अपनी मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार है। मैंने लोगों के जज्बे को पढ़ा है, सबको आपके नेतृत्व में विश्वास है। देश की पावन माटी को निरंकुश अंग्रेजों के पंजों से मुक्त कराने का समय आ गया है महाराज। इसके लिए हम सब शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करने को तैयार है।
10: की मिट्टी की भारत माता की जय बोलिए।
12: भारत माता की
10: जय हो।
12: भारत माता की
10: जय हो।
12: भारत माता की
10: जय हो। तो ठीक है, सर्वसम्मति से निर्णय रहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की तैयारियां शुरू कर देंगे। और तैयारियां इस तरह होंगी कि दुश्मन को कानो कान खबर ना हो। महाराज को इसकी जानकारी देने और मंजूरी लेने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं।
9: मित्रों, अंग्रेजों के खिलाफ यह तो बड़ी चुनौती है, हमें कड़ी तैयारी करनी होगी। लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर छापामार लड़ाई में पारंगत करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी गुप्तचर व्यवस्था मजबूत करनी होगी।
10: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
12: जनरल साहब, हम सब आपके साथ हैं। आप अपना काम अब से ही शुरू कर दें।
10: हाँ, शुरू कर दें।
12: हाँ, शुरू कर दें।
10: हाँ, शुरू कर दें। ठीक है मित्रों।
2: फिर क्या हुआ?
14: जैसा कि हमेशा होता आया है, थंगल और टिकेंद्र की पूरी सावधानी के बाद भी मणिपुर में टिकेंद्र जीत और थंगल द्वारा की जा रही सैनिक क्रांति की तैयारियों की खबर अंग्रेज अधिकारी को लग ही गई। आखिर उनका खुफिया तंत्र भी तो मणिपुर में मौजूद था।
3: तो दादा, एक बार बताओ तो क्या सैनिक क्रांति नहीं हो पाई?
14: उस तरह नहीं जिस तरह टिकेंद्र चाहते थे।
3: अच्छा,
14: मणिपुर की खबर से चौकन्ने होके तब के वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन ने चीफ कमिश्नर क्रिंटन को तलब किया।
15: मिस्टर क्रिंटन,
16: सर,
15: मणिपुर के न्यूज ने हमारा एंजाइटी बढ़ा दिया है और तुम क्या करता है? लिसन,
16: सर,
15: टिकेंद्र जीत को जरा चालाकी से अरेस्ट करने का। वो बहुत ब्रेव एंड कनिंग सेनापति होता। अब तक उसने सभी फाइट जीता है।
16: सर, आप ठीक कहता है, हम पूरा अलर्ट है। हमने एक डिप्लोमेटिक स्टाफ लेकर आपने यहाँ एक दरबार अरेंज किया है जिसमें टिकेंद्र जीत को स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। वहीं उसे अरेस्ट करने वास्ते प्लान है।
15: दैट्स बेटर, बट In case you fail to arrest him there, फिर तुम क्या करेगा?
16: सर, यहाँ नाकामयाब होने पे हमने रेजिडेंसी पर म्यूजिक एंड डांस पार्टी का प्रोग्राम प्लान किया है। वहाँ महाराजा कूलचंद के साथ सभी ऑफिसर्स को इनवाइट किया जाएगा। दिस विल गिव अनदर चांस टू अरेस्ट हिम एंड यदि इस बार भी हम फेल होता तो एक्शन ऑफ फोर्स इज द ओनली सॉल्यूशन। हमें मिलिट्री एक्शन करना ही होगा।
17: Well, go ahead with your plans. Hamare good wishes tumhare saath hai. Get success soon.
16: Thank you, sir.
14: कमिश्नर क्लिंटन की सभी कूटनीतिक चालें असफल रही।
2: सो कैसे दादा?
14: वो ऐसे कि टिकेंद्र के गुप्तचरों ने क्लिंटन की सभी चाल की खबर उन्हें पहले से ही दे दी। दरबार के आयोजन में टिकेंद्र विशिष्ट अतिथि थे। वे दरबार पहुंचे ही नहीं। उन्हें तबीयत खराब होने का बहाना बना के माफी मांग ली। फिर रेसिडेंसी पे नाच गाने के आयोजन में महाराज सहित सभी अधिकारी और मंत्रीगण बुलाए गए, पर वहाँ कोई नहीं गया।
3: फिर क्या हुआ काका?
14: सभी कूटनीतिक चाल के असफल होने पे क्लिंटन भारी सैनिक दस्ता लेके आधी रात को युवराज को गिरफ्तार करने राजमहल जा पहुंचा।
3: अरे,
14: पर इस सैनिक कार्रवाई की खबरें भी युवराज और जनरल थंगल को पहले ही मिल गई। सो वे सभी समय रहते गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकल गए। क्लिंटन की ये चाल भी बेकार गई।
2: फिर क्या हुआ दादा?
14: फिर अंग्रेजों ने महाराज कुलचंद के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। युवराज ने सलाह दी, संधि का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लो, पर शर्त रखो कि बातचीत मणिपुर के राजमहल में ही होगी। क्लिंटन ने मणिपुर राजघराने में विष का बीज बोके ग्रह कलह को युद्ध की कगार तक पहुंचाने का षड्यंत्र रचा, ताकि अंग्रेज आसानी से मणिपुर राज हड़प सके। पर इसमें भी टिकेंद्र जीत रोड़ा बन गए।
2: सो कैसे?
14: वो ऐसे कि जैसे ही क्लिंटन अपने साथियों ग्रिमुड, कर्नल स्किन, सिम्पसन, कॉसिंस और एक बिगुलची के साथ संधि वार्ता के लिए मणिपुर पहुंचा, और इससे पहले कि वार्ता महल में शुरू हो पाती, अंग्रेजों की दुश्मन बनी मणिपुर की जनता और सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। युवराज टिकेंद्रजीत ने उन सब की रक्षा करके उन्हें सैनिक सुरक्षा में ठहरा दिया।
3: फिर क्या हुआ काका?
14: पर क्रोधित सेना अपने पे काबू नहीं रख पाई, और जनरल थंगल के देखते देखते पांचों अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए। इस घटना की खबर पाके अंग्रेज अधिकारी तिल मिला उठे। ये तो उनकी सरकार के लिए खुली चुनौती थी। तत्काल उनकी गिरफ्तारी के फरमान जारी हो गए। महाराज कुलचंद को मणिपुर राज के राजा पद से बेदखल कर दिया गया। जगह जगह यह घोषणा चस्पा हो गई, कुलचंद अब मणिपुर के राजा नहीं है। कुलचंद, युवराज टिकेंद्रजीत सिंह और जनरल थंगल अंग्रेज सरकार के बागी हैं। जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा या उनके संबंध में गुप्त सूचना देगा, उसे 10,000 रुपए इनाम और दूसरे पुरस्कार दिए जाएंगे।
2: इनाम के लालच में तो कई गद्दार पैदा हुए होंगे दादा।
14: तुमने ठीक कहा बेटा, न केवल उनके छिपने की जगह बल्कि उनकी सैनिक तैयारी की पूरी पूरी जानकारी अंग्रेजों को मिल गई।
3: फिर क्या हुआ था?
14: फिर सन 1891 के मध्य की बात है। अंग्रेजों ने सिलचर, कोहिमा और तामू की सेनाएं बुला के मणिपुर पर चढ़ाई कर दी, और इतिहास में दर्ज एंग्लो मणिपुर वार 1891 में घटित हो गया। टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल के नेतृत्व में मणिपुर की जनता और सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की खातिर प्राण अर्पण करने के लिए युद्ध मैदान पर आ डटे। भीषण युद्ध हुआ।
2: और युद्ध का परिणाम क्या हुआ?
14: युद्ध का परिणाम तो वही रहा जो होना था। कहां मणिपुर जैसे छोटे राज्य की मुट्ठी भर सेना, और कहां विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की आधुनिक शस्त्रों से सजी सेना। मुट्ठी भर सैनिकों के साहस और टिकेंद्रजीत के रणकौशल ने
5: अंग्रेज सेना के नाकों के तले चने चपवा दिए, पर अंत में उन्हें हार ही

0: मिली। महाराज कुलचंद्र, युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को बंदी बना दिया गया।
1: इसके बाद क्या हुआ दादा?
0: इसके बाद महाराज कुलचंद्र को आजीवन कारावास देके पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। युवराज और थंगल पे मुकदमा चलाने का नाटक रचा गया।
2: तुम्हारा नाम?
3: युवराज टिकेंद्रजीत सिंह।
2: क्या तुम ही मानिपुर का सेनापति होता?
3: जी।
2: तुम पे अंग्रेज ऑफिसर की हत्या का चार्ज है, तुम पे कुछ कहना है?
3: ये आरोप गलत है जज साहब। सब जानते हैं कि मैंने सदा अंग्रेजों की रक्षा की है। इस बार भी मैंने ही संधि के लिए आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को क्रोधित जनता से बचाकर सैनिक सुरक्षा प्रदान की थी।
2: पर क्या ये भी सच नहीं है कि पुलिस प्रोटेक्शन में ही उनका ब्रूटल मर्डर हुआ?
3: वो सैनिक विद्रोह कारण हुआ था।
2: पर तुम ये चार्ज से बच नहीं सकता। तुम पे दूसरा चार्ज यह है कि तुमने बीती सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा। तुमको कबूल?
3: बिल्कुल नहीं।
2: मतलब?
3: योनर, मणिपुर की जनता सदियों से स्वतंत्र जीवन जीती आई है, तो मैं भी उसी जनता का एक हिस्सा हूँ।
2: स्वाट?
3: हमारी स्वतंत्रता के हनन का षड्यंत्र तो ब्रिटिश सरकार ने रचा है।
2: तुम क्या कहना चाहता?
3: मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा आप, षड्यंत्र का अभियोग तो ब्रिटिश सरकार पर लगना चाहिए, हम पर ये अभियोग क्यों?
2: फनी क्वेश्चन।
0: बेटा, सभी को पता है ये मुकदमा एकदम दिखावा था, फर्जी था। आखिर निर्णय तो वही होना था, युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल दोनों को मौत की सजा। 13 अगस्त 1891 के दिन दोनों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। उनकी शहादत से एक फायदा हुआ।
1: वो क्या है दादा?
0: वो ये कि इनकी फांसी के बाद मणिपुर में आने वाली नई पीढ़ी के लिए टिकेंद्र और थंगल की कुर्बानी की कहानी प्रेरणा स्रोत बन गई। जाने पूरे उत्तर पूर्वी भारत में क्रांति की ऐसी ज्वाला जागी कि ब्रिटिश राज का अंत होके ही रहा। इसके बाद से 1918 में कुकी आंदोलन फूटो, 1930 में निखिल मणिपुर महासभा पैदा हुई, नागालैंड के जदोनांग और रानी दिगाइलू की सशस्त्र क्रांति, और 1939 में महिला संघर्ष सफल हुआ।
1: यानी युवराज टिकेंद्र ने जो ज्योति जलाई, उसी ने पूर्वी भारत के जन जन में क्रांति की राह रोशन की।
4: दादा, आपसे यह कथा सुनकर अब मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं मणिपुर यात्रा के दौरान वीर शहीद टिकेंद्र और जनरल थंगल की समाधि पर श्रद्धा सुमन जरूर चढ़ा के आऊंगा।
0: वाह बेटा वाह, ये हुई ना बात।
5: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयाँ नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से, उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
0: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहां पर मेडिसिन्स की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसे हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज़ और आपकी एक्सपर्टीज़ को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
2: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है, हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी, लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
0: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
1: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है फिर भी आपका दिमाग उससे कोपअप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
0: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी, उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था, जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंस कर रो कर मार खा कर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है, तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है, तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया, आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहां हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
0: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है, वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है, उसको अब रोकना होगा। तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी, जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया, उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं, वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द। और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियाँ ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं। और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य के अंदर में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाएं। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं, वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ से जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाएं।
0: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
1: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
0: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं, तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
0: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस, और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है।
1: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
2: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इस

0: चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीजें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीजें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही है, अभी हूँ और यही इंजॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो? नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें, ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
1: मतलब कुल मिला करके हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम ऐड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज की इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे

0: याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो तो।
1: अभी बचे हैं दोपहर के 4, 1 मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण के बारे में जिसकी जरूरत शायद हमें हर रिश्ते में पड़ती है, वो है कामनेस, यानी कि शांत चित्तता। क्योंकि हर बार कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी हमारी प्रतिक्रिया उससे बना देती है अक्सर उतनी बड़ी समस्या होती नहीं है। इसी विषय को समझने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ओंकार चंद जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ब्रह्मा कुमारीज के साथ आप बाल्यकाल से ही जुड़े हुए हैं। देश विदेश के साथ साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर जगह पर जाकर के आपने अपने मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं। बहुत सारे यूथ को, युवा वर्ग को आपने मोटिवेट किया है। इसके साथ साथ आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो प्रोफेसर ओंकार चंद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: ओम शांति। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कामनेस है, यानी कि हम शांत रहना कह सकते हैं, शांत चित्तता, इसे आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? क्या सिर्फ चुप रहना ही शांत रहना है?
1: शांत रहना केवल चुप रहना नहीं कहा जा सकता। चुप तो व्यक्ति अक्सर रहता भी है, कभी बोलता है, कभी चुप भी रहता है। पर कामनेस का मतलब है कि जब कोई नेगेटिव, कोई अपोजिंग सिचुएशन आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए जो हमें अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे अनुसार सही नहीं है, उस वक्त अपने मन को शांत रखना, वो कूलनेस या कामनेस या शांत, जो आपने कहा शांत चित्तता, हिंदी में अगर शुद्ध कहें तो उसको कहें। इसमें मुख के मौन से ज़्यादा मन का चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर शांत है तो कैसी भी सिचुएशन होगी उसका हम सामना कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम मन से उस वक्त पॉजिटिव रहें, सही सोचें, उसे हम कामनेस कह सकते हैं।
0: जी, मन से पॉजिटिव कैसे रहें, कैसे सही सोचें, इस विषय पर हम जानेंगे, आगे जानते जाएंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स के द्वारा। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे रिश्तों में अक्सर छोटी सी बात बड़ी बहस में बदल जाती है। हम कहते हैं कि हम राई को पहाड़ बना देते हैं कई बार, तो ऐसे क्या होता है कि एक छोटी घटना के बाद हमारी भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती है और हम सहन नहीं कर पाते छोटी छोटी बातें?
1: ये अक्सर हम सबके साथ होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हम उसमें उलझ जाते हैं और नेगेटिव वे में उसको रिस्पोंड करते हैं, जिसे हम रिएक्ट करना कह सकते हैं। अब बातें तो होती हैं, कोई ना कोई जीवन में रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम उस को अच्छे से सिचुएशन का सामना ना कर सके, नेगेटिव वे में उसका सामना करें, तो उसे रिएक्ट करना कहा जाता है। और वो हमारे लिए, खुद के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो चीज़ हमें दर्द देगी। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पोंड करेंगे तो हम उसको नॉर्मल वे में लेंगे, और अगर उस सिचुएशन को देख के हम घबरा गए, डर गए, और उसका कारण भी ये है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, मन हमारा मजबूत नहीं है। अब वही सिचुएशन 10 आदमी अगर उसको फेस कर रहे हैं, एक जैसी सिचुएशन, तो क्या 10 वे एक ही तरीके से रिस्पोंड करेंगे? सबका रिस्पोंड करने का तरीका अलग होगा। कोई उसको राई को पहाड़ बना देगा, कोई राई को और रूई बना देगा, कहेगा कोई भी बात, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, आज प्रॉब्लम है, आज कुछ हुआ है, कल को ठीक हो जाएगा। एक तरीका ये है उसको रिएक्ट करने का, और एक तरीका है, अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, मैं कैसे दूसरों को मुंह दिखाऊंगा, तो ये तो मुझे समझते कुछ नहीं है, तो वो भी एक तरीका है। तो इसका मतलब हमारे मन में उस वक्त क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हम उस सिचुएशन में पॉजिटिव वे में रिस्पोंड करेंगे या नेगेटिव वे में करेंगे।
0: ओके, तो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं अक्सर एक दिन में तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होते होंगे ना, तो कई दिनों के प्रैक्टिस या कई सालों के प्रैक्टिस
1: हैबिट में जो आ जाता है।
0: जी जी
1: जी
0: ओके। तो मान लीजिए जब हमें किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो पसंद नहीं आता तो हमारे मन में तुरंत जैसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो क्या हमारी सोच से ही हमारे रिश्तों की दिशा तय होती है? ऐसा लगता है
1: हर चीज सोच से ही डिसाइड होती है, चाहे वो रिश्तों की दिशा हो, चाहे जीवन की दशा हो, चाहे हमारे जीवन में हम जो भी सुख या दुख महसूस कर रहे हैं, वो हर चीज का आरंभ तो सोच से ही होता है। सोच ही हमें कुछ भी बना सकती है। वो कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।
0: जी।
1: तो मानना और ठानना, हार और जीत, सुख और दुख, जो भी है तो सोच ही।
0: जी।
1: तो सोच अगर सही हो जाए जीवन में तो हर चीज सही हो सकती है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे मिल जाएंगे।
0: क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत ये पोएम है। तो जानना चाहेंगे कि सोच को बदलने के तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
1: पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जब भी हम सोचने लगे तो चेक करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
0: क्या इतना चेक करने का टाइम मिलेगा?
1: तो वो टाइम आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि मैं ये जो सोच रहा हूँ, इस सोच से मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर मैं सही फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सही सोच नहीं है, वो नेगेटिव सोच है, वेस्ट सोच है। और अगर मैं उस सोचने के बाद मैं लाइट, खुश, हल्का और सुख की फीलिंग आ रही है, गुड फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स वो सही सोच है। तो जैसे ही आपको फीलिंग से आपको पता चल जाएगा कि मेरी सोच सही है या खराब है, अगर फीलिंग खराब है तो सोच खराब है, तो उसी वक्त रुको और अपने मन को पूछो, क्या मैं ऐसे ही सोच सकता हूँ या इसके अलावा भी इस घटना में मैं कोई और तरीके से भी सोच सकता हूँ। जैसे ये घटना घटी तो क्या मैं इसी तरीके से सोचूंगा तो दुख मिलेगा क्योंकि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उसके अपोजिट क्या हो सकता है जो मैं सोच लूं। मान लो आज मुझे किसी ने नौकरी से निकाल दिया या मेरा कोई और नुकसान हो गया, अब मैं भगवान को कोस रहा हूँ, भगवान तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, या मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूँ कि मेरे भाग्य में, मेरे मुकद्दर में सही नहीं लिखा, एक दरवाजा था जीवन में जिससे कुछ आ रहा था वो भी बंद कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहीं का नहीं रहा, तो ये होगी नेगेटिव थॉट।
0: तो यही तो हम देखते हैं।
1: उसके बजाय अगर उस वक्त हम ये सोच लें कि कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ, मैंने सुन रखा है कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 खोल देता है, लगता है 10 और खुलने वाले हैं।
0: ओके, तो अपने तरीके को
1: एक नई होप पैदा हो जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं विवेक भाई, बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं,
0: बिल्कुल रेडियो मधुबन पर भी काफी
1: पहले आते सुनते रहे और
0: आपकी बात विवेक के साथ।
1: हाँ जी जी। तो उनके साथ 2-3 साल पहले वो दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली में वो मार्केट में गए किसी शॉप में, तो कार में अपना सामान ब्रीफकेस रखा हुआ था, वो कार में रखा हुआ था और चले गए। जैसे वापस आए तो कार का शीशा टूटा हुआ था, ब्रीफकेस गायब था, उनके सारे पहनने के कपड़े और कीमती चीज़ें गायब हो गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उनको थोड़ा हिम्मत देने के लिए कहा कि ऐसा ऐसा करो, तो वो कहते नहीं नहीं कोई गलत बात नहीं हुई है, अगर एक थोड़ा सा लॉस हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज़ मिलने वाली है। तो वो उल्टा मेरे को हिम्मत देने लग गए।
0: जी
1: हिम्मत मैंने उनको देनी थी पर वो मुझे हिम्मत देने लग गए, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा कि चोरी हो गई तो अब क्या किया जाए। तो हम उस सिचुएशन को इस तरह से भी ले सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ है तो लॉस के बाद जरूर भगवान अब बहुत बड़ा प्रॉफिट करने वाला है, अब मेरी बहुत कहीं से बड़ी चीज़ आने वाली है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आप सोचेंगे हो भी जाता है। आप सोचेंगे कि कहीं से कोई बड़ी चीज आने वाली है तो आ भी जाएगी, अगर आप सोचेंगे जाने वाली है तो चली जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी सोच को वो वाली करें जो हम देखना चाहते हैं, जो हो रहा है वो वाले बात पे चिंतन करने के बजाय हम उस बात पे फोकस करें जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो हम मन को ट्रेनिंग दे दें, समझा दें कि अब ऐसे भी सोचा जा सकता है।
0: राइट।
1: पहले हम सोचते नहीं थे, हमें लगता था यही तरीका है। किसी ने कुछ किया, मान लो किसी ने मारा आपको, आप कहेंगे जी इसने एक मारा, चार आप मारो। दुनिया में यही सिखाया जाता है, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं है कि और भी कोई तरीका होता है
0: जी।
1: लेकिन अगर हम अपने पास पॉजिटिव थॉट्स रखें, सही थॉट्स रखें, तो उस लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। कितना भी बड़ा लॉस हो जाए तो मन में सोच लिया करो कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग, ये घटना मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ लेगी, तो हम भी सोच लें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बिगाड़ा जाएगा।
0: राइट,
1: पॉजिटिव सोचा जा सकता है ना। आपको मैं एक असली कहानी सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था
0: जी,
1: तो जैसे ही उनकी दीक्षा पूरी हुई तो वो गुरुजी के पास, महात्मा बुद्ध बाग के पास गए कि मुझे आपकी शिक्षाओं का प्रचार करना है, एक इलाका मैंने ढूंढ लिया है, वहाँ आज तक आपका कोई शिष्य नहीं गया है, मैं वहाँ जाके आपका प्रचार करूँगा, तो मुझे परमिशन दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप जानते हो कि आज तक वहाँ दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं गया? वो कहता, जी मैं नहीं जानता। अरे भाई, वो बहुत बिहार का एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं उस गांव में, तुम जाओगे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उल्टा फुल्टा बोल देगा, कोई गाली देगा, कोई इंसल्ट करेगा, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं उनका धन्यवाद करूँगा, मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने शब्दों से मेरा अपमान किया, मेरे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया, तो मैं उनका थैंक यू करूंगा। महात्मा बुद्ध ने दोबारा प्रश्न पूछा, अरे भाई उस गांव में ना ऐसे भी कोई होंगे जो
0: हाथ
1: भी उठा सकते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम धर्म की बात करोगे, वो लोग उल्टे दिमाग के हैं, कोई हाथ उठा देगा, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने वही जवाब दिया, मैं कहूंगा उनका थैंक यू करूंगा, कहूँगा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाथ से मारा पर मुझे डंडे से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, अरे भाई तुम बात समझ नहीं रहे, वहाँ के लोगों का दिमाग कब पलट जाए कोई बात का पता नहीं है, कोई ना कोई डंडे से भी मार सकता है। तो शिष्य ने फिर वही जवाब दिया कि मैं कहूँगा जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डंडे से मारा, आपने मुझे तलवार से तो नहीं मारा
0: जी,
1: आपने मुझे जान से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया कि भाई कोई पता नहीं उस गांव के लोगों का, हो सकता है कोई तुम्हें जान से मार दे, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने फिर वही जवाब दोहराया कि मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आपने मुझे खुद ही मोक्ष दे दिया, अगर मैं खुद मरता तो आत्महत्या होती, आपने तो मुझे फ्री में ही मोक्ष दे दिया
0: जी,
1: मुक्ति दे दी
0: जी।
1: तब भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई तुम पास हो, तुम अब कहीं भी जाके धर्म के प्रचार का काम कर सकते हो। तो शिष्य ने देखो आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि इन्होंने इतना नुकसान किया पर इतना बड़ा तो नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली गई
0: जी।
1: तब भी उसने यही कहा कि जान भी चली जाए तब भी क्या हो जाएगा, आत्मा तो अविनाशी है और खुद तो मर नहीं सकते, अगर किसी ने मार ही दिया तो भी मुक्ति तो मिल ही जाएगी मुझे।
0: राइट, तो ये शांत रहने से पॉजिटिव सोच सकते हैं।
1: हाँ, पहले तो शांत रहना है
0: जी।
1: अगर आप डिस्टर्ब हो गए फिर तो नेगेटिव ही थॉट चलेंगे। अगर आपने किसी घटना को देख के, सिचुएशन को देख के जरा भी आपने दर्द की फीलिंग आपके अंदर आई तो उस दर्द की फीलिंग में फिर आप उल्टा सोचेंगे, सही नहीं सोचेंगे।
0: ओके।
1: तो उसी वक्त जब दर्द की फीलिंग आने लगे अपने मन को समझाओ, रोको कि नहीं भाई मुझे दर्द में नहीं रहना है, मैं इस घटना को इस तरह से भी तो ले सकता हूँ
0: जी। ओके।
1: मैं इस सिचुएशन में ऐसे भी तो सोच सकता हूँ। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आम तौर पे आदमी जिनसे उनके विचार नहीं मिलते, जब कुछ टकराव हो जाता है तो लोग दुश्मनी ले लेते हैं, एनिमिटी की फीलिंग, शत्रुता की फीलिंग के साथ चलते हैं और बदला लेने के थॉट्स मन में आते हैं। अब जब हमारे मन में बदला लेने के थॉट्स आते हैं, नफरत के थॉट्स आते हैं, उस वक्त कैसी फीलिंग है? बिल्कुल दुख वाली फीलिंग है, दर्द वाली फीलिंग है। उस वक्त अगर हम चेहरा अपना देखें तो अपना चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा मिरर में,
0: राइट।
1: लेकिन फिर भी हम क्योंकि हमें सिखाया ही ये गया कि कोई आपका करे तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, बदला लेना है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। पर आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा शेर सुना, वो इस चीज को बड़ा अच्छा से डिफाइन करता है, और जिसके मन में भी अगर बदले की भावना आए इस शेर को जरूर याद कर लेना कि मेरे दुश्मन को इस बात का पता ही नहीं तो दुश्मनी मेरे से रखता है। मेरे दुश्मन को इस बात का पता ही नहीं कि दुश्मनी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं।
0: जी,
1: यही सजा है
0: दुश्मनी,
1: और मित्रता रखना
0: जी
1: सजा के उल्टा है
0: जी।
1: गुड फीलिंग वाली बात है, सुखद फीलिंग आपको देगा। और अगर आपने किसी से शत्रुता रखी तो वो तो कर गया जो उसने करना था, और आपने जब तक बदला नहीं लिया तब तक आपको लगेगा, तब तक आपको ना नींद आएगी, ना चैन आएगी, ना सुकून की फीलिंग आएगी, क्योंकि वही बदले का भाव। तो सजा तो आपको मिल रही है,
0: गलती उसने की,
1: सजा आप प्राप्त कर रहे हैं, तो समझदारी नहीं है। तो सजा से बचने का तरीका है उसको भूल जाओ, माफ करो जो उसने किया। क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा हमारा, याद कर लो भी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, कितना बड़ा नुकसान कर देगा। जो हमारे भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है आया हुआ भी भाग जाएगा।
0: राइट,
1: तो फिर काहे की चिंता
0: जी, जो
1: काहे को किसी से शत्रुता रखनी। जो हमारा है वो आना ही आना है, कितना भी कोई ले जाए, जो गया समझो मेरा
0: नहीं
1: था ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो उसका दुख क्या बनाए।
0: सही बात,
1: जो मेरा है वो मेरे पास रहना है, मेरा भाग्य दूसरा नहीं बिगाड़ सकता। देखो कितना बड़ा ज्ञान है, हमने ब्रह्मा कुमारीज में आके सीखा, हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं। हमें दुख की फीलिंग तब आती है, हम रिएक्ट तब करते हैं, क्योंकि उस वक्त लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ज्ञान ये कहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता सिवाय मेरे। आत्मा अपना खुद का मित्र खुद है, अपना शत्रु भी खुद है। मेरे सिवाय मेरा कोई कुछ ना बना सकता है
0: ना
1: बिगाड़ सकता है। मेरे अपने कर्म ही मेरा भाग्य बनाएंगे, मेरे अपने कर्म ही मेरे भाग्य बिगाड़ेंगे, दूसरे के कर्म मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते। मान लो उसने चोरी करके ले गया, हम कहेंगे मेरा भाग्य तो बिगड़ गया, मेरी चीज ले गया, चोरी उसने की, पर उसके पीछे गहराई ये है कि वो वही ले गया जो उसका था, वो मेरा था ही नहीं।
0: राइट,
1: तभी हम मुझे गलत फहमी थी कि मेरे पास है तो मेरा है, वो मेरा था ही नहीं, वो उसका था तो ले गया।
0: तभी हम मन को शांत रख सकते हैं, पॉजिटिव विचार से।
1: तो ऐसे विचार जब तक मन में नहीं आएंगे तब तक हम रिएक्ट करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे
0: जी।
1: तो मन को समझाना आना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम अपने मन को समझाएं कि वो वाले थॉट्स लाओ जो हमें सुखद फीलिंग देते हैं।
0: क्यों? मेडिटेशन के द्वारा पॉजिटिव चिंतन बढ़ती है
1: क्योंकि मेडिटेशन में हम मन को यही तो ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, ऐसे पॉजिटिव विचार लाने हैं, और वो आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है
0: जी।
1: लेकिन परिस्थिति को देख के घबराना नहीं है, आगे मैं उसका बताता हूँ। कई बार हम घबरा जाते हैं
0: जी
1: तो फिर गड़बड़ होती है।
0: ओके, मान लीजिए घर में किसी ने हमारी बात नहीं मानी
1: जी,
0: और हमें गुस्सा आया और हमने तुरंत कह दिया कि आप मेरी बात कभी समझते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कामनेस को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है?
1: सपोज किसी ने हमारी बात नहीं मानी और हम गुस्से में आ गए कि आप तो मुझे समझते ही नहीं, आप मेरी बात सुनते ही नहीं, यही आप कह रहे हैं
0: जी,
1: तो उस वक्त भी मन को समझाना है कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति मेरी बात माने, हर वक्त माने, ये संभव है ही नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: चाहे मेरे बच्चे क्यों नहीं है, और मेरी पत्नी या मेरा पति क्यों नहीं है, कोई भी कितना मेरे क्लोज है, मेरा दोस्त है, ये इस दुनिया में संभव नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मेरी बात माने और हर वक्त माने। कभी मान सकता है, कभी नहीं मान सकता है, और क्योंकि हर एक का सॉफ्टवेयर अलग है, हर एक का सोचने का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, तो क्यों वो मेरी बात मानेगा? अब मेरे से कोई एक्सपेक्ट करे कि आप मेरी हर बात मानो तो मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा जी मेरे को भी सोचने की शक्ति है, मेरे पास भी दिमाग है, मुझे भी सही गलत का पता है,
0: मुझे भी स्पेस चाहिए,
1: मुझे भी स्पेस चाहिए, मुझे भी फ्रीडम चाहिए, तो जो मैं चाहता हूँ दूसरा भी चाहता है, तो दूसरे को अगर नहीं मानता बात उस वक्त भी अपने मन को समझाना है कोई बात नहीं, लेकिन हम समझाते नहीं, हमें लगता है मेरा बेटा है गलती है, उसको डराएंगे कर गलती, भुगतेगा सजा मिलेगी ना, जब गिरेगा तो पता चलेगा
0: जी,
1: ऐसा हो कोसने लग जाते हैं पेरेंट्स, कोसना भी नहीं है, हर एक को गलतियां करेगा, मान लो गलत भी कर रहा है तब भी क्या हो जाएगा, गलतियों से भी तो आदमी सीखता है, जरूरी थोड़ी है हर चीज पढ़ने से सीख लेता है आदमी, या सुनने से या समझाने से सीखता है, कई चीजें हम गलतियां करने के बाद सीखते हैं।
0: राइट राइट जी, तो कई बार सामने वाले गुस्से में ऐसी बात कह देता है लेकिन कि बहुत हर्ट करती है वो बात, तो उसी मोमेंट में पहले शांत रहना चाहिए कि तुरंत अपनी बात क्लियर करनी चाहिए?
1: जब वो कुछ उल्टा कह रहा है सामने वाला, उस वक्त तो पहली चीज तो शांत ही रहना चाहिए।
0: ओके जी,
1: अगर हम क्लियर करने लगे तो वो अभी सुनने के मूड में ही नहीं है, उसे गुस्सा उसके ऊपर हावी है, तो उसे हमारी बात सुनाई भी नहीं देगी, तो पहला स्टेप तो शांत रहो, जब उसका मूड सही हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए वो, तो फिर अपनी बात उन्हें समझाई जा सकती है तुरंत, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो चांसेस ये है कि हम भी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड कम करेंगे, हम भी इरिटेट होके हो सकता हम भी रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट कर जाए, ऐसे चांस ज्यादा है, तो बेहतर तो यही है कि वो जब बोल रहा है वहां से 9-2-11 हो जाओ, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, ज्यादा ध्यान ना देके, ज्यादा उसको सीरियस ना लेके, उसके अगर सीरियस लिया तो आपको लगेगा कि ये होता कौन है मुझे बोलने वाला, इतना सारा सुना गया मुझे, मैं कोई बहरा हूँ, मुझे नहीं सुनाई देता, सबके सामने बोली जा रहा है, ऐसे थॉट्स आते ना मन में, तो इसको तो अभी करेक्ट किया जाए, नहीं उसको उस वक्त करेक्ट नहीं करना है, उस वक्त तो करेक्ट करने के मूड में नहीं है, बाद में जब आप भी सही हो और वो भी सही हो
0: तभी
1: बात करें तो ज्यादा अच्छा है
0: जी। तो क्या आप कोई 10-30 सेकेंड्स के टेक्निक्स बता सकते हैं, जब सामने वाला मतलब गुस्सा आने पर हम क्या अपने मन को थॉट्स दे उस टाइम, क्या इस्तेमाल करें ऐसे टेक्निक्स?
1: जब सामने वाले की गलती से हमें गुस्सा आ रहा है उस वक्त हम तरस करें, हम सोचें ये गलती कर रहा है, बेचारा है, इसे समझ नहीं है, तो उसको छोटा समझ के उसके ऊपर मर्सी दिखाएं, रहम दिखाएं, मर्सी इज द बेस्ट एंटीडोट टू एंगर, उसे सोचें कि इसे समझ नहीं है कोई बात नहीं, इग्नोर करें, पहला स्टेप तो ये है
0: इग्नोर करें
1: और उसके ऊपर दया खाएं कि ये बेचारा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा, ये कितना दर्द में है, ये अगर हम मन में आएगा कि ये गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आत्मा बहुत दर्द में है, परेशानी में है, ये मेरे साथ तो अभी बोल रहा है लेकिन ये अंदर ही अंदर इसके जो गुस्सा है 24 घंटे इसे परेशान कर रहा है, तो ये आदमी कमज़ोर हो गया है, गुस्से का जवाब इसके साथ गुस्से से दिया तो इसे और दर्द होगा और परेशान हुए व्यक्ति होगा, तो वो तरीका नहीं है उसको हील करने का, उसका तरीका ये है ये गुस्सा करे, मैं उससे प्यार से बात करूं या प्यार से मुस्कुराऊं या बाद में उससे प्यार से बात करूं, ताकि उसका जो घाव है, जो दर्द है, जो चोट उसको लगी है कहीं ना कहीं से, वो ठीक हो जाए, वो कमज़ोर आत्मा है, तो कमज़ोर आत्मा को मुझे पावरफुल बनाना है, और पावरफुल बनाने का तरीका है कि मैं उसको पावर दूं, और वो पावर है प्रेम की
0: जी,
1: वो पावर है उसको माफ़ करने की, उससे उसकी हीलिंग होगी तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी के जख्म हो रखे हों शरीर में, तो जख्म हो जाते हैं ना किसी को, तो बेचारा ज़्यादा चलाता है, आपने देखा हो कभी स्ट्रीट डॉग हो तो उसको कहीं से कुछ हो जाए तो बेचारा और दर्द में चलाता है, ज़्यादा भौंकता है, अब कोई नमक डाला है वहाँ तो बेचारा और चिल्लाएगा, तो हम यही करते हैं, वो गुस्से में चिल्ला रहा है हम भी गुस्सा करते हैं, तो गुस्से का जवाब गुस्से से देना मतलब घाव के ऊपर नमक छिड़कना, तो सोचो कि ये वो है, हम क्या कहें, अनकंट्रोल में है बेचारा, इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसे समझ नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, ये बीमार है
0: जी।
1: जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई पागल व्यक्ति हो तो हम रिएक्ट थोड़ी करते
0: जी,
1: हम खुद किनारे हो जाते हैं, भैया पीछा छुड़ाओ ये तो पागल है।
0: सही बात जी।
1: तो आप सोचो कि वो थोड़ी देर के लिए, एंगर इज टेम्परेरी मैडनेस, वो थोड़ी देर के लिए पागल हुआ होता है। तो पागल से टकराओगे तो फिर आपको भी पागल बनना पड़ेगा। वो आपको खुद तो डिस्टर्ब है, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा।
0: राइट।
1: तो उसका तरीका है कि टकराना नहीं है, उससे किनारा कर लो। और पागल हाथी को ही आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो आप टकरा खड़े हो गए तो फिर तोड़ा के फेंकेगा, या फिर आप ही हाथी की तरह ताकतवर बन जाओ, या फिर दोनों भिड़ेंगे तब भी दोनों का नुकसान होगा ही। कई बार हाथी हाथी से भी टकरा जाता है, बैल बैल से लड़ते देखे होंगे आपने
0: जी,
1: तो फिर भी दोनों का नुकसान ही है। तो टकरावने से कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर रहम करो कि ये बेचारा है, तर्स करो। जैसे बड़े लोग होते हैं ना वो छोटों पे तर्स करते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के क्रॉस पे चढ़ाया गया, उन्होंने उनको गुस्सा नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा ओ गॉड फॉरगिव दिस पीपल दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि इनको पता ही नहीं है ये बेचारे हैं, इनको माफ करो
0: जी।
1: तो आप भी उनको बेचारा समझ के आ जाओ तो अच्छा। फिर दूसरा क्या है कि वो गुस्सा कर रहा है, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ अपने आप से पूछो कि मैं उसकी नकल करूँ, वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसकी बैड क्वालिटी के प्रभाव में आ गया और मेरे अंदर जो गुड क्वालिटी थी प्यार वाली वो मैंने छोड़ दी।
0: राइट।
1: उसके इम्प्रेशन में आके होना ये चाहिए कि मेरी जो अंदर प्रेम भरा है वो इतना ताकतवर हो कि वो गुस्सा करे और मेरा प्रेम पावरफुल हो, मेरे प्रेम से प्रभावित होके वो अपना गुस्सा करना छोड़ दे और वो भी प्रेम से बात कर ले। तो क्या इतनी ताकत मेरे प्रेम में है? अगर नहीं है तो मतलब मैं भी खाली हूँ, मुझे भी प्रेम भरने की जरूरत है अपने अंदर, मुझे भी अपनी एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। तो मुझे अपने को इतना पावरफुल बनाना है कि मेरी अच्छाई को देख के वो अपनी गुस्से की बुराई छोड़ दे, ना कि मुझे इतना कमजोर बनाना है कि उसकी गुस्से की बुराई को देख के मैं भी उसकी बुराई को अपने अंदर ले आऊं, उसको कॉपी कर लूं। मुझे लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना। वो गुस्सा कर रहा है उसको देख के मैं गुस्सा कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं फॉलोअर हूं। वो गुस्सा कर रहा है मैं प्रेम कर रहा हूं और मेरे प्रेम को देख के वो भी प्रेम करने लग गए तो वो मेरा फॉलोअर बनेगा, मैं लीडर बनूंगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन इसके लिए शक्ति चाहिए।
0: हाँ,
1: अगर शक्ति नहीं होगी हम बाहर बाहर से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।
0: शक्ति के लिए मेडिटेशन चाहिए।
1: नहीं तो एक मुझे कहानी याद आती है, तो अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: जी बिल्कुल।
1: अभी महीने दो महीने बाद रामलीला आएगी, कल मैंने योग शिविर में भी ये बताई थी, बड़ी हंसने वाली बात है। रामलीला में क्या होता है कि लोग सब रामलीला देखने जाते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में देखी होगी। तो उस रात को सीता की खोज का प्रसंग आना था, हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे थे। अब दिन में जो हनुमान बना था व्यक्ति वो बीमार हो गया
0: जी।
1: उसकी तबीयत खराब हो गई, तो जो रामलीला के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें चिंता हुई कि आज रात को अब हनुमान किसको बनाया जाए। तो वो चले, उन्होंने कहा ढूंढना तो पड़ेगा कोई ना कोई, तो मार्केट की तरफ चल पड़े माउंट आबू की मार्केट में कि किसी को ढूंढा जाए, किसको रोल दिया जाए
0: जी,
1: जो उसके हनुमान की तरह दिखे भी। तो देखा कि एक हलवाई समोसे तल रहा है, मोटा ताजा। उनको लगा ये व्यक्ति कर सकता है, देखने में तो लग रहा है हनुमान की तरह। तो उससे पूछा आपका नाम क्या है, कहता जी कल्लू हलवाई
0: जी।
1: तो कल्लू हलवाई जी से रिक्वेस्ट की गई कि आज आप हनुमान बनेंगे। जैसे ही हनुमान का नाम सुना उसने, वो घबरा गया, डर गया, कहता सॉरी सॉरी सॉरी भाई, मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया, मेरी तो टांगे कांपती है, मैं कभी हनुमान नहीं बना
0: जी,
1: तो मेरे से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर्स ने उसको हाथ पैर पकड़े, बार बार कहा कि भाई इमरजेंसी है, कोई मिल नहीं रहा, आप बन जाओ, कोई ज्यादा आपने नहीं करना, आपने बस एक दो डायलॉग आप ले बताएंगे आपको, वो आप रट लो, बस आपने वो बताने हैं वहाँ। कहता क्या बोलना है, कहते आप रावण के सामने जाएंगे, रावण पूछेगा तुम कौन, आपने बस एक लाइन बोलनी है कि मैं पवन पुत्र हनुमान, इतना तो बोल सकते हो। कहता हाँ जी इतना तो बोल सकता हूँ। कहता फिर दूसरा रावण आपसे पूछेगा क्यों आए हो यहाँ रावण के दरबार में, तो आपने कहना जी मैं सीता माता की खोज में आया हूँ। कहता पर इतना तो बोल सकते हो। कहता जी हाँ इतना बोल दूंगा
0: जी।
1: अब वो चले गए, लेकिन उसको चिंता होने लगी कि क्या बोलना है। उसने समोसे रखे दूसरी तरफ, तलने बंद किए, शटर किया बंद और डायलॉग रटने शुरू किए कि क्योंकि आज भाई उसकी परीक्षा होनी थी, स्टेज फियर सबको होता है। तो रटता गया कि मैं पवन सुत हनुमान, मैं पवन पुत्र हनुमान, मैं सीता माता की खोज में आया हूँ, सीता माता की खोज में आया हूँ, पूरे रट लिए उसने। अब जैसे ही रामलीला स्टार्ट हुई रात को
0: जी,
1: तो उसको चोगा पहना दिया गया हनुमान का और गदा भी दे दी गई। तो वो एकदम हनुमान बन के स्टेज पे जैसे ही गया तो देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी रावण बना हुआ है
0: जी,
1: और वो रावण बड़े ऊंचे सिंहासन पे है, उससे भी 4 फुट ऊंचा, हनुमान से भी ऊंचा और भयंकर सी शक्ल, बड़ी बड़ी मूंछें। और जोर से रावण चिल्लाया, मैं लंकापति रावण, तुम कौन? तो कल्लू हलवाई भूल गया मैं कौन हूँ
0: जी,
1: वो घबरा गया, कहता जी मैं कल्लू हलवाई। तो रावण को और गुस्सा आया, क्यों आए हो यहाँ पर? कहता जी मैं माफ करना, मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। वो भूल गया मैं हनुमान हूँ। जैसे ही जीवन में उसके परिस्थिति आई, समस्या आई, चुनौती आई, वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया, वो भूल गया कि मैं अंदर से क्या हूँ, आज हनुमान बन के आया हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। ऐसे तो हम कहते हैं मैंने गुस्सा नहीं करूँगा, मैं जी पॉजिटिव बोलूँगा, अच्छा करूँगा, सब ठीक है, लेकिन जब समस्या आती है तो हम अपनी असली चीज़ को भूल जाते हैं और जो हमारी कमजोरी है वो याद आ जाती है और उसी के दोबारा से शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि अगर जीवन में, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई समस्या आए और वो आपसे पूछे तुम कौन
0: जी,
1: तो घबराना नहीं, डरना नहीं, सीना तान के खड़े हो जाना और कहना मैं अपने जीवन का असली हीरो हूँ, मैं हर समस्या का सामना कर सकता हूँ। तब अपने अंदर के हनुमान को जगा देना। तो हम सब हनुमान की तरह ताकतवर हैं, पर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं
0: जी, और सही टाइम पे भूल जाते हैं।
1: अब बस वो नहीं भूलना, उसका तरीका यही है कि मन अपना पावरफुल बनाना है, अंदर तक उस चीज का अभ्यास करना है कि मैं गुस्से को मैंने छोड़ दिया, अब गुस्से के मैंने शिकार नहीं होना है। बार बार ये अभ्यास करें, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, तो वो अंदर तक तब जाएगी जब बात, तो फिर मुझे दूसरों के दुख दर्द दूर करने हैं, दूसरों के दर्द दुख को देख के खुद दर्द में नहीं आना है, दूसरों के गुस्से को देख के खुद गुस्सा नहीं करना है, मुझे उसे छोड़ना है, उसका भी छुड़ाना है। इतनी ताकत अपने अंदर भरनी है कि मैं बुरे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर सकूं, और बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता,
0: बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता,
1: अच्छाई से, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल
0: प्यार से ही
1: मिटाया जा सकता है
0: जी। तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि निरंतर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, शक्ति अपने अंदर होगा तब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि नॉलेज तो हम बहुत सारे आजकल यूट्यूब पॉडकास्ट और इसके माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाते हैं।
1: वही है कि नॉलेज सही टाइम पे याद ही नहीं आती।
0: तो क्यों नहीं याद आती है?
1: क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते, बार बार याद करना पड़ेगा।
0: इसीलिए हनुमान कैरेक्टर जो है वो कल्लू हलवाई,
1: बार बार उस करेक्टर को, नहीं तो हम जो कल्लू हलवाई वाली जो करेक्टर है वो याद आएगा, जो हमारी कमजोरियां हैं, जैसे भी हम बुराइयों के अधीन हैं वो वाली आएंगी। अच्छाइयों को इतनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार बार नॉलेज को रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे दर्द में नहीं आना है, मुझे दूसरों का दर्द दूर करना है, मुझे सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। हर दिन इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो राइट टाइम पर राइट बात याद आएगी। अब हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब हैं, पर जब दुश्मन हमला कर रहा है तो मिल ही नहीं रहे कौन सा निकालें, ना तलवार मिल रही है, ना धनुष्मान मिल रहा है, और हम युद्ध हार जाएंगे
0: जी।
1: तो ये ज्ञान के हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आई, अब उसका तोड़ क्या है, सोच का तोड़ सोच है, बुराई बुरी सोच का तोड़ अच्छी सोच है। जब बुरी सोच एक सोच है तो उसकी विपरीत भी तो कुछ होगी, तो मुझे वो ढूंढ के ले आनी है, लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे अरे तुम कमजोर हो, तुमने हार मान ली, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और तुम एक भी लाइन नहीं बोले, उनको कहें मैं बोलता ही नहीं, उनकी बातों में नहीं आना, कहना जी मैं बोलता नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैंने गुस्सा छोड़ रखा।
0: ओके जी, तो हमें जैसे हम कोई कोई चीज़ों से परहेज करते हैं खाने पीने में, तो हम कहते हैं कि हम नहीं खाते हैं, तो हम नहीं खाते हैं, तो वैसे ही
1: कहना जी मैं करता ही नहीं,
0: करता ही
1: मैंने गुस्से को छोड़ रखा, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, ये भी अपना ही भाई है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होगा। एक बार हमारे दादी जी थे यहाँ, मेरे ख्याल मनोहर इंदिरा दादी जी, उनसे कोई कोई व्यक्ति उनके पास आया और बड़ा कुछ उनको बोल के चला गया। तो तीसरे ने बाद में पूछा कि दादी आपके लिए इतना कुछ बोल गया तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? दादी कहती मैंने सुना ही नहीं क्या बोल रहा था,
0: फिल्टर लगाए हुए थे।
1: मुझे लगा कि ये व्यक्ति डिस्टर्ब है, इतना पता चला कि दुखी है। तो मैं मन ही मन उसको शक्ति दे रही थी कि भगवान इसके दुख दूर हो जाए और ये शांत हो जाए। तो हम भी यही सोचे कि कोई जब ऐसा करता है तो सोचो ये अपसेट हो रखा है, डिस्टर्ब हो रखा है, ये बीमार हो रखा है, मुझे इसे ठीक करना है, भगवान से भी दुआ करो कि इसको सद्बुद्धि मिले, ये सही हो जाए।
0: तो इस प्रकार के चिंतन से हम अपने जो शांतता है उसे डेवलप कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि हमारी भाई है ना, और हमने कई बार सुना है कि कितने भी नेगेटिविटी हो लेकिन हर एक के अंदर उसकी अच्छाइयाँ, यूनिकनेस को देखने की कोशिश करो, लेकिन जो व्यक्ति लगातार आपको हर दिन परेशान कर रहा हो तो उसकी अच्छाई देखना प्रैक्टिकली कैसे संभव है?
1: प्रैक्टिकली है,
0: हर दिन मान लीजिए
1: आपकी बताई ना, वो हर दिन उसको बड़े से बड़े नुकसान करने वाले भी आ गए, यहाँ तक कि मारने के लिए भी बात तैयार हो गई, फिर भी उसने कहा कि उसको भी पॉजिटिव लिया। तो जो हमें बार बार हमारे पीछे पड़ गया है, हर बार ही कर रहा है, सोचो कर्मों का हिसाब किताब है, मैंने दुख दिया होगा वही दुख लौट के आ रहा है।
0: तो उस टाइम दुख के फीलिंग भी ना हो और आप शांत भी रहो, मान लो घर में आपकी सास है, ननंद है, या फिर आपके पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और आपको उनके साथ ही रहना है, तो कैसे डील करेंगे
1: वो परेशान आपको तब करेंगे जब आप परेशान होंगे। वो परेशान करें और आप परेशान नहीं होए तो वो हीरो परेशान करना छोड़ देंगे। उनका एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसा काम करें जिससे आपको दुख मिले, पर आपने मन को समझा दिया कि ये कुछ भी कर दे मैंने दुखी होना ही नहीं है, मैंने नॉर्मल रहना है, तो वो फिर उस हथियार को यूज करना बंद करेगा, कहेगा भैया इतनी तंग किया मैंने इनको, फिर भी तंग नहीं हो रहे।
0: जी बिल्कुल, तो इस प्रकार
1: उसका उद्देश्य तो यही है ना कि मुझे दर्द देना चाहता है, पर मैं अगर मैंने कसम खा ली है कि मैंने दर्द में आना ही नहीं है तो वो कब तक दर्द देगा?
0: जी ओके,
1: वो दर्द देने वाला नहीं रुक रहा तो मैं दर्द लेना मैं भी ना रुकूं, मुझे भी बैड फीलिंग लेने से
0: तो अच्छे अच्छे चिंतन के स्टॉक जमा करना पड़ेगा।
1: तभी हम अच्छे थॉट्स सबके आपके आपके दोस्त आपके थॉट्स ही है वही आपको साथ निभाएंगे, बाकी लोग थोड़ी देर के लिए आएंगे जाएंगे, कोई साथ देंगे कोई साथ नहीं देंगे, कोई रास्ता रोकेंगे कोई रास्ते में मदद करेंगे, पर सबसे ज्यादा जो आपकी मदद करेंगे आपके विचार हैं,
0: अच्छे विचार
1: हैं, आपकी सोच है, चंगी सोच मन चंगा कटौती पे गंगा। मन को ही तो सही करना है, मन सही हो गया मन शुद्ध हो गया दुनिया कुछ भी करे, लेकिन हम ठीक हैं तो हमें देख के वो भी तो सही हो जाएंगे, कब तक करेंगे? आखिर हार उनको माननी पड़ेगी, हमें नहीं हार माननी पड़ेगी।
0: राइट,
1: एक प्रेयर है बड़ी अच्छी, मैं याद करता हूँ कभी कभी, बचपन में हम सब गाते थे, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। कि हम नेकी पे चलते जाएं, बुराई से बचते रहें, तब हंसते हुए इस दुनिया से जाएंगे।
0: राइट,
1: और इसका ही अगला अंतरा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब जुल्मों का हो सामना, आप भी कह रहे हैं ना कि वो बार बार तंग कर रहा है तो जुल्म कर रहा है, बेइंसाफी कर रहा है, जो भी कर रहा है, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई भरें, ना ही बदले की हो कामना, वो बुराई करता जाए वो बुराई करने से ना थके और हम भलाई भरे, मतलब हम भलाई करने से ना थके
0: जी,
1: और फिर भी वो बुराई करे पर हमारे मन में बदले की भावना ना पैदा हो, इतनी शक्ति हमें देना
0: दाता
1: दाता, तो प्रेयर में गर कह रहा है। तो हम सब गाते आए इस प्रेयर को
0: जी,
1: कितनी बार ये भजन हमने सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग इतना गहरा है कि हम बदले का भाव फिर भी ना लाएं, हम अच्छाई के रास्ते पे चलते रहें, सामने वाला कितना भी बुरा करेगा आखिर झुकना उसे पड़ेगा, हमें नहीं झुकना पड़ेगा क्योंकि हम तो हैं ही अच्छे रास्ते पे, उसे ही झुकना पड़ेगा और उसे बुराई छोड़नी पड़ेगी,
0: छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए निरंतर शक्ति की आवश्यकता है परमात्मा से।
1: हाँ, बस हम परमात्मा से जुड़े रहें, वो हमारी हर मुसीबत हर कठिनाई में मदद करेगा और हमें ताकत देगा कि हम अच्छाई पे चलते रहें,
0: चलते रहें जी। और हम दूसरों को जज भी ना करें।
1: हाँ, दूसरों हम कई बार जज करना,
0: छोटी छोटी बातों पे जज कर लेते हैं, तभी अगर जज नहीं करेंगे तो भी हम शांत रहेंगे,
1: शांत रहेंगे। हाँ, ये भी एक कारण है, हम हर किसी को चलते चलते सबको जज कर रहे हैं, सबके मुकद्दर का फैसला कर रहे हैं, ये ठीक कर रहा है ये गलत कर रहा है, इसे ये नहीं ये करना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है, भाई उसकी अपनी सोच है हमारी अपनी सोच है, जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है सबके लिए वही सही हो। हर एक की सही और गलत की डेफिनेशन भी तो अलग अलग है, या एक ही है, एक व्यक्ति 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो दूसरा कहता है बहुत स्लो चला रहे हो, दूसरा 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता है वो कहता है बड़ी फास्ट चला रहे हो, फिर राइट स्पीड क्या है
0: जी,
1: इसको कहेगा जी 100, किसने डिसाइड किया कि 100 से राइट स्पीड है, उसी ने किया ना
0: जी,
1: क्योंकि उसके हिसाब से 100 सही है, 80 वाला स्लो है, 120 वाला ज्यादा है। और कोई मेरी तरह हो वो कहेगा जी 60 की स्पीड स्लो है और 100 की ज्यादा है, 80 की ठीक है
0: जी,
1: तो मेरे हिसाब से 80 राइट स्पीड है, दूसरे के हिसाब से 100 राइट स्पीड है, तो सबके अपने अपने हिसाब है
0: जी,
1: कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि वही राइट है वही रॉन्ग है, तो हम कोई हेडमास्टर तो लगे नहीं कि चलते चलते सबको करेक्टर सर्टिफिकेट देते चले कौन सही है कौन गलत है,
0: उससे हमारे मन ही डिस्टर्ब होता है।
1: हम डिस्टर्ब होंगे, हम अपने को ही देख लें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, बजाय उसके कि दूसरों को देखते रहें, सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों के नुक्स निकालने में
0: जी,
1: सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों के नुक्स निकालने में, इतनी शिद्दत से अगर खुद को घड़ते तो फरिश्ते बन जाते।
0: क्या बात है, राइट। तो ज़रूर हमारे जो श्रोता मित्र सुन रहे हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ अपने को गढ़ने की कोशिश हम कर ही रहे निरंतर, आज से थोड़ा बेहतर तरीके से करेंगे। तो आपको लगता है जो एक्सपेक्टेशंस भी हम कर लेते हैं ना एक दूसरे से, तो वो भी कई बार मन की शांतता को हानि पहुंचाती है?
1: हाँ, जब हम दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो दुख देती देती हैं, और उसमें भी कईयों की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ज़्यादा परेशानियाँ पैदा
0: मतलब
1: करेगी।
0: हमारा अगर बेटा है तो उसको ये करना चाहिए, पति है पत्नी है तो हमारे लिए ये करना चाहिए।
1: हर जगह ही हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होना कोई गलत भी नहीं है, पर ज़्यादा जब एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं तो डिस्टर्बेंस तो होगी ही होगी। तो उन एक्सपेक्टेशंस को दूर करने का तरीका है कि हम एक्सेप्ट करना सीखें,
0: स्वीकार कर लें,
1: चीज़ें ऐसी हैं ऐसी ही रहेंगी, सब चीज़ें वैसी नहीं होंगी जो मैं चाह रहा हूँ, ये दुनिया माई वे इज द हाईवे, ये इस कंसेप्ट पे नहीं चलती कि जहाँ से मैं चल रहा हूँ वही हाईवे बन जाएगा, हर एक ने अपने अपने हाईवे बना रखे हैं, वो अपने हाईवे से चलेंगे, मेरे वाले से क्यों चलेंगे, माई वे इज द बेस्ट वे नहीं, दूसरे का भी बेस्ट हो सकता है, दूसरे को स्वीकार करो और उनको फ्रीडम दो कुछ नया करने की, अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो कुछ न्यूनेस होएगी नहीं दुनिया में, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करके एक्सेप्टेंस को लाना है, और तो जी फिर हलचल मन में नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हमारा मन अपसेट नहीं होगा, जिसका माइंड सेट है उसकी लाइफ सेट है, और लाइफ सेट करने का तरीका है अपने एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करो, इच्छाओं को कम करो, इच्छाएं कभी भी आपको सुख नहीं देंगी,
0: ओके,
1: क्योंकि इच्छाएं हैं ही ऐसी, कभी हम खिलौने वाली कार से भी खुश हो जाते थे, आज असली वाली कार से भी खुश नहीं हो रहे, कभी हम दो जोड़ी कपड़े पहन के खुश थे, आज अलमारी भरी पड़ी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं।
0: राइट,
1: पहले हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते थे, आज सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है और चाहिए और चाहिए। तो समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कम है, हमारे पास कम मिला है जीवन में, समस्या ये है कि जो मिला है उसको एंजॉय करना हम छोड़ देते हैं।
0: छोटी छोटी चीजों पे खुशियां मनाना
1: छोटी चीजों से खुशियां छोड़ देते हैं, बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। इसलिए खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला है उसका कम नहीं
0: जी।
1: जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है।
0: क्या बात है जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हम एक दूसरे को सुनते नहीं है शायद, तो इसलिए रिलेशनशिप्स में वो कामनेस और अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं?
1: अच्छा, हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पाते।
0: आजकल कोई सुनने को रेडी नहीं होता, जवाब देने के लिए रेडी सब होता है, तो इसीलिए शायद हम शांत चित होकर के उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो रही है।
1: ये बात तो सही है, लिसनिंग भी एक कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, इसके ऊपर भी लेक्चर्स दिए जाते हैं कि किसी को अगर सुन लिया जाए आधी समस्या उसकी हल हो जाती है। अगर डॉक्टर पेशेंट की बात ध्यान से सुन ले तो आधी बीमारी उसकी दूर हो जाती है। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, इतने डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर होता है, पेशेंट बहुत होते हैं। वो अभी पेशेंट बता ही रहा होता है कि जी मुझे ये है, उससे पहले वो 10 दवाइयाँ लिख के दे देता है।
0: राइट,
1: जाओ भाई, हो गया तुम्हारा काम, सुनने का टाइम ही नहीं। वही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, दवाई वही लिखेगा डॉक्टर, वो आपको बैठाएगा, हाँ भाई क्या हुआ, पूरी डिटेल लेगा आपसे, आपको लगेगा तसल्ली भी मेरे पूरी बीमारी सुन ली गई है। आप फटाफट उसको पैसे भी दे देंगे क्योंकि प्राइवेट है, तो सुनने से आपको लगेगा कि ठीक हो गया मैं। तो सुनना

0: है तो उसकी बात सुन ली जाए, और सुनने के बाद जब वो सुनाना बंद कर दे तो फिर उससे अगली बात की जाए
1: की जाए जी।
0: सुनना बहुत जरूरी है,
1: सुनना बहुत जरूरी है। कामनेस पर सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, कोई भी मैसेज हमें बुरा लगे तो रिप्लाई करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे शांत रहना चाहिए?
0: सोशल मीडिया में क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, हम उसमें रिएक्ट करें ही ना, हमारा काम ही नहीं है रिएक्ट करना। पहले तो फालतू की चीज़ें पढ़ें ही ना, फिर भी अगर आपके आ जाती हैं तो इन्हें इग्नोर करें। ये तो ज़्यादा कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि किसी ने कुछ लिखा और हम उसको रिस्पॉन्ड करने लग गए। इसका मतलब तो ये है कि वो छेड़ रहा है, हमें तंग कर रहा है और हम तंग होके हम जवाब देने लग गए। उसे इग्नोर करें, वो जो करता है करने दो उसको, उसकी फ्रीडम है। हम उसमें ज़्यादा ना उलझें, हम रील के बजाय रियल लाइफ में रहें
1: जी,
0: वो ज़्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल, तो रियल लाइफ में रहे रील के बजाय वो बेहतर है, हमारे शांतता के लिए भी और सोशल मीडिया पे शांतता को बरकरार रखने के लिए।
0: हर ओपिनियन पे, हर मैटर पे अपनी ओपिनियन देना जरूरी नहीं,
1: जरूरी नहीं होती।
0: कोई हम उस फील्ड के चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों, जब आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है तो आप क्यों अपनी ओपिनियन दे रहे हैं,
1: क्यों कमेंट दे रहे हैं जी।
0: लोगों को लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते हैं तो एक चिल्लाएगा फिर दूसरा चिल्लाएगा फिर तीसरा चिल्लाएगा। गली में आप गुजरते हैं, हाथी गुजरता है, एक कुत्ता भौंकता है फिर दूसरा भौंकता है फिर तीसरा भौंकता है। अब हाथी उनका जवाब देने लग जाए तो हाथी किस चीज़ का
1: राइट।
0: इसलिए कहते हैं हाथी चले मस्त होके बाजार में और कुत्ते चाहे कितने भी भौंकते रहें। हम चलो उनको कुत्ते भी ना कहें, किसी को कहना ही नहीं कुछ, उनका कहने दो जो कर रहा है, उनका अपना रोल है, मुझे हर जगह रिएक्ट नहीं करना है। अब दुनिया इतनी बड़ी है, किसकी जुबान पकड़ोगे आप, किसको रोकोगे?
1: राइट।
0: आपने रिएक्ट कर भी दिया तो आपका दिमाग ख़राब होगा, वो उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसमें ना उलझा के, ज़्यादा उस चीज़ों में ना जाके अपने काम से काम रखो, वो ज़्यादा बेहतर है,
1: तो ही कामनेस को बरकरार रख।
0: हालांकि वहाँ जो उलझाते भी हैं वो लास्ट में उनको भी यही करना पड़ता है।
1: राइट। तो एक क्वेश्चन ये है कि कामनेस का मतलब हर बात सह लेना है, या फिर कोई अगर बार बार गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें थोड़ा सा शांत रहते हुए अपने आप को स्पेस देना है, बाउंड्रीज मेंटेन करना है, थोड़ा किनारा भी कर लेना है?
0: हमें किनारा भी कर सकते हैं, बाउंड्रीज भी मेंटेन कर सकते हैं। मेन बात है कि हम मन से डिस्टर्ब ना हों, हम शब्दों से दुश्मनी ना करें, शब्दों से कुवचन ना बोलें, पीड़ा वाले वचन ना बोलें दूसरे के बिहेवियर को देख के। हाँ, अगर अवॉइड करना भी पड़ जाता है तो अवॉइड भी किया जा सकता है। फिर भी उनके मन में यदि कि अवॉइड कर दिया, बाहर से कह दिया मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और अंदर बात उसी की हो रही है, मन में वही सोचा जा रहा है, और होता ऐसा ही है। इसको हम कह देते ना कि मैंने इसको, इनसे मैंने कटी कर लिया, अब इनसे कोई बात नहीं होगी, मन ही मन सबसे ज़्यादा उसी व्यक्ति से बात होती है। जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं वो ब्लॉक बाहर से तो हो जाता है पर मन में वही चलता है। तो बाहर से कुछ होने वाला नहीं है, मन ही मन, मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। बस मेन ध्यान ये रहना है कि कैसे भी करके इग्नोर करो, शांत रहो, जो भी करो, पर मैंने मन में उसके लिए ना नेगेटिविटी लानी है, ना मन में उसके लिए, मन में उसको ज़्यादा स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब उसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं उसको स्पेस दे रहा हूँ, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट ना बनाओ, अटेंशन से हटा दो, इतना इम्पोर्टेंट ना बनाओ कि वो आपके मन पे ही हावी हो जाए।
1: राइट।
0: अगर मन पे हावी नहीं होगा तो फिर आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा।
1: बिल्कुल। तो शांत रहने का मतलब ये नहीं है केवल कि सह जाओ सब कुछ, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप किनारा कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन।
0: सहना है पर खुशी से सहना है,
1: खुशी से सहन
0: करना अच्छी चीज है, पर मजबूरी से नहीं कि अब क्या करें, कोई चारा ही नहीं है, चलो चुप रहो, कहीं नुकसान ही ना कर दे मेरा, तो वो हो गया मजबूरी से। और एक है खुशी से, समझ से सहन करना कि इसमें सहन करना ही बुद्धिमता है।
1: जी ओके, क्योंकि उस टाइम अगर हम बोलेंगे तो कुछ का कुछ और हो जाएगा,
0: और बात बिगड़ेगी,
1: बात बिगड़ेगी।
0: जो अभी एक बात है वो 10 बातों में फैल जाएगी।
1: राइट जी। तो अभी वक्त हो गया यहाँ से अलविदा कहने का, तो लास्ट में इस कार्यक्रम में शांतता को लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि

0: अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शांत रखो। जितना हम शांति की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, ये दुनिया शांतमय बन जाएगी, शांति की दुनिया बन जाएगी। और चारों तरफ अभी जो नेगेटिव बिहेवियर करते भी हैं वो कलयुग में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे ये दुनिया सतयुगी दुनिया बनेगी। हमारा सतयुग आएगा, हमारे मन में सतयुग आएगा, हमारे घर परिवार में सतयुग आएगा और हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। शांत रहने का ये सबसे बड़ा फायदा हमें होगा।
1: बिल्कुल, तो इसी नोट के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे, क्योंकि शांत रहने से हमारे मन में पहले सतयुग आएगा, फिर बाद में घर और दुनिया में है। तो मन में सतयुग लाने के लिए शांतता को बरकरार रखना पड़ेगा। कभी कभी बीच बीच में छोटा सा पॉज लेने की भी जरूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं,
0: उसको थोड़ा ब्रेक लगाओ,
1: ब्रेक लगा
0: और उसकी जगह सोचो कि इसकी जगह क्या मैं इससे बेहतर वो सोच सकता हूँ जो मुझे खुशी देगा,
1: खुशी देगा,
0: जो मेरे इस दर्द की फीलिंग से मुझे दूर करेगा।
1: जी बिल्कुल। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। प्रोफेसर ओंकार चंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति। उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे लिसनर्स को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे।
0: थैंक यू जी। वेलकम
1: जी। नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये जो प्रोग्राम है जिसका इंतजार आप पूरे सातों दिन करते हैं, तो यकीनन जिस तरह आपको इंतजार रहता है वैसे ही हमें भी इंतजार रहता है। लेकिन इंतजार के साथ साथ हमारा एक और काम रहता है, वो ये कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, ऐसी कहानियां जो समाज को प्रेरित कर सकें, कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, इस तरह की कहानियां आप सबके सामने हम लेकर के आए। हमारा भी पूरा सप्ताह बस इसी जद्दोजहद में निकल जाता है। तो चलिए आज देखते हैं आज की कहानी, यकीनन आपको प्रभावित जरूर करेगी। और आज हम चल रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर से हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, श्रीमान गोकुल प्रसाद पारिक सर और उनकी श्रीमती जी निर्मला पारिक मैम। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पारिक सर जो है वो राजस्थान के पहले ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो 10वीं कक्षा में वरीयता सूची में जिन्होंने अपना स्थान बनाया था, और उसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी, यानी जिसको RAS के नाम से राजस्थान में जाना जाता है, उसमें भी चयनित होने वाले वो पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति रहे हैं। और अभी कुछ ही सालों पहले वे सीनियर RAS ऑफिसर के पद से रिटायर भी हो चुके हैं। तो चलिए इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज उनकी कहानी में क्या संघर्ष रहा या उनकी कहानी किस तरह से आगे बढ़ी, खासकर उनको ये अपने हमराही की, ये जानना समझना बहुत दिलचस्प होगा। तो पारिक सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को।
0: जी सर, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप, हमने तो जो कुछ बता सकते थे वो अपने तरीके से बताया, लेकिन आप स्वयं अपने बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताएं, अपने जीवन परिचय के बारे में, ये दृष्टिबाधित आप किस तरह से हुए, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड प्लीज सर।
1: ऐसा कुछ बहुत कुछ तो बताने जैसा है नहीं, लेकिन ये है कि मैं बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, और लगभग 1.5 साल की एज में स्मॉल पॉक्स, जो माता की जिसको कहते थे चेतक, उससे मेरी दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो खराब हो गई, खत्म हो गई थी। लेकिन 1.5 साल की एज में उस जमाने में 1915 में जैसे आईसाइट चली जाती है, तो ये समझा जाता है कि भाई, समझा जाता था उस समय क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो यूँ समझा जाता था कि जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बाद में मेरा सौभाग्य था और ये पता चला कि भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कूल होते हैं, पर्टिकुलरली अजमेर में स्कूल जो है उसके बारे में हमको मेरे दादाजी को, एक्चुअली मेरे दादाजी को पता, उन्होंने मुझे स्कूल में ले जाकर भर्ती करा दिया, मैं वहाँ पढ़ने लगा। ऐसे तो खट्टे मीठे कई अनुभव होते ही हैं, लेकिन मैं बस सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई चलती रही, और पढ़ाई में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर्स रहते थे तो बढ़िया रहा। कुल मिला के जब टेंथ में आए, टेंथ का रिजल्ट आया, तब शायद उसका वो ऐसा परिणाम मिला जिससे भाई हमारा स्कूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा, और गांव भी करने लगा, परिवार भी करने लगा। मैं तो इतना कुछ समझता नहीं था ज्यादा, तो खुश तो मैं भी था बहुत कि अखबार वाले, रेडियो वाले, उसमें टीवी तो था नहीं, तो इंटरव्यू लेते थे, खुश होते थे, वही वाह क्या बात है, अखबारों में फोटो छपता, तो ये सब हुआ। 8वीं पोजीशन मेरी आई थी उस टेंथ में, और उसके बाद में मैंने पढ़ाई करी, लेकिन इस बीच मैंने STC ट्रेनिंग करी।
0: अच्छा।
1: समय तक ब्लाइंड को अलाउ नहीं था STC ट्रेनिंग में जाना।
0: जी।
1: उनको सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, और माउंट आबू में STC स्कूल को उन्होंने उसके लिए चुना था कि भाई वहाँ पर हम हमारे विजुअली इम्पेयर्ड ट्रेनिंग होंगे, उनको वहाँ पर सिखाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग की, मैं भी था, मेरे साथ चार साथी और थे।
0: जी।
1: ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद में बड़े मुश्किल से, अब उन डिटेल्स में तो मैं क्या जाऊँ, कि उस समय पोस्टिंग कराना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। इस तरह से सिस्टमेटिक तो नहीं था पोस्टिंग होना, और फिर किसी ब्लाइंड के लिए पोस्टिंग पा लेना, और वो भी एक सामान्य स्कूल में, जो तो बहुत बड़ी बात। उसमें या तो म्यूजिक टीचर बन जाते थे या तो फिर तो ज्यादा पढ़ जाते, और ये वगैरह करने के बाद या पीएचडी वगैरह कोई कर लेते, वो लेक्चरर बने थे उस समय तक, ये सुना था हमने
0: जी,
1: या म्यूजिक टीचर बने थे। बाकी एक कॉमन स्कूल में जो, उसमें टीचर बनना बहुत मुश्किल था। खैर जैसे तैसे काफी संघर्ष के बाद में मैं टीचर बना, लेकिन मुझे संतोष नहीं था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना काफी चैलेंजिंग तो था, लेकिन चैलेंजिंग से तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात से थी कि सोसाइटी में जो मैसेज आता था ना, वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कम था।
0: अच्छा जी।
1: तो ये समझा जाता था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर तो बहुत साधारण टीचर होते हैं
0: जी।
1: तो मैंने आरपीएससी का एग्जाम दिया, आरएएस आरटीएस का जो एग्जाम होता है, एग्जाम मैंने तो दिया केवल उस समय तो ये सोच के दिया था कि भाई मुझे सिद्ध करना है कि मैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लेवल से थोड़ा ज्यादा योग्य हूँ या ऊपर हूँ, ये सिद्ध करना था। मुझे उस समय तक ये नहीं लगता था कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगा
0: जी,
1: लेकिन हुआ ये कि मैं सिलेक्ट हुआ पहले चांस ही, और मैंने ज्वाइन भी किया। अब क्या है कि ये प्रोग्राम इतना भी इतनी भी आजादी नहीं देता कि उन सब बातों की चर्चा करें कि कितनी कितनी समस्याएं आई थी
0: जी जी जी जी जी।
1: क्योंकि समस्या तो जिस दिन आपने आंखों की ज्योति खो दी ना, उस दिन ही समस्याएं शुरू हो गई
0: जी जी जी। ठीक है,
1: चर्चा का विषय तो ये होता है कि कब समस्या नहीं आई।
0: बिल्कुल सर। लेकिन
1: फिर ये समझो कि ये होता है कि आपने उस समस्याओं पर किस तरह से पार पा लिया।
0: निश्चित रूप से। लेकिन होता क्या है ना सर, जब कोई काम पहली बार होता है तो उस समय की जो परिस्थितियां बनती हैं या उस समय की जो एक तरह से जो संघर्ष होता है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने का कार्य करता है।
1: एक्चुअली ये कहना बिल्कुल सही है कि शुरू शुरू में जब आप किसी भी, जब रास्ता नहीं होता है उस पर आप चल के जाते हो, कठिनाइयां भी आती हैं, और उसमें लेकिन उसके साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि हम बहुत से अन्य लोगों के लिए एक राह तैयार कर रहे होते हैं। मतलब मैं तो यूं कहता हूँ कि जो भी ब्लाइंड व्यक्ति कहीं पर पोस्टिंग लेके काम करता है किसी जगह पर, चाहे वो कोई स्कूल टीचर हो, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कुक का काम भी करते हैं, मुझे उनसे बड़ी खुशी होती है। देखो हमारे पास तो कई सारी सुविधाएं हैं, ये फिर भी काम कर रहे हैं जिन जो सुविधाएं दूसरों के लिए जुटा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ब्लाइंड कम्युनिटी के
0: जी,
1: और हमको ये दिखाना होता है कि, और क्योंकि जो जो भी बाद में किसी को देखेगा ना, किसी भी ब्लाइंड को, तो वो हमारे बारे में जो उसकी राय बनी होगी ना, वो राय उसके काम आएगी। काम आएगी का मतलब वो उसको प्रभावित करेगी और उसी के आधार पर उसकी राय वो बनेगी। तो कुल मिला के इस तरह से सोसाइटी में पूरी में बनती है। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप पर्टिकुलरली पहले पहले व्यक्ति होते हैं किसी फील्ड में, तो आपको जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। हमने भी करने की कोशिश की, कहाँ तक मैं सफल हुआ ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे मुंह से सफलता रहा। फिर उसके बाद में बस जब स्टेट सर्विसेज में आ गए, उसके बाद तो फिर समस्याएं थोड़ी बहुत कम ही हुई है, बढ़ी नहीं तो बढ़ती थी।
0: तब तो सर आपका समस्या समाधान का काम शुरू हो गया फिर।
1: एक्चुअली वैसे तो मैं नहीं मानता ये बात
0: जी,
1: मेरे लिए दिक्कत ही होती थी कि मैं अगर मैं किसी ऑफिस में पोस्टेड हूँ, उस ऑफिस में अगर मैं नया हूँ तो मुझे सब लोग ही को अपने बारे में बताने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते। इस बीच अगर बाय द वे मेरे बॉस का ट्रांसफर हो गया तो उनको फिर से जीरो से उनको सिखाना पड़ता था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अच्छा ब्लाइंड है, ब्लाइंड के बारे में लोगों की धारणा ये होती है कि वो काम करने के लिए थोड़े आए हैं, ठीक है उनको सरकार सुविधा दे रही है तो ठीक है उनको लगा दिया, बेटर हो। लेकिन ये भावना खत्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम करते हो, काम किए बिना बैठे रहोगे ना, तो वो और भी मुश्किल काम होगा। तो मैं ये देखता था कि जब भी हमारे बॉस का ट्रांसफर हो गया या मेरे असिस्टेंट का ट्रांसफर हो गया, तो मुझे जीरो से शुरू करके उनको एक बार फिर से ये समझाना पड़ता था कि भाई मैं खाली बैठे रहने के लिए या कोई शोपीस नहीं हूँ, मैं मुझे काम करना है और जितना अच्छा काम करके आपका आउटकम होगा ना, जितने अच्छे रिजल्ट्स आप दोगे ना, वो आपके आपके मैं तो मेरे लिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बाद में आने वाले जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड उस जगह पर आते हैं ना, उन सब के लिए वो काम आते हैं वो सब।
0: बहुत खूब सर, निश्चित रूप से ये एक जो ऐसा मतलब संघर्ष है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। और सर कहीं कहीं जो बातें आप कह रहे हैं ना वो आज भी देखने में आती हैं, तो उस जमाने में यानी आज के लगभग मुझे लगता है 40-50 साल पहले तो और ज्यादा रही होंगी।
1: हाँ देखो ऐसा है, आज तो टेक्नोलॉजी ने काफी हमारी सुविधाएं बढ़ा दी हैं
0: जी।
1: सबसे बड़ी सुविधा तो यूं समझो कि जैसे आईटी सेक्टर ने जो प्रोग्रेस करी है ना, कम लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत ईजी बना दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो बहुत जरूरी हो गए। लेकिन जब हम लोग काम करते थे, मेरी जब पोस्टिंग हुई उसके बाद मैंने जब तक काम किया तब तक भी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप और पर्टिकुलरली एक्सेसिबिलिटी के मामले में तो बहुत मुश्किल थी, तो हमको तो मैनुअली सारे काम करने पड़ते। एक बात यह थी कि सबसे बड़ा ये होता है कि आपको पग पग पर खतरा रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं कितने रिस्की रिस्की डिसीजन लेने होते हैं, उन सब पर साइन होते हैं सरकारी मामलों में आप जानते हैं। एक
0: बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, लेकिन कभी मन में ये ख्याल आया सर कि यार बहुत हो गया बस प्रशासनिक पद छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी लगा आपको सर?
1: नहीं ऐसा मुझे तो अभी भी नहीं लगता। मैं तो अगर मुझे तो मेरी हेल्थ वगैरह के हिसाब से और उसके हिसाब से तो मुझे अभी भी नहीं लगता, मेरे दिमाग के हिसाब से भी नहीं लगता। मैं मुझे ये कभी नहीं लगा कि बस बहुत हो चुका, काम करने में मजा आता था। मेरे कॉलीग्स और मेरे जो सबोर्डिनेट्स थे ना वो मुझे शाम को 5 बजे भी कहते सर आप ऐसे लगता है जैसे आप अभी अभी ऑफिस आए हैं, मतलब मैं क्योंकि मैं कभी इस तरह का टेंशन नहीं लेता था, मैं अपने किसी काम को टेंशन के रूप में नहीं लेता था। मुझे टेंशन इस बात की होती थी खाली कि काम हुआ नहीं, और हमेशा और मैं अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट के भी फेवर में नहीं रखता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी कोई मुझे ऐसे समझा जाए कि आप कोई स्पेशल व्यक्ति हैं, तो आपको मुझे कभी कोई स्पेशल

0: सुविधा वैसे तरह की नहीं दी गई कि अगर मेरी पोस्ट के लिए गाड़ी अवेलेबल है तो गाड़ी दिलिए मुझे, लेकिन नहीं है अवेलेबल तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे स्पेशली उन्होंने कोई गाड़ी दे दी हो, मुझे कोई स्पेशल असिस्टेंट दे दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑल्दो दिया जाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, या कुछ ऐसी सरकार को कोई कमेटी बना के कुछ सोचा जाना चाहिए और कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि उनका उनकी जो कैपेबिलिटी है ऐसे अधिकारियों की, ऐसे कर्मचारियों की, उसका हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब वो तो अलग प्रश्न है, उस पर ज्यादा
1: जी जी जी
0: अभी
1: निश्चित
0: चर्चा
1: रूप
0: किया
1: से
0: जाना है। हाँ,
1: वो तो थोड़ा सा एक अलग लेवल की बात होगी निश्चित रूप से।
0: विषयांतर हो जाएगा।
1: तो यहाँ पर सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा कि मैम का भी परिचय लिया जाए और हमारे श्रोता उनको भी सुन सकें। तो मैम जरा आप भी प्लीज अपने बारे में बताएं।
0: मेरा नाम निर्मला पारी,
1: जी मैम।
0: मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ
1: जी मैम।
0: और क्या परिचय है, हमारी शादी 89 में हुई थी।
1: जी मैम। तो आप थोड़ा सा मैम बताएं कि आप भी राजस्थान से हैं या आप कहीं और से हैं।
0: नहीं, एक्चुअल हम कभी राजस्थान से थे, लेकिन हमारे दादाजी भी चले गए थे यहाँ से, तो
1: अच्छा।
0: मेरा जन्म है जो उड़ीसा में हुआ था।
1: अच्छा, ओ क्या
0: तो
1: बात।
0: एक्चुअल में हम ऐसे तो उड़ीसा के ही हो गए। हाँ,
1: बिल्कुल मैम, अब आप राजस्थान के हो गए।
0: उड़ीसा
1: जी।
0: हो गए।
1: तो पारिक सर, ये सब जब चल रहा था प्रशासनिक सेवा, फिर टीचिंग की जॉब, उसके बाद में सरकार के साथ काम करना, तो विवाह के बारे में कब सोचना शुरू किया आपने, किस तरह वो कहानी आगे बढ़ी?
0: एक्चुअली क्या कि विवाह तो विवाह के बारे में मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स सोचा करते थे।
1: जी
0: मेरे पास कई ऐसे कुछ प्रपोजल्स आए थे जिनकी वैसे अलग अलग चर्चा करना कोई बात हो जाएगी,
1: जी
0: लेकिन वो प्रपोजल आए लेकिन मैं उन पर गौर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विवाह जो होता है ना, वो एक लड़के एक लड़की का नहीं होता है। तो
1: जी
0: इसलिए मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के हिसाब से ही विवाह करना चाहता था।
1: अच्छा
0: कुछ ऐसे हमारे जो यहाँ के लोकल भी ऐसे ऐसे रिलेशन ऐसे भी मतलब रिलेशंस के मामले के जरिए भी कुछ रिश्ते आए थे, लेकिन
1: जी
0: वो बैठे नहीं, कुछ ना कुछ रीजन हो जाते थे। बात तो कई दिनों से चलती थी और काफी कुछ लोग निराश भी होते थे, कुछ लोग सत्या भी करते थे। अल्टीमेटली हमारे बुआजी फूफा जी हैं वो वहीं रहते हैं जहाँ वो घर है, मेरी धर्मपत्नी के पिताजी का घर समझो, वो
1: जी जी
0: घर जहाँ है वहीं हमारे बुआ जी और फूफा जी के आसपास ही रहते थे। उड़ीसा में अनुगुल नाम की जगह है, डिस्ट्रिक्ट
1: जी
0: है वैसे तो वो लोग मिलते जुलते रहते थे, तो परिवारों की आपस में परिचय होता ही था। तो उन्होंने एक दिन पिताजी से चर्चा की,
1: जी
0: एक लड़की है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब आप लोगों को लगेगी या नहीं पता नहीं, अगर मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि अगर आप सहमति दो तो मैं उनसे चर्चा करूं, तो बात चली,
1: जी
0: यस हो गया और शादी हो गई। मतलब पूरी तरह से फैमिली द्वारा निर्धारित और उनके द्वारा ही उसका एग्जीक्यूशन और सब ऐसे ही हुआ।
1: जी सर
0: ये बात तो हमारी लाइफ में मतलब ठीक है, जैसे नॉर्मल जिंदगी
1: जी
0: चल रही है चलती रही, और अच्छी खासी मतलब
1: आपने कहा सर कई प्रस्ताव आए, तो वो मतलब प्रस्ताव मतलब पिताजी के पास ही आए या डायरेक्टली आपके पास आते थे, और अगर वो
0: मेरे पास
1: समाज।
0: तो आए थे, मेरे पास जो जो आए थे वो तो ऐसे आए थे जो कि वैसे कहना चाहिए ना अपने सामाजिक आधार पे नहीं आए,
1: जी,
0: जो मेरे पास डायरेक्ट आए ना वो तो ऐसे आए थे,
1: वो आपके दोस्तों की मदद से या किसी जान पहचान
0: दोस्तों
1: से।
0: के या
1: जी
0: जो मेरे साथ पढ़ने वालों के या
1: जी
0: ऐसे ही
1: मतलब
0: थे
1: मैं
0: जो आए
1: सीधा
0: थे।
1: सीधा पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि जब आप RAS ऑफिसर बन गए और वो उस जमाने में नई बात थी, सही, तो समाज
0: हाँ,
1: में परिवार में ये चर्चाएं नहीं हुई आगे होकर के कि भाई देखिए अब ये व्यक्ति बहुत काबिल हैं और इनको जो है हमें अपनी मतलब बेटी देनी चाहिए या यहाँ रिलेशन करना चाहिए, इस तरह की बातें?
0: मतलब मेरे से तो किसी ने ऐसी चर्चा की नहीं, पिताजी
1: नहीं, पिताजी से आपने सुना हो बाय द वे।
0: से भी कोई मतलब उस जमाने में शायद एक्सेप्टेंस आज के जैसा नहीं था,
1: नहीं था निश्चित रूप से सर।
0: इसलिए लेकिन क्या था कि एक्चुअली कुछ ऐसे भी रिश्ते आए थे जिनको आज हम लोगों ने आउटराइट ये रिजेक्ट इसलिए कर दिया
1: जी
0: कि जैसे कोई विकलांग, जैसे मतलब कोई ब्लाइंड लड़की हो, ब्लाइंड का तो आया नहीं वैसे,
1: हाँ अदर है, अदर डिसेबिलिटी में हो भाई,
0: लड़की का आया था जैसे वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने उसके लिए, मैंने तो उस समय यद्यपि मैं शादी के मामले में बीच में बोलता नहीं था, लेकिन ऐसे रिश्ते के लिए मैंने खुद भी मना कर दिया, मैं माता श्री को पिता श्री को, कहा नहीं मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मैं विकलांग व्यक्तियों को नजरअंदाज करना चाहती, लेकिन मैंने कहा इससे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, बड़ी लाइफ जिंदगी में कठिनाई आ जाएगी
1: निश्चित रूप से।
0: जो जो लड़की बोल नहीं सके और इशारे मैं नहीं समझ सकूं,
1: बिल्कुल
0: मैं कुछ बोलूं उसको वो समझ नहीं सके क्योंकि उसको सुनता नहीं है, तो ऐसा सोना किस काम का जो कान कान तोड़े
1: जी,
0: ऐसे रिश्ते के लिए तो मैंने खुद ही डायरेक्टली मना कर दिया
1: जी सर।
0: तो मतलब मेरे परिवार वालों ने भी आगे बढ़ के ये स्वीकार किया था कि भाई हम कोई और जैसे आंशिक भी,
1: कुल मिलाकर के समाज में वही सब था कि भाई ये किसी तरीके से इनको डिसेबिलिटी है तो रिलेशन भी इनका ऐसे ही किसी व्यक्ति से होगा।
0: हाँ, लोगों की धारणा तो यही होती है, अभी भी मुझे लगता है यही होती है
1: निश्चित रूप से सर, यही कारण है
0: ज्यादा
1: जी
0: तो ज्यादा कांटेक्ट में इस तरह के मैं आया नहीं मैं इन दिनों में
1: जी जी जी,
0: क्योंकि मैं मेंटलिटी तो कभी चेंज होती नहीं है, खाली वो क्या कहना चाहिए कि एक्टर बदल जाते हैं बाकी किरदार तो वो वही रहते हैं।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल,
0: तो वो चल रहा है वो अभी भी, बाकी उस समय भी ऐसा ही था, बल्कि उस समय कुछ ज्यादा था। आज एजुकेशन के कारण क्या, आज लड़कियां थोड़ी इंडिपेंडेंट खुद होने लग गई, खुद उनकी सोच डेवलप होने लग गई
1: जी,
0: वो बहरहाल जो भी हुआ देर से जब मतलब जैसे भी हुआ, लेकिन शादी जो हुई वो कंप्लीटली एक्सपेक्टेशंस या जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अच्छी हो गई। और
1: तो निर्मला मैडम के यहाँ जब प्रस्ताव गया सर, तो वो तो फिर मतलब तुरंत ही स्वीकार हो गया होगा क्योंकि वो परिचित के माध्यम से गया था, तो
0: तुरंत तो कैसे होता है, वो भी वहाँ भी विचार विमर्श चला इनके परिवार में।
1: अच्छा,
0: आप ही बताएं ज्यादा बेटर है
1: जी। मैम बताएं प्लीज निर्मला मैम कि
2: मतलब क्या है कि मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं
1: जी जी जी मैम,
2: तो 20 इयर्स 20 साल की थी मैं
1: जी मैम,
2: तो हमारे पापा जी तो जो है ना अब तो है नहीं
1: जी,
2: वो थोड़े अलग किस्म के इंसान थे
1: जी मैम,
2: उनको योग्यता की पहचान थी देखो।
1: क्या बात जी,
2: उन्होंने फिर भी उन्होंने विचार विमर्श किया घर पे, मम्मी ने दादी और इनसे विचार विमर्श किया और उनके उनके जो जान पहचान थे उनसे विचार विमर्श किया
1: जी,
2: और फिर उनको सलाह दी कि आप एक बार देख के आओ, ऐसे मना मत करो,
1: जी,
2: मत करो
1: जी।
2: तो वो उड़ीसा से उनके जो फूफा जी है
1: जी,
2: हमारे फूफा जी मतलब उनके साथ यहाँ पे आए।
1: अच्छा,
2: फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से उन्होंने देख के फिर घर गए, घर जाने के बाद मेरे से पूछा उन्होंने, उस जमाने से भी आज अब भी कई लोग ऐसे हैं कि बेटियों को पूछते नहीं
1: जी,
2: लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा अगर तू हाँ करेगी तभी कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर
1: जी मैम।
2: तो मैंने भी सोच समझ के, अब जितनी मेरी क्षमता थी उस टाइम सोचने की,
1: बिल्कुल मैम,
2: उस हिसाब से मैंने सोच के फिर हाँ भरी, फिर
1: वाह क्या बात। लेकिन कोई ऐसा रहा मैम आपके परिवार में जिसने विरोध किया हो?
2: उनका तो कोई सामने तो देखो कोई आया नहीं
1: जी,
2: क्योंकि मेरे पापा ऐसे आदमी थे वो थोड़े अलग ही तो थे, मैंने बताया आपको
1: जी जी जी,
2: तो लोग सामने बोलने से भी थोड़ी डरते थे
1: जी जी जी,
2: पता नहीं ये क्या कह देंगे, और वो मेरे पिताजी जो थे वो मानते नहीं थे कि हम यहाँ उड़ीसा में रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं
1: जी मैम,
2: ऐसी चीजें वो मानते।
1: अच्छा,
2: उनको बस उनको क्या है कि उनको योग्यता वो पहचानते थे और वो ये नहीं देखते थे कि भाई आदमी तो वो ये चाहते थे कि भाई लड़की की शादी करनी है, मान लो वो बाद में हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है
1: जी,
2: और ऐसे भी सोचते थे वो कि मान लो मैं किसी से शादी कराऊं और वो योग्य नहीं हो, खाली मतलब सुंदर हो तो उसका क्या करना है।
1: क्या बात है जी जी जी,
2: कम से कम योग्यता तो होनी चाहिए।
1: बिल्कुल मैम,
2: पापा भी ये सोचते थे और कुछ कुछ मेरी सोच भी मेरे पापा जी करे।
1: बहुत अच्छी बात है मैम जी। तो आपने मैम मतलब सर से मिलने से पहले कोई परिचय थोड़ी रहा होगा आपका ये कि ब्लाइंड व्यक्ति कैसे होते हैं कैसे जी?
2: ऐसे तो मैंने बता दिया था।
1: अच्छा
2: ब्लाइंड है। और क्या कि उससे पहले हम जहाँ पे रहते थे हमारे पड़ोस में एक लड़का कॉलेज में एडमिशन लिया था।
1: अच्छा
2: वो ब्लाइंड था।
1: अच्छा
2: उसको मैंने देखा था वो कैसे क्या करता था उसको मैं देखती थी तो उसको उसका ध्यान था मुझे ब्लाइंड लोग थे। तो हमारे भुवनेश्वर में स्कूल था और एक ढेंकनाल करके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्कूल था और मुझे कुछ पढ़ने का शौक था कुछ पढ़ते थे और करते थे तो ऐसे इन चीजों का ध्यान था मुझे ऐसे ब्लाइंड होते हैं ऐसे पढ़ते हैं उनकी ऐसे लिखी होती है ये सब चीजों का काफी ध्यान था। उससे वो मतलब वो जो लड़का था ना पड़ोस
1: जी मैम
2: उससे मिलने के बाद थोड़ा सा ज्यादा जानने लगी।
1: तो सर को फिर जानना मिल सर को जानने को मिला या नहीं शादी से पहले कुछ बात बात करने का मौका मिला था?
2: नहीं बात करने का मौका
1: नहीं मिला। अच्छा पूरा मतलब एक वो जो अरेंज मैरिज की तरह जो होता है वैसे ही सब कुछ हुआ आपके मामले में फिर भी कभी मन में
0: तरफ नहीं मिलती
1: ही थी पूरी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैम ने बताया भी की एज भी थोड़ी सी इतनी ज्यादा नहीं थी तो इसलिए भी मैम को कुछ ज्यादा मतलब विकल्प थे नहीं कि वो जाने बात करें क्यों सर?
0: ऐसा तो नहीं था क्योंकि जो हमारे ससुर जी ना वो इस तरह के मॉडर्न विचारधारा के थे।
1: अच्छा अच्छा
0: तो ये कभी पसंद नहीं करते थे कि भाई मैं किसी भी तरह से अपनी बेटी पर कोई दबाव डालूं या उसको किसी भी तरह का प्रेशर या कुछ चाहे वो डराने का हो समझाने का भी नहीं करते थे। वो कहते कि नहीं अगर योग्य है तो मुझे योग्य लगता है लड़का तो इससे क्या फर्क पड़ता है अकेला नहीं मेरी बेटी को भी पसंद आना चाहिए। उस जमाने में लड़कियों को इतना भी ज्यादा दिखाने का रिवाज नहीं था थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं आजकल के जैसे कई कई बार मिल लेते हैं वैसे नहीं था लेकिन फिर भी दिखाने का रिवाज तो उस समय भी चल पड़ा था।
1: जी जी जी
0: हम तो दूर थे ना थोड़े
1: जी
0: पर्सनली हमारे लिए तो देखना थोड़ा मुश्किल था
1: बिल्कुल
0: पहले मिलना
1: जी
0: बल्कि हम तो शादी के बाद भी कहना चाहिए फेरे वगैरह होने के बाद ही मिले थे पहली
1: बार। जी लेकिन सर प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कभी आपको काम करने का या सोचने का अवसर मिला कि भाई वाकई में ये जो विवाह का मामला है इस क्षेत्र में भी जो है दिव्यांगों के लिए काम किया जाना चाहिए ऐसा कभी अवसर मिला आपको?
0: अवसर तो क्या मतलब ऐसा कुछ करने का अवसर मुझे नहीं मिला लेकिन सोचते तो हम हमेशा थे जब भी कोई ऐसा कोई भी उचित मंच होता उस पर भी हम चर्चा ये किया करते। मैं ये समझता भी हूँ क्या है कि पर्टिकुलरली ब्लाइंड व्यक्ति के लिए तो उसके स्पाउस से ज्यादा विश्वसनीय कोई और हो नहीं सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर निश्चित रूप से
0: और किसी भी मामले में कुछ भी हो सकता है आपकी कितनी कोई मदद करे आर्थिक मदद करे कुछ करे वो करे लेकिन आप विश्वास तो स्पाउस पर जितना कर सकते हो उतना किसी और पर नहीं कर सकते। अगर मैं तो कभी कभी मजाक में ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी पत्नी मुझे कहे कि इस कागज पर साइन कर दो और ठीक है उसमें आप अगर वो मेरी पत्नी अगर ये चाहे कि भाई मैं इसमें फंस जाऊं फंस जाने तो फिर क्या है तो यहाँ तक समझता हूँ विचारधारा तो यह है
1: बिल्कुल सर।
0: अगर ऐसा नहीं है तो आपकी शादी कायम ही नहीं रह पाएगी। वैसे रोजाना तो पहले पता चल जाता है रोजाना झगड़े होते हैं या कुछ भी होता है कुछ भी होता है माहौल खुद खुद कोई क्रिएट करना होता है और अपने आप को समझना होता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये वैसे देखा जाए ना मैं भी इस बात को समझता हूँ अगर आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है ना ये मामले में देखा जाए तो मैं बधाई भी देना चाहूंगा
1: जी धन्यवाद।
0: इस तरह के कार्यक्रम कम से कम इससे जागृति तो आएगी
1: निश्चित रूप से
0: जागृति के अलावा एक और चीज होगी कि समझ भी डेवलप होगी।
1: बिल्कुल
0: समझ बहुत जरूरी चीज होती है
1: बहुत जरूरी है सर।
0: मैं मतलब जब हम छोटे थे तो भी मैंने ये सुना था कि हमारे मेरे सीनियर पढ़ने वालों में सीनियर थे कोई
1: जी
0: हमसे कोई लड़की प्यार करती थी लेकिन मैंने बाद में सुना था मैं तो मिला नहीं
1: जी
0: लेकिन मैंने ये सुना था कि वो प्यार तो करती थी लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं।
1: बताइए, वही वही बात है सर, समझ वाली जो बात कही ना आपने, समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। जी सर,
0: तो समझ विकसित होनी चाहिए, और समझ विकसित होने की एक और चीज है
1: जी,
0: अगर उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनके सामने, तो शायद उससे थोड़ी मदद मिल सकती है। इसलिए कुछ इस तरह के केसेस को अगर आप प्रकाश में लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, जैसे कि आपका ये प्रोग्राम है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जा सकते हैं, जैसे हमारे जो संगठन चलते हैं
1: जी,
0: वेलफेयर के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं
1: जी,
0: ऐसे फंक्शंस भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम कई बार ये देखते हैं ना कि ऐसे कपल्स का एक कॉम्पिटिशन कराते हैं
1: जी,
0: बेस्ट कपल ऑफ द ईयर
1: बिल्कुल
0: सिलेक्ट करके उनको आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको आप कोई बहुत महंगे कीमती अवार्ड्स दो, प्राइस दो, ऐसा नहीं, उनको खाली सर्टिफिकेट दे सकते हैं हम, या केवल उनका अनाउंसमेंट भी करेंगे ना, उससे भी बहुत कुछ मिल सकता है
1: जी।
0: तो जो कपल्स अभी सक्सेसफुल हैं उनको अगर हम अन्य जो हमारे लोग हैं और जो हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनसे परिचित कराएं, उनको कभी प्रकाश में लाएं
1: जी।
0: सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो लड़कियां होती हैं जो ब्लाइंड से शादी करने के लिए तैयार होती है, तो इसका मतलब पहला जो आपको पहला पहला उनसे जो मैसेज मिलता है वो ये है कि वो कितनी बड़ी, कितनी पॉजिटिव सोच उनकी है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उन्होंने एक एक डिसेबिलिटी के कारण उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया
1: जी।
0: तो मैं ये भी नहीं कहता कि ब्लाइंड है इसलिए उसको सिलेक्ट कर लो, ये तो और भी गलत हो जाएगा
1: जी जी,
0: लेकिन विचारार्थ उसको स्वीकार करो
1: जी जी, और इस मामले में भी सर कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि मतलब जो डिसेबल्ड जो पुरुष हैं उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा बेहतर है, लेकिन लड़कियों की स्थिति आज भी चुनौतीपूर्ण है, चिंताजनक है, खासकर विवाह के मामले में।
0: स्थिति इसलिए ज्यादा चिंताजनक है
1: जी,
0: क्योंकि जो लड़की है उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है
1: जी जी।
0: क्या होता है कि आम लड़की भी है जब शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, उससे इतनी अधिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं
1: जी,
0: वो बेचारी खुद अपना जीवन तो भूल जाए, और ये मेरी सासू है, ये मेरी ननद है, ये मेरा जेठ है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुर है, और बाद में बड़ी हो जाए तो ये मेरे बच्चे हैं
1: जी।
0: तो वो मतलब महिलाओं की स्थिति इस मामले में वास्तव में परेशानी पैदा करने वाली है, मैं कई बार इस बात को बहुत सोचता हूँ। तो इसलिए क्या है कि कोई डिसेबल लड़की होती है उसको आमतौर पर महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सोचते हैं लोग कि जब हमारे घर के एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको ये शायद फुलफिल नहीं कर पाए
1: जी,
0: हो सकता है कि जब इसकी जो डिसेबिलिटी है वो हमारे दैनिक जीवन में और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें बाधा से बाधक, क्योंकि अभी तक अपन ये देखते आए हैं कि कोई भी डिसेबल लड़का है तो उसकी अगर पोस्टिंग हो जाती है कहीं पर
1: जी,
0: किसी भी पोस्ट पर, टीचर बन गया, ऑफिसर बन गया, ऑफिसर नहीं बना, टीचर बना, टीचर से और भी छोटी पोस्ट भी मिली, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना, लेकिन जब वो बन जाता है तो यूं मान लेते हैं कि ये तो सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ। लेकिन लड़कियों के लिए केवल कुछ जॉब प्राप्त कर लेना गारंटी नहीं है सफलता
1: जी,
0: इसलिए लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कुछ ऐसा सोचा जाना चाहिए, ये कम से कम हमारे ग्रुप के लेवल पे विचार किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, और चाहे इसका सॉल्यूशन और भी मुश्किल है तो इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है
1: जी जी। तो
0: मैं आशा करता हूँ कि आज अगले जो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अभी जो विचारार्थ जो लोग हैं वो लोग इस पर गौर करें, कुछ सोचें, समझें, क्रियान्वयन करने की कोशिश करें।
1: जी जी, तो सब कुछ होते हुए सर, इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी, और कहीं ना कहीं मतलब आपको लगा कभी किसी मोड़ पर कि आपके जीवन में भी कुछ चुनौती है विवाह के बाद, कहीं पर अपने आप को कमजोर महसूस किया आपने सर?
0: देखो वैसे जहां तक दो तीन चीजें होती हैं, एक तो आप कार्यस्थल पर
1: जी,
0: कार्यस्थल पर तो मुझे वैसे ये तो भावना कभी नहीं आई
1: जी,
0: लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि नहीं कैसे कैसे लोगों से मुझे डील करना पड़ रहा है, और क्योंकि और ऐसे लोग हैं जो जैसे बहुत ही कम बहुत ही लो लेवल की परफॉर्मेंस है, फिर भी उनको सम्मान ज्यादा मिल रहा है, या उनको सम्मान के अलावा भी उनको काम भी कुछ अधिक अलग तरह से दिया जाता है
1: जी। और उनकी
0: लेकिन इस मामले में तो प्रॉब्लम होती थी, रोजाना ही होती थी, लोग मिलते थे। कई बार ऐसे होता था कि हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो एक इक्वल रैंक थे, अगर दो ऑफिसर हैं तो वो मुझे कम महत्व दे रहे हैं, मुझे कई बार फील होता था। और लेकिन मैंने ये देखा कि जो मीडियम लेवल के जो लोग हैं ना उनमें ज्यादा सपोर्ट।
1: अच्छा।
0: जो लोग बिल्कुल कम पढ़े बहुत कम पढ़े लिखे या बहुत छोटे लेवल के कर्मचारियों में भी जो बहुत ही छोटे पद पर जो थे उन लोगों में कभी दिक्कत होती थी, या फिर बहुत बड़े जो लोग थे जो हमारे आउट ऑफ टच रहते थे कभी। बाय द वे एक दिन हमारे चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन
1: जी,
0: कहते हैं आप तो वो हो ना जो सरकार से कोर्ट में लड़के आए थे।
1: अच्छा।
0: मैंने कहा सॉरी सर, मैं तो कभी मेरे किसी भी मामले के लिए कोर्ट में गया नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी
1: जी।
0: चेयरमैन इतने बड़े ऑफिसर होते हैं कि उनको जवाब देना थोड़ा और लगता है, लेकिन मुझे देना पड़ा।
1: बिल्कुल सर।
0: पता नहीं था कि देना
1: जी
0: देना पड़ा। हम कहा सर सॉरी, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई कभी मेरे किसी भी मेरे मामले के लिए कोर्ट में कभी गया नहीं है, केवल सरकारी मामलों के लिए कोर्ट में गया हूँ सरकार की तरफ से
1: जी।
0: तो ऐसे कभी कभी ऐसे देखा है मैंने कि भाई घंटी बजा रहे हैं तो दो घंटी बज गई, मान लो दोनों बराबर के अफसरों में, तो हो सकता है कि कई बार दूसरा जो है उसके पास लोग वो पहले जा रहे हैं सबका सी, ऐसा कभी कभी देखा है। लेकिन जितने दिन मुझे ज्यादा हो जाते थे जिस ऑफिस में, मुझे ये फील हुआ हमेशा, ये शुरू शुरू में होती थी ये प्रॉब्लम, जिस ऑफिस में शुरू में ज्वाइन करता मैं तो होती थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे वहाँ टाइम बीतता था तो मैंने ये देखा कि सभी लोग मेरे से ज्यादा फ्रेंडली हो जाते थे और इतना उनका अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाता।
1: ये सर अक्सर कई लोगों की शिकायत सुनने को मिलती है, अभी भी मिलती है, जो आजकल जो प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग जा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, उनको जो सबॉर्डिनेट और जो जूनियर हैं वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अभी अगर इस कार्यक्रम को आपके इस तरह के जो युवा साथी सुने मान लीजिए, तो उनको उनको अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपना कहीं ना कहीं एक मुकाम स्थापित करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर?
0: तो पहली सलाह तो मैं यही दूंगा, आप चूंकि हमें एक कमी है तो उस कमी को, जैसे आपके पास अगर कम पैसे हैं और आपको खाना खाना है तो हो सकता है कि आप खाने का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का तैयार करें कि आपकी लिमिटेशंस में वो तैयार हो जाए, तो कुछ कट किया जा सकता है, सलाद वगैरह कट कर दिया या दूसरा। तो लेकिन उसके लिए मेरा सजेशन तो ये होगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, आप ये मत सोचिए दूसरे जो बराबर के अधिकारी कर्मचारी को जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत में आपको उनके बराबर सफलता मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं
1: जी।
0: आपको कुछ जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहली शर्त
1: जी।
0: दूसरी बात यह है कि आप अपने मन में ये मान लीजिए कि आप में कुछ तो कमी है ना
1: जी,
0: आपको उसको स्वीकार करते हुए उसका सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी उन लोगों से अनावश्यक रूप से शत्रुता नहीं लें, किसी से अनावश्यक रूप से किसी पर अत्यधिक विश्वास नहीं करें, हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें और अपने लेवल पे ऐसे ऐसे तरीके इजाद करें कि आप जो काम कर रहे हैं
1: जी
0: उसमें जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि आपने जो किया है वो आप किसी के कहने से नहीं कर रहे हो। एक मैं बहुत छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा, कभी किसी को ये मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए कि नहीं वो फला फला जो एक्स एक्स कर्मचारी है उसके कहने से तो साफ साइन कर ही देंगे।
1: ओ जी जी जी जी।
0: अगर किसी के मन में भावना जमा हो गई, किसी के मतलब दूसरे के व्यक्ति व्यक्ति के मन में भी
1: जी,
0: क्या इस तरह का प्रचार भी आपके ऑफिस में हो गया, आपके कॉलीग्स में अगर इस तरह की बात चलने भी लग गई ना, तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है
1: जी।
0: ये कभी भी इस तरह का अपनी तरफ से कभी भी किसी को ऐसा सोचने का अवसर नहीं, बल्कि सबको ये होना चाहिए कि नहीं यार ये तो मतलब खुद अपने लेवल पे इनको खुद उनको भरोसा हो तभी एक तो साइन करेंगे या फिर कोई काम करेंगे या कोई बात करेंगे, पर आप अनावश्यक रूप से झगड़ा करने की या

0: है कि अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो आपको जरूरत से ज्यादा नुकसान होगा।
1: बिल्कुल सर,
0: सामान्य आदमी झगड़ा कर सकता है लेकिन आप झगड़ा करोगे तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने आप को सुपर ईगो रख के या इस तरह का कोई काम करो ना, तो वो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, मतलब मेरे एक टीचर कहा करते थे कि तो चर्चा कर रहे थे कि आप में कुछ विजुअल, मतलब एक दिन चलते चलते किसी के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, वो रुक गया
1: जी,
0: साथी का उससे किसी ने पूछा कि आप में कुछ विजुअल सेंस है कि आप कैसे रुक गए, गाड़ी गाड़ी खड़ी है सामने तो उससे टकराई कैसे नहीं, तो ये विजुअल सेंस तो नहीं है लेकिन इंडिविजुअल सेंस है। तो आपको इंडिविजुअली इतना, मैं आपको बहुत छोटा सा एक मेरा उदाहरण बताना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत उदाहरण है लेकिन मैं एक छोटा सा बताऊं कि मेरी पोस्टिंग एक प्राइमरी स्कूल में हुई
1: जी।
0: हम सिर्फ दो टीचर थे जब मैंने ज्वाइन किया, उसके दिन शाम को ही लोगों ने, बच्चों ने जाके अपने घर पे बताया कि हमारे स्कूल में एक ऐसे टीचर आए जिनको दिखता नहीं है बिल्कुल
1: जी।
0: दूसरे दिन उनके सारे पेरेंट्स ने उनको स्कूल भेजने से इनकार कर
1: दिया। ओ बताइए जी,
0: कि जब टीचर को दिखता ही नहीं है, खुद को ही नहीं दिखता है तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे,
1: क्या पढ़ाएंगे बिल्कुल जी। तो
0: आप अचंभा करेंगे कि वो सारे गांव के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, लेकिन उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं करके उन्होंने ये कहा कि हो सकता है बाबा आपकी बात सही हो लेकिन हमको एक दो दिन जाने तो दो, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे तो हमको छोड़ा देना स्कूल
1: जी।
0: बच्चों की ये बात सुन के आप एनकरेज हो सकते हैं, जो बच्चे ना समझते प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उन्होंने इतना अच्छा जवाब अपने पेरेंट्स को दिया
1: बिल्कुल,
0: पेरेंट्स ने हमको बताया
1: जी।
0: और उसके बाद जब बच्चे आने लगे, एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन, तो उसके बाद जब मेरा ट्रांसफर होने लगा वहां से, तो वो सारे बच्चे बोले कि जिसने ट्रांसफर किया है वो कहाँ है हमको बताओ, हम उनका सिर फोड़ देंगे।
1: तो
0: और सारे पेरेंट्स है वो रोने लगे कि गुरुजी आप तो ना ट्रांसफर कैंसिल कराओ। भाई कोई मंत्री संतरी मेरा दोस्त नहीं है, ना मेरा रिश्तेदार है, मैं तो एक्चुअली चाहता था ट्रांसफर कराना, क्यों गाँव थोड़ा दूर था हमारे गाँव से, तो मैंने उनको इसी तरह से मनाया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह से मेरा ट्रांसफर कोटा से जयपुर हुआ था एक बार, तो हमारे जो डिविजनल कमिश्नर थे वहां पर मोहंती जी थे
1: जी,
0: उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं तो रिलीव नहीं करूंगा, वो उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, अभी तो बाद में डिविजनल कमिश्नर जयपुर में रहे
1: जी जी जी,
0: तो वो कलेक्टर थे, वो बोले नहीं मैं तो रिलीव नहीं करूंगा आपको। मैंने बड़ी मेहनत से उनको रिक्वेस्ट करके मैंने कहा सर जयपुर ट्रांसफर हुआ है और कहीं हो रहा हो तो मैं आप बात मान लेता, लेकिन अब कोटा की जगह अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ तो आप रिलीव कर दो, तो आप मेरा भला ही तो करोगे। तो बोले ठीक है, अब जब आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा ही भला हो रहा है तो कर देता हूँ, बात मेरी इच्छा नहीं है।
1: तो
0: ये आपके ऊपर निर्भर करता है
1: जी, जी।
0: आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मुझे ये मैं जरूर कहूंगा कि आपको कल आपको जरूर गड़बड़ होगी, मतलब जब आप किसी ऑफिस में पहली पहली बार जाओगे ना, शुरू शुरू में आपको दिक्कत ही होगी, क्योंकि शुरू में न तो आपका ऑफिसर आपको काम देना चाहेगा, वो सोचेगा कि अगर उसको काम कराए बिना मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी हो जाए तो ठीक है, इनको तो बैठे रहने दो, ये सोचेगा। आपके सबोर्डिनेट ये सोचेंगे कि ये नहीं हो और इनकी जगह दूसरे सर से हम मिल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये समझेंगे थोड़ी हमारी बात। लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवहार, आप इनके साथ इंटरेक्ट करोगे और अगर आप अच्छे से करोगे, एक मैं बहुत जरूरी चीज होती है वो है आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना
1: बिल्कुल सर,
0: और अगर आप अपने नॉलेज से लोगों को परास्त कर दोगे ना तो लोग आपसे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
1: क्या बात, बहुत सही कहा सर।
0: नॉलेज अगर नहीं हुआ, अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ ना, तो आप कभी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते
1: बिल्कुल।
0: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं
1: जी।
0: और बाकी मैंने अभी तो पूरा तो सोचा नहीं है, इसलिए मैं जो अभी अभी जो क्या कहना चाहिए तत्काल मुझे जो समझ में आई वो मैंने आपको कुछ बताई है।
1: निश्चित रूप से ये कई लोगों को,
0: जब मेरे से कोई ऐसे आरएएस जो नए बनते हैं आकाश अरोड़ा वगैरह बात करते हैं कोई, तो मैं उनको सजेशन ऐसे देता हूँ, वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं या कर पाते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने फीडबैक तो लिया नहीं
1: जी जी जी।
0: तो मैं तैयार भी हूँ, अगर बाय द वे आपके प्रोग्राम के माध्यम से किसी को अगर कोई फीलिंग आए और वो मेरे से अगर कभी भी कांटेक्ट करना चाहे ना, मैं रेडी हूँ
1: जी जी जी। क्या
0: तो
1: बात,
0: कभी भी किसी भी तरह का मोटिवेशनल गाइडेंस या टेक्निकल गाइडेंस या कुछ भी अगर ऐसा चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस जितने भी हैं मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं करता हूँ
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अगर कोई और व्यक्ति भी ऐसा हो जो नए बच्चे बनना चाहते हैं, वो भी अगर मेरे से शेयर करते हैं या मेरे से विचार विमर्श करते हैं, कुछ लोग आके घर आके भी बात करते जाते हैं
1: जी,
0: जो मेरा इंटरव्यू है मैं क्या करूँ क्या कहूँ, इस तरह की बातें करते हैं। फोन पर भी कई लोग मेरे से राय लेते हैं
1: जी जी जी।
0: लेकिन फिर भी मैं और ऑफर ये दे सकता हूँ, मेरी तरफ से इतना कर सकता हूँ
1: जी,
0: अगर कभी भी जो मुझे नहीं भी जानते हैं
1: जी,
0: तो बाय द वे अगर वो मेरा सोर्स कोई ढूंढ के किसी आप लोगों के माध्यम से या किसी भी तरह से मेरा फोन नंबर लेते हुए कैसे भी आए कॉन्टेक्ट करें,
1: निश्चित रूप से जो भी संपर्क करेंगे उन्हें आपका नंबर दे दिया जाएगा सर, ताकि जी जी जी लोग सीधे आपसे बात कर सके। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैम से बात करते हैं, काफी लंबी चर्चा हो गई और ये बहुत जरूरी भी है सर, कुछ चीजें क्लियर भी होना, लेकिन एक घंटे में सब कुछ समाहित भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के आपका संघर्ष प्रशासनिक सेवा में ज्यादा रहा, पारिवारिक और घरेलू संघर्ष तो कुछ इस तरह का नहीं रहा आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात।
0: घरेलू संघर्ष नहीं रहा, घरेलू संघर्ष शुरू में कोई मतलब, फिर हर हर फील्ड में घरेलू सामाजिक में भी ऐसा होता है
1: जी,
0: कि आप जिन लोगों से परिचित नहीं है ना
1: जी,
0: उन लोगों में एस्टेब्लिश होने में आपको थोड़ा समय लगेगा
1: जी जी जी।
0: मतलब ऐसा हो चुका है कि मुझे बस में ट्रेवल करते टाइम भी कुछ लोगों से मतलब अनकंफर्टेबल फील हुआ
1: जी,
0: लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं है इसलिए हुआ है। तो लेकिन मैंने फिर ये देखा कि अगर वो आधे घंटे एक घंटे मेरे साथ रहा वो मान लो उसी बस, फिर उससे मुझे अनकंफर्टेबल फील ना तो मैं कर रहा था ना वो कर रहा
1: जी।
0: तो ये मैं सभी को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पूरी मेहनत से पूरी अपनी शक्ति लगा के मेहनत कीजिए। ये कभी मत सोचो कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी मत सोचो कि हम कोई सुपरमैन है सब कुछ कर पाएंगे, इसलिए ऐसा करो कि जो जरूरत है वो सब करो
1: जी। जी मैम, तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताएं निर्मला मैम हमारे सुनने वालों को। जी कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल?
2: दो बच्चे हैं
1: जी मैम,
2: एक की तो गुड़िया की तो हो गई शादी।
1: अच्छा मैम जी,
2: वो अपने ससुराल में है
1: जी, तो वो जॉब करती हैं गुड़िया?
2: वो नहीं करती है अभी तो फिलहाल, पहले करती थी
1: जी,
2: अब शादी होने के बाद वो थोड़े दिन तो नहीं करी
1: जी,
2: फिर अब सोच रही है करने की। तो जो उसका हस्बैंड है उनका गुड़गांव में पोस्टिंग हो गई
1: जी,
2: तो अब कोरोना के चक्कर में गए नहीं, तो वहां जाने के बाद वापस।
1: वाह बहुत। और कौन है उनके अलावा? जी
2: इंजीनियर है।
1: अच्छा वेरी गुड जी मैम।
2: है वो जी, अमेरिकन कंपनी है ऑटोमेटिक करके
1: जी, जी तो मैडम सर तो प्रशासनिक सेवाओं में रहे का समय सारा, बल्कि एक्स्ट्रा समय भी सर का तो वहीं लग जाता होगा सारा, और घर की परिवार की और बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी ज्यादातर आप पर ही रही होगी, कभी कोई मुश्किल आई आपको?
2: नहीं कोई खास मुश्किल, अब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल आती ही है
1: जी,
2: तो कोई खास नहीं है, हम दोनों ने मिल के
1: कभी आपको ऐसा हुआ कि कोई शिकायत रही सर से? मैं जानता हूँ कार्यक्रम में वैसे आप मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं किसी मोड़ पर आपको लगा हो?
2: कोई शिकायत तो मुझे गई
1: जी जी जी,
2: शुरू में आई थी तो हिंदी कम आती
1: जी मैम जी मैम,
2: तो उसमें मुझे घर में से होने की सबके साथ बोलने की थोड़ी सी परेशानी तो हुई
1: जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये तो
0: एक्चुअली वही हुआ जो अभी मैं कह रहा था ना कि शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है
1: जी सर जी सर,
0: और जैसे जैसे समय बीतता है
1: जी,
0: ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी हम लोग में विरोधाभास नहीं हो, लेकिन हमें इतनी क्षमता है कि हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं समझते हैं मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और
2: ऐसे ऐसे जैसे दिक्कतें हुई
1: जी मैम,
2: ट्रेवल करने में इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे सर ने बताया कि कुछ ऐसे होती थी बसों में और ऐसे लोगों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा।

0: resource más que ahorita tengo tu casa más eso, no me conoce y a pues
1: जी, बहुत धन्यवाद मैम। तो सर, अब कार्यक्रम के ठीक अंत में मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे सभी सुनने वालों को अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए प्लीज।
2: बस मैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरे पूरे प्रोग्राम में संदेश ही देता रहा हूँ,
1: जी,
2: संदेश से भी ज्यादा उपदेश हो गया है। बाकी
1: जी।
2: बाकी थोड़ा क्या है कि ये तो रिटायरमेंट की लाइफ में शायद हो ही जाता है कुछ ऐसा
1: जी
2: कि
1: जी
2: वो उपदेश बन जाते हैं।
1: जी
2: बाकी एक्चुअली मैं ये क्या है कि मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ,
1: जी
2: इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि केवल आरएएस बहुत अच्छी सर्विस है, इस आधार पे आरएएस में जाने के लिए मत ट्राई कीजिए। केवल
1: जी
2: ये सोचिए कि आपकी रुचि क्या है, आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे इसमें जाना चाहिए, ब्लाइंड हूँ इसलिए इसमें नहीं जाना चाहिए, ये मत सोचिए।
1: वाह, बिल्कुल
2: सोचिए ये सोचिए कि आप किसमें, मतलब आपका मन किसमें है, दिल किसमें है। खाली दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से विचार विमर्श करके और फैसला करो। और अगर कोई, वैसे जहां तक इस प्रोग्राम का की थीम है हमराई के हिसाब से, उस हिसाब से अगर शादी के बारे में अगर किसी को भी डिसीजन लेना है ना, तो ओवरऑल एक पैकेज के रूप में चर्चा करके विचार विमर्श करें, न कि केवल एक किसी चीज पर कि भाई ये इसकी आंखें खराब हैं, इसकी टांग खराब है, इसका दिमाग खराब है, इसका इनकम नहीं है, या इसकी एजुकेशन कम है, मतलब एक किसी चीज को फोकस नहीं करें बल्कि ओवरऑल पैकेज के रूप में उसको देखें और अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से खुले दिमाग से सोच कर डिसाइड करें तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और हमेशा डेमोक्रेटिक बने रहिए, कभी ये मत सोचिए कि मैं हूँ तो मेरी बात हमेशा सही है, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात गलत हो। और गलत जैसी कोई बात नहीं है, तो ओपिनियन होते हैं ना, गलत नहीं और सही नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते,
1: जी
2: इस बात को हमेशा स्वीकार करें कि
1: जी
2: वो आपस में ओपिनियन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, गलत और सही नहीं होते,
1: बिल्कुल सही है सर।
2: एक दूसरे को सोच के समझ के विचार विमर्श करें, उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं से करने के लिए। तो
2: थैंक यू वेरी मच।
1: जी, उम्मीद है श्रोताओं आपको आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए डायल करें 94-1415-1415। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से, रेडियो मधुबन के ही नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर कर सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। और इजाजत दीजिए आज, तो मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी को समझना चाहें तो किसी कवि की नजर से देखें या किसी साइंटिस्ट की नजर से देखें जो तथ्यों को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ कवि हर एक नजारे में जिंदगी ढूंढ लेता है, यानी कि पर्सपेक्टिव तो कई हैं, लेकिन जिंदगी को आप किस नजर से देखते हैं उसी रंग में रंगी होती है आपकी जिंदगी। चलिए आइए एक और नया रंग इसका खोज निकालते हैं। आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट जुड़ गई हैं और हम स्वागत करना चाहते हैं। ग्लोबल अस्पताल से हमारे समक्ष जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, हमेशा ही अपने श्रोताओं से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से भले हम बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये टू वे प्रोसेस होती है। जब हम कुछ शेयर करते हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होता है। सो खुशी होती है कि हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है।
0: जैसा आपने कहा कि लर्निंग लेसन है, तो जिंदगी के लिए कहा भी जाता है कि जैसे समुन्दर की तरह है, आप जितना जाने उतना कम है, कुछ ना कुछ और नया जरूर मालूम पड़ता रहता है। इमोशंस के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें करी थी, उनको कैसे रेट करें, कैसे समझें, कैसे रिप्लेस करें। आपने बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई थी रिकवर करने के लिए, कैसे खुद के साथ हम काम कर सकते हैं। एक ऐसी चीज है जो आज सबको बहुत ट्रबल कर रही है और हमें सुनने में देखने में भी बहुत ज्यादा आ रही है, और वो है सेंसिटिविटी। मतलब हम जितने भावनात्मक हैं, भावनात्मक तो लोग पहले भी रहे होंगे और हमेशा ही होते हैं, लेकिन अभी ये बहुत देखने में आने लगा है कि बहुत जल्दी किसी की बातों का बड़ा असर पड़ जाता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं, एकदम ठीक होते हैं, पर एकदम ठीक से एकदम नेगेटिव जाने में जैसे समय ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, अभी जो जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती है। पहले की जनरेशन हम देखते थे कि बड़ों की मार या बड़ों की कही हुई बातें या बड़ों की दी हुई शिक्षा, चाहे वो गुस्से में ही क्यों न दी गई हो, उसे बच्चे, युवा या जो भी उम्र के लोग हैं सब मान लेते थे, क्योंकि बड़ों के लिए एक रिस्पेक्ट था और उनके अनुभव से सीखने की भावना थी। तो अब वो कहीं नहीं रही है। हम जानते हैं हमारे स्कूलों में भी आजकल टीचर्स अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ठीक है पहले जमाने में मारते थे तो कोई नुकसान भी होता था, लेकिन बच्चों को शिक्षाएं भी उसी तरह की मिलती थी। अब हमारे स्कूलों से छड़ी तो चली गई है, बट अगर आप हाथ से भी किसी को लगाएंगे तो भी उस टीचर पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए टीचर डरते हैं। इनफैक्ट मैं जिस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, वहां के टीचर्स से जब बात होती है तो कहते मैम अभी आजकल स्टूडेंट हमें धमकाते हैं कि आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, हम कंप्लेन कर देंगे। अगर हम बोलना भी चाहे, उनको डांटना भी चाहे, तब भी वो सह नहीं कर सकते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं। उनके पेरेंट्स आकर कंप्लेन करते कि हमारे बच्चे को आपने क्यों डांटा, क्यों बोला। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चाहे जो भी बड़ा हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, या सोसाइटी में कोई भी बड़ा हो, वो छोटों को सही गाइडेंस और शिक्षा दे पाए। परंतु छोटों में अभी बड़ों के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहा है, और इसीलिए वो किसी की बात सुन नहीं सकते हैं। वो समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं जो ये बड़े नहीं जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का समंदर उनके सामने खुला हुआ है। सो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण है जिसके कारण हमारी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। हमें कोई कुछ बोल दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। कई बार वो बुरा लगना इतना दूर तक चला जाता है कि कई कई बच्चे या युवा सुसाइड भी करने लगे हैं। वो हर्ट होते हैं कई बातों से, और फिर वो सहन न करने के कारण सुसाइड के बारे में सोचते हैं या सुसाइड कर ही लेते हैं। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो जमाना जैसे बदलता जा रहा है तो कारणों को पहले हम देखते हैं कि क्या कारण है। मोबाइल और इंटरनेट के इस जमाने में बच्चों को तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपने कभी कोई टेस्ट दिया हो कंप्यूटर से, तो वो तुरंत आपको रिजल्ट्स देता है, तो हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक जो आदत हमारी बढ़ गई है इस सोशल मीडिया के जमाने में, इंस्टेंट, अभी अभी सब कुछ चाहिए. इसलिए अगर फूड आपने ऑर्डर किया है और वो थोड़ा देरी से आता है तो आपका गुस्सा बढ़ जाता है. उस लाने वाले पर हम गुस्सा करते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि उसको आने में कोई दिक्कत हुई होगी. क्योंकि आपने बोला है हाफ एन आवर में हम पहुंचा देंगे, तो अगर नहीं आते हैं 5 मिनट तो उस पर गुस्सा आता है. कई बार तो उनको तंग करने के लिए डिले करना, मतलब कई सारी बातें. तो फर्स्ट रीजन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. तुरंत सब कुछ अभी अभी चाहिए, ये मानसिकता विकसित हो गई है. प्रतीक्षा न करने की क्षमता हो गई है कि हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी चाहिए. जो चाहिए वो अभी चाहिए.
0: आदत ही हो गई थी, जैसे आपने कहा इंटरनेट भी तुरंत तुरंत रिजल्ट, डिलीवरी भी फास्ट, सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, क्विक हो रहा है. तो ना क्विक हो ये तो ऐसा लगता है गलत है, जैसे कोई हमारे साथ रॉन्ग कर रहा है या फिर मेरा अधिकार है उसके ऊपर. जैसा आपने कहा डिलीवरी वाले, ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं. मुझे तो क्या ये बचपन से, मतलब ये जैसा आपने कहा पहला कारण था, इसके अलावा भी और कोई कारण?
1: बहुत सारे कारण है जिसे हमें देखना जरूरी है. बच्चों को आजकल टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा भावनात्मक प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है. जो ट्रेनिंग हमारे फैमिली सिस्टम में, हमारे कल्चर में था कि हम इमोशनली कैसे अपने आप को मैनेज कर पाए, उसका शिक्षा हमारे घरों में या हमारे स्कूल में नहीं मिल पा रही है. बच्चों को पढ़ाई और करियर की शिक्षा तो मिलती है, लेकिन भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना हम नहीं सिखा पा रहे हैं. ये हमारी कमी है, चाहे वो घर या परिवार का सिस्टम हो, चाहे वो स्कूल का सिस्टम हो. बड़े भी अपनी भावनाओं को दबाते हैं, व्यक्त करने का जो ट्रेनिंग है वो उन्हें भी नहीं है. तो छोटे भी या तो सप्रेशन करते हैं या तो फिर गुस्से के माध्यम से, अग्रेशन के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करने का तरीका भी काफी वायलेंट होता है.
0: बहुत दिखाई पड़ रहा है आजकल ये कि बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो कुछ चीज फेंक दी या कैसे भी रिएक्ट कर दिया, दरवाजा जोर से मार दिया, और भी अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करते हैं.
1: तो इसके बजाय हमें भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा. अगर हमें कोई ना सिखाए तो हमें खुद से ही सीखना होगा कि हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए. ये एक और कारण है. तीसरा कारण है, इस समय प्रतिस्पर्धाओं के कारण तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है. कॉम्पिटिशन इतना हाई हो गया है. एडवांस पीढ़ी हमारे सामने है, तो कई सारे दबाव है. पढ़ाई का दबाव है, नौकरी का दबाव है, फाइनेंशियल प्रेशर्स है. इन सभी प्रेशर्स के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है, और इसके कारण उसकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं बहुत ज्यादा हाइप पर पहुंच जाती है, फ्रस्ट्रेशन की लेवल पर जाती है.
0: बच्चों में भी इतना तनाव है दीदी, बच्चों में भी इतना स्ट्रेस है.
1: जी बहुत बहुत स्ट्रेस है. अगर आप किसी बच्चे को उसका स्कूल बैग ले जाते हुए देखेंगे तो आपको उन पर दया आएगी कि अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतना वजनदार बैग उठा के लेके जा रहे, बोझ हो रहा है. ये भी रीजन है कि सहनशीलता कुछ कम हो गई है. छोटी छोटी असफलताएं सफलता मिलती जाती है, असफलता मिलती है. सफलता को पचाना आसान है या फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी भी असफलता आती है तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं. तो सफलता के अलावा असफलता भी सफलता की सीढ़ी है
0: जी,
1: ये नहीं समझ पाते, इसीलिए सहन नहीं कर सकते.
0: मुझे तो लगता है बच्चे शायद डबल प्रेशर में. पहले बच्चों के पास सिर्फ कॉम्पिटिशन होता था जो बच्चों के लेवल का होता था. अब जो बड़े होके लोग सोचते थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसा, अब वो बचपन में वो भी प्रेशर आ गया है और बच्चों वाला प्रेशर भी है, तो डबल डबल प्रेशर आ गया बच्चों पे. तो
1: बिल्कुल यही सिनारियो है. सोशल मीडिया में जब हम, आजकल हर एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जब हम दूसरों की खुशहाल परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं, है ना, आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए होता है, चाहे वो पोस्ट देना है या फोटोज निकालने हैं या वीडियोस निकालने हैं. तो लोग चाहे अपनी जिंदगी में कितने भी दुखी हो, परेशान हो, लेकिन वो अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, और उस परफेक्ट पोस्ट को देखकर जो साधारण लोग हैं जिसकी सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है।
0: ऐसी लगता है देख के, बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है कि उनका ये वो वहाँ वेकेशन पे गए, उन्होंने ये कपड़े पहने, इससे वो मिले या सब, और एडमायर करते हैं नीचे तो कमेंट करते हैं कि तुमने बहुत ये किया, कमाल किया, और मेरी पोस्ट पे कम कमेंट है, कम लाइक्स है, तो भी बड़ा वो फील होता है।
1: इस जगह पर जो हमारा आत्मसम्मान है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे कहा जाता है कि देखो आजकल जो दिखता है वो बिकता है
0: जी,
1: है ना। तो सोशल मीडिया भी होड़ लगी हुई अपने आप को दिखाने की, अपने आप को पब्लिसिटी लेने की
0: जी,
1: तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है
0: जी,
1: देखिए सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो सुंदरता की बात कर ले, चाहे वो हेल्थ की बात कर ले, चाहे वो आर्थिक स्टेटस की बात कर ले, सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता है, किसी के पास कुछ कम, किसी के पास कुछ ज्यादा हो सकता है, ये वास्तविकता है। इसे स्वीकार न करने के कारण जो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है, ये भी एक रीजन होता है। जल्दी जल्दी मुझे उनके जैसा बनना है, बट जल्दी में कुछ नहीं होता है, हर चीज अपना टाइम लेती है। जब हम धरती में बीज बोते हैं तो वो अपने टाइम पर अंकुरित होता है। मैंने कल एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पेशेंस की कहानी है।
0: okay.
1: तो एक बैम्बू का जो पेड़ होता है ना, बैम्बू का पेड़, सो उसका जब बीज लगाते हैं हम, तो वो जमीन के नीचे कई सालों तक वो ऊपर नहीं आता है उसका अंकुर, कई सालों तक उसका अंकुर नहीं।

0: अंदर ही अंदर जमीन के अंदर रहता है, और कई सालों के बाद जब उसका अंकुर फूटता है, धरती के ऊपर उसका अंश आता है, तो कुछ ही महीनों में वो बहुत लंबा हो जाता है।
1: अच्छा
0: इसका कारण क्या है? धरती के नीचे उसने गुप्त रूप से अपने आप पर काम करने में इतना समय लगाया, और जैसे ही धरती के ऊपर आया, कुछ ही समय में वो अपनी हाइट पकड़ लेता है। तो हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, अपने आप के साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आरुषि आपको देखती हूँ, आप
1: जी
0: में बोलने की इतनी सुंदर कला है, आपकी आवाज इतनी मधुर है, और बहुत सारी कलाएं आपके पास है। अगर मैं आपके साथ कंपेयर करने लगूं और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दूं, तो मैं उसी में रह जाऊंगी, और अपने में जो कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, उसे निखारना, उसे यूज करना रह जाएगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम सेल्फ एस्टीम के नाम से भी जानते
1: और
0: हैं।
1: उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत चला जाता है, क्योंकि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे दूसरों को देख के हमेशा ये लगा कि वो ज़्यादा बेटर है मुझसे, दिखने में बेटर है और चीज़ों में बेटर है। तो जैसे कॉन्फिडेंस चला गया था, एक क्लास में एक हाथ उठा के सवाल पूछने का भी कई सालों तक कॉन्फिडेंस नहीं था इस कारण से, तो बहुत असर पड़ा एक लंबे समय तक।
0: यही होता है ना, बचपन से लेकर हम किस माहौल में पले, हमारा एनवायरनमेंट हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत असर डालता है। एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हम गलत चीजों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं। मुझे याद है कि मैं जिस क्लास में पढ़ती थी, वहां पर कमिश्नर्स के बच्चे और बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे आते थे, और
1: जी
0: हम तो सामान्य परिवार से जाते थे।
1: जी
0: तो वो लोग, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की जहां बात आती है,
1: जी
0: तो उन्हीं के क्लास में हम बैठकर पढ़ते थे। इतना ज्यादा हम पढ़ाई में भी होशियार नहीं थे, बट कभी भी हमें उनके बड़े होने का, चाहे वो फाइनेंशियली या पोजीशन से बड़े होने का, हम पर कभी असर नहीं हुआ, हम कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। जो हमारे पास है, उसको सजाने में, संवारने में, निखारने में हम लगे रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग हमसे दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते थे, तो वो लोग चाहते थे कि हम इनसे दोस्ती करें। और मेरे तो सारे ही ऐसे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, जो बड़े परिवारों से आते थे, हमारे छोटे से घर में आकर पढ़ाई करते थे हम एक साथ, हमारे घर से वो खाना खाते थे, और मैं कहती थी सॉरी यार, आप लोग इतने बड़े बड़े घर से हो और हमारे घर में ऐसा सिंपल सा खाना है और सिंपल सा हम रहते हैं। वो बोलते थे कि नहीं, ये ही हमें अच्छा लगता है, हमें अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता, आपके यहाँ का सिंपल अच्छा लगता है। सो ये पता चलता है कि जब आप अपने आत्मसम्मान में रहते हैं, तो सामने से आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है,
1: मतलब
0: वो
1: खुद को
0: हमारे,
1: रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरों से मिलता है। नहीं तो बहुत मेहनत लगती है और मिलता बहुत कम है।
0: सो ये जो हमें सीखने की बात है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में,
1: जी
0: अगर मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसका हर बार धन्यवाद करती जाऊं, उसके लिए शुक्रगुजार होती रहूं कि अरे मेरे पास थोड़ा है लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं, तो वो सेटिस्फेक्शन हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ले जाता है, चाहे वो सुंदरता की बात क्यों ना हो। आजकल के यूथ ज्यादा अट्रैक्टिव या सुंदर दिखने में मानते हैं,
1: जी
0: परंतु कई ऐसे लोग हैं जो सुंदर नहीं है परंतु टैलेंटेड है, तो लोग उनके टैलेंट को पहचान कर उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको काम मिलता है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट का कमाल है।
1: दीदी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी और मुझे, मतलब अभी उनका नाम याद नहीं है, बट उन्होंने वही कहा था कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप वेयर करते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप कॉन्फिडेंटली कुछ पहनते हैं तो वो लोगों को अच्छा ही लगेगा, आप उसमें अच्छे ही लगेंगे, पर आपको ही लग रहा है कि नहीं, मैं कम हूँ, नहीं मैं अच्छी नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो शायद फिर वही लोग भी वैसे ही सोचते हैं। यहाँ भी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, हर रोज हम आईने में देखते हैं ना, आईने में देखते हैं, खुद को देखकर खुश होते हैं, तारीफ करते हैं हम अपनी खुद को देखकर खुश होते हैं, अरे वाह क्या बात है, आप कितने अच्छे हो। सो एक बार मैं एक किसी हॉस्टल में रह रही थी, तो वहां पर जो केयरटेकर था, उसने लड़कियों के मिरर पर एक लाइन लिख के रखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे लाइफ में उस लाइन ने बहुत ज्यादा मदद की मुझे। उसने लिख कर रखा था, रूप को नहीं रूह को देखो।
1: काफी गहरी लाइन है क्योंकि दिखता तो वही है दीदी, अभी सामने तो वही दिखता है कि बाल कैसे हैं, पहना क्या है, पर्सनालिटी में कहीं थोड़ी सी मोटी तो नहीं हो गई या कहीं पे कुछ तो नहीं हो गया। वो बहुत बड़ा लगने लगता है कभी कभी, क्योंकि बार बार लोग याद दिलाते ना, बोलते हैं अरे तुम, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे, और कॉलेज में अगर खास तौर से लोग बोलने लगे तब तो ऐसा लगता है हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूम रही है उस समय।
0: अगले कारण की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्यों सहनशीलता की कमी हो गई है
1: जी।
0: अगला कारण है परिवारों में अभी संवाद की कमी रह गई।
1: ओके।
0: माता पिता बच्चे इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। कल ही मेरे पास एक पति पत्नी आए थे, पत्नी को साइकोसोमैटिक डिजीजेस हुए थे, जैसे माइग्रेन था, बॉडी एक था, लेथार्जिक थे, नींद गायब हो गई थी, ये सारे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं। जब उसकी जड़ में जाने की हमने कोशिश की तो उसने कहा कि घर में कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, हमारी जॉइंट फैमिली है, सब लोग मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, और चलो सब तो करते ही है लेकिन मेरे हस्बैंड भी उनमें शामिल हो जाते हैं, सो मुझे किसी की तरफ से अपनापन महसूस नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं, मैं क्या चाहती हूँ उनसे कि वो आए बैठे मेरी बात सुने, हम दोनों एक आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करें, बट वो आते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मेरी तरफ नजर भी नहीं होती है। सो आजकल ये संवाद की कमी की वजह से हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल से संवाद करना इजी समझते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करना कठिन महसूस होता है। तो ये जो कारण है, इस वजह से भी हमारी जो सहन शक्ति है, टॉलरेंस है, कम होता जा रहा है। सो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं रेडियो पर आती हूँ
1: जी,
0: अच्छी अच्छी बातें होती है।
1: बहुत एग्जैक्टली भी मालूम चलता है कि कहाँ से शुरू करना है, नहीं तो वे कह रहे हैं बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं तो आंसर नहीं मिलता, यहाँ इस प्रोग्राम में आंसर मिलते हैं।
0: कई बार क्या होता है कि अभी हमारे पास बोलने की भी कला नहीं रही है, हम अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त कर सके, ये आर्ट भी हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल दुनिया में सब कुछ इजी, जैसे अभी हम इंटरनेट पर जाएं, हमें कुछ भी बोलना है हमें लिखकर मिल जाएगा, हम उसके लिए सोचते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त करने के लिए डरते हैं कि अरे मैं कन्वे कर पाऊंगी या नहीं अपनी फीलिंग्स को, तो वो शब्द अभी कहीं लुप्त तो होते जा रहे हैं।
1: बोल देते आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं नहीं समझा सकती, ऐसा भी होता है, डिफिकल्ट। तो मतलब कम्युनिकेशन की कमी भी है, और कोई कारण है दीदी?
0: जी बिल्कुल है। देखिए पहले जमाने में हर चीज हमें स्ट्रगल से मिलती थी, है ना, कि नहीं कुछ मेहनत करो तो कुछ मिलेगा,
1: तब मिलेगा,
0: लेकिन अब सब कुछ इजीली मिलता है। सफलता का भी यही हाल है कि असफलता लोगों को मिलती ही नहीं है, या मिले तो वो उसे पचा नहीं सकते, और कठिन लाइफ नहीं रही है। पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे की लाइफ वो बहुत सुविधाजनक कर दे,
1: बिल्कुल,
0: परंतु सुविधाजनक लाइफ को बनाते बनाते बच्चों को हम आलसी बना रहे हैं, उनको लाइफ की डिफिकल्टीज का सामना करने की आदत ही नहीं होती है। सब कुछ मिल रहा है, जो याद है बहुत अच्छी घटना है
1: जी।
0: गोवा में एक परिवार था, उनके कई सारे दुकान थे स्टेशनरी के, हमारे परिचित थे, उनके दो बेटे थे, अब काफी अमीर व्यक्ति थे वो, तो हम एक बार उनको विजिट कर रहे थे, उनके बेटे ने कहा मुझे घड़ी चाहिए, तो काफी दिन से वो कह रहा था मुझे घड़ी चाहिए, काफी महीने हो गए थे, उसके पिता बोल रहे थे हाँ मिल जाएगी दे देंगे मिल जाएगी। मैंने उनको पूछा कि क्या बात है, एक घड़ी की तो मांग है, आप क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, दे देते तुरंत उसको, आपके पास नहीं है ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उस घड़ी की वैल्यू उसको तभी समझ में आएगी जब कुछ मुश्किलातों के बाद उसे वो मिलेगी, या कुछ मेहनत के बाद मिलेगी।
1: ओके, तो उनकी थिंकिंग ऐसी थी बचपन से ही उनको तैयार करना कि जो चाहो वो तुरंत नहीं मिल जाता, जो आज नहीं हो रहा है शायद।
0: चुनौतियां तो हर एक के लाइफ में आती है। आप कब तक किसी के लाइफ की चुनौती से उसको बचा सकते हैं? उसकी चुनौतियां हैं, सामना भी उसको ही करना होगा। अगर वो हम डेवलप नहीं करते हैं तब फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है,
1: फिर जब अचानक से फेस करना होता है तो नहीं,
0: एंगर, ये सारे इश्यूज इसी की देन है।
1: ओके, तभी लोग कहते हैं कि अब शायद ये ज्यादा शब्द सुनाई देने लगे, पहले इतना नहीं देते थे। हालांकि अवेयरनेस भी बड़ी है, विच इज वेरी गुड। निधि, आपने कई कारण बताए आज कि हम क्यों और सेंसिटिव होते जा रहे हैं, क्यों अपने भावनाओं को इस कदर समझ नहीं पाते या फिर बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है मूड हमारा। क्या हम उसके लिए जाते जाते कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं कि जो हमें आज हेल्पफुल हो? हालांकि इस टॉपिक को और गहराई से हम आगे समझेंगे कि ये जो आपने कारण बताए इनके लिए करना क्या है ये भी जानेंगे, मगर क्योंकि आज की समय सीमा यहीं तक इजाजत देती है, तो क्या कुछ मेडिटेशन या अफर्मेशंस जो आप बताएं हम प्रैक्टिस कर सके?
0: बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत जरूरी है करना। सो हम कुछ मिनटों के लिए उन अफर्मेशंस को अपने आप में स्टोर करने के लिए अपने मन की तैयारी करते हैं। जैसे धरती में बीज बोने से पहले धरती को तैयार किया जाता है, वैसे ही अपने आप को हम फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करें। मैं अनुरोध करूंगी अपने श्रोताओं से कि वो जहां कहीं भी है 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाए, रिलैक्स करे अपने शरीर को, मन को शांत और एकाग्र करे, गहरी और लंबी सांस ले, पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र करें, मन की सीट को, धरणी को तैयार करें जिस पर अभी बहुत खूबसूरत बातों का बीजारोपण हम करने जा रहे हैं। धीरे धीरे शांत मन से प्रत्येक प्रश्न का भीतर से अनुभव करें। मैं हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के सामने सदा शांति से उपस्थित रहती हूं। हर परिस्थिति को मैं शांति के साथ डील करती हूं। मैं महसूस कर रही हूं कि मेरे भीतर धैर्य और सहनशीलता सहजता से बढ़ रही है। मैं हर चुनौती को सीखने का अवसर समझकर उसका सामना करती हूं। मेरा मन परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिर और शांत रहता है। मैं हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को जो है जैसी है वैसे ही स्वीकार करती हूं। मैं प्रतिक्रिया करने के बजाय समझदारी से उत्तर देना पसंद करती हूं। गहरी और लंबी सांस ले, कठिन परिस्थिति में भी मैं अपना आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखती हूं। गहरी लंबी सांस ले, जो वाक्य हमने सुने हैं उसे अपने मन में कई बार दोहराएं, रजिस्टर करें। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। ये जो आपने कुछ लाइंस बोली, ये मुझे लगता है हम सभी लिख कर रख लें ताकि भूले नहीं और इन्हें लगातार प्रैक्टिस करें
0: जी।
1: और जो आज हमने कारण जाने, हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि कहीं मुझे कोई कारण इनमें से परेशान तो नहीं कर रहा। कुछ सॉल्यूशंस आप अपने अंदर से खोजें और कुछ हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे अगले एपिसोड में भी। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।
0: जी शुक्रिया, धन्यवाद।
1: और दोस्तों आपसे लेते हैं इजाजत इसी वादे के साथ कि मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी से दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

0: ये आजादी के सुनहरे सवेरे से पहले गुलामी की उन अंधेरी रातों की कहानी है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी के बजाय एक कानूनी अंधेरा लेकर आती थी। धरती की मांग स्वार कर फसल उगाने वाले किसान पर नए नए लगान जारी करके उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जाता। किसान खून पसीना एक करता, फसल जवान होती, मगर इस पर किसान का कोई हक ना होता। मेहनत हिंदुस्तान की, कमाई जालिम सरकार की। ऐसा होने से भूख और त्राहिमान बढ़ने लगा। हुकूमत चाहती भी यही थी कि किसानों के देश को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया जाए। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा में आज आप सुनेंगे देश के इतिहास का एक और अध्याय जो जुड़ा हुआ है मातृभूमि की नींव से। आज हम सुनेंगे उस शख्स की कहानी जो देश पे जान लुटाने वाला और देश का सच्चा भक्त है, भगत सिंह की कहानी, जिनके पास बन्नो भी पहुंच चुकी है। तो आइए सुनते हैं देश के युवा क्रांतिकारी की कहानी।
1: चाचा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगत सिंह जी कहाँ मिलेंगे?
2: बेटा,

0: जी तो अभी अपने साथी सुखदेव के घर पर रुके हुए हैं। तुम आगे आ गई हो, इसके पहले वाली गली में है उनका घर।
1: अच्छा चाचा, धन्यवाद।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: कोई है?
2: हाँ जी, कौन?
1: मैं हूँ बन्नो, मुझे भगत सिंह जी से मिलना है।
2: आप कौन जी और मुझसे क्यों मिलना?
1: मैं हूँ बन्नो, मुझे सब प्यार से पुचकी बुलाते हैं। मुझे गांधी दादू ने भेजा है आपके पास कहानी सुनने के लिए।
2: कहानी? कैसी कहानी?
1: अरे बाबा, आपकी कहानी, देश के स्वाधीनता की कहानी।
2: अच्छा ठीक है, पहले तुम अंदर आओ। एक बात बताओ बन्नो, तुम इस सदी की तो नहीं लगती, फिर कहां से आई हो?
1: मैं 21वीं सदी से आई हूँ और स्वाधीनता की कहानी सुनना चाहती हूँ आपसे।
2: अच्छा ठीक है, चलो तुमको उस दौर में ले चलता हूँ जहाँ इंकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये हमारे दिल की धड़कन थी। 8 अप्रैल 1929 का दिन, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ अंग्रेज अधिकारी और उनके भारतीय समर्थक एक के बाद एक दमनकारी कानूनों पर अपनी मोहर लगा रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये कानून हमारी आवाज को कुचलने और मजदूरों के संघर्ष को रोकने के लिए लाए गए थे।
1: फिर आपने क्या किया? कैसे आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई?
2: हमारा संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम जानते थे कि यह सरकार जनता की भावनाओं से पूरी तरह अनजान है, उसे केवल अपनी सत्ता की भूख और दमनकारी नीतियों से मतलब है। हमने बहुत सोचा और फिर तय किया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इन बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचा सके।
1: वो कैसे किया? बम फेंक कर? उनके कान के ताले तोड़े थे क्या?
2: हाँ बम।
1: लेकिन उससे तो लोग जख्मी हो जाएंगे ना?
2: नहीं नहीं, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना था जो जानबूझकर बहरे बने हुए थे। हमने बमों को इस तरह से बनाया था कि उनसे जान का खतरा कम से कम हो। वो धुआं और शोर पैदा करने वाले थे ताकि पूरा सदन हमारे मकसद को नजरअंदाज ना कर सके।
1: बाप रे, ये सब आपने अकेले किया?
2: अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा साथी बटुकेश्वर दत्त था। हम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। हमने सोच लिया था कि हम भागेंगे नहीं बल्कि गिरफ्तार होंगे ताकि अपनी बात को अदालत के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके। असेंबली में उस वक्त अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। जैसे ही बिल पर चर्चा शुरू हुई, हमने योजना के मुताबिक कार्यवाही शुरू कर दी। पहले बम का धमाका हुआ, पूरा हॉल धुएं से भर गया, लोग अपनी कुर्सियों से उठकर भागने लगे। कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी मच गई, फिर बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। बम फेंकने के बाद हमने अपनी जगह से खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिया, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद हमने हवा में लाल रंग के पर्चे फेंके।
1: क्या लिखा था उस पर्चे पे?
2: उन पर्चों पर हमने लिखा था, बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। हमने साफ साफ लिखा था कि हमारा मकसद किसी की हत्या करना नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध करना है। जब पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई तो हमने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा काम पूरा हो चुका था, हमने वो संदेश दे दिया था जिसे यह बहरी सरकार कभी सुनना नहीं चाहती थी। हम जानते थे कि हमें सजा मिलेगी लेकिन यह सजा हमारे लिए गर्व की बात होगी।
1: लेकिन आप दुनिया को क्या बताना चाहते थे?
2: हम दुनिया को बताना चाहते थे कि क्रांतिकारी सिर्फ गोली नहीं चलाते बल्कि वो विचारों की क्रांति भी करते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति के प्रतीक मात्र हैं। असली क्रांति तो विचारों की दुनिया में होती है और हमारी क्रांति की आवाज दिल्ली की उस असेंबली से निकलकर पूरे देश में गूंज चुकी थी।
3: इंकलाब जिंदाबाद।
1: वाह क्या बात है, आपने तो असंभव को संभव कर दिया।
2: चल बन्नो तुझे मैं एक और कहानी सुनाता हूँ।
1: एक और कहानी?
2: हाँ सुनोगे?
1: क्यों नहीं, जरूर सुनाइए सुनाइए।
2: ये कहानी है हमारे लाला जी की, लाला लाजपत राय की। लाला जी, हम उन्हें पंजाब केसरी कहते थे। उनकी एक आवाज पर पंजाब का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता था। 30 अक्टूबर 1928 का दिन, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हम लाहौर में इकट्ठे हुए थे। उस दिन सड़कों पर एक नया जोश था, एक नई ऊर्जा थी। हम सभी अपनी आवाजों को एक साथ बुलंद कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेजों को यह सहन नहीं हुआ। उनका एक अधिकारी स्कॉट, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था, उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और उस लाठी चार्ज में लाला जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने देखा नहीं था कि कौन मार रहा था, बस इतना कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उनका यह बयान उनकी अंतिम इच्छा बन गया। एक महीने बाद 17 नवंबर को लाला जी हमें छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय अपमान था, एक चुनौती थी जिसे हर हिंदुस्तानी ने महसूस किया।
1: फिर क्या किया आपने?
2: मेरे खून में उबाल था। हमारी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथी भी खामोश नहीं बैठ सकते थे। हमने तय किया कि इस अपमान का बदला लेना होगा। जिस अधिकारी ने हमारे लाला जी की हत्या करवाई थी ना, उसे सजा देनी होगी। हमारा प्लान बना।
1: कैसा प्लान?
2: सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और मैं। 17 दिसंबर का दिन तय हुआ। हमें जानकारी मिली कि अधिकारी पुलिस मुख्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर आएगा। हम इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त जय गोपाल ने इशारा किया, स्कॉट आ गया है। राजगुरु ने निशाना साधा, मैं भी तैयार था। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार पास आया, राजगुरु ने गोली चलाई, वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागा और पास जाकर अपनी पिस्तौल की 3 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। फिर हम वहां से निकल गए। अगले दिन पूरे लाहौर में दीवारों पर एक पर्चा चिपका दिया गया था, जिस पर लिखा था, जेपी सैंडर्स की हत्या, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। हम जानते थे कि हमने स्कॉट की बजाय एक दूसरे अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया था। ये गलती थी, पर हमारा मकसद साफ था। हमने किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, हमने तो उस ब्रिटिश सरकार के अहंकार को मारा था जिसने लाला जी जैसे महान नेता की जान ली थी। सैंडर्स तो बस उस क्रूरता का प्रतीक था।
1: तो आपने ऐसे बदला लिया?
2: ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था बन्नो। ये उन लाखों भारतीयों के लिए एक आवाज थी जो मानते थे कि अहिंसा की सीमाएं टूट चुकी हैं। ये क्रांति की ज्वाला को और भी तेज से जलाने का एक कदम था। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी युवक अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना थी, पर इसका असर बहुत बड़ा था। इसने भारत के नौजवानों में एक नई आग भर दी थी, और मुझे पता था कि यही आग एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य को राख कर देगी। वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम। कितनी रोमांच से भरी घटना थी, मन कर रहा है और भी कई किस्से सुनूं, मगर अभी मुझे जाना होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय, फिर मिलेंगे।
2: हाँ जी, ध्यान से जाना। हाँ

0: बन्नो तुमको पता है, भगत सिंह देश के ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिनसे ब्रिटिश भी डरते थे। इसीलिए तो चालाकी से और छल से उन्होंने उनको फांसी का दंड दे दिया।
1: फांसी? पूरी कहानी बताओ ना दीदी।
0: पहले चलो 21वीं सदी में वापस चलते हैं। जाते जाते मैं तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगी।
1: हाँ दीदी चलो।
2: और यही रुकती है आज की कहानी। लेकिन सच्चाई ये है कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नारे में बदल जाती हैं। आज आपने भगत सिंह और उनके साथियों की गाथा सुनी। हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लेने का साहस और मौत से पहले होठों पर वही एक पुकार, वंदे मातरम। सोचिए, जिस क्षण किसी माँ ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा होगा, उसके दिल में आंसू नहीं, यही नारा गूंजा होगा। जिस पल किसी युवक ने जेल की अंधेरी कोठरी में अपनी आखिरी सांस ली होगी, उस सांस में डर नहीं, मातृभूमि का नाम होगा। वंदे मातरम एक गीत नहीं था, ये वो सहारा था जिससे टूटते हुए लोग खड़े हो गए। ये वो शब्द था जिसे बोलते हुए किसी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस एक नारे में पूरा भारत साथ खड़ा था। जब भगत सिंह ने इसे पुकारा तो वो फांसी की ओर नहीं बढ़े, वो अमरता की ओर चले गए। और उस दिन से हर पीढ़ी के सीने में ये नारा धड़कन बनकर बस गया। आज भी अगर हम आजाद हैं तो इसलिए नहीं कि जंजीरें टूट गई थी, बल्कि इसलिए कि वंदे मातरम कभी टूटने नहीं दिया गया। और अब सवाल ये नहीं कि कहानी खत्म हुई या नहीं, सवाल ये है जब अगली बार ये नारा गूंजे तो क्या हम उसके अर्थ को उतनी ही ईमानदारी से महसूस कर पाएंगे। जाने के लिए बने रहिए एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के साथ। सुनते रहिए, खामोशी में भी सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक नारा पूरी सभ्यता को जिंदा रखता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन। वंदे मातरम। जय हिंद।

0: पॉलिसी।
1: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। स्वयं में जिस गाँव और जिस अंचल में पले बड़े वो गाँव और अंचल कभी नहीं भूल पाते हैं। कहीं भी रहे तो अपना गाँव याद आता है, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। बोले कुछ भी रुखा सुखा हो फिर भी अपना गांव अपना लगता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम हर जगह जाते हैं, हर वर्ग से मिलते हैं, तो हमें खुशी मिलता है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास का गतिविधि सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन मिला हुआ है। तो इस अंचल का गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और सभी वर्ग से रूबरू कराते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि समुदाय तक पहुँचे, ये हमारा मंशा है। और हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड में हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, और पर्यावरण में फास्ट सब्जेक्ट है, विशाल विषय है, जितना भी ले कम ही होगा, और हम उसी में रहते हैं और उससे हम लाभ लेते हैं। कभी कभी खेती कर देते हैं जिसका चलता हमें खेती सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे देंगे उस तरह हमें मिलता है। तो हमारा ऊपर निर्भर करता है हमारा प्रकृति। तो प्रकृति का बात करते हुए, एनवायरमेंट का बात करते हुए, आज हमारा साथ हर एपिसोड की तरफ आज भी श्रीमान भोपाल राम पुरे जी उपस्थित है, जो कि पर्यावरण के ऊपर में बहुत कुछ जाना है और रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी करते रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और कराते रहते हैं। तो उनको स्वागत करते, श्रीमान जी आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो आप अपना परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए, ऐसे तो हर एपिसोड में आपका इंट्रोडक्शन हमारा इंट्रोडक्शन चलता ही है, फिर भी आज का कार्यक्रम को लेकर जब आए तो आज का विषय क्या रहेगा और क्या फायदा होगा?
1: सर नमस्कार। सर आपके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें किस प्रकार से हमारे वातावरण में चेंजेज हो रहे हैं, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े एरिया से संबंध रखता है। और जहाँ जलवायु का मतलब है वह है, सामान्य तौर पर हम सभी समझें तो 100 वर्षों के मौसम का, वार्षिक मौसम का जो औसत है सामान्य तौर पर 100 वर्षों तक का, उसको हम जलवायु कह सकते हैं। क्योंकि जो मौसमी परिवर्तन है, जैसे ऋतु चक्र, ऋतु में परिवर्तन है, सर्दी गर्मी बरसात, एक वर्ष का, ये एक वर्ष का हुआ, इस तरह से लगभग 100 वर्ष की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हम जलवायु कह करके, उसमें जो चेंज हो रहे हैं ड्रास्टिक, उसको हम जलवायु परिवर्तन से जानते हैं।
0: शुरू से अभी तक,
1: हाँ, लगभग 100 वर्षों तक का औसत जी, वो जलवायु परिवर्तन के अंदर आता है। बाकी जो दैनिक रूप से होता है वो तो मौसमी परिवर्तन है, दैनिक परिवर्तन है, वार्षिक परिवर्तन है, वो नहीं। 100 वर्षों तक की सामान्य स्थिति जो मौसम की रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं, और उसमें जो चेंज होता है वो जलवायु परिवर्तन है। और वो धीरे धीरे, जैसे 100 वर्ष का है तो वो धीरे धीरे किस तरह से जो वातावरण की जो अवस्था है, जिसमें तापमान है, वर्षा का मात्रा है, इन सब में लेकर के जो प्रकृति पर असर होता है वो जलवायु परिवर्तन है।
0: बहुत अच्छा बात बताए, जलवायु मतलब हम ऐसे सोचे थे, लेकिन जलवायु तो
1: सर यही बात सर समझाना चाह रहे हैं आपके साथ में। हमने कक्षाओं तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर दिक्कत एक दूसरी आई कि उन बच्चों में वो समझ लाने का जो प्रयास हो रहा है, सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो चीज उन बच्चों तक जा पा रही है नहीं जा पा रही है, वो आपके साथ रह करके हमने देखा। और जब कक्षा कक्ष में हम जाते हैं तो उनके समझ के लेवल को पता करना चाहते हैं, वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो फिर हम उस पर ज्यादा बातचीत कर ही नहीं पाते,
0: ठीक है,
1: तो अपने को रुकना पड़ता है।
0: वो भी परिवर्तन हो चुके हैं,
1: वो भी परिवर्तन हो गया है। तो बच्चे बहुत अच्छे रिसेप्टर होते थे।
0: आपका एज कितना है?
1: सर मेरा है 63।
0: और 63 में जब आप 11 क्लास में पढ़ रहे थे,
1: जी जी, सर उस समय बहुत उत्साह
0: परिवर्तन स्टूडेंट का, जो उस समय का स्थिति आप कैसे था और आज का स्टूडेंट का हम देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, कक्षा कक्ष में आपकी अपेक्षाओं के साथ में मैंने भी आपसे निवेदन किया, आपने भी मुझे सहयोग किया, हम कक्षा कक्ष में गए, विभिन्न परिवेश की कक्षाओं में गए,
0: पर वो भी परिवर्तन हो चुका,
1: वो भी
0: हम जैसे थे उस तरह बच्चे नहीं,
1: हमने ये मैंने ये सोचा था उसमें सर कि हम वहाँ जा करके वो बच्चे कुछ बोलेंगे तो हम वो करके बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में 3 दिन का आपका हमारा ऐसा अनुभव रहा, ये मतलब रूबरू अनुभव, कि जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर उनको अपन क्या कुछ कहते रहे वो उनके ऊपर से निकलेगा,
0: तो फिर परिवर्तन
1: वो सर बड़ा ही सर उनके रिसेप्टर्स बहुत अच्छे।
0: 5 साल का पहले का जो
2: और दल भाई और आज का मन थोड़ा अंतर होगा ना
1: जी सर बिल्कुल
2: हम सोचो वो दिन और आज दिन हम चाहते हम जैसे थे कि बच्चे वैसे रहे हो नहीं पाएगा
1: सर वास्तव में बच्चे या तो बहुआयामी हो गए हैं क्योंकि ब्रेन तो वही है तो या तो उनका ध्यान भटक रहा है या उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए हो सकता है वो इसको कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाए ये मेरे लिए आज का भी आश्चर्य था तो जब बच्चा समझे नहीं तो हम फिर उनको समझाने का ज्यादा प्रयास करें इसका भी कोई अर्थ नहीं कोई अर्थ
2: अपना ठीक है
1: नहीं पर प्रैक्टिकली ये एक तरह से रिसर्च हो गया कि बच्चों में अगर कोई बात ले जा रही है सर तो आपने ही मेरे से बात की थी कि सारा नॉलेज है उन पर वो ले तब तक तो देना ठीक है जब वो ले ही नहीं पा रहे हैं फिर
2: देने से कोई फायदा नहीं
1: कई बार अपन कहते हैं ना
2: बीज में जाकर पहाड़ी में
1: ऐसे ही लगा देंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना
2: बीज का
1: तो इसलिए ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ तो सर पहले सर वो जो समय था उसमें नदियों में पानी बहता था हम नदियों में नहाने जाया करते थे हम पैदल चला करते थे सर मैं स्वयं रोज 13 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ करके वापस आता था घर पे रोज की 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा में पढ़ाई होती थी सामान्य तौर पे सभी की जो बच्चा 11वीं में आ गया 12वीं में आ गया महाविद्यालय लेवल तक जाने के उनको पैदल जाना पड़ा हमको 10-12 किलोमीटर साइकिल से भी जाना तो सर वो जो उसमें बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी वो भी अच्छी थी लगन भी बहुत अच्छी थी तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही
2: परिवर्तन
1: ये भी एक परिवर्तन है बच्चा चलना नहीं चाहता सर जब हम कहते हैं उसको 2 किलोमीटर चलना तो वो पैदल चलना नहीं चाहेगा आज की तारीख में तो ये थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला तो जो आप बता रहे थे कि उसमें कैसे किए थे उसमें सर एक संभावना जो निकली आज मैंने सोचा कि जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं वही बच्चे लेकर के उन्हीं के साथ काम किया जाए आम बच्चों को साथ में रखेंगे सर तो वो परिणाम नहीं आएगा जो लाना है लेकिन जैसे उस स्कूल विशेष में बड़ी कक्षा के वो बच्चे जो 6-12 के होने चाहिए सामान्य तौर पर वैसे सभी बच्चे होंगे उसमें कम से कम 4-5 बच्चे रुचि जो लेने वाले उन्हीं को ये बात बताई जाए
2: और ये चीज जो शिक्षक है ना उनको बलिवंत जानना
1: उन्हीं को बताना है
2: टैलेंट है बच्चे हर साल लगाव है पढ़ाते जानते
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बोलने में
1: एक्सपर्ट होना चाहिए
2: तो वो बच्चे सिलेक्ट करके
1: तो वो सर वही बच्चे उनके स्कूल में फिर जब जब आगे आएंगे ना वो उन बच्चों को प्रेरित करते रहे तो ये सर इसका एक नया मॉडल हो सकता है कि 5-7 स्कूलों से उन बच्चों को इकट्ठा किया जाए जो भी 2-2 5-5 और 5-7
2: उसका तो डिबेट भी रख सकते हैं
1: डिबेट रख सकते बिल्कुल सर तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा करके और उनको जब अपन थोड़ा संबोधन देंगे ना तो निश्चित रूप से वो बच्चे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे इसका ये मॉडल हो सकता है क्योंकि जो नहीं चाह रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा तो ये उसमें थोड़ा सा एक अपन इसको एज चैलेंज इसको लेते हैं तो वो कर सकते हैं तो सर जो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी
1: ये बच्चे के या व्यक्ति के या उस पर्यावरण के क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है तो यहाँ पर अब उस जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने में एक सर बहुत बड़ा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड
2: ओके
1: और वो हरित गृह प्रभाव का कारण है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक शब्द इसमें बहुत ज्यादा काम में आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो ये है कि जो ऊपर से वायुमंडल में जो अधिक मात्रा में CO2 है ग्रीन हाउस अपने कार्बन डाइऑक्साइड है सूर्य से आने वाली कम दैर्ध्य की तरंगों को तो वायुमंडल में प्रवेश करने देती है लो डेंसिटी कम तरंग दैर्ध्य वाली लेकिन जब पृथ्वी पर जाकर के वो हाई डेंसिटी में बदल जाती है उसकी तरंग दैर्ध्य हाई हो जाती है उसको वो रोकती है
2: कार्बन डाइऑक्साइड
1: जी हाँ तो कम दैर्ध्य वाली तो नीचे आने देगी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है और हाई वो जब पृथ्वी पर जाती है उसके बाद वो हाई हो जाती है और उसके बाद में जब वो ऊपर उठती है तब उसको वो रोकती है और इससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उस आवरण से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो जब रोकती है तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है मतलब वो कितना आने देती है और फिर कितना नहीं जाने देती फिर वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है और इसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट
2: नुकसान कर
1: हाँ सर नहीं सर ये नुकसान तो करता है लेकिन एक सीमा के बाद बहुत बड़ा नुकसान करता है भाई जैसे उसका लेवल जैसे अभी जो आदर्श स्थितियां हैं जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल रहा है तो वो सामान्य तौर पे अच्छा हो सकता है लेकिन उससे जो अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो विकिरण बाहर नहीं जाएगा और उनको वो अवशोषित कर लेगा और इससे जो तापमान बढ़ेगा वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है वहां तक तो ठीक है क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब उससे अधिक बढ़ जाएगा या उसका प्रभाव कम हो जाएगा वो जो कैसे ज्यादा हो जाएगी तब उसका या तो उसका आवरण कमजोर हो जाएगा जब वो अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब टेम्परेचर बढ़ेंगे वो अतिशय टेम्परेचर बढ़ेंगे वो व्यक्ति को हर तरफ से जीवों को, प्रकृति को, सभी को सब तरह से प्रभावित करेगी, दुष्प्रभावित करेगी, और वो उसके शरीर पर या अन्य अन्य तरीके से हर एक जीव को वहां पर प्रभावित करेगी। जैसे इसमें अपन ये ले सकते हैं, जैसे कुछ पक्षी मर जाते हैं, विलुप्त हो रहे हैं, प्रकृति भी विलुप्त हो रही है, वन औषधियां हैं, बेले हैं, वो विलुप्त हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरसात कम हो रही है या अधिक हो रही है। तो मतलब जो सस्टेन करना चाहिए उस वातावरण में, जिस औषधि को, जिस पेड़ पौधे को, जिस जीव जंतु को, जिस अच्छे जीव को, जिस हानिकारक जीव को बैलेंस के साथ में जो डेवलप करते हैं, वो सब इम्बेलेंस हो जाएंगे, और उनके इम्बेलेंस होने से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, जो हमारे विकास को दुष्प्रभावित करेगा। तो सर, ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसमें कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस में जो प्राकृतिक कारण है वो सर जल वाष्प है।
2: जल वाष्प
1: जी, ऊपर जाता है, एवोपरेशन, कितना टेम्परेचर है वो इन सबको मिला के कितना बढ़ गया, तो एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है,
2: नीचे तो खाली हो गया पानी,
1: नीचे खाली हो गया, फिर वो जहाँ अच्छा होगा वहाँ जाके बरसेगा।
2: कहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
1: मतलब जहाँ पर हरित ग्रह है, जहाँ पर बैलेंसिंग प्रकृति है,
2: वहाँ पर
1: जहाँ वो वहाँ पर बादल आकर्षित होते हैं, वहाँ बरसात कर जाते। जैसे अपने सर आबू पर्वत क्षेत्र है ना, ग्रामीण अंचल में बरसात कम होती है, लेकिन आबू पर्वत के उस एरिया में आप चले जाओ, पहाड़ी एरिया, वहाँ बरसात
2: बादल बादल पूरा नजदीक दिखाई दे रहा।
1: क्यों सर, क्यों?
2: यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा,
1: और बरसात भी रोज होती है, रोज होती है, थोड़ी थोड़ी रोज होती है, तो वो प्रकृति भी हरी भरी रहती है, पहाड़ भी वहाँ पर है,
2: बैलेंस
1: है, तो वहाँ बैलेंस
2: इम्बैलेंस
1: इम्बैलेंस है, इसलिए इम्बैलेंस है तो कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कम हो जाती है, कभी नहीं होती, तो फिर वो वाटर टेबल को प्रभावित करती है। इसका सारा प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब जैसे सर जलवाष्प के बाद में अगर अपन ले तो इसमें आता है मीथेन गैस, CH4। CO2 की बात तो अपन ने कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड की, अब CH4 है, फिर ओजोन है, ये भी इसी तरह से इनकी जो परसेंटेज है वो कम या ज्यादा होने पर उससे संबंधित जितने भी जीव हैं छोटे बड़े वो सारे के सारे उसमें या तो जीते हैं या फिर वो मर जाते हैं। तो वो संबंधित जो प्रभाव है उसको वैसा ही छोड़ते हैं ताकि उसका जो बैलेंसिंग है वो उसमें से खत्म हो जाती है, तो वैसा प्रभाव वो छोड़ेंगे। तो ये तो सर सब हो गए प्राकृतिक कारण, जिसमें ओजोन भी एक है। सर इसमें ऐसा माना गया है कि अपनी जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो गया है सर, अंटार्कटिका के एरिया में। वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है वो जो छेद हो गया मतलब वो अपनी छाता की तरह से काम करता है, जो हानिकारक किरणें आती है ना सूर्य की, उनके लिए वो एक छाता की तरह हमारा काम करता है।
2: कहने मतलब हम घर में छत बना दिया,
1: हाँ,
2: लीकेज होता है,
1: छेद हो गया,
2: दिक्कत
1: उसमें छेद हो गया,
2: तो हमें बहुत दिक्कत होता है बारिश के टाइम में।
1: तो सर ये
2: डर रहता है, तो इस तरह ओजोन लेयर का जो आपने बात की छेद हो गया, तो ये भी पूरा हमारा प्रोटेक्ट था
1: जी, हाँ
2: प्रोटेक्ट आउट नहीं रहेगा,
1: वो प्रोटेक्शन वाली छाता वो हमारी छिन्न भिन्न हो गई है,
2: जो भी डैमेज तरफ जा रहा है,
1: डैमेज हो गई है,
2: तो क्या होगा अस्तित्व
1: सर उसका? इतना खतरनाक असर होगा सर कि उससे नीचे जितना भी ग्लेशियर्स वगैरह है ड्यू

0: हाई टेम्परेचर्स, वो सर पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा सर,
1: पूरा बाढ़ तो आएगा,
0: अतिवृष्टि होगी,
1: बाढ़ भी आएगा सब कुछ।
0: और सर वो समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्री किनारे जितने शहर है ना वो सब डूबने के कगार पर है।
1: फिर भी तो मकान बनाते जा रहे हैं।
0: बनाइए तो फिर कहाँ दिक्कत, नदी के बीच में बनाइए तो फिर आप बह भी जाएंगे,
1: समुद्र का बीच में भी मकान।
0: सर इसलिए तो अपने कई बार सुनते हैं,
1: बैलेंस नहीं हो पा रहा,
0: कई बार सर अपन सुनते हैं कि साहब अतिवृष्टि होती है, बादल फट जाता है, अभी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, ये सर क्लाइमेटिक चेंज है। सर जब नदी के किनारे जब लोगों ने मकान बना लिए, जो नाला था उसकी जगह पर मकान बना लिए, फिर कहते हैं कि साहब बाढ़ आ गई, लोग डूब रहे हैं, व्यवस्था करो, फिर क्या व्यवस्था होगी, फिर व्यवस्था
1: सरकार तो उसको दे देता है,
0: रास्ते में ही तुमने बना दिया, सरकार ने पट्टे काट दिए, रास्ते में बना दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना,
1: आपने का जगह में जो रहना चाहिए हम उस जगह में,
0: बस उस जगह पर हम गलत काम कर रहे हैं तो फिर प्रकृति छोड़ेगी क्या, उन्होंने छोड़ा हुआ, उनके जाने का रास्ता चाहिए, पानी के जाने के रास्ते में आपने मकान बना दिया तो फिर वो तो मकान में ही घुसेगा, फिर हम सरकार को दोष देते हैं।
1: मकान क्यों बना रहे इतना सर, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा था, उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना,
0: तो सर सर
1: कहाँ लाएं,
0: सर जगह तो है ना सर, जगह व्यवस्थित जगह पर आप रहिए ना, जगह व्यवस्थित पर रहना चाहिए,
1: हम जो चाहते उस तरह होना चाहिए ना।
0: ये बात वो प्रकृति का सब, फिर वो तो वही अतिक्रमण हो गया ना,
1: पानी ना
0: सर आप रहे तो
1: यहाँ पर रहेंगे तो इतना दूर में रहेगा तो पानी यहाँ पर मिलेगा नहीं, नदी का किनारे समुद्र किनारे में रहेगा तो हमको पानी का बिना तो हम रहो नहीं सर,
0: तो फिर समुद्र के अंदर ही रह जाओ ना, पानी मिल जाएगा, तो प्रकृति अपने को समेट देगा,
1: पानी वहाँ पर बसवास करते हैं सर,
0: सर पानी के किनारे तो बसिए, पानी का एक एरिया छोड़ के तो बस ये कहा मनाई कहा है, जब आप पानी के क्षेत्र में आप रहने लगेंगे तो पानी आपको अंदर नहीं लेगा,
1: वो उस समय देखा जाएगा बोलते हैं रहना
0: तो सर वो ग्रीडीनेस आपका जो लालचपन है वो प्रकृति फिर आपको माफ नहीं करता।
1: अभी बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं सर,
0: सर
1: जल महल कहते हैं, चार तरफ टापू में हम रह रहे हैं, ऐसे जो
0: सर यही चीज भावना, यही सही चीज सर मुझे देख करके एक याद आता है सर, अभी सर घटना हुई है गोवा में, जिसमें बिना परमिशन के किसी होटल वाले ने, बिना परमिशन के होटल वाले ने उसमें छोटी सी झील बना दी,
1: समझ गए,
0: तो और उसमें होटल बना दिया,
1: अट्रैक्शन
0: सर वो इतना बढ़िया होटल बनाया कि फॉरेनर्स वगैरह सब वहीं आते, और वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा था और संकरा प्रवेश का रास्ता था, उसमें आग लग गई, 50 लोग जल करके मर गए, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है,
1: ये तो अति ना सर,
0: तो अति है। अच्छा सर वो पता किया,
1: मतलब जब मनुष्य का ग्रीडी का अति में
0: अति है सर, पर जब पता किया तो पता चला कि वो सारा अवैध था, तो जब अवैध था प्रकृति की जगह आप जा करके बैठ गए तो पैसा भले ही कमा लो, वो लोग मर गए, अब सारी हालत सबकी खराब है, तो फिर गलत का तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा,
1: चलते हैं जो अच्छा आदमी को भी जाकर इनकार करना पड़ रहा है, वो बेचारा मैं गलत किया है,
0: जी हाँ जी,
1: फिर मेरा साथ आ रहे गोपाल राम जी थे तो उसको चलो पकड़ेंगे,
0: बिल्कुल सही बात,
1: आप कुछ नहीं किए, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम में कर दिया, बिन मैंने कुछ गलत किया,
0: हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक,
1: कोई देखोगा रे पवित्र के साथ गोपाल राम जी थे
0: जी, बिल्कुल
1: पकड़ते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपका उसे कुछ
0: लेना देना,
1: तो सर इस तरह होटल वाला को कितने होटल का इस तरह परेशान हुआ होगा,
0: हाँ सर तो वो देखिए बिल्कुल सही से
1: हिसाब किताब बनता, देखिए सर
0: सही बात है सर,
1: कोई हिसाब किताब कभी का होगा,
0: बिल्कुल
1: हिसाब किताब को जन्म का तो जाकर उससे
0: वो पूरा हो गया,
1: ये पूरा कर्म का सिद्धांत,
0: तो सर देख लिए ये कर्म का सिद्धांत कैसा नुकसान हुआ, तो जो प्रकृति का अतिक्रमण किए तो ये लालचपन ने तो भारी नुकसान कर दिया इनका,
1: आज का संसार कौन ऐसे जो अभी जो कॉलेज समय जो चल रहा है,
0: जी जी
1: साइंस का पूरा भौतिकवादी सब हो चुके हैं,
0: जी जी जी जी,
1: तो ये चीज कैसे कंट्रोल होगा,
0: बस सर
1: जानेंगे
0: कंट्रोल के लिए तो
1: क्योंकि ये तो रीजन सबको पता है,
0: हमको
1: तो अनुभव भी है,
0: आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा
1: तो उसके लिए क्योंकि आवश्यकता है, कारण तो सबको मालूम है,
0: जी जी
1: आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, आप भी इंटरनेट में गूगल पूछेंगे तो क्यों
0: बता देगा, बता देगा,
1: लेकिन हमें इससे कैसे निजात पाए और हम बचेंगे कैसे, मैं खुद,
0: जी जी बिल्कुल सही कहा,
1: तो मैं खुद को बचाऊंगा तो मुझे देखकर सभी लोग बचेंगे,
0: बिल्कुल
1: ये क्योंकि स्व परिवर्तन ही हमारा नारा है,
0: स्व परिवर्तन ही सभी में,
1: क्योंकि आज सभी लोग अंगुली उधर तुम करो
0: तुम करो तुम करो,
1: आज तक इतना जो 100 साल का आप देखा है ना परिवर्तन,
0: इसलिए
1: 100 साल का पहले जो स्थिति था पर्यावरण का,
0: जी हाँ जी,
1: खुशी गोकुल गांव था,
0: सब आनंद था,
1: भाई जा रहा था, कोई ताला नहीं था,
0: कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं था,
1: भाई तुम लेना तो ले, मेरा भी बहुत है,
0: सही बात है,
1: और आप बुलाते भाई लो हमारा,
0: बिल्कुल सही,
1: गन्ना बहुत है
0: बहुत है, हाँ एक दूसरे को बांटते थे, बांटते थे,
1: तो समय परिवर्तन था और आज का समय में
0: जी,
1: तो 100 साल में कितना विकसित वो भारत है, लेकिन विकसित किसमें, भौतिकता में
0: ज्यादा भौतिकता में हो गया है।
1: प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है उसको कोई देख नहीं रहे। अब जिसका चलते उसका भोगना हमको पड़ेगा। कोरोना क्या है, पार्ट है।
0: हाँ हाँ, वो इसका पार्ट है, वो भोगना पड़ा।
1: भोगना पड़ा हर रोज कुछ ना कुछ
0: होता ही
1: हो रहा है। आज यहाँ तो कल वहाँ
0: महामारी भी सर ऐसे ही
1: सब चीज हो रहा है,
0: सारी महामारी।
1: तो इसका कारण जब तक नहीं होगा रूट, ग्रास रूट हमें जाएंगे तब जाकर सभी लोग उसको पहचानेंगे तो बच सकते। सभी नहीं बचेगा तो कुछ तो बच जाएंगे,
0: कुछ तो बचेगा ही सर, प्रकृति तो बचा
1: जानेंगे। अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज का विषय भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सर का जो सिलेस बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट सही में आज देखने को मिला।
0: जी हाँ, बिल्कुल मिला,
1: क्योंकि सरकार का जो भावना है कम्युनिटी को एंगेज करो रेडियो मधुबन में।
0: जी,
1: तो आज किवली से हमारा जो भाई साहब है पूरे लगे रहता हर एपिसोड में कुछ ना कुछ जो विशेषता है उसको देने के लिए। और प्रकृति हमें कितना देता है, हमें तो कुछ देना सीखे करते थे
0: हम भी तो समर्पित रहे प्रकृति को।
1: जानेंगे अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछला लिंक में हम चल रहे परिवर्तन और 100 साल का कम नहीं है, उसमें कितना अंतर आ गया प्राकाश और पाताल जैसे। तो ये परिवर्तन समय अनुसार हो रहा है और प्रकृति में हम जो रह रहे पशु पंछी जीव जंतु सभी का अपना अपना जो भाव और भावना समय अनुसार बदलता है। जैसे हम छोटे बच्चे उसमें भावना कम था, बड़े हुए उसका भावना और कुछ क्रिएटिव बना, इसके बाद फिर उसका ऐसे ही प्रकृति भी जो इतना साल तक पहुंचा है। तो कोई भी चीज का सत्व रजो तमो होता है सर, अच्छा बुरा बुरा तब तक
2: तीनों
1: का आना चाहिए। प्रकृति का जो शुरू में अच्छा था जो आपने बताया रेखा पहले, ये सत्वगुणी जलवायु था,
2: सत्वगुणी
1: सब चीज सुखदायी था,
2: बिल्कुल सही।
1: लेकिन आज सोचना पड़ रहा है कैसे बचाए हम खुद।
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: इस संदर्भ में ये जो बात चल रहा है उसका कारण तो हमें थोड़ा बहुत जान गए,
2: थोड़ा बहुत थोड़ा सा
1: निवारण करने के लिए हम कैसे जिम्मेवारी, सरकार, हम, आप, जो भी हमारा सभी सुन रहे प्रकृति का जितना भी घटक है वो भी अपना कार्य करेंगे तो जरूर हम प्रकृति को बचा पाएगा और समय अनुसार बच जाएगा भी। तब तो ऐसे प्रश्न उत्तर में हम कैसे बचा, जरूर बचेगा, बोला आज नहीं तो कल
2: बचेगा बच्चा। सर देखिए सर, अपन उसके बचाव पर आते, इससे पहले थोड़ा सा हमने प्राकृतिक कारण जाने थे हरित ग्रह के, अब थोड़े मानव जनित कारण थोड़ा सा उसमें प्लस है कुछ।
1: जी जी बताएं।
2: जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है सर, ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, वो सर 76% तो ये रिस्पॉन्सिबल है।
1: 76%
2: उसका प्रभाव होता है हरित ग्रह पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर। CH4 का होता है 16%, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है 6% और सर फ्लोरिनेटेड गैसेस का होता है 2%, जिसमें सर है ना आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी चीजें। ये जो सर उत्सर्जन है ना, ये सर कहाँ से होता है, ये सर जैसे AC से होने वाला उत्सर्जन है
1: जो घर में यूज करते हैं।
2: जी हाँ सर,
1: जैसे कार में भी AC यूज करते हैं,
2: कार में AC का यूज करना है, ये इसी पर मैं संकेत कर रहा हूँ। और भी जहाँ भी जैसे
1: AC से इतना गैस आप,
2: जी सर ये नुकसान करती है, 1% है इसका। और सर जैसे फ्रिज में होने वाला जो गैसेस वगैरह है, ये भी इसके ऊपर इम्बेलेंसिंग में बहुत बड़ा कारक बन जाती है। अब उसका जितना ज्यादा उपयोग बढ़ेगा तो भारी नुकसान करने वाला है,
1: बढ़ रहा
2: बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला।
1: सभी का घर में चाचा मामा का।
2: अच्छा सर, इसका तो इतना बड़ा नुकसान होगा सर कि जैसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और अपन ये सारे जो ब्लैक कार्बन वगैरह, ये सभी मिल करके ये दहन से उत्पन्न होने जा रहा, आंशिक दहन से, जो ईंधन का आंशिक दहन है सर, किसी भी ईंधन का, जैसे गाड़ियों के इंजन वगैरह है, उन सबके दहन से जो भी ये प्रोड्यूस होता है, ये भी सर वातावरण को बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। सर अब मैं फ्रिज की बात कर रहा था सर, सर जहाँ तक फल सब्जी और एक सीमित समय तक उनके संरक्षित करने वाली बात है, वहां तक तो हम भी सहमत है, साइंस सहमत है, लेकिन जब उसकी अति हो जाती है तब तो वो नुकसान ही करेगा ना
1: सर। अति क्यों होता है
2: सर? अति बस वो मानव इतना लालची हो गया, वो सब जगह अति, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आगे से आगे जब उसको फ्रिज में रख जाओ तो क्या सर उसमें गुण रहेंगे क्या?
1: लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो फिर और प्रोडक्ट आ गया तो कहाँ रखेंगे
2: सर? वो तो बराबर है, वो एक सीमा तक, वो उसका एक लेवल हो जाएगा कि जैसे अधिकतम जनसंख्या जब भूख से प्रभावित हो रही है वहाँ इसका स्टोर करना कर लीजिए, लेकिन जब छोटे मोटे आप लोग उपयोग करते हैं वो तो मत कीजिए ना सर। मेरा निवेदन हर बार, मैं पर्यावरण के एक तो अंत पर्यावरण की बात करता हूँ जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, और एक सर अभी मैंने अभी ढूंढा है एनवायरमेंट माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात, ये नया शब्द भी इसमें नया जोड़िए आप, आपके विश्वविद्यालय की तरफ से जोड़ दीजिए। वो माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि हम एक व्यक्ति उसमें क्या छोटा सा सहयोग कर सकते, आपका हल्का भोजन बचा करके, आपके पानी को शुद्ध करके पीना, आपके गंदे पानी को शुद्ध करके अपनी क्यारियों में डालना, आपके 40 माइक्रो जो माइक्रोन का जो प्लास्टिक है उसको यूज रीयूज न करना, ये काम तो आप और हम कर ही सकते हैं ना?
1: कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं।
2: नहीं सर, ये इट इज माइक्रो मैनेजमेंट सर, बड़ा मैनेजमेंट सरकार करे, उससे भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करें, जो जिम्मेदार संस्थान है एनजीओ वो करें, लेकिन मेरा माइक्रो मैनेजमेंट
1: जो राष्ट्र नहीं कर पाएगा तो ऊपर वाला तो कर लेगा,
2: वो उससे बड़ा मैनेजमेंट कर। तो सर मैं माइक्रो मैनेजमेंट की ये बात करता हूँ सर इसके अंदर कि आप खुद के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट ये करें, अपने विचारों को माइक्रो मैनेज करें और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का जितना हो सके उतना प्रयास करें। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है,
1: एज एंड इसलिए आप सबको बोल
2: तो मैं सबसे अपेक्षा भी तो करूंगा ना।
1: आप
2: खुद का खुद करो, आपका आप करूंगा, आपका आप कर लूंगा, आपका आप कर लूंगी, जैसे आप नहीं कहते आप करो आप करो आप करेंगे तो सभी का सुविधा हो जाएगी।
1: आपको कोई दिक्कत नहीं आता जैसे आप करते हैं, लोग नहीं करते उनको दिक्कत आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है,
2: तो हम
1: इसलिए नहीं करते।
2: तो इस मुहिम में जुड़ना है सभी को, नहीं तो फिर वो प्रकृति है ना, वो आपको नदी में मकान बनाओगे वो उठा के बाहर ले जाएगी, आपका मेहनत काम नहीं आएगा, इसलिए सही दिशा में काम करें। तो माइक्रो मैनेज करें आप अपने आप, बस सर बात वही
1: हुई। नहीं कर पा रहे लोग, हम कर पा रहे हैं तो हम लोग कर पा रहे हैं।
2: आपको सर दृढ़ निश्चय होकर के,
1: दृढ़ता निश्चय सब गुण होकर के
2: फिर
1: अंतर में सक्षम होना चाहिए।
2: फिर
1: मैं तो बार बार वही कहता हूं,
2: सभी के लिए भलाई का संकल्प करना पड़ेगा अपने मन में, तब जा करके ये काम होगा।
1: तो आपका वृत्ति
2: खुद को पहचानो, खुद को पहचानो,
1: वृत्ति में क्या सुभावना सबका प्रति रहे,
2: सुभावना रहे
1: प्रकृति का प्रति, आपका आसपास जो भी आपका प्रकृति दिखाई दे रहा है सबका प्रति सुभावना।
2: तो सर जैसे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये कई बार मैं भी सर कभी कभार मुरली हाथ में लिया करता हूँ, बाबा की मुरली भी आती है, मैं एक सामान्य मुरली की बात करता हूँ, हाथ में लिया करता हूँ और सर रोज सुबह में एक बार बजाता भी हूँ, तो सर उसकी आवाज कितनी मधुर है,
1: कृष्ण को प्रिय था। और आप
2: तो सर वो मुरली वो प्रकृति से आवाज लेती है, वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति
1: अच्छा
2: को
1: बात बता दिया आपने,
2: तो सर करना ही पड़ेगा।
1: चार जो अलंकार है सर नारायण का हाथ में,
2: जी हाँ जी हाँ,
1: जैसे बांसुरी कृष्ण का दिखा दी,
2: कृष्ण जी हाँ,
1: शंख
2: हाँ हाँ
1: बता दिया ना,
2: बिल्कुल शंखनाद, तो वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा।
1: शंख तो वो तो देखे है, लेकिन आपका जो मुख है ना सर,
2: जी जी,
1: ये आपका शंख होना चाहिए।
2: ठीक बात है,
1: अच्छा बोले,
2: अच्छा बोले, मीठा बोले, मीठा बोले, धीरे बोले,
1: सही बोले
2: और कर्ण प्रिय बोले,
1: बोले और जहाँ आवश्यकता है उतना बोले।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो सर ये जो शंख चक्र
2: जी गदा और पद्म,
1: आप तो दो चीज बताए,
2: जी जी जी,
1: शंख का जो नाम लिया, तो शंख हमारा मुख जो है,
2: जी जी,
1: शंख जैसे आवाज निकलता, शंख से क्या
2: होता है आवाज, आवाज निकलता है, आवाज निकलती
1: नहीं निकलता, हम
2: उसमें फूंक मारेंगे तो आवाज करेगा,
1: तो मारने वाला कितना एक्सपोर्ट होता है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: व्यक्ति सर जो शंख को चलाता है,
2: चलाता है सही, बिल्कुल सही बात,
1: शंख जिसको बोलते हैं उस तरह, ये मुख ये हमारा
2: शंख, ये शंख ही है, शंख ही समझो,
1: शंख को चलाने वाला कौन है,
2: ये तो ऊपर वाला,
1: ऊपर वाला तो सबका शंख अच्छा होता है,
2: सबका अच्छा बजाता है,
1: ऊपर ऊपर अच्छा नहीं बज रहा ना सर, शंख कौन बजा, खुद बजा रहे हैं,
2: हाँ हाँ हाँ,
1: ऊपर वाला कैसे बजाएगा,
2: हाँ, वो बजवाता है तब प्रेरणा से बजाते हैं,
1: ना प्रेरणा तो प्रेरणा जब देता तो अच्छा क्यों नहीं बजाते हैं, नहीं उसका बात मानते नहीं,
2: वो उसके
1: बात सोचने के बाद, सर ये सोचने के बाद मैंने गहरा से बोल रहे
2: जी बिल्कुल सही कहा,
1: शंख अपने व्यक्ति में गांव वाला नहीं करता है, शंख जो बनाए वो नहीं बजाता है सर,
2: ठीक बात,
1: शंख आप खरीद ले,
2: जी जी बिल्कुल,
1: अभी बजाएंगे आप,
2: ठीक
1: तो आप जैसे फूकेंगे उस तरह आवाज,
2: आवाज करेगा, करेक्ट करेगा, करेगा
1: उस तरह, ये मुख सर भगवान ने हमें दे दिया है,
2: जी जी,
1: माँ बाप हमें
2: दे दिए
1: शरीर में मुख, तो उसको नियंत्रण कौन बोलता है, मैं
2: बोलता हूँ,
1: ऊपर वाला नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता है तो शंख हमारा अच्छा बोलता है,
2: मैं अहम बोल रहा है, अहम को मिटाने वाली बात,
1: मैं जो व्यक्ति जो आत्मा जो प्राण है
2: आत्मा,
1: हाँ ये मुख से बोलता है, वो चेतना है, ये जड़ है,
2: बिल्कुल वो चेतना है,
1: हाँ ये जो जब तक हम चेतना मैंने आज निवारण का बात कर रहे हैं,
2: जी बिल्कुल,
1: सभी लोग इसका ऊपर में रिसर्च कर बहुत कुछ बोल, जैसे आपने बताया,
2: जी हाँ जी,
1: सबको पता है गीता में
2: सबको सब जगह मिल जाएगा, आप बता रहे सब जगह मिल जाएगा,
1: निवारण करने का उपाय कौन बताए,
2: बिल्कुल सही बात है,
1: तब तो हम जानेंगे ना भाई सर,
2: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: धूप हो रहा है सबको पता है, लेकिन धूप से निजात पाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, छाया,
2: बिल्कुल छाया में जाना पड़ेगा,
1: हमारे दिमाग में होना,
2: दिमाग में हमारे संकल्प,
1: छाया जो मालूम नहीं हम वहाँ भी बैठेंगे,
2: बिल्कुल सही,
1: गर्मी में, अरे गर्मी में क्यों बैठेंगे, चलो अच्छा जगह में
2: छाया में बैठे, छाया में
1: छाया उस तरह,
2: जी हाँ बिल्कुल,
1: ये चीज हो रहा है,
2: जी जी हो रहा है,
1: और आगे बढ़ेगा,
2: आगे बढ़ेगा, नहीं नहीं
1: कैसे होता है, तो अभी 10 साल पहले हो जाता है,
2: हाँ सही बात है,
1: ट्राई की उस समय भी, आप हम जैसे कितने लोग ट्राई किए होंगे,
2: जी जी किए ही होंगे, ट्राई
1: कर रहे हैं,
2: चल ही रहे,
1: अभी कर रहे, सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे, फिर भी
2: बहुत कर रहे,
1: कर फिर भी
2: बहुत लोग कर,
1: फिर भी कुछ तक
2: एक सीमा तक ही हो रहा है,
1: जो इतना पर्याप्त नहीं है,
2: पर्याप्त नहीं कर पा रहे, पर्याप्त नहीं कर
1: नहीं पा रहे, क्योंकि जितना हमको अति आवश्यकता
2: जी,
1: सिर्फ पांच लोग से नहीं होगा, सभी लोग
2: सभी करेंगे, अपने अपने स्तर पर करेंगे, सब जुटेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे। सर यही बात माइक्रो मैनेजमेंट वाली है कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो हो जाएगा,
1: और शुरुआत तो
2: हमसे ही
1: होगी, हमसे भी होगा
2: शुरुआत,
1: और
2: सभी
1: करेंगे नहीं, शुरू कर दीजिए
2: जी, बिल्कुल सही बात, शुरू करना है।
1: जैसे आज हम एपिसोड का बात करेंगे, कल वो सोचा है, लेकिन करेंगे कल कौन देखा है,
2: नहीं नहीं नहीं, कल का तो पता ही नहीं, पता ही नहीं,
1: बारिश आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ होता है, हमारे हाथ में नहीं ना,
2: कुछ भी हाथ में नहीं,
1: तो अभी जो है हमारे हाथ में
2: उसको कर डाली,
1: करना
2: कर डाली,
1: ये चीज पॉइंट आउट सर,
2: बिल्कुल
1: अभी जो करना है अच्छा चीज तुरंत,
2: बिल्कुल तुरंत कीजिए,
1: तब देखना आप सक्सेस, आज सक्सेस मिल गया ना,
2: बिल्कुल सर वो तो मिलेगा, हमने दो तीन दिन देखा, अब पता चला कि भाई हमारी जो दिशा उधर से जा रही थी वहाँ तो अपनी बात को लेने वाली नहीं, आप बांट रहे हैं लेकिन लेने वाला ही नहीं है, तो फिर जहाँ चीज जो ग्रास्प करने वाले हैं वो उस चीज को उसी स्थान से रखा जाए, उसका उपयुक्त जगह,
1: इसको विवेक बांध कहते हैं सर,
2: बिल्कुल विवेक,
1: हम विवेक बांध होकर हमें हम ट्राई देखे यहाँ पर ट्राई किए नहीं, और फिर दूसरा
2: बिल्कुल करना, बिल्कुल करना करना ही पड़ेगा,
1: हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुँचा,
2: लक्ष्य के लिए सारे सरल रास्ता अपनाना भी तो पड़ेगा,
1: कर रहे हैं सब करना भी चाहिए
2: जी हाँ जी,
1: और सर जैसे अपना निवारण तो मेन आवश्यकता,
2: मुख्य आवश्यकता निवारण,
1: क्योंकि निवारण सभी लोग जानेंगे तब जब करेंगे, नहीं जानेंगे तो करेंगे कोई मतलब कैसे करूँ, प्रश्न आएगा ना,
2: बिल्कुल वो कहेगा कि कैसे किया जाए,
1: आप कर दो, सभी लोग करना चाहिए, अरे करेंगे तो ठीक, काम हो जाते
2: हैं वहाँ पर,
1: उसका विधि बताओ,
2: कीजिए ना इसकी विधि क्या है, विधि क्या है,
1: तो ये होना,
2: तो इसमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा, स्वयं स्व को पहचानो
1: सर, स्वयं ही दुख और सुख का
2: कारण है,
1: कारण है
2: स्वयं ही, अच्छा स्वयं ही है,
1: अच्छा फूकेंगे तो अच्छा बजेगा, बस फूकेंगे नहीं तो पीछे से करेंगे तो आवाज आएगा,
2: बिल्कुल आवाज ही, सही जगह से उसको सही उपयोग करेंगे तभी जाके उसका सही अर्थ भी निकलेगा,
1: राइट,
2: नहीं तो नहीं निकलेगा,
1: इसलिए समय का मांग जो है खुद को पहचान,
2: खुद
1: और खुद का जो कर्म खुद, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, भगवान भी अंतर्जन बोलते कि जानता तो आपको रोक देता है,
2: सही बात,
1: खराब हम जो कर रहे थे गलत जो हो रहा है
2: जी जी,
1: भगवान इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा,
2: नहीं नहीं भगवान ने तो आपको सही कर्म करने के लिए
1: ज्ञान दे दिया, करना तो आपको मार कर,
2: अब जैसे आप सामान्य तौर पर बता रहे हैं कि ज्ञान सबके पास है ही है ना, जैसे पर्यावरण सब जगह मिल रहा है, सब जगह, आप क्यों दौड़ रहे हैं, आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम समझाने का एक प्रयास करेंगे, भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखो, ऐसे नहीं, उसका व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारो, उस पेड़ को लगाओ, उस पौधे को लगाओ, उसका क्या फायदा है, उसकी क्या छाया मिलेगी, उसका क्या फल मिलेगा, वो आपको उसके
1: निवारण का एक कारण है, निवारण का एक पॉइंट स्टेप,
2: बिल्कुल एक स्टेप है, आपको करना
1: स्टेप तो चलना पड़ेगा ना भाई, छत का जाना है तो पहला स्टेप तो
2: पहले स्टेप तो पूरा करना पड़ेगा,
1: स्टेप बाय स्टेप
2: करना तो पड़ेगा ही, करेंगे तभी कुछ न कुछ तो होना है
1: जी,
2: अब नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा,
1: और तो ये सब देखिए पर्यावरण के साथ हम दोस्ती लगाकर बहुत अच्छे से करेंगे सहयोग कर, हमें बहुत सुकून मिलेगा, इसको मिले चाहे नहीं मिले,
2: नहीं सर
1: हमको मिलेगा, और हमारा वाइब्रेशन से दूसरा तक पहुंचेगा,
2: सभी को सुकून मिलता ही है, पर्यावरण और प्रकृति तो सबको सुख नहीं दे रहा,
1: दाता है
2: वो, दाता है और वो वही चला रहा है, सृष्टि भी वही चला रहा है, पूरी सृष्टि उसी के हिसाब से चल रही है, सारा कंट्रोल भी उसी के हिसाब से हो रहा है,
1: लेकिन मालिक बनकर बैठा है,
2: बिल्कुल हाँ मुनि से मालिक बन करके बैठा जी, मालिक है तो नहीं वो लालची मालिक बन करके बैठा है, पर मालिक है तो नहीं
1: जी, बस और क्या कहना चाहेंगे सर, आज तो टॉपिक तो इतना देखेंगे अगला एपिसोड में, क्या कहना चाहेंगे आज का जो मूल मंत्र है, कारण और निवारण हमें हर एपिसोड में
2: ये तो लेते ही है,
1: क्योंकि उस समय दे देंगे तो फिर कल कौन देखेगा, पांचवा एपिसोड 15 एपिसोड में आएगा, इंतजार क्यों करेगा,
2: सही बात है, नहीं करेगा, हर एपिसोड में अपने को निवारण
1: और निवारण देना है
2: सर, इसका निवारण तो यही है कि आप इस प्रकृति के प्रति समर्पित होकर के काम करना शुरू कर दीजिए, दृढ़ संकल्पित होकर के खुद को पहचान कर, इस प्रकृति से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप इसके लिए एक बार शुरुआत कर दीजिए सभी अपने अपने स्तर से, तो हम उस लक्ष्य को पालेंगे जहाँ तक जाना है,
1: तो श्रोता मित्र रुग्राम से सुन ले, जो आवश्यकता है भाई शुरुआत तो खुद से करना ही पड़ेगा, और सभी लोग जैसे इस खुद से करेंगे तो भाई किसको कोई बोलने का नहीं, तुम करो बोल के कहीं सब इस तरह से समझ जाएंगे, और शुरुआत हम खुद करें व्यक्तिगत सरकार जितना करना वो अपना स्तर पर कर रहा है,
2: तो हम सब जगह काम हो रहा है,
1: जानकर हमें प्रकृति हमें दिया है, हम उसको रिटर्न देने का समय आया है,
2: बिल्कुल
1: बहुत कुछ जो किए भूल जाओ, अभी जो करना है अच्छा काम
2: शुरुआत करो, उसकी शुरुआत करो,
1: हम करेंगे आप करेंगे तो सभी लोग
2: हो जाएंगे,
1: और
2: और माइक्रो मैनेज कीजिए अपने आप को, सभी को थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे ढेर लग जाएंगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।
3: एग्जांपल जैसे सेतुबंध रामचंद्र इसका रामायण में सुने हुए,
2: बिल्कुल सामान्य तौर पे आता है
3: छोटा सा
2: एक एक पत्थर और एक गिलहरी वो लोटपोट करके रेत डाल रही है कि मैं भी सहयोग कर रही हूँ।
3: माया दुनिया जो आने वाला है तो हम सब करेंगे सहयोग, तो मांग रहा
2: ऐसा सहयोग हम भी कर रहे हैं
3: तो जरूर हो
2: तो हो जाएगा हमारा उसमें सर योगदान तो हो जाएगा।
3: कभी कभी बोल ज्ञान का परमात्मा का ऊपर वाला का क्यों, क्योंकि वो सहयोग मांग रहे हैं हमें आवश्यकता है क्या।
2: हाँ तो
3: उस समय हम शास्त्र में पढ़े हैं भाई रामचंद्र चाहेंगे तो बात नहीं कर पाते, उनके पास शक्ति नहीं
2: था, कर सकते
3: कर सकते, क्यों उसको सहयोग लिया।
2: बिल्कुल सही बात, क्यों वो चाहते थे कि वो भी सहयोग करे
3: तो उनका नाम आए।
2: बिल्कुल सही बात है,
3: जो करेगा सो पाएगा। तो आज परमात्मा जो चाहते हैं
2: जी
3: दुनिया को अच्छा दुनिया बनाने के लिए विश्व गुरु तक लाने के लिए, तो विश्व गुरु तो बनेगा क्यों, हम इसलिए सहयोग दे रहे
2: तो हम भी पुण्य के भागी बने
3: भागीरथ, इसलिए हमारा लक्ष्य यही था। अभी जो समय आ रहा है अच्छा समय जो आएगा
2: जी, जी।
3: समय हम अच्छा बन जाएंगे और हम परमात्मा का काम में सहयोग करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा और परमात्मा भी कोई करे नहीं, इतिहास में हमारा स्मरण वाक्य में
2: नाम लिखा जाएगा,
3: लिखा रहा
2: लिखा जाएगा।
3: अभी भी हम
2: पहुंचे गिलहरी का लिखा गया है, चिड़िया की चोंच का पानी जाने में। अब ये देखो यही तो चीजें समझाती है कि आप जितना हो
3: सर,
2: उतना
3: ये जब मैंने लेता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, जी।
3: कोई बोला अरे तुम पर्यावरण के बारे में क्या तुम रोक पाएगा, अरे मैं नहीं रोक पाएगा जिसका रोकना है।
2: अरे सर पर्यावरण से शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम उस ऊपर वाले को धन्यवाद कर पाएंगे,
3: सर
2: आत्मज्ञान होगा तो अपन संकल्प से अपना काम कर पाएंगे वहीं पर।
3: अच्छा बात, संकल्प से ही
2: संकल्प से और अपनी साधना से अपने राजयोग से हम इस काम को जब करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता आपके कदमों में हो,
3: क्योंकि जो विश्व रचयिता जिसको कहते हैं, विश्व का मालिक जो प्रकृति पति जिसको कहते हैं रचयिता, सर रचयिता एक शब्द है।
2: बिल्कुल सर बिल्कुल।
3: रचना हम सब है, एक प्रकृति भी रचना है लेकिन रचयिता
2: सर देखिए इसमें एक चीज कही गई है, एक चौपाई में बोल रहा हूँ सामान्य समझ में आ जाने जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ाव ही शाखा।
3: क्या बात,
2: तर्क करके कोई चीज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है विश्व को, आपको तो सुकर्म करना है बस,
3: कर्म योगी है
2: बस, कर्म किए जाओ
3: योग युक्त होकर
2: बस,
3: आराम से निस्वार्थ
2: बस,
3: तो जरूर इसका निवारण एक ही है जिसे हम लास्ट में बता भाई सबका मूल आधार है जो परमात्मा प्रति और खुद का प्रति विश्वास होना,
2: विश्वास होना चाहिए
3: और दृढ़ता आना चाहिए आत्मा में, दृढ़ता जो बात
2: सुकर्म किए जाए
3: किए जाए, जैसे गिलहरी हो चाहे हमारा पंछी अपना दृढ़ता दिया भाई हम करे
2: करे बिल्कुल, तब जाकर
3: बाघ हाथी सभी था जंगल में आग लगा तो भाग गए
2: बिल्कुल, लेकिन वो करने लगे
3: करने लगे तो उसका आज
2: नाम है नाम है।
3: तो हम सब कौन है एक एक
2: बिल्कुल
3: उसको सहयोग करने के लिए, आग को ये जंगल में आग लगे दुनिया पूरा जंगल जैसे
2: जल रहा है,
3: जंगल जल रहा है ना,
2: जल रहा है
3: जहाँ भी जाए स्टेप बाय स्टेप जल
2: जल जल रहा है
3: जल रहा है जल रहा है जल रहा है, राख हो जाएगा
2: बिल्कुल,
3: हो गया कि नहीं सर।
2: बिल्कुल सर,
3: आग लग गया मीन्स रुकने वाला,
2: वो आग लग ही गई है, इम्बेलेंसिंग हो रहा है वो आ गई है,
3: घर घर में अशांत
2: हाँ अशांति है वही आग है,
3: सुख नहीं वही आग है, वो स्थूल चल आग तो दिखा देगा
2: जी जी,
3: हेलीकॉप्टर में पानी डालकर
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: लेकिन ये जो आग लगा है
2: हाँ उसके लिए हाँ उसके लिए तो आपको अपने स्तर से ही जागना होगा,
3: ये खुद को लिबाना होगा सर, कोई आएगा तो
2: दूसरा नहीं आएगा,
3: आएगा फिर भी आप उसके बात मानना पड़ेगा।
2: हाँ, हाँ, बिल्कुल तब ना
3: तब आपको ध्यान से
2: सुनना।
3: तो ये था हमारा निवारण का स्टेप है,
2: नमस्कार
3: राज्यों का और जो आत्मचिंतन
2: बस
3: प्रकृति चिंतन पर्यावरण चिंतन करिए,
2: ये सब चिंतन करिए, स्वस्थ बनिए और राजयोग कीजिए,
3: अंतर आत्मा से निकलेगा सर ये गारंटी है, अंतर आत्मा खुद बोले कब तक मैं दस रत्नाकर भी अपना चेंज हो गया,
2: बिल्कुल बिल्कुल सर
3: डाकू पंचम सिंह
2: सब सब चेंज हो सब चेंज हो,
3: चंडा शोक से
2: सर अभी कितने
3: ये सर
2: कितने नक्सलवादी समर्पण किए
3: सब करेंगे, समय
2: करते ही रहेंगे,
3: समय आ रहा है और समझदार सभी
2: समझदार
3: हम समय समर्पण कर लेंगे, जैसे आपने समर्पण एक भावना की दृढ़ता ली
2: इसी से होगा,
3: इससे होगा और ये सब आध्यात्मिक प्रेमी सभी है
2: सभी मिलके
3: आज हमें प्रकृति यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम ब्रेक करेंगे तो जरूर हमें अपना स्तर को अपना स्थिति को आ पाएंगे, ये ही निवारण का एक रास्ता है
2: तरीका है,
3: और ये कोई मनुष्य कोई शास्त्र पाए स्वयं जो डायरेक्टर है जो निर्देशक है जो रचयिता है उनका ही, नहीं तो हमारे पास कैसे आया,
2: सही बात है उन्हीं का निर्देश,
3: हम आत्मा में वो चीज जब रखेंगे तो जरूर आपको कैसे लगा, जी आत्मा का जो स्वधर्म है
2: जी जी जी
3: वो आज नहीं है,
2: हाँ हाँ स्वधर्म की तरफ जाएंगे तभी होगा, तभी होगा।
3: वर्धन में सर अशांति
2: अशांति अशांति
3: अपवित्रता
2: शांति और आनंद में रहने वाली है
3: आत्मा है, लेकिन उसको क्या कर दिए अशांत कर
2: अशांत कर दिए
3: वातावरण का चल अशांत हो गया, घर में जाते
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: कोई कुछ बोल मारपीट हो जाता घर
2: में। सही बात है, सही
3: है। तो अपना सौदर में शांति प्रेम आनंद और ज्ञान
2: ज्ञान सभी कुछ सभी साथ में।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते अपना एक पॉइंट बताया, सबका मूल जो निवारण है खुद को पहचाना और खुद क्या कर खुद से आत्मा से
2: जग जाओ
3: जग जाओ
2: जग जाओ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद
3: धन्यवाद। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, इसी एपिसोड में आप यहाँ तक रखते हैं, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे श्रीमान गोपाल राम पुरेश जी से।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड और आज का कार्यक्रम दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब हम संगीत से प्यार की बात करते हैं तो उन सभी का धन्यवाद करते नहीं थकते जिन्होंने उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया, जिन्होंने उसे नई पहचान दी, नई उड़ान दी। तो आज हमारे समक्ष ऐसे ही एक अतिथि हैं जिन्होंने संगीत को सच में जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी की, जो कि प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं, शोध निर्देशक है, गुरु है। वैसे तो बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, विद्वानों की सराहना अर्जित की है। वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें या आगरा के ताज महोत्सव की, अनेक सम्मेलनों को उन्होंने अपने गीतों से सजाया है। वो राष्ट्रीय प्रसारण भी उनके कई गीतों का हुआ है, चाहे आकाशवाणी पर हो चाहे दूरदर्शन पर हो। और साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अनेक शोधार्थियों का सफलतापूर्वक उन्होंने PhD भी करवाया है। और आपके अगर जीवन की बात करें तो जैसे संगीत को आपने समर्पित कर दिया है अपना जीवन, तो ऐसी कलाकार हमारे समक्ष हैं। हम बेहद कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं अमिता त्रिपाठी आगरा से आई हूँ और मैंने 42 वर्ष संगीत के शिक्षण का कार्य किया और सन 1981 में मैंने MA किया। उसके बाद ही मुझे तुरंत रिजल्ट मिलते ही मुझे
0: जी
1: शिक्षक का दायित्व निभाने का अवसर मिला
0: जी।
1: तो उस मामले में बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी GL गुणे जी ग्वालियर घराने के बहुत मूर्धन्य कलाकार थे, उन्होंने मुझे संगीत की विधिवत शिक्षा दी और इस बात से वो अति प्रसन्न होते थे कि आप प्रवक्ता हो गई हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा पद मिल गया है, फिर भी आप संगीत सीखना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद 81 में उनसे संगीत का शिक्षकत्व आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि संगीत डिग्री से नहीं आता है, साधना है। और उनके चरणों में बैठ के मैंने ग्वालियर घराने की तालीम ली।
0: क्या बात है।
1: हाँ। और मेरे विद्यार्थी दूर दूर तक, कोई प्राचार्य हैं, कोई कमिश्नर हैं और अच्छे अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ, जब मिलते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो अक्सर पूछती हूँ तो कहते हैं, मैम आपने हमको इतना अच्छे डांट से, प्यार से ना सिखाया होता तो शायद उन बंदिशों को हम याद ना कर पाते। तो संगीत में साधना के साथ साथ एक प्रेरणा, अच्छा मार्गदर्शक और ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: तो
1: शिष्याओं के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मैंने शायद उन्हें अच्छा रास्ता दिलाया, कि आज भी अवकाश प्राप्त होने के बाद भी वो मुझे याद करती हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से संगीत का सफर निरंतर, 8वीं क्लास में थी, सन 19,
0: ये मैं जानना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ ये।
1: हाँ, 1973 से मैं संगीत से जुड़ी। मेरा जन्म 1961 में हुआ था, फिरोजाबाद में
0: जी।
1: तो मेरे पिताजी को, जो मेरे फादर, उनको संगीत का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने मुझे जो भी बचपन से जो तालीम दिलवाई, जहाँ भी जो शिक्षक होते थे, इसके साथ साथ तबले का भी मैंने कोर्स किया, प्रभाकर विशारद, और डांस में भी मैंने पंचम वर्ष किया, सितार में भी पंचम वर्ष किया, क्योंकि वो संगीत की उस समय की उच्च कोटि सत्ताओं को समझते थे। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अगर गाना गाना है तो उसके साथ ताल, लय और इन विद्याओं का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने मुझे उस समय सुविधाएं दी, जबकि घर से लड़की का निकलना बहुत मुश्किल होता था। मैं फिरोजाबाद से आगरा संगीत सीखने के लिए आती थी।
0: क्या बात है। तो आपके पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी,
0: इसमें।
1: मेरे पिताजी का बहुत योगदान है। उसके साथ ही उस समय, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। मेरे पति, मेरे दूसरे पिता जो मेरे ससुर साहब थे, वो मेरी संगीत की साधना में निरंतर मुझे उकसाते थे कि तुमको साधना करनी है, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें साधना करी। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत भाग्यशाली थी और कि मुझे उसी तरह का वातावरण
0: मिला,
1: ससुराल में भी मिला।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी संगीत की शिक्षा में मेरे मायके पक्ष के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत अदम्य योगदान है। मेरे ससुर साहब वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान।
0: अच्छा।
1: हाँ, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी जिनको की पढ़ाया जाता है।
0: वाह।
1: हाँ, एक पिक्चर आई थी दिल्ली की पिक्चर में
0: जी,
1: पिताजी की किताब डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी किताब धर्मेंद्र लिए हुए हैं, उसमें उनका नाम भी है।
0: जब
1: आप देखेंगे दिल्ली की पिक्चर तो ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में जो बातचीत होती है उसमें जो पुस्तक लिए हैं संस्कृत की उसमें मेरे ससुर साहब का नाम है। मायके पक्ष से भी मैं पत्रकारों के परिवार की बेटी हूँ तो मेरे अंदर थोड़ा सा नेतृत्व के भी गुण थे, तो मैं अपनी शिक्षक जो हमारी यूनियन होती थी उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो मैंने नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की। तो संगीत की साधना एक प्रकार का नेतृत्व ही है, उसमें जब अनुशासन के साथ हम बैठक करते हैं साधना करते हैं गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ संगीत की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होता है और एक कोशिश रहती है कि आप निरंतर उसमें साधना में रत रहे
0: जी।
1: और विद्यार्थियों को भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि संगीत से के अनुशासन से जीवन में समग्र विकास होता है। संवेदनाओं की आवश्यकता बहुत है जो कि हमें संगीत कलाएं सिखाती हैं, और कलाओं को जब मंच मिलता है तो वो निश्चित रूप से प्रस्फुटित होती हैं।
0: क्या बात है अमिता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने अपने सफर की शुरुआत तो की, तो अमिता जी क्या हमारे श्रोताओं को कोई आपके ऐसी पंक्तियां हों या कोई भी ऐसे स्वर जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जिनको आप बहुत स्नेह से, वैसे तो आप सब कुछ गाते हैं, आपके पास बहुत खजाना है, लेकिन जो हमारे अगर श्रोताओं को कुछ अगर आप सुनाएं आज तो ये।
1: जी जरूर, कोशिश करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ जो कि राग यमन में है, और कोशिश करती हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी
0: जी।

0: लता जी, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की ना नॉलेज हो तब भी शायद ऐसा लगेगा कि ये चलता रहे, हम सुनते रहे और इसमें जैसे खो गए थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये जैसा जो गीत था यमन कल्याण में
0: जी,
1: इसकी ताल भी एक ताल थी
0: जी,
1: हाँ, जिसके बोल होते हैं धिन धिन धागे त्रिकृतुना कत्ता धागे त्रिकृधीना। तो ये इस लय में उस लय का कैसे गीत उसको बांधा गया था, ये मैंने अपने जीएन गुणे जी से, गुरु जी की इससे शिक्षा ली थी। तो मुझे उन्होंने कई बंदिशें सिखाई थी यमन कल्याण में, दस दस बारह बारह, कोई तीन ताल में, कोई एक ताल में, कोई रूपक में, वो विभिन्न तालों में सिखाते थे बंदिशें। तो उसमें से एक मुझे याद आ गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिभूत हूँ कि आपको पसंद आई, थैंक यू।
0: बहुत सच में बहुत शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं ना, तो कई बार एक आज हम देखते हैं कई तरह के संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन शास्त्रीय संगीत जब सुनते हैं तो वो जो महसूसता होती है वो बयां करना बहुत मुश्किल होता है, वो
1: दिल की उच्चतम अनंत गहराइयों से जो अनहद नाद की अंदर से अनुभूति होती है। ऐसे ही मैं वहाँ ज्ञान सरोवर में अभी गई थी, वहाँ पूरे टाइम मुझे इतना आध्यात्मिक वातावरण आकर्षित किया, क्योंकि मेरे संगीत की साधना करती है तो वो सब ओम की साधना, वो सब तो मुझे बहुत इतना अच्छा लगा उस आध्यात्मिक पवित्र प्रांगण समारोह में, कि मैं बहुत हृदय से अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निरंतर अक्सर बुलाते रहे, ये मुझे मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद होगा
0: जी।
1: बहुत नमन करती हूँ, ओम शांति।
0: अमिता जी, यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी।
1: जी जरूर।
0: क्योंकि जब संगीत की शिक्षा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात होती है, तो आप जब शिक्षा ले रहे थे वो कैसा था, मतलब क्या दिनचर्या होती थी या कैसा वो रिश्ता होता था गुरु के साथ, क्या वहाँ का कुछ उस समय के बारे में कुछ बताएं?
1: जी जरूर बताऊं। हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे, हमारे फादर सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो उस प्रकार से हम संगीत का रियाज करते थे। और हमारे गुरुजी का भी यही नियम था कि सुबह उठ के हमको 5 बजे स्वरों की साधना, स्वर गाते थे हम, फिर उसके बाद आकार ईकार उकार में स्वरों का अभ्यास करते थे, ओम की साधना करते थे, तो उससे स्वर पक्के होते हैं। और जितना आप, मैं अपने शिष्याओं को भी, मैंने अपने छात्रों, अभी भी मैं एक विद्यालय से जुड़ी, मेरे गुरुजी का जो विद्यालय था वहाँ मैं जाती हूँ रिटायरमेंट के बाद, शाम को 3 घंटे, और कोई पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क वहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि इतना हमने समाज से लिया है तो अब हमारा समय है कि हम समाज को दें, उन विद्यार्थियों के माध्यम से, और या जो भी और कोई उच्च शिक्षा, कोई भी जानकारी जानना चाहे पीएचडी के मामले में कभी, तो मैं उसको जो भी हेल्प होती है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन छात्राओं के, उन बच्चों के मैं काम आऊँ, समाज के काम आऊँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तो नियमित जो एक विद्यार्थी और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो बिल्कुल माता पिता पुत्र पुत्री की भांति होता है, हाँ, और माता पिता गुरु, गुरु का स्थान भी समकक्ष ही होता है माता पिता की। तो उन बच्चों को बहुत जो सिखाना चाहिए हमको, बहुत प्यार से, लगन से, और जहाँ कुछ संचेतना उनको देनी हो वहाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनका भला चाहते हैं तो हमको कहना पड़ेगा। तो पहले तो स्वयं अपने आचरण में गुरु को वो सब बातें लानी होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगीत तो सीखता है लेकिन बाकी चीजें स्वयं देख के गुरु के आचरण से सीखता है। ऐसे पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी बच्चे हम बहुत कुछ कह के नहीं सिखाते हैं, हम स्वयं आचरण करें, सुबह सुबह खुद जल्दी उठें, टेक्नोलॉजी का प्यार प्रयोग एक साधन के रूप में करें, उस पर एकदम डिपेंड ना हो जाएं कि पूरे दिन व्हाट्सअप, ऐसे आजकल वहाँ भी चर्चा जी, चली जी, थी जैसे कि, तो मुझे यही लगा कि जो भी हमारे यहाँ ये व्हाट्सअप है, ये सशक्त माध्यम है, उनको हम सीमित साधन की तरह यूज करें, एक माध्यम की तरह यूज करें, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, वो अपनी अनुशासन हम करेंगे तो हमारा विद्यार्थी, चाहे वो शिष्य हो, शिष्या हो या पुत्र पुत्री हो, वो हमें अनुकरण निश्चित रूप से करेंगे। तो ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है, जैसे माँ का बेटे बच्चे से होता है, उसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों से वही रिश्ता होता है।
0: तो आपको लगता है अमिता जी कुछ बदलाव आया है या अभी भी ये वैसा ही है?
1: मैम, बदलाव तो आया है, और थोड़ा सा ये अपने संस्कार और व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, हम किस परंपरा से आए हैं, क्या हमने घर में अपने देखा है, उस प्रकार के गुरु हैं तो वो फिर वही, हमारे गुरुजी ने कभी हमसे कोई पैसा या तो नहीं हमसे ली, हम उनकी सेवा करते थे वो बात अलग है, लेकिन एक ऐसा पवित्र उन्होंने हमें वातावरण दिया, पैसे को नहीं देखना है, मैं कमाती थी, प्रवक्ता हो गई, फिर भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। आप आती हैं, अमिता जी आती हैं, सबको बताते थे अमिता जी फिरोजाबाद से आती थी, क्योंकि मैं, मेरे गुरु जी आगरा में थे, मैं फिरोजाबाद से नियमित आगरा आती थी, और 5 बजे से 7 बजे तक मुझे शिक्षण ग्रहण करती थी उनके चरणों में बैठकर, और फिर बस से अपने घर आती थी। अनमेरिड थी, अविवाहित थी, तो माता जी चिंता भी करती थी, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत सहयोग था, मेरे को बहुत विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर, तो वो तालीम इस तरह चलती थी। और फिर जाके, क्योंकि मेरा जॉब 19 वर्ष में ही लग गया था।
0: अच्छा
1: जी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि एक साथ मुझे चार चार जॉब मिले।
0: अच्छा,
1: तो मैं एमए पास किया, तुरंत ही मेरे पास नौकरी, एक जगह लोगों की नहीं रखती उस समय, एमए पास करके लग जाती

0: एक तो फिर थोड़ा सा मेरा इतना प्यार भरा रिश्ता रहा सबसे, जहाँ मैं पढ़ती थी वो मेरा इंतजार करते थे कब मैडम एमए करके आए लड़की ये, तो हम इसको अपने विद्यालय में रख लेंगे। इस तरह से मुझे कॉलेज की जॉब 19 वर्ष पार किया था, मैंने 20वां लगा था सन 1981 में। मैं बरेली से मैंने अपना शिक्षक की यात्रा शुरू प्रारंभ की।
1: क्या बात है अमिता जी, मैं एक और आपसे चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बहुत से लोग हैं मेंटल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन है, जीवन में डिप्रेशन भी आ रहा है कई, तो क्या कोई आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ये सुने या इस प्रकार का संगीत सुने जो मदद कर सके, या कुछ अगर आप ऐसा सुनाए हमारे श्रोताओं को जो आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार का अगर आप संगीत सुनेंगे तो आप अपनी स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे?
0: जी, कई बच्चे आते हैं हमारे पास, कुछ तकलीफ में होते हैं, परेशान में होते हैं, लेकिन संगीत का हम प्रारंभ सरगम से ही करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रांतीय लोक संगीत है, भक्ति संगीत है, वो छोटे छोटे गीत जो होते हैं, जैसे मैं एक जैसे कहूँ, बच्चे का कुछ नहीं जानते, बच्चे जैसे राम का सब जीवन चरित्र सब जानते हैं, छोटा सा एक हम छोटी छोटी हम बंदिशों में बताएं उनको।

0: सीधा सीधा है इस तरह से, ज्यादा उसको टेक्निकल शुरू शुरू में प्रारंभ में अवसाद इन सब चीजों से निश्चित रूप से दूर होता है, भक्त संगीत है और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसके छोटे छोटे गीत बनाकर उनको और सरंगम के माध्यम, जैसा मतलब विद्यार्थी हो, विद्यार्थी किस लेवल का है, डिप्रेशन का शिकार है, और थोड़ी सी हम उसको एक गाइडेंस भी देते रहे, समझाते रहे उसके मन की बातों को
1: जी।
0: क्योंकि सारा कुछ मन में है और किस परिस्थिति से वो आहत है उसकी बात को पूरी सुननी चाहिए, सुनने के बाद फिर संगीत के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुनना भी एक मैडम लर्निंग प्रोसेस है
1: जी।
0: श्रवण की एक क्रिया है, बहुत सशक्त क्रिया है। सुनेंगे जितना सीखने से नहीं आता ये सुनने आता है। हमारे गुरु जी के विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ जो आधा घंटा सीखता है वो पहले एक घंटा सुनता है, तो उससे काफी हद तक बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके अवसाद दूर होते हैं, क्योंकि सुनेंगे हम, सुनने की धैर्यता ही तो खत्म हो रही है वर्तमान में
1: जी।
0: वो सहनशीलता, वो धैर्यता, बड़ों के प्रति थोड़ा आदर सम्मान, तो जब बैठने की प्रक्रिया से एक अनुशासन आता है
1: जी,
0: तो उस प्रक्रिया से जब सुनेंगे तो फिर उतनी देर उनको समझने का मौका मिलेगा
1: जी।
0: है ना, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ, कोशिश करती हूँ।
1: ये बहुत सुंदर आपने बात कही, एक घंटा सुनते हैं तो आधा घंटा फिर हाँ। आप सीखते हैं, गाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो सुनना बहुत जरूरी है जीवन में।
0: उसमें कई कई राग, उनको बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, उन सबकी भी उनको समझ में आता है ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है, फिर इतना अच्छा गा रहा है, तो बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती है कि नहीं मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है। हम धैर्य खोके ही तो अवसादग्रस्त हो रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो धैर्य, ये संगीत हमें बहुत धैर्यवान बताता है, हमें संवेदनशील बनाता है संगीत की साधना,
1: संगीत से जुड़े तो
0: हाँ बिल्कुल, संगीत वो सशक्त माध्यम है जो हर अवसाद और वेदना का जो पूर्ण करने में सहयोग, सशक्त माध्यम है,
1: सशक्त माध्यम है, बिल्कुल
0: सशक्त माध्यम है।
1: अमिता जी, मैं आपसे एक और, अगर कोई ऐसी, जैसे आपने अभी जो राग सुनाया, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो या रिक्वेस्ट करते हो सभी सुनने के लिए, कोई ऐसा गीत या कोई एक राग अगर हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं।
0: इस समय मुझे याद आ रहा है बस थोड़े उसके राग दरबारी की एक बंदिश याद आ रही है
1: जी।
0: जो अक्सर पसंद की जाती है। मान जा, दरबारी के स्वर में गाधानी कोमल लगता है और ये रात्रि के प्रथम मध्य रात्रि कालीन गाया है, आशा भरी थाट से उत्पन्न होता है, तो इसकी मैं बंदिश सुनाती हूँ आपको।

या ओ तो पेवारी मान जा सलोने पिया, या आत्मा और परमात्मा की यह पुकार है, पिया वो हमारे परम सत्ता है, उसको बैठिए।

0: मुझे ऐसा लगता है जब आप गा रहे होते हैं तो उसके बाद कुछ ना बोलूं या कुछ ना पूछूं आपसे।
1: बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपको पसंद आया।
0: इसके बाद शायद कुछ भी कहना कम लगता है, कुछ भी सुनने का मन और नहीं करेगा। आपकी आवाज में सच में जादू है और दिल गदगद हो जाता है सुनकर। अमिता जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, महसूस करती हूँ कि आज मैं आपको लाइव यहाँ सुन पा रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। मैं समस्त प्रमुखारी का बहुत हृदय से, भाइयों और दीदियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम आगरा से ईदगाह से अंशुना दीदी हैं, उन्होंने हमको भेजा है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ज्योति मैम के माध्यम से मैं आई। ज्योति खंडेलवाल आगरा से कथक नृत्य की डायरेक्टर हैं, वो मुझे लाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बहुत सारी सीख यहाँ से लेके, गाइडेंस लेके जा रही हूँ, जिससे अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में उनको वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।
0: अमिता जी, जाते जाते अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप ऐसे टिप्स या गाइडेंस उन्हें देना चाहें कि वो बेहतर गायक बन पाए, या जैसा आपने कहा कि गुरु से और भी चीजें सीखते हैं संगीत के अलावा, तो बेहतर इंसान भी बन पाए, बेहतर गायक भी बन पाए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एक तो उनको बहुत, जो भी मार्ग चुने उनके सामने खुला द्वार है। प्राचीन काल में जो हम लोग पढ़ते थे उससे पहले के काल में उतना साधन नहीं थे, आज तो बहुत अच्छे साधन हैं, इसलिए अपनी जो दिशाएं हैं वो स्वयं तय कर सकते हैं। एक उनके सामने खुला द्वार है, चाहे वो PhD करें, चाहे वो गायक बने, चाहे वो अच्छे कोरियोग्राफर बने, डांसर बने। तो आज तो बहुत ही ये बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो बच्चे अपना मार्ग आसानी से चुन सकते हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से। बस वो अपने संस्कारों से बने रहें, जो घर का संस्कार है और जो गुरु से संस्कार लिया है उनसे विरत होकर कोई मार्ग ना चुने। और जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जब तबले का आया तो तबला करें। अब बच्चों को ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि मुझे तबला करना है, मुझे गाना करना है या कोई वाद्य करना है। जिस चीज़ की आपके अंदर अभिरुचि हो, अपने टैलेंट को, अपने गुणवत्ता को समझते हुए गुरु के निर्देशन में उस दिशा में अपने संलग्न होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी।
0: जी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए या फिर क्या सीखना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: ये कहना चाहूंगी कि जो गाना है, कुछ भी आप गाइए, जड़ उसकी शास्त्रीय संगीत है। निश्चित रूप से उनको सरगम का अभ्यास करना पड़ेगा। सरगम का अभ्यास करने से जब स्वर पकड़ में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के जो सरगमों का जो अभ्यास है वो बेसिक में वो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में जो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर तानपुरे से गाते हैं सब लोग, नो हारमोनियम। हारमोनियम ध्यान भटकाता है, तो हारमोनियम को बहुत आगे जाके गए, कोई विदेशी वाद्य है, शुशुर वाद्य है, लेकिन हम जो साधारण गाना गाते हैं उसमें हारमोनियम बहुत हमें सहायता करता है। लेकिन नींव में जाकर पहले तानपुरे से हमें स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। तानपुरा भी इलेक्ट्रिक तानपुरे चल गए हैं आजकल तो, लेकिन वैसे उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा गुरु के सामने ही अभ्यास करें प्रारंभ में।
0: अच्छा,
1: फिर वो अच्छा लोकगीत भी गा सकते हैं, अच्छा फिल्मी संगीत भी गा सकते हैं, लेकिन स्वरों का अभ्यास गुरु के सामने बैठ के करें। जब पक्के हो जाए सरगम उनकी, सा सा रे रे गामा शुरू में, फिर ये डिफरेंट टाइप के होंगे, सारेगा सारेगामा सारेगा सारेगामा सारेगामा, इस तरह के जो छंद हैं, 3 के 2 के 4 के 5 के, तो उन छंदों में जब सशक्तता आ जाएगी, जब उनमें मौलिकता आ जाएगी, एक सुरीले हो जाएंगे वो, तब फिर जाके आगे उनको सीखना चाहिए। प्रारंभ में सरगम का अभ्यास करना चाहिए और गुरु के सामने करना चाहिए। ये तो बेसुरापन आ जाता है ना घर में, घर में भी अभ्यास करने का हम तभी अलाउ करते हैं जब उनका सामने स्वर अच्छा हो जाए।
0: अच्छा,
1: प्रैक्टिस जब भी करनी चाहिए जब आपका गुरु कह दे कि दिस इज ओके, आपका सही हो गया है,
0: तब उसका अभ्यास करें।
1: अभ्यास तब तक नहीं करना चाहिए था जब आपके शिक्षक हैं या गुरु जो भी है वो आपको आदेश ना दें, क्योंकि आप फिर गलत कर लेंगे अभ्यास। तो प्रारंभ में उसको संगीत को सुरीला करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वर में गाने के लिए सरगम को और गुरु के सामने, शिक्षक है या गुरु जो भी है, क्लास में पढ़े अलग से पढ़े, उनके सामने ही अभ्यास करना चाहिए। जब पक्का हो जाए फिर आप अपना अभ्यास भी करें घर में और फिर गुरु को सुनाएं। यह एक सही तरीका है मैम, कोई भी विधा गाएं आप
0: जी,
1: क्लासिक, बल्कि वाद्य लोग बजाते हैं सितार और वायलिन और वीणा वगैरह जो बताते हैं, उनके लिए भी तंत्र वाद्यों के लिए, उसके लिए भी लोग पहले गाना सीखते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: NM राजन थी, इतनी अच्छी वायलिन वादिका, सब गाना बहुत अच्छा गाते थे, हाँ, गाना सीखने से क्या होता है, वो मन में एक अंदर से तीन अवस्थाएं होती है ना सीखने में, चेतन अचेतन अवचेतन, उनमें संगीत जाता है तो वो फिर निकलने में भी उतना सुरीला निकलता है। तो गायन कला उच्च क्यों मानी गई, क्यों गायन कला सब चीजों की जननी है, गायन कला श्रेष्ठ है, तीनों कलाओं में गायन कला श्रेष्ठ क्यों है, कि हमें कोई साधन नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठ के आपको गात्र वीणा से जो प्रभु ने मुझे दी है उस गात्र वीणा से मैंने आपको संगीत सुना दिया, मैं शब्दों को भी माध्यम ना बनाऊं फिर भी आकार के माध्यम से भी आपको, लता जी एक आकार लेती थी लोग गदगद हो जाते थे, तो हमें संगीत में गायन कला में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तबला चाहिए ना हारमोनियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी अपनी साधना कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गाना तो अपनी साधना के लिए होता है, वो ठीक है हम थोड़ा प्रदर्शन भी करते हैं क्योंकि मन की शांति के लिए, अपना अनहदनाथ अंदर का जगाने के लिए, आत्मा परमात्मा का पूजा करने के लिए, तो संगीत वो सशक्त साधना है जिसमें गायन कला बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है,
0: आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: माता जी, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, आपके पसंदीदा?
1: मेरी फेवरेट सिंगर से तो फिल्मी में तो आशा जी हैं
0: जी,
1: और वैसे जो शास्त्रीय संगीत में मेरे गुरु जी के अलावा बहुत से कलाकार हैं जिनको मैंने सुना है, मुझे किशोरी मुनकर जी बहुत पसंद है, बेगम अख्तर जी बहुत पसंद है, ये अच्छी गजल गायिका थी बहुत अच्छी, किशोरी मुनजिन के क्लासिकल गाना हे गोविंद हो गोपाल आंसू से ऐसे रुला देता था, बहुत भावुक गाना उनका था, ये मेरी पसंदीदा गायक है।
0: आपको गजल का भी शौक है?
1: गजल का शौक है मुझे, शौक है तो बहुत ज्यादा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ कोई अवसर आता है तो मुझे कोई कहे तो मैं कोशिश करती हूँ गाने की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वैसे तो मैं शास्त्रीय संगीत की कोशिश में रही हूँ, पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर शास्त्रीय संगीत हमने अच्छी विधि विधान से सीखा है तो हम कोई भी गाना कोशिश कर सकते हैं गाने की, तो मैं क्या नाची हूँ तिनका मात्र हूँ।
0: आपने इतनी जगह जो परफॉर्मेंस आपने दी, आगरा के ताज महोत्सव की बात करें या वृंदावन के हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, कोई जैसे आपने गजल की बात कही आपको शौक है, क्या तो पंक्तियाँ आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: थैंक यू, मैं गुनगुना कोशिश करती हूँ। अभी ये गजल का कार्यक्रम हुआ था आगरा में, आशा जी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तब भी मैंने उनके उनको गा के ही श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि संगीतकार की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है कि उन्होंने जो काम किया है अपनी जिंदगी में उसको गाकर हम उनको सम्मान दें। उनको उनकी प्राइवेट एल्बम से एक गजल मुझे याद आ रही है जो अभी मैंने आगरा में कुछ एक डेढ़ महीने पहले गाई, कोशिश की थी गाने की।

0: आपने श्रद्धांजलि दी और इस
1: श्रद्धांजलि मैंने दूसरे गाने को की थी।
0: अच्छा,
1: ये तो मैंने अभी गजल का परफॉर्मेंस हुआ था तो मैंने आशा जी की एल्बम से ये गजल गाई थी।
0: अच्छा जी, जी।
1: वो उनका श्रद्धांजलि दूसरे से गीत थी, वो उनका बड़ा दर्द भरा गीत है जो मैंने गाया था। आप कहेंगी तो मैं दो लाइन सुनाऊंगी।
0: जरूर,
1: उनका बहुत पसंदीदा, और जब वो बहुत तकलीफ में थी तब उन्होंने वो गाना गाया था जो मेरे दिल को छू गया। जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उनका इतनी महान कलाकार को भी इतना कष्ट, कितना कष्ट उनको, पारिवारिक कष्ट उनको हुआ, तब उन्होंने वो गीत गाया था।
0: जी।

0: चैन से हमको कभी। ये आशा जी का बहुत दर्द भरा गीत है और इसमें जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी मैंने तो आंखों से आंसू की धारा बैठी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गीतों को और ध्यान से मैंने सुना, कितनी महान कलाकार को कितनी समस्याओं से गुजर के उन्होंने बहुत संघर्ष से संघर्ष सीखा बहुत जी, जी, अपने जी, को सेव करते हुए बचा के। कैसे एक लड़की का जीवन किस प्रकार के होता है, जब उनकी वो सब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो फिर मुझे याद आया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे परिवार ने हमको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमको सहयोग किया हमारे फादर ने। माता जी बहुत नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को संभालने से मुझे जो सहयोग दिया और पिता ने मुझे आगे, मेरे फॉर्म मेरे फादर भरते थे। अच्छा। तो कितने ये देख के मुझे लगा कि हम बहुत लकी हैं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है, बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है।
1: ऐसे पिता, ऐसे माता पिता, ऐसे घर मिला। मुझे लगता है जैसा आपने कहा, आशा जी की बायोग्राफी शायद हम सबको पढ़नी चाहिए,
0: पढ़नी चाहिए, बहुत प्रेरक है,
1: प्रेरक है,
0: हर लड़की को तो पढ़नी ही चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए,
1: सबको पढ़नी चाहिए। जी, जैसे कि अमिता जी आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी 19 साल की उम्र में ही आपने शिक्षा का क्षेत्र अपनाया और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, करीबन 40 से ज्यादा तो आपके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए हैं, अनगिनत शोधार्थियों को आपने सफलतापूर्वक PhD भी करवाई है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, किस प्रकार के शोध किए, किस प्रकार के टाइटल्स थे या क्या अनुभव था आपका?
0: जी, बहुत अच्छा। शोध कराने में जब मैं 96 में मेरी PhD अवार्ड हुई तो जैसे ही डिग्री मेरे हाथ में आई या वो लेटर मिला तो विश्वविद्यालय ने कहा अब आपको शोध विशेषज्ञ बनना है, आपको गाइड बनना है निर्देशक, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कराते थे PhD। तो बहुत विद्यार्थी मेरे पास, अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए, मैं बहुत लकी उस मामले में, एक से एक अच्छे कलाकार, एक ITC से पढ़ी हुई थी डॉक्टर रूबी मलिक
1: जी,
0: जो कि लताफत हुसैन खां की शिष्या थी। अब जब वो इतनी बड़ी कलाकार मेरे पास आई तो मुझे लगा मैं ही उनके आगे कुछ नहीं हूँ, पर कहती है नहीं मुझे आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने अपने गुरुजी के योगदान के ऊपर, जो कि आगरा घराने के विशिष्ट बहुत उम्दा उच्च स्तरीय कलाकार भी थे और शोध मर्मक भी थे संगीत के, उनके ऊपर उन्होंने काम किया, लताफत हुसैन खां का संगीत में योगदान, मीडियम उनका इंग्लिश था तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर उनको एक फेलोशिप मिली तो वो टिनी टार्ड में चली गई थी जैसे। अच्छा। अवार्ड हुई और फिर उनका यहाँ पर दाऊदयाल कॉलेज फिरोजाबाद में नियुक्ति में भी मैं ही विशेषज्ञ थी, मेरा ही पद था और मैं ही विशेषज्ञ थी। तो उनको रूबी जी बहुत अच्छा गाती थी आगरा घराने की गायकी, शोध उनकी जो परख थी, गुरु के प्रति इतना समर्पण था, तो मुझसे बोली कि मैं इस तरह उनके ऊपर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। उनकी जो विशिष्ट गायकी थी उनके ऊपर उन्होंने उनकी विशेषज्ञता के परतों से शोध के निष्कर्ष निकाले, उन्होंने उनकी गायकी कैसी थी, उनकी बंदिशें कैसी थी, आधुनिक संदर्भ में उनकी क्या क्या और विशेषताएं परख हो सकती थी, तो उन्होंने उनकी बंदिशों के ऊपर काम किया,
1: क्या
0: अपने गुरु जी की गायकी के ऊपर, और बहुत अच्छा उनका काम हुआ, आगे जाके उनको फेलोशिप भी मिली और वो फिर ट्रिनी टार में सेटल हो गई।
1: क्या बात है,
0: अब तो रिटायर हो गई है, आ गई है। दूसरा मुझे एक मिली शोभी माथुर ने आगरा की, बहुत उच्च स्तरीय शोरमणि प्राप्त है उनको, कलाकार हैं, उन्होंने भी बंदिशों के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें बनाती थी वो।
1: अच्छा।
0: तो जिस विद्यार्थी के अंदर जो गुणवत्ता हो, आगरा कॉलेज में प्रोफेसर है, बहुत प्रोफेसर ने मेरे साथ काम किया, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अच्छे विद्यार्थी मिले, कुछ ऐसे भी मिले जिनके साथ मैंने बहुत मेहनत की। एक ने किया संगीत के माध्यम से, मतलब मीडिया एक सशक्त माध्यम है
1: जी।
0: संगीत के प्रचार प्रसार में उस लड़की ने बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले, जैसे हम पहले कहते थे ना वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो संगीत से हर चीज बहुत आसानी से याद हो जाती थी, उसको कहने में, उसका प्रचार प्रसार करने में एक सशक्त माध्यम था
1: जी, बिल्कुल।
0: और भी विद्यार्थी आए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तबले का योगदान पर काम किया, क्योंकि मैं तबले में भी मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो तबले के विद्यार्थी भी मेरे पास आए, क्योंकि संगीत में तीनों ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं प्रोफेसर हुई तो उसके बाद फिर मेरे पास तबले के भी विद्यार्थी आए, जिनको 5 विद्यार्थियों ने ऐसे किए जिनको नेट क्वालिफाइड थे।
1: अच्छा।
0: उनको JRF मिलती थी
1: जी।
0: हाँ, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने काम किया, बहुत मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। अभी एक का तो पीलीभीत में अपॉइंटमेंट हो गया है, नियुक्ति हुई है
1: जी।
0: एक रचना गुप्ता जी हैं, वो नवोदय विद्यालय है, उनका भी आगरा में कुंडो में जगह है, वहाँ उनका हुआ है।
1: क्या बात है।
0: और एक मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी में बहुत यादगार विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मुझसे उम्र में बड़ी थी, वो चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र की डायरेक्टर हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: जी,
0: तो काफी ओल्ड है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक की डांसर है।
1: वाओ।
0: वो जब मेरे पास आई तो मेरे मैंने कहा दीदी आप तो कितनी गुणी हैं, आपको क्या कुछ करना नहीं। अमिता जी मैंने सुना है पीएचडी तो आपके निर्देशन में करनी है क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं, आपके अंडर में कोई विद्यार्थी कभी परेशान नहीं होता है। तो ये मेरी मुझे उनके मुंह से सुन के लगा शायद मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ कि इतनी दूर से चंडीगढ़ से आके उनको ये लगा कि मैं ही उनको करा सकती हूँ। तो ये मेरे मुझे लगा शायद मेरा इस मेरा जो मार्ग है वो ठीक चल रहा है, मेरा लोगों का जो स्नेह है तो मैं उससे धन्य हुई और मैंने उनको फिर ग्रहण किया। रातों रात हम लोगों ने मिलकर सिनॉप्सिस बनाई और दीदी का काम किया उन्होंने लोक पंजाब के लोक संगीत पर, उन्होंने कथक में
1: जी
0: कथक की थी वो
1: जी
0: डॉक्टर शोभा कौसर
1: जी।
0: हाँ तो कथक की अंतर्राष्ट्रीय कराती पर मॉरिशस वियतनाम सब जगह जाती थी प्रोग्राम देने और बहुत अच्छा मुकाम है उनका कथक क्षेत्र में
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे अंडर में काम किया। तो तीन चार विद्यार्थी तो ऐसे लगे जिनको मुझे देख के ये लगता था ये तो खुद ही इतने अभीष्ट कलाकार हैं, इनको मैं क्या गाइडेंस दूंगी, लेकिन उनको लगा कि नहीं आपके साथ ही करना है। तो एक रिसर्च करते समय एक टॉपिक होता है शोध प्रविधि, है ना, शोध प्रविधि और सेकंड में हम डालते हैं उपलब्ध साहित्य का सिंगालोकन, जो भी आपने टॉपिक लिया उससे संबंधित कितनी बुक्स पढ़ी आपने। अक्सर विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं संगीत में, खास तौर से जो रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी और इनका वो ऐसे विवरणात्मक ज्यादा टॉपिक होते हैं क्योंकि संगीत में अभी रिसर्च का मार्ग उतना अच्छा नहीं था क्योंकि कोई कराता नहीं था, होते थे आप देखें गिने चुने होते थे और विवरणात्मक ज्यादा लिख देते थे, उसमें विवेचनात्मक या रिसर्च मेथोलॉजी डाल के उसके अच्छे शोध की संभावनाएं क्या हैं, वो उस तरह की तुलनात्मक। तो रिसर्च का मतलब तो ये होता है मतलब रिसर्च, जो सर्चेज हुई हैं उनको हमें फिर से पढ़ के कुछ नए मार्ग लोगों के सामने प्रशस्त करने होते हैं। तो इस तरह की रिसर्च मुझे कराने का मुझे मौका मिला जिसमें विद्यार्थी का भी बहुत सहयोग होता है और मेहनत तो गाइड को ज्यादा करनी पड़ती है,
1: गाइड की बहुत मेहनत
0: होती है।
1: ये रिसर्च फील्ड में कहते हैं अगर आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाता है।
0: सही कह रही, ये तीनों लोग इसीलिए आए थे कि अच्छा गाइड का मतलब है कोई सहयोग भी करे कोई भी अपना। आजकल गाइड का आप जानती हैं जैसा है वातावरण तो वो तो उस मामले में मुझे सुन के ये अच्छा लगता था कि पैसा सब चीज नहीं होती, वैल्यूज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले काम करने के। और अभी मैंने जो मेरे अंडर में जमा हुई है दिव्यांगता के ऊपर, दिव्यांग बच्चों के ऊपर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कराए। तो उस बच्ची को मैंने संगीत के माध्यम से दिव्यांगता की भागीदारी एक सशक्त माध्यम, दिव्यांग है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: उसने संगीत सीखा है
1: जी,
0: तो उस माध्यम से वो अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकते हैं। नहीं तो कोई कहता है ये

0: ऐसे हैं वैसे, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने दिव्यांग शब्द जो दिया उससे बड़ी इज्जत मिलती है। तो उसमें काम किया उस लड़की ने कि संगीत के माध्यम से क्या उनकी भागीदारी कितनी है, कितना उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त है समाज में।
1: पीएचडी की सी
0: ये टॉपिक है जी।
1: अच्छा,
0: जी जी,
1: क्या बात है,
0: रेयर टॉपिक, बड़े अच्छे अनुभव हुए इसमें। जितने भी आर्टिस्ट मंच पे आते थे तो हम ढूंढते थे दिव्यांग है, उनके अनुभव लेना, उनकी फिर डाटा निकाला वहां से, जो एक सूरकुटी है आगरा में
1: जी जी,
0: वहां से डाटा निकाल के फिर काम किया इस तरह।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और बच्ची ने भी बहुत मन से किया, हालांकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ उस काम से, क्योंकि लड़कियों के साथ ये होता है कि उतना हर छात्रा उतनी लगनशील नहीं होती है, तो मैं उतना उसको अच्छे से गाइड करूँ, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी होती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम है, उसने जमा कर दिया उसको। अब देखते हैं आगे एक और वाइवा होगा तो उसमें भी कुछ और अच्छी गाइडेंस देकर उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे।
1: मतलब संगीत के क्षेत्र के अलग अलग जो
0: आयाम है,
1: हाँ, और बहुत ही विभिन्न, मतलब ऐसे जो विषय है वो एक दूसरे से बड़े अलग, अलग है। और वैसे संगीत सागर है, कितने गोते लगाए जाए उसमें, लेकिन शोध का माध्यम बड़ा
0: ये होता है, विद्यार्थी सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी निरंतर सीखते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें शिक्षक का भी लाभ है, गुरु का भी लाभ है और विद्यार्थी। इससे पहले समय था उसमें गायन शैली से ही गुणवत्ता मानी जाती थी, गौ कितना बड़ा कलाकार है, लेकिन वर्तमान समय में रिसर्च करें आप, पेपर लिखें आप अभ्यास भी करें, अच्छे कलाकार भी, एक अच्छे शास्त्रज्ञ भी बने, तो ये अलग अलग मार्ग हैं, इन सब में महारत हासिल करते हैं।
1: आपने शोध पत्र भी लिखे
0: जी,
1: 40 से ऊपर आपने शोध पत्र लिखे, उसमें किन विषयों पर आपने काम किया
0: जी? मैंने उसमें एक दो तीन पेपर निकाले थे, मीराबाई जो मध्यकालीन संगीतज्ञ थी, क्योंकि मेरे रिसर्च का टॉपिक मीराबाई थी, भक्ति गीत संगीत की परंपरा एवं मीराबाई, तो मैंने उनकी जो उनका संगीत तत्व था, मीराबाई का जीवन आपने देखा हो तो मीरा के भक्ति गीत संगीत के प्रयोग कैसे, कौन कौन से अभिनव प्रयोग थे, है ना, और ये मनोविज्ञान के ऊपर भी मैंने लिखा।
1: अच्छा।
0: संगीत और मनोविज्ञान जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं संगीत के शिक्षण प्रशिक्षण में, ये तीनों अवस्थाएं हमारी काम करती हैं मनोविज्ञान की, इस पर भी मैंने पेपर लिखे, कोशिश की। और मध्यकाल में भक्ति संगीत के कौन कौन से प्रयोग हुए, मध्यकालीन कवियों ने संगीत को क्यों सशक्त माध्यम बनाया, संगीत को क्यों माध्यम बनाया, उसमें मीरा कैसे सबसे सशक्त हो गई, क्योंकि वो स्वयं प्रेयसी हो गई, उनके और प्रभु के बीच में कोई नहीं था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना तो, कोई माध्यम ही नहीं था, सूरदास जी ने उद्धव को माध्यम बनाया, लेकिन मीरा जी तो स्वयं प्रेयसी हो रही, तो ये कैसा समर्पण, एक लगन और कैसा प्रेम था अलौकिक, कि इसी एक लाइन से समझ आता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, तो मीरा एक सशक्त माध्यम थी, उन्होंने उस समय की नारी को एक जो नेतृत्व प्रदान किया, तो मीरा जी का जीवन मुझे बहुत अंदर से आकर्षित करता है, उनके नेतृत्व को देख के, उनके संगीत और समर्पण को देख के, उसमें त्याग तपस्या और बहुत कुछ था
1: जी। समर्पण की बात आती है तो मीरा बाई का नाम ना लिया जाए ये तो संभव ही नहीं होता
0: जी।
1: बिल्कुल,
0: थैंक यू
1: जी। क्या आप कोई ऐसा, जैसे हम भक्ति संगीत की बात कर रहे हैं, मीरा बाई जी की बात कर रहे हैं, तो क्या दो और पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को?
0: जी जरूर, थैंक यू मैम।

हर भी दो लाइन में मैं एक आपको एक और उनका समर्पण का प्रेम जो गीत मैंने बताया उसमें एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो छोटी सी ताल में है और बड़ा अच्छा, वो मैं ज्ञान सरोवर में गा के भी आई हूँ, पसंद आया सबको।

0: ये उनका बड़ा समर्पित गीत जो मीरा बाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और कोई है नहीं, तो कितना समर्पण, ये प्रेम की अभीष्ट पराकाष्ठा आप देखती हैं इसमें। और वर्तमान नारी के लिए भी उन्होंने एक संदेश भेजा कि जिस रिश्ते में रहो प्रेम, प्रेम सर्वोत्कृष्ट हर रिश्ते में, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, त्याग और उसमें बलिदान, तो ये रखेंगी भाव तो हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप भी आनंदित रहेंगी और आपके साथ जो रहेगा वो भी आनंदित रहेगा। जी, ये जीवन का, जीवन जीने की कला मैं वहाँ भी सीख के आई हूँ, यही और ज़्यादा प्रबल हो गई और तो मुझे वहाँ इसीलिए बहुत अच्छा लगा। जी, आनंद, आनंद मतलब तो पराकाष्ठा आनंद, चंद्रकांता दीदी वगैरह सबका, सारी दीदियों का बहुत उत्प्रेरित। हालांकि मैं इतनी ऐसी हतप्रद हो गई वहाँ सुनकर, अभिभूत हो गई कि मैं वाणी, ऐसा लगा मैं निशब्द हो गई आपके सामने, मैं अच्छी बातचीत कर रही हूँ वहाँ, ऐसा लगा मैं प्रेम में आनंदित हो गई, अभिभूत हो गई, निशब्द नहीं हो जाता है व्यक्ति, उस तरह का मुझे लगा।
1: हम अभी निशब्द हो गए आपको सुनकर, सच में मुझे लगता है हम और हमारे श्रोतागण सभी इस वक्त भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि हम आपको सुन पाए। आपकी आवाज है ये हमारे दिलों में बसाकर हम रखेंगे। मुझे लगता है
2: जैसा आपने कहा कि संगीत बहुत मदद करता है हमारे जीवन शैली में, आपने बताया डिप्रेशन या स्ट्रेस भी होता है तो संगीत किस प्रकार से हमें खींच कर बाहर निकाल लेता है, और हम सभी, मैं फिर से ये कहूंगी, बहुत भाग्यशाली है कि हम आनंदित होने का ये अवसर मिला, आपको सुनने का ये अवसर मिला। बहुत बहुत दिल से आभार है आपका अमिता जी।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत आह्लादित हूँ आपसे, आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करके गायन के माध्यम से या अपनी जो भी जीवन की जो अनुभव था उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सादर के साथ अंदर से अभिभूत हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति,
2: ओम शांति। तो दोस्तों, आपने सुना प्रोफेसर श्रीमती अमिता त्रिपाठी जी, उनकी साधना को जाना, उनके सुरों को अपने दिल में आज हमने समा लिया और एक प्रेरणा स्रोत हमें और मिले जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, अमिता जी का हम दिल से आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ जो प्रेरणा मिली उसे जीवन में साथ लेकर चलते हैं ये वादा भी करेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: दोस्तों, आजकल मैं, आप, हर कोई एक चीज बार बार सुनते हैं, हर चीज का दाम बढ़ गया है, हर चीज की वैल्यू बढ़ गई है, बचत कैसे करें, जीवन बड़ा मुश्किल चल रहा है। इन सब बातों को जब सुनते हैं तब लगता है कि कोई सलूशन नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर कोई सामने उदाहरण बन करके आए और मुझे और आपको ये रास्ता दिखाए कि बचत के द्वारा जीवन को सरल कैसे बनाया जा सके, और केवल सरल ही नहीं, एक उदाहरण भी बना जा सके, तो कैसा होगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के कुछ मेहमान इसी उदाहरण का एक प्रतीक हैं। देश भर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के अवसर पर ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने तथा नागरिकों को एक सस्टेनेबल जीवन कैसे जिया जा सके उसके प्रति भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड का 2025 में जब वितरण हो रहा था तो उसमें एक प्रतिभागी जिसको ये अवार्ड दिया गया वो था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जगदम्बा भवन अर्थात पुणे में स्थित ब्रह्मा कुमारी का जो संस्थान है उसे ये अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड को जगदम्बा भवन पुणे की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन जी ने दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से प्राप्त किया। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में सुनंदा दीदी और उनके साथ उनकी सहयोगी शीतल बहन मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कैसे इस अवार्ड तक का उन्होंने मुकाम जारी किया, अवार्ड प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करते हुए क्या क्या मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया जिससे वो इस मुकाम तक पहुंचे, और कैसे इसको मैं और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में धारण कर सकते हैं, हमारे घर में बचत के सुंदर से संस्कार को डेवलप कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के मेहमानों का। मैं मेहमानों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है, आज के एपिसोड में किसी एक व्यक्ति विशेष को भारत सरकार ने सम्मानित नहीं किया लेकिन एक संगठन को किया। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमानों से। मैं स्वागत करने जा रहा हूँ हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पुणे ब्रांच से जो जुड़े हुए हैं हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी और हमारी प्यारी बहन शीतल बहन का। आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू
0: दीदी। एक तो कि आप और आपकी टीम कई फील्ड में सेवा करती हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी आमतौर पे सेवाओं में व्यस्त होते हैं, केवल एक फील्ड की सेवा तो होती नहीं है, बहुआयामी सेवाओं में व्यस्त होते हैं, और उस व्यस्तता में आपने समय निकाला रेडियो मधुबन के श्रोताओं के लिए। सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो
1: थैंक यू भाई, हम तो ये कहेंगे आपने हमको बुलाया, ये हमारा परम सौभाग्य है।
0: दीदी आपका बड़प्पन है।
1: इस बहाने जिसका सुंदर स्लोगन है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, ये बहुत प्यारा प्यारा स्लोगन है जो सुनने से ही अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। तो ऐसे रेडियो मधुबन में आपने हमको याद किया, आपके बहुत थैंक्स।
0: तो आज हम सुनेंगे दीदी से और शीतल बहन से उनके अनुभव, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जैसा कि हमारा रिवाज है हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का एक मुकाम है लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने की एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है, उस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण जो कि आमतौर पे एक आध्यात्मिक संस्था के लिए अनकॉमन सी बात मानी जाती है, जनरली सोचा जाता है कि आध्यात्मिक संस्था है तो जो उनका कार्य है, जो ज्ञान है, उस रीति ही वो सेवा करेंगे, लेकिन ऊर्जा थोड़ा सा अलग लगता है। तो ऐसे में ये कहानी कहाँ से शुरू हुई आपके हिसाब से, कहाँ से आपको प्रेरणा आई, क्या रुकावटें आई, वो जानना चाहेंगे।
1: आप सबको सुनाते हुए बहुत मुझे प्रसन्नता है। ब्रह्मा कुमारी की जो स्थापना है वो भारत देश के लिए है, तो भारत सरकार के तरफ से जितने भी कुछ ऐसी सेवाएं आती है जो हम कर सकते हैं आध्यात्मिकता के साथ साथ, तो वो हम जगदम्बा निवास के अंदर मोस्टली करते हैं। तो ऐसे ही हमको एक बार मालूम पड़ा सौर ऊर्जा जो है, ऊर्जा बचत अगर हम करते हैं तो भारत सरकार का एक उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत
0: जी,
1: तो ऊर्जा में भी बाकी भी जो ईंधन है उसमें भी भारत सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने। उसके लिए अगर हम हर एक थोड़ा थोड़ा भी बचत करते हैं तो वो भारत सरकार को एक मदद हो जाती है। इस उद्देश्य को बुद्धि में रखते हुए हम सभी ने, जो भी वहाँ रहते हैं, सभी ने सोचा कि हम इस क्षेत्र में थोड़ा कुछ काम करेंगे, लेकिन हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा ये कोई हमारे बुद्धि में नहीं था।
0: उस लक्ष्य से नहीं शुरू किया था,
1: उस उद्देश्य से हमने नहीं किया, लेकिन बचत करते हैं तो उसका फायदा हमको संस्था को भी हो जाता है ना, पैसे के रूप में समझो, फिर सरकार को भी हो जाता है और फिर एक एग्जाम्पल भी बन जाता है, दूसरे भी सीख लेते हैं इस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको हर चीज़ हम लोग दिखाते हैं। तो उस भाव से हम बचत करते गए और इसमें हमको खास जो मार्गदर्शन मिला है, एक बार हमारे पास केदार भाई लातूर वो आए थे, वो ऑडिट एनर्जी का काम करते हैं, तो वो आए थे, उन्होंने सारा हमारा देखा और उन्होंने हमको थोड़ा सा प्रेरित किया कि आप लोग थोड़ा कुछ कुछ बातें चेंज करके एनर्जी की बचत करो। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमने विद्यालय के अंदर ये भी सीखा है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्यालय से कनेक्टेड हो न हो, लेकिन कोई अच्छी बात सिखाता है, क्योंकि विद्यालय का मूल है गुणग्राहकता, या कोई अच्छी बात कोई सिखाता है तो वो हमको करनी चाहिए, हमको डोंट केयर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हमको सिखाया कि आप थोड़ा, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं था राष्ट्रपति पुरस्कार का, लेकिन ऐसे ही वो आए थे तो उन्होंने हमारा सारा कैंपस देखा और फिर उन्होंने कुछ बातें हमको सिखाई। तो हमारी जो सारी टीम है ब्रह्मा कुमारीज की, ये टीम बहुत वेल एजुकेटेड है और ये सारी साइंस की बातें समझती है, तो उन्होंने भी अपने थोड़ा मन पर लिया और वो सारे बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे कि समझो हमारी एलईडी लाइट
0: जी,
1: ये हमने बहुत सारी जगह पर लगाई है। फिर स्ट्रीट लाइट जो होती है वो हम बहुत देरी से शुरू करते हैं और बहुत जल्दी सवेरे बंद कर देते हैं। फिर जो हमारे फैन है वो हम एक बार फास्ट करके ठंडा कर लेते हैं, फिर हम एक दो पर ही रखते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: फिर हमारा यहाँ हमारे फ्रिज है, उसमें भी हमने उनके डायरेक्शन के अनुसार कुछ चेंजेस की। ऐसे हमने, हमको एक गाइड अच्छा मिला, उसके अनुसार हम करते गए तो हमने देखा कि हमारा भी थोड़ा बिल कम आ रहा है, ये पहले हमने देखा तो वो हमको बहुत अच्छा लगा, तो करते गए। करते
0: गए, कुछ अच्छा करे तो पहला फायदा खुद को होता है, तो वो आपने देखा। बिल्कुल,
1: तो फिर करते गए। फिर उन्होंने इस बारी एक दिन वो आए और उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया कि हम पुरस्कार के लिए एप्लीकेशन करते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है कर लो, बुरा तो है नहीं, मिले तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है, लेकिन एक हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपति तक पहुंच जाए कि ब्रह्मा कुमारीज ऊर्जा संरक्षण में भी काम करती है।
0: बिल्कुल,
1: ये अगर राष्ट्रपति तक पहुंच जाए तो चलो ठीक है ना, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए हमने किया। फिर दिल्ली से ऑडिटर आए सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने सारा चेक किया, वो वन डे हमारे पास रहे, ये हमको पता भी नहीं था।
0: अच्छा कि वो ऑडिटर है।
1: हाँ, कि इतना सब कुछ होता है
0: जी।
1: लेकिन उनका फोन आया केदार भाई का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर दिल्ली से आ रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है आने दो, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं ना, उसमें कोई ऐसे बनावटी तो है नहीं। तो वो आए, वो भी बेहद खुश हुए, उन्होंने भी सारा एक एक चीज देखी, उसके साथ वहाँ का मेडिटेशन भी देखा, हॉल देखा, हमारी आध्यात्मिकता नजदीक से अनुभव की और फिर वो चले गए
0: जी।
1: फिर उसके बाद हमको एक दिन लेटर आया कि ऐसे ऐसे आप राष्ट्रपति अवार्ड के क्या बोलेंगे अधिकारी या चुने गए हैं। फिर वो राष्ट्रपति अवार्ड मिला
0: जी। तो शीतल बेन, आप भी इसी अनुभव में अपना अनुभव अगर जोड़ सके, कि क्योंकि सुनंदा दीदी जी ने अपने एक पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से बताया कि उनके लिए तो ये उद्देश्य था ही नहीं कि भाई हमें अवार्ड मिले, और उन्होंने कहा कि हमारी टीम का भी कभी ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपने भी कुछ ऐसी बातें देखी होंगी इस जर्नी में जिससे आपको लगा कि बहुत मुश्किल है या मुश्किल नहीं है, कैसा था ये पूरा यात्रा, वो अगर हम जाने।
2: तो जैसे हमारे बहन जी ने कहा कि हम लोग तो शुरू से ही, जैसे ही हमारा जगदम्बा भवन कैंपस बना, तो जनरली हम लोग कोई भी चीज बनाते तो उसके बाद मेंटेन करने के लिए भी हम पर्याप्त चीजों का ध्यान रखे। हमने सोलर एनर्जी, पहले सोलर प्लांट लगा दिया था हॉल के ऊपर, 50 KV का अपना सोलर प्लांट लगा हुआ है और हमारी मैक्सिमम एनर्जी सोलर प्लांट पे यूज होती है और बाकी जितना बचता है पूरा, जैसे आप जानते हैं कि MSEB में जाती है पूरा जो भी जनरेट होता है, यस, और फिर हम जितना यूज करते हैं उसमें से माइनस होता है। तो शुरू से हमने इस बात का ध्यान रखा था जब से कैंपस बना था, क्योंकि कैंपस बड़ा था, फिर बिल इतना हर बार आई, कंटिन्यूस वहाँ इवेंट चलते हैं वीकेंड पे, बहुत पब्लिक इवेंट्स होते हैं पब्लिक सेवा करने के लिए, वैल्यू एजुकेशन जो देते हैं हम उसमें। तो फिर हमने शुरू से ये सोच के वहाँ पर सोलर प्लांट लगा ही दिया था। इसके अलावा LED लाइट्स का भी हमने शुरू से ही किया था
0: जी।
2: और साथ साथ हमारे पास बायोगैस भी है, मतलब एक जो कहते हैं ना रिसाइकलिंग, सारा वेस्ट को बेस्ट बनाना, इस बातों का ध्यान शुरू से रखा गया था। तो बायोगैस भी हमारे पास, जैसे हमारा स्थापना हुई जगदम्बा भवन की, तब से ही बायोगैस भी लगाया हुआ था जो आज तक चल रहा है। क्योंकि जो हमारे दीदी ने जो कहा, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से जो आए थे ऑडिटर सारा चेक करने के लिए, उन्होंने कहा बायोगैस बहुत लोग लगाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करना मतलब रोज उसको खिलाना होता है और खिलाना भी ऐसे होता है कि जो उसको चाहिए उसके हिसाब से, कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, बहुत सोच समझ के कटिंग करके प्रोसेस करके फिर आपको देना होता है। तो जनरली लोग वहाँ हिम्मत हार जाते हैं समहाउ, बट जगदम्बा भवन का 8 साल हो गए हैं और कंटिन्यूस डेली को फीडिंग किया जाता है और डेली वो गैस चलता है। तो उन्होंने कहा आप दिखाओ हमें चलता है कि नहीं चलता।
0: 365 दिन,
2: यस यस, 365 डेज,
0: बच्चे को बड़े करने के जैसा है।
2: जी जी, तो उसमें हम कई सब्जियां कई तड़का लगा के फिर जो पकती है तो हम बायोगैस पे छोड़ देते हैं ताकि वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो पकता रहेगा। दूध आया तो हम दूध गर्म वहां करते हैं, कभी चाय बनानी है तो हम ध्यान रखते, किचन वालों को डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो भी गैस चलता रहे भले साइमल्टेनियसली, क्योंकि कैंपस बड़ा है, आने जाने वाले बहुत है तो दूसरे गैस भी हमको यूज करने पड़ते हैं, बट वी ऑल्सो कीप अ वॉच की वो जो गैस है बायोगैस भी कंटिन्यूस हमारा चलता रहे तो शाम तक वो पूरा हो जाए ताकि वो फीड करे तो नेक्स्ट डे के लिए अवेलेबल हो। तो इस रीति से हमने उसको चालू रखा। तो जो ऑडिटर आए थे तो उन्होंने कहा आप चालू करके दिखाओ, हमने तुरंत चालू करके दिखाया उनको तो वो देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि आज तक वो बायोगैस काम कर रहा है। फिर उन्होंने सोलर का प्लांट तो देख ही लिया था, LEDs देखिए, फिर हमारे पास रिमोट वाले फैंस हैं, क्योंकि कई बार लोग उठकर फैन बंद करना या टेम्परेचर चेंज करना उसमें थोड़ा सा लेजीनेस फील करते हैं, तो रिमोट के फैन होते वो एनर्जी सेव भी करते हैं और इमिजिएटली हम टेम्परेचर जैसे चाहे वैसे। फिर जैसे हम फ्रिज के बारे में हमने ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश सब्जियां लाए, बहुत लेफ्ट ओवर ना हो, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जितना बढ़ा उतना बढ़ता ही जाता है। तो उसके लिए भी उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि जितना फ्रेश खाओ उतना हेल्थ के लिए भी अच्छा है, यस, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और तो इस हिसाब से हमने वो भी थोड़ा ध्यान रखा। तो ऐसी कई चीजें, छोटी छोटी टिप्स जो हमें केदार भाई, जो खुद एक एनर्जी ऑडिटर है महाराष्ट्र में और उन्होंने कई राज्य लेवल पर भी अवार्ड्स लिए हुए हैं और अभी ये एक नेशनल अवार्ड भी उन्हीं के द्वारा ही प्राप्त हुआ,
1: मिला
2: हुआ। हाँ, जगदम्बा भवन का भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर पहले अवार्ड मिला था एक। तो क्योंकि वो जब जैसे दीदी ने कहा कैंपस विजिट करने आए थे तो उन्होंने देखा यहाँ तो पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं तो ज्यादा इनको काम करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे मैं टिप्स दे दूं तो भी इनका बहुत अच्छा हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, उन्होंने कहा सोलार का जो एनर्जी है प्रोडक्शन तो जगदम्बा भवन में हो रहा है तो डे टाइम में हम जितना कंज्यूम करते हैं तो वो जैसे फ्रिज ऐसा हो जाता है हमारे लिए, हम कितना भी कंज्यूम करें और फिर जो बचता है इट इज गोइंग टू MSEB। तो फिर उन्होंने कहा आपको प्रेस यूज करनी है या जो भी ऐसी हैवी ड्यूटी चीजें यूज करनी है आप डे टाइम में ज्यादा यूज करो। तो हम लोगों को शुरू से बताया गया 7 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में ही आयन को यूज करो, आयनिंग आपको इसी टाइमिंग में करनी है। आप ये छोटी छोटी बातें करोगे तो आपका भी पैसे बच जाएगा और ऊर्जा भी बच जाएगी। तो हमारे सच में, और ये भी अच्छी बात है कि हमारे जो निवासी है, हम 15-20 लोग रहते हैं जगदम्बा भवन में रेगुलर बेसिस पे, बाकी आने वाले विजिटर वगैरह वो रेसिडेंट अलग होते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा कि आपको प्रेस इस समय करने, सबने सहयोग दिया, सब उजाला जब होगा तभी प्रेस करनी है, अंधेरे में आपको प्रेस नहीं करनी, क्योंकि अंधेरे में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो MSEB से लेते हैं और वो हमें 1.5 या 2 गुना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो व्हाई नॉट टू यूज फ्री, तो इसलिए हमने वो बात का

0: भी ध्यान रखा, फ्रिज का भी ध्यान रखा, और एसी के लिए उन्होंने हमें बताया था कि आप 24 प्लस ही टेम्परेचर रखा करो. शुरू में आप 24 पे रखो, एक सिंगल या एक या दो पे फैन ऑन रखो, तो धीरे धीरे रूम कूल होता है. फिर आप टेम्परेचर 26, 27, 28 जैसे आपको कितना ठंडक चाहिए उस हिसाब से. तो एक फैन भी अगर स्लो ऑन रहता है तो वो ठंडा पूरे रूम को ठंडा करती है. हाँ, फैल जाता है. और हो सकता है इतनी रूम ठंडी हो जाए कि बाद में आपको एसी की जरूरत ही ना पड़े. तो ये सारी जो टिप्स हमें छोटी छोटी मिलती गई उनसे, तो पहले ही हम बहुत कुछ कर रहे थे, वो हमारे पैसों की बचत के लिए कर रहे थे, ना कि बुद्धि में ये था कि बाबा कि हमें कुछ अवार्ड लेना है या उस हिसाब से नहीं था. लेकिन हाँ, जब उन्होंने थोड़ा डायरेक्शन दिया तो कहा क्यों नहीं, हम ऑलरेडी इतना कर रहे तो और थोड़ा सा करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा. तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का सभी ने ध्यान दिया, एक दो की बात नहीं है, सब रहने वाले आने वाले गेस्ट उनको भी हम जब बोलते हैं कि आप इस टाइमिंग में ये करो तो उनका भी बहुत सहयोग मिला.
1: मैं ये समझता हूँ कि जो आप सुना रहे इसमें सहयोग एक शब्द है जो बहुत कीमती है, क्योंकि किसी ने अगर आपको आकर के कुछ सुझाव भी दिया है ये भी एक प्रकार का सहयोग है, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं और इससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन सुनने के बाद उसको करना ये अपने में एक बात होती है कि भाई मुझे ही करना है, मुझे सुन करके नहीं बैठना है, मुझे करना है. तो ये बीड़ा उठाना ये भी एक अपने आप में सहयोगी बनना है. लेकिन देखा गया दीदी कि आजकल कोई भी छोटी सी चीज को करने के लिए लोगों को सहयोग की ही कमी लगती है. आपस में भी देखा गया है कि अकेलापन बढ़ता जा रहा है, तो साथी या दोस्ती या अपनत्व की जो भावना है वो इतनी कम हो गई है. तो सहयोग तो बहुत बड़ी बात लगती है. कोई किसी को मदद भी करने जाए तो सोचता है कि क्यों करूं मैं मदद, मुझे क्या मिलने वाला है. या कभी ऐसी भी भावना आती है कितना भी मैं मदद करूं लोग मुझे रिकग्नाइज नहीं करते हैं. ये जो भावना है सहयोग की, ये वास्तव में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है?
2: मैं तो ब्रह्मा कुमारी इसको हाईलाइट नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जो सत्यता है वो मुझे बतानी पड़ेगी
1: जी.
2: क्योंकि यहाँ पर हम जो डेली नॉलेज सुनते हैं तो नॉलेज के अंदर कई सारे वैल्यूज को बताया जाता है, और बहुत एक सुंदर महावाक्य यहाँ पर सिखाया गया है कि वैल्यूज से ही आप वैल्यूएबल बनोगे,
1: मूल्यों से मूल्यवान बन जाएंगे. जी,
2: क्योंकि हर चीज की वैल्यू हम रखते हैं. कोई खरीदी करनी है समझो हमको, तो हम चाहते हैं कि पापा नंबर एक की चीज हमको खरीदी करनी है, लेकिन हम जीवन के प्रति कभी ये नहीं सोचते हैं कि जीवन को भी हमें नंबर वन बनाना चाहिए. और ऐसे भी देखो जीवन शब्द ही इतना सुंदर है, G+1.
1: बहुत अच्छा.
2: हाँ
1: जी.
2: तो वन नंबर से जीना चाहिए ना. लेकिन चलते चलते मनुष्य ये बातों को भूल गया है, वो चीजों को ज्यादा महत्व देता है, जीवन को नहीं दे रहा है. लेकिन हमारे सौभाग्यवश हमको इस ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज मिली, जिसके अंदर हम रोज वैल्यूज के प्रति बहुत सुनते हैं कि कैसे एक एक वैल्यू. और ये बहुत सुंदर बात हमने सुनी कि वैल्यू कोई लाने की चीज नहीं, वो आपके अंदर ही है
1: जी.
2: खाली आप उसको समय प्रति समय यूज करो
1: जी.
2: और यूज करने के लिए जो पावर चाहिए उसके लिए अभी हमारा ये एनर्जी का ही काम चल रहा है, मतलब एनर्जी के कारण हमको प्राइज मिला, अवार्ड मिला. तो ऐसे जैसे वो एक एनर्जी है, ऐसे हमारे अंदर भी हमारे मन की एनर्जी बढ़ती जाए, उसके लिए भी एक मेडिटेशन की विधि यहाँ पर हम सीखते हैं. और वो जब मेडिटेशन करते हैं तो मनुष्य के मन में सारे वैल्यूज है ही,
1: बाहर से लाने की जरूरत नहीं,
2: लेकिन वो बाहर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है. उसको पता पड़ता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब
1: मतलब ये शक्तियां या जो मूल्य हैं, ये जो गुण हैं, ये भीतर हैं
2: है,
1: लेकिन क्रियान्वित नहीं है, उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है. और
2: हमको
1: उसके
2: तो
1: लिए
2: हमेशा
1: ज्ञान,
2: वो एक एग्जांपल याद रहता है, जैसे जमीन के अंदर
1: जी
2: पानी है,
1: हुँ.
2: लेकिन आपको बोर मारना पड़ता है, है ना. तो जब वो ऐसे ऐसे करके अंदर चला जाता है तो अंदर का पानी बाहर आता है. इसी प्रकार मानव के मन में बहुत सारे वैल्यूज है. तो राजयोग एक ऐसी प्रोसीजर है, विधि है, मेडिटेशन एक समझो साधना है. बहुत नहीं, 10-15 मिनट भी रोज करे तो वो अंदर जो वैल्यूज है ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो सहयोग तो सबसे बड़ा वैल्यू है. इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बोलते हैं, बिना सहकार नहीं उद्धार.
1: बहुत सुंदर.
2: हाँ, और आजकल हमने बहुत जगह ऐसे चित्र देखे हैं कि बीच में ग्लोब है
1: जी,
2: सारे मनुष्य आत्माएं एक दो के हाथ में हाथ डाल करके ऐसे खड़े हैं. मना सहयोग के बिना तो कुछ होता ही नहीं है. तो सहयोग का महत्व हमने यहाँ पर समझ लिया मेडिटेशन के आधार से. सहयोग का महत्व, बचत इकोनॉमी उसका महत्व. फिर कोई कुछ बात बोलता है तो वो हमको स्वीकार करनी चाहिए. अगर वो अच्छी है तो वो स्वीकार करनी चाहिए. जिसको हम कहते हैं बालक और मालक का बैलेंस, कि मालक बन करके राय दो, बालक बन करके स्वीकार करो.
1: राय देना, लोग कहते हैं राय बहादुर बन के राय देते हैं.
2: हाँ.
1: लेकिन जब कोई आपको राय देता है तो फिर कईयों के ईगो को हर्ट हो जाता है कि मुझे कैसे राय दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जो वो बचपना है, जो बालकपन है, वो अगर आता है तो फिर व्यक्ति उससे कुछ सीख सकता है. जी,
2: तो हमको फायदा ही हो जाता है ना उसका. तो ये सारे वैल्यूज को हमने सीखा है यहाँ पर, इसलिए ये सारे वैल्यूज हम करते गए. और हमारे आज्ञाकारिता भी एक वैल्यू है. अगर कोई अच्छी बात है आपको कही जाती है करो, तो वो समझो आप क्यों करनी चाहिए. ऐसे अंधश्रद्धा से नहीं बोलो हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन समझो वो क्यों करना जरूरी है. और जब वो समझता है कि हाँ ये करने से ये लाभ होता है, फिर वो सभी जो भी जगदम्बा निवासी है उन सभी ने इन सारी बातों को समझ लिया और फिर सभी करते गए, तो सभी के मेहनत के कारण समझो ये सुंदर अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा हमको प्राप्त हुआ.
1: शीतलबेन, आप क्या कहना चाहेंगे सहयोग का? जो आपने बोला कि केवल ऐसा नहीं कि बड़ों ने कहा और हमने किया, लेकिन आपस में भी जो गेस्ट आते थे बाहर से वो भी मानते थे कि ये करना है.
0: अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक वाइब्रेशन भी होता है. जब करने वाले दिखते हैं सामने तो करना इजी हो जाता है.
1: मतलब अगर कोई उदाहरण है सामने,
0: एग्जैक्टली, आप उदाहरण मूर्ता जब बन जाते हैं, जब आप खुद करना शुरू करते हैं और आप खुद बेनिफिट फील करते हैं, तो आपको देख देख कर दूसरों को भी लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए. जब वो देखते हैं कि यहाँ के लोग इतना सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करके देखें. और वो देखो, कभी भी कोई इंसान अच्छा कर्म करता है ना, भले वो फॉलो करके करे या एक बार करके देखे, लेकिन उसका जो अनुभव वो खुद कर लेता है, तो उसको वो जो लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, वो फीलिंग बहुत उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है कि हाँ मैंने इतना तो भले मैं वहां नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ किया. जैसे हमारे रूम्स में भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के रखे हैं कि आप जाने से पहले नल को एक बार चेक कर लीजिए कि पानी बंद हो गया है, आपने एसी फैन ऑन किया है तो आप बंद कर दीजिए. तो ऐसे अगर हम प्यार से लिखते हैं कुछ डायरेक्शन, क्योंकि अगर वो पहले से संस्कार नहीं है तो इमिजिएटली फॉलो करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और बार बार रिमाइंड करना भी अच्छा नहीं लगता है. तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जब लिखे जाते, इवन हम जो थालियां धोते हैं वहां पर भी हमने पूरा ठीक से लिखा हुआ है कि आप पानी उतना ही यूज करना जितना आवश्यक है. कई लोग नल खुला छोड़ के फिर थाली धोने में लग जाते हैं और उतना पानी कई लंबा समय तक वेस्ट हो जाता है. तो जो एक अच्छे मैनर्स है, विद्यालय का एक ये है ब्रह्मा कुमारीज में हम देखते हैं कि मूल्यों की शिक्षा तो है ही, लेकिन एक छोटे छोटे बातें जो हमारे मैनर्स को बढ़ावा दे, अच्छे आचरण के लिए जो बातें हैं. और ये इकोनॉमी का जो आपका संस्कार है ना, वो आपका जमा का खाता भी बहुत बढ़ाता है. क्योंकि आप पानी जितना वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जैसे एक कर्म फिलोसॉफी हर चीज के साथ बनती है, पानी के साथ भी आप वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हो सकता है आगे चलकर पानी की कमी पड़े. और आप पानी का पहले से बहुत प्यार रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपको कभी का पानी है, इस पानी से भी आपको मदद मिलेगी. तो ये जो छोटी छोटी चीजें, पानी की बचत कहो, ऊर्जा की बचत, और जैसे बहन जी कह रहे थे कि यहाँ पर हमें सिखाई जाते वैल्यूज की बातें, और बचत का संस्कार तो पहले से इस विद्यालय में मिल रहा है, तो वहाँ बहुत सूक्ष्म रीति से बचत सिखाई जाती है. एक सबसे पहले बचत जो इंसान को करनी चाहिए वो है संकल्पों की बचत, उसके विचारों की बचत.
1: विचारों की बचत,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी जब एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है, कई नई भी लगती है, और जब नई लगती है तो हमारे बहुत वेस्ट थॉट्स अंदर में चलते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए।
1: ये तो जैसे आम बात हो गई,
0: बहुत आम, बहुत आम बात,
1: इसको लोग नेचुरली समझते हैं
0: और कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट हैज टू हैपन, बट वो थॉट चलने से मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, वही एनर्जी में अगर किसी और, वही संकल्प में किसी और चीजों की तरफ फोकस करती तो शायद मेरा कुछ और काम अच्छा बन जाता था, लेकिन मेरा टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और उसके बाद जब निगेटिव चलता है या वेस्ट चलता है तो हम थोड़ा ड्रेन भी हो जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: हम आत्मा की एनर्जी थोड़ा
1: थक जाते हैं,
0: हाँ, थक
1: कई
0: जाते
1: बार
0: हैं।
1: ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं कोई बात पे सोच रहे, सोचते सोचते इतने थक जाते हैं कि लगता है चलो जाके सो जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और जब आप बहुत लंबा विस्तार करते हो, बीच का जब विस्तार किया जाता है वो झाड़ में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर आप कहते हो अभी फुल स्टॉप लगाया, अभी अभी छोड़ दे, तो झाड़ को बीज में ले आना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कोई चीज बीज लेवल तक है तो थोड़ा ही समझ के कि ये व्यर्थ है या मैं क्यों सोचूं इस बारे में, लेट हिम थिंक, मैं वो सोचूं जो मेरे लिए जरूरी है, तो ऐसा अगर हम उसी समय कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे संकल्पों की बचत, हमारे विचारों की बचत सबसे बड़ी बचत है, क्योंकि विचारों के आधार से ही आपकी वाचा काम करती है, विचारों के आधार से ही आपके कर्म काम करते हैं, आपका व्यवहार काम करता है, आपके रिलेशंस काम करते हैं, सब जगह पे तो मेन बीज हमारा संकल्प ही
1: है,
0: विचार है, थॉट्स है, अगर इसका हम अच्छी तरह से यूज करें, पॉजिटिव दिशा में यूज करें, अपना समय दूसरों का समय अच्छा करने के लिए व्यतीत करें, तो ये जैसे विचारों की बात होगी, समय के रिलेटेड भी हम फालतू में बहुत समय सोशल मीडिया पे रील्स देखते देखते कितना समय, एक घंटा दो घंटा बीत जाता है और हमें लगता है हम थोड़े एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा एंटरटेन हो गया, और आप देखो प्रैक्टिकली एक घंटा रील देखने के बाद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको जो काम करना है वो आप कर नहीं पाते हो,
1: और कई बार जो काम करना तो भूल भी जाते
0: कि करना क्या था, और वो इतना एग्जॉस्ट होने के बाद वो काम करने का मन भी नहीं करता
1: है,
0: और हम सोच रहे थे 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट कर लेते बट प्रैक्टिकली वो होता नहीं है। तो यहाँ समय की बचत, संकल्पों की बचत, तो ऐसे हर बचत का जो संस्कार यहाँ पे सिखाया जाता है वही कहीं ना कहीं सूक्ष्म संस्कार स्थूल संस्कार में परिवर्तित, फिर पानी की बचत कहो, ऊर्जा की बचत कहो, तो ऑटोमेटिकली ये संस्कार हमारे अंदर डेवलप होना लगते हैं।
1: तो मैं इसको ऐसे अगर समझूं कि मान लीजिए मैं नया व्यक्ति हूं और मैंने आज आपका कार्यक्रम सुना और मुझे मन किया कि चलो मैं भी ऊर्जा की बचत करूं, तो क्या ऐसा भी संभव है कि भले मैं संकल्प की बचत नहीं करता और समय की बचत नहीं करता लेकिन मैंने ऊर्जा, पानी, भोजन इनकी बचत करना शुरू किया है, तो क्या ये बचत का जो कार्य मैं कर रहा हूँ इससे क्या मेरे अंदर संस्कार जो है वो बचत करने के वो डेवलप हो सकते हैं, या पहले बचत का संस्कार आएगा फिर मैं कुछ करूँ?
2: नहीं, कोई भी बात पहले तो संकल्प में ही आती है ना।
1: ओके
2: हाँ, जैसे अभी सुना है किसी ने तो किसी को लगेगा पापा मैं बचत करूँ, तो देखो संकल्पों की उत्पत्ति भी कैसे होती है, जैसे कभी कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद उत्पत्ति होती है, कुछ पढ़ते हैं तो भी वो संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो सुनने से, पढ़ने से,
1: देखने से
2: बचत, अभी मेरे को लगता है मैं बचत करूं
1: जी,
2: तो संकल्प तो आ गया, फिर मैंने करना शुरू कर दिया, तो शुरू करने के बाद भी कभी आप थोड़ा लूज हो सकते हैं, फिर आपको ध्यान देना पड़ता है, अरे अभी मेरा पानी वेस्ट मैंने गवाया, संकल्पों को थोड़ा वेस्ट किया, फिर थोड़ा अटेंशन रखते हैं, तो अटेंशन देने से कोई भी संस्कार, और पहले भी मैंने बताया कि हमारे अंदर सारी अच्छाई है ही
1: है,
2: हाँ इंसान बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है जो हम कहेंगे कि वो देव मानव है, जो हम हमारे पूर्वज कहते हैं देवी देवताएं थे, वो एक्चुअली मानव के अंदर वो सारे दैवी गुण वैल्यूज है ही है। आज भी देखो ना, किसी के अंदर बचत का संस्कार है, ऑलरेडी है, लोग भले उसको कभी कभी कंजूस भी कहते हैं, बहुत कंजूस है बोलते हैं, लेकिन कंजूसाई अलग है और बचत अलग है।
1: कई लोगों का मैंने देखा है कहते हैं ये तो ना जैसे देवता समान है,
2: हाँ
1: कई किसी में अगर गुण होता है तो कहते हैं ये तो जैसे देवता समान है, ये तो बिल्कुल जैसे ठाकुर हैं,
2: हाँ।
1: कोई बहुत शांत रहता है तो कहते हैं ये तो ठाकुर जी जैसे हैं, तो ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये सारे संस्कार इंसान में पहले से मौजूद है, केवल उस पर अटेंशन देने की बात,
2: हाँ।
1: और एक और चीज जो आपने बताया कि कई बार हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं लेकिन बीच में फिर हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं, तो वहां पर हमको अटेंशन देने की जरूरत है, लेकिन वो अटेंशन कैसे लाएं, कौन मदद करेगा या कहां से शुरू करें?
2: दो बातों से अटेंशन हो सकता है, एक मैंने खुद जो अनुभव किया कि जब हम कोई बात फाइनल करते हैं कि मुझे ये करनी है
1: जी,
2: लेकिन आज मेरे से वो नहीं हुई, तो मैंने जो संकल्प किया है मुझे करना है और मैंने अभी 25 बार कर भी लिया, आज भले नहीं किया लेकिन 25 बार कर लिया, वो थोड़ा सा संस्कार मेरा बन गया है ना, तो अच्छा। आज जब मैंने नहीं किया तो न करने के बाद याद आ जाता है, अरे तुमने क्या सोचा था कि तुमने थे, हाँ ये सोचा था ना कि ये करना है,
1: मतलब तो आप बहुत पॉजिटिव हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना भी आपको याद दिलाएगा आपका संकल्प।
2: हाँ
1: ये तो बहुत ही अलग दृष्टिकोण है।
2: हाँ और देता है प्रैक्टिकली भी, आप देख लेना। फिर हम कभी कभी दूसरों को भी बोल के रखते हैं, देखो भाई मैंने ये सोचा है कि मैं ये अच्छा संस्कार धारण करने वाली हूँ, कभी मेरे से कुछ नहीं भी हो गया
1: तो
2: आप मेरे को याद दिलाना।
1: बहुत अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब इसमें तो फिर नम्र होना पड़ेगा बहुत, क्योंकि अगर सामने
2: वाला
1: याद दिलाए
2: से भी हम अच्छे बने ना, क्या बिगड़ा उस।
1: लेकिन कई बार होता है कि कोई हमें याद दिलाता है, अरे तुम तो बोल रहे थे तुमको बचत करना है और तुम अभी उड़ा रहे हो, तो फिर कई बार लोग उल्टा ही कहते हैं तो इतना किया ना बचत मैंने, अभी थोड़ा सा मैं कर लूं। तो वहां पर नम्र होना पड़ेगा कि हाँ,
2: आपने जो बोला ना कि शीतल बहन को कि दूसरे लोग कैसे मानते हैं, तो प्रैक्टिकली हमने देखा है कि कोई भी बात आप किसी को भी कहते हो रिगार्ड के साथ, प्यार के साथ अगर आप कहते हैं तो सामने वाला मान जाता है, उसको शिक्षा देने के हिसाब से नहीं सुनाओ आप, या उसको ठीक करना है मुझे ये बता करके, ये आपके अंदर अहंभाव नहीं होना चाहिए। चलो एक अच्छा काम मैं भी कर रही हूँ, ये व्यक्ति भी कर लेवे तो उसको भी फायदा हो जाएगा, उस सहज भाव से अगर आप किसी को कोई भी बात सुनाते हैं उसका रिस्पेक्ट रखते हुए, बहुत बड़े व्यक्ति को आपको बोलना है तो उस ढंग से बोलना पड़ेगा, और छोटों को भी थोड़ा इधर करना है तो उनको भी उस ढंग से, और वो सारी कलाएं मेडिटेशन से आ जाती है, क्योंकि वो कलाएं भी हमारे अंदर है ही, लेकिन मेडिटेशन के बाद वो खुल जाती है, इमर्ज हो जाती है सारी अच्छाई ना इंसान के अंदर मर्ज है अब।
1: दोस्तों आप दीदी का शक्ल नहीं देख सकते, मैं देख पा रहा हूँ, दीदी जब ये कह रही है ना कि सारी अच्छाई इंसान में है, उनके आंखों से देख के लगता है कि एकदम सच बोल रही है, और उनको देखते हुए लगता है कि ये तो सच बात है। सच में मैं तो कहूंगा कभी आपको मौका मिले तो या तो आप पुणे जाइए जगदम्बा भवन में दीदी से मिले, या फिर यहाँ आकर के रेडियो मधुबन के स्टूडियो में कभी आप उनसे मिले, आपको भी वो शक्ति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। शीतल बहन जी आपसे मुझे ये जानना था कि जैसे दीदी ने बताया कि कभी छोटों को भी हमको सही दिशा में लेके जाने के लिए प्यार से चलाना पड़ता है, और आपने भी बात की सोशल मीडिया की, कई बार लोग कहते हैं मैं तो अच्छी चीजें ही देख रहा हूँ ना, तो इसमें क्या गलत है, लेकिन वो अच्छी चीजों को देखते देखते देखते देखते कितना समय चला जाता है पता ही नहीं चलता, और देखने से वो अच्छी चीज कब मैं कुछ खुद कुछ अच्छा करूं वो पीछे रह जाता है। तो आप कैसे गाइड करते हैं, क्योंकि आपने कहा आपके वहां पर कई यूथ भी आते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करें?
0: जैसे कहा जाता है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो जहां पर भी हमारा अटेंशन जाता है, अगर समझो हम सोशल मीडिया के आदि है, क्योंकि आजकल युग ही सोशल मीडिया का चल रहा है, और वो कोई बुरा है ऐसा मैं नहीं करूंगी, बट एक कहा जाता है कि हर चीज को मर्यादा में यूज करना और अपने बेनिफिट के लिए यूज करना वो बात अलग होती है। लेकिन जैसे विवेकानंद जी को भी पूछा गया था कि जहर क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना या यूज करना तो वो जहर बन जाती है। तो वैसे सोशल मीडिया इज ऑल्सो गुड, क्योंकि ये हमें कई चीजों में कनेक्ट करने के लिए, हमारा कई आजकल का जो विस्तार होता जा रहा है हमारे कारोबार का, उसको हेल्प करता है हमें अच्छी तरह से चलाने में, तो इसको यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अधीन हो जाना। जैसे आजकल हम देखते हैं बाकी जो एडिक्शन, अभी तो एडिक्शन में वो बीड़ी सिगरेट और दारू ये तो सब पीछे रह गया है, अब तो वो तो चलो कुछ कुछ लोग परसेंट में एडिक्टेड है, बट यहाँ सोशल मीडिया एडिक्शन तो ऑलमोस्ट हर किसी को लग चुका है, और ये एडिक्शन है। जैसे अगर रात को मुझे रील देखकर सोने की आदत है, तो मैं आज नहीं देखती हूँ तो मुझे नींद में तकलीफ होती है, आई फील लाइक आई एम मिसिंग समथिंग, तो जैसे वो खींचता है, क्योंकि समवेयर इन ब्रेन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एडिक्शन के बाद होते हैं और जो बार बार खींचते हैं आपको वो एडिक्शन की तरफ, वैसे ही कुछ हार्मोन्स जब आप सोशल मीडिया के रील्स देखते हैं तो उसी प्रकार के हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, और वो जब आपको नहीं दिया जाता
1: तो अब आपको उसकी खींच
0: होती है. तो यू फील किया, आपको लगता है मैं थोड़ा अपने समय, क्योंकि क्या होता है जब हम रील्स देखते हैं बहुत ज्यादा, कुछ अच्छे जैसे आपने कहा अच्छे ही देख रहे हैं हम, कोई गलत नहीं देख रहे, लेकिन जब कोई भी चीज टू मच में जाती है हमें याद भी नहीं रहता वो कौन सी अच्छी बात मैंने सीखी थी जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है. बस मैं अपने आप मन को तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं अच्छा सुन रहा हूँ, अच्छा देख रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले तो एक दो घंटा अच्छा देख के भी फायदा क्या. और होता यूं है कि फिर हम लोग सोते देरी से हैं, उठना तो वापस समय पर ही होता है क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, या घर में किसी के टिफिन बनाना होता है, तो फिर आपको लगता है मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है. आजकल देखो हर एक की यही कंप्लेंट है कि हमारे पास टाइम कम है. इनफैक्ट हर एक के पास बहुत टाइम है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये देखना है कि हम अपने टाइम को कहाँ और किस रीति से स्पेंड कर रहे हैं, कितना वर्थ वाइल दृष्टि से यूज कर रहे हैं. तो इसीलिए आप जैसे कह रहे थे कि अच्छा देखना, तो हम यूथ को यही बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया को यूज करो. इनफैक्ट आजकल जो एआई की बात निकल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास पहले से बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है, आप पहले उसको इस्तेमाल करो, फिर उसको पॉलिश करने के लिए, उसको थोड़ा और ढंग देने के लिए आप एआई को जरूर यूज करो. लेकिन आजकल मैं देखती जा रही हूँ यूथ को कि एआई को पहले ही, चलो एआई बता देगा ना, एआई बता देगा ना, तो दे हैव स्टॉप यूजिंग देयर इंटेलेक्ट. और अगर हम लंबे समय तक अपनी चीजों को यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जंक लग जाएगी, तो ब्रेन भी हमारा. तो इसीलिए एआई को भी यूज करो, बट लास्ट मोमेंट, नॉट एट द फर्स्ट स्टेप. पहले आप अपने खुद के इंटेलिजेंस को यूज करो, क्या क्या निकलता है देखो अपने आपके अंदर से, फिर उसको थोड़ा सा अच्छा ढंग देने के लिए आप एआई को जरूर यूज करो. तो हम उनको कहते हैं कि आप सब कुछ करो बट सही समझ के साथ यूज करो.
1: समझ के साथ
0: करना ये इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको हम आजकल की भाषा में डिजिटल वेलनेस कहते हैं. क्योंकि डिजिटली नॉट ओनली यूथ, लेकिन आज हम किसी भी एज के लोगों को देखते हैं वो इस तरह से जा रहे हैं. तो ये भी एक समय की बचत है, ऊर्जा की बचत है, क्योंकि आत्मा इटसेल्फ इज अ ऊर्जा, सोल इटसेल्फ इज अ ऊर्जा, वो कहाँ कितना इस्तेमाल करेगी तो उसका वो ये प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया से हमारे आंतरिक ऊर्जाएं बहुत वेस्ट में खर्च होती है, और फिर जो करना चाहते उसके लिए पास समय और एनर्जी हमारे पास नहीं बचती. इसीलिए आज लोग फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सोचते मुझे इतना कुछ करना था लेकिन मैंने किया नहीं. और कहते हैं कि टाइम नहीं था. आप अगर रिव्यू करो अपने सारे दिन को तो कितना टाइम तो हमने यूं ही वेस्ट कर दिया.
1: इसका आपने पहले भी उत्तर दिया था कि बचत का संस्कार है तो वो समय भी बचाएगा. पहले संकल्प फिर समय, और उससे फिर आपके आचरण में परिवर्तन आने लगेगा. जी. एक परिवार में चार लोग अगर हैं, उनको अगर मान लीजिए शुरू करना है ऊर्जा की बचत, चाहे वो जल हो, चाहे विद्युत हो, या भोजन हो, या कोई भी चीज का अगर बचत शुरू करना है, तो कुछ अगर आप छोटे मोटे ऐसे टिप्स दें हमारे श्रोता साथियों को कि वो कहाँ से शुरू करें, तो वो सुनना चाहेंगे हम.
2: मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक परिवार को ये सारी बातें करनी है, वो परिवार को पहले समझ लेना पड़ेगा. और परिवार में ये अपेक्षा करके नहीं चलता है कि सभी साथ साथ करेंगे. हो सकता है चारों ने महत्व तो सुना लेकिन दो करेंगे, दो ना भी करेंगे. तो जो दो ना करते हैं उनको भी थोड़ा सा कभी प्रेम से, कभी शक्ति से, ऐसे अलग अलग ढंग से बता करके मोटिवेट करना पड़ेगा. मतलब किसी भी कारण से कलह उत्पन्न नहीं होना चाहिए. समझो कोई अच्छी बात मैं कर रही हूँ लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाती हूँ, मैं उसको कैसे भी अलग अलग शब्दों से उसके साथ व्यवहार करती हूँ, तो वो और भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना. इसलिए कोई भी अच्छी बात अच्छे तरीके से ही करवानी पड़ती है.
1: अच्छी बात अच्छे तरीके से बोली जाए तो ही होगी. बहुत अच्छा
2: तरीका भी अगर हम थोड़ा चेंज कर, बात अच्छी है लेकिन हमारे बताने का ढंग ठीक नहीं है, उसको हम थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं समझो बोल बोल करके, तो वो भी नहीं चलता. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है.
1: रिगार्ड देना बहुत जरूरी है जी,
2: और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है. कभी कभी थोड़ा लिख के भी रखना पड़ता है ताकि बोलने की जरूरत नहीं, जैसे शीतल बहन ने कहा. तो ऐसे करते
1: मैंने
2: हैं
1: ये देखा है आपने जो कहा लिखने की बात. कई लोग कहते हैं घर में हम कैसे लिखें, फिर मेरे को ख्याल आया कि नहीं आप मसालों के डिब्बे पे तो लिखते ही है ना, कहाँ चीनी है कहाँ नमक है.
2: यस.
1: तो ऐसे ही अगर आप टैप के ऊपर लिख दो कि पानी को प्यार से यूज करो, तो वो आपके घर में कोई मेहमान आए तो वो भी इस चीज को देखेगा कि चलो ये अपने घर में भी एक अवेयरनेस क्रिएट करके रखते हैं. बहुत अच्छा.
2: और मैं भले उस घर में रहती हूँ लेकिन मैं अभी समझो मैंने नल का खोल दिया है, लेकिन जब मेरा ध्यान वहां गया तो थोड़ा तो मेरे ऊपर असर आ ही जाता है ना. हाँ, कोई बोलेगा तो फिर मैं थोड़ा डोंट केयर भी कर सकती हूँ,
1: लेकिन पढ़ने
2: रोज
1: तो...
2: रोज क्या ये बोलता ही रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होगा। इसलिए हमारे घरों में पहले पहले जमाने में बहुत अच्छे अच्छे सुविचार सुविचार लिखे जाते थे ताकि बच्चे पढ़ते रहे, बड़े पढ़ते रहे, तो वो जीवन में भी उतारे। उसी प्रकार मतलब कोई भी अच्छी चीज सब मिलकर के शुरू करे, आज नहीं तो कल मदद मिल ही जाती है, और अच्छे में सफल

0: सफलता मिलती ही।
1: शीतल बहन, आप कौन से पॉइंट्स को ऐड करना चाहेंगे?
2: जैसे अगर आप घर की बात करें जहाँ तीन चार लोग रह रहे हैं, तो जैसे बहन जी ने गाइड किया कि किसी एक को शुरुआत करनी होती है, चारा एकदम करे ये तो बहुत ही अच्छा है अगर कर पाए, बट एटलीस्ट वन पर्सन वो शुरू कर सकता है वो रियलाइजेशन के साथ कि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, हम भारत सरकार को भी मदद करेंगे, साथ साथ हमारा बिल भी कम आएगा तो पैसे की भी बचत होगी, उसी पैसे से आप और कुछ कर सकते हो, तो क्यों हम ये वेस्ट करें। तो ये संस्कार इस रीति से कोई एक भी अगर इस बात को ठीक से समझ ले और फॉलो करना शुरू करे, और जैसे बहन जी ने कहा कि बार बार याद तो नहीं रहता और बार बार किसी को टोकना अच्छा भी नहीं लगता है, तो जहाँ नल है तो वहाँ उसके ऊपर आप लिख दो कि पानी बचाने से फायदे क्या होंगे। हमारे पास ऐसे छोटे छोटे स्लोगन्स हैं, जैसे अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहे, बट ऐसे स्लोगन्स मिलते हैं या तो आप खुद इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, उसको प्रिंट करके वहां पे लगा सकते हो, पानी बचाओ और ऊर्जा बचाओ या जहां भी जो भी है, तो इस रीति से वो लिखा हुआ होगा तो तुरंत वो कार्य करते समय ऊपर दिखाई देता है, और वो कुछ ही बार अटेंशन देना पड़ेगा कोई भी, उसके बाद तो वो
1: बन
2: संस्कार
1: जाएगा,
2: बनना ही है,
1: संस्कार बन जाएगा।
2: ऑटोमेटिक बनना है। कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन आप उसको अटेंशन से यूज टू बार बार बार बार अटेंशन देके जब उसको करने लगते हैं तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली योर संस्कार। फिर तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं वहां लिखा क्या है, आपको पता है पानी कई बार क्या होता है, नल चालू रहता है टप टप टप टप पानी गिर रहा होता है, तो कई बार हम तो ध्यान भी नहीं देते, फटाक से कहीं निकल जाते हैं। तो मतलब ये चीजें हम अगर पहले से जाने से पहले एक बार मैं देख लूँ नल ठीक से
1: चेक
2: बंद
1: कर
2: हुआ
1: लेना।
2: है, तो एक आदत है रूम से बाहर निकलते हुए फैन बंद किया है, एसी बंद किया है, लाइट्स बंद है, तो ये चीजों का छोटा छोटा। और जैसे एसी के बारे में मैंने कहा था, घर में आजकल एसी लोग यूज करते हैं और अभी तो समर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मेजोरिटी लोग तो एसी यूज करते ही है, तो जैसे कहा कि हमेशा टेम्परेचर 24+ रखना, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एंड इट इज गुड फॉर एनर्जी सेविंग एज वेल, तो दोनों हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक बॉडी अगर आप ले लेते हैं उस समय और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में जाते हैं तो तुरंत कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बॉडी टेम्परेचर के नियर बाय ही टेम्परेचर रखो, बस इतना कि आपको थोड़ा ठंडक में फील हो, तो 24+ रखेंगे तो एनर्जी सेविंग भी बहुत होती है और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है। और जैसे एक स्लो पे आप एक या दो पे फैन रखो तो रूम ठंडक में ये हो जाएगी,
1: जल्दी
2: और
1: ठंडक
2: हाँ,
1: होगा
2: और मैंने
1: रूम।
2: देखा है कई घरों में प्रैक्टिकली देखा है, हम लोग भी एक बार रूम ठंडी हो जाए तो उसके बाद एसी भी ऑफ कर देते हैं, आपको रात भर एसी चालू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है,
1: आवश्यकता नहीं।
2: क्योंकि सुबह तक तो इतने ठंडे हो जाते हैं कि कुछ कंबल ओढ़ना
1: कंबल,
2: पड़ता है,
1: हाँ
2: तो
1: कई
2: एक
1: बार लोगों को देखा है वो पंखा भी चलाते और कंबल भी
2: कंबल भी ओढ़
1: ओढ़ते
2: लेते हैं, है ना। तो मतलब इस
1: जी।
2: तरह से अगर हम देखें कि मुझे इतनी ठंडी लगी रही है तो इतना घंटा ऑन रखने की जरूरत है, और आजकल स्लीप मोड भी होते हैं रिमोट में, आप स्लीप मोड पे भी डाल सकते हैं, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली
1: बंद
2: वो
1: हो जाएगा।
2: बंद हो जाए। तो टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ ऑफर कर रही है, लेकिन हम उसको सही रीति से इस्तेमाल करें, बस है हम अफोर्ड कर सकते हैं बिल, इसीलिए हम कितने पे भी रखें वैसे ही छोड़ के जाएं, नहीं, क्योंकि ये चीजें फिर और कई जगह पे रिफ्लेक्ट होगी, नॉट ओनली एट होम बट और जगह पे रिफ्लेक्ट होगी, तो जो संस्कार बनेगा वो हर जगह एक जैसा ही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए फिर हम इन बातों का ध्यान रखें। फ्रिज के लिए जो मैंने कहा था, आजकल हम देखते हैं, हम इवन हमारे आते पास उनके फ्रिज देखते हैं तो आज पहले छोटा था फिर बड़ा लिया, क्या करें बहन जी वो भी कम पड़ जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि फ्रिज ऐसी चीज है कि एक बार आपको स्टोर करने की आदत लग गई
1: तो फिर
2: तो फिर
1: दोबारा
2: वो
1: नहीं
2: नहीं,
1: होगा।
2: हाँ, तो बस वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि फ्रेश वेजिटेबल्स, और तीन चार लोग हैं तो आप आते जाते भी मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रेश सब्जियां ला, 2-3 दिन के भले आप स्टोर करो, पर 8-10-15 दिन की सब्जियां स्टोर करने के लिए फिर उतना स्टोरेज लगता है आपको, और हेल्थ वाइज भी
1: और
2: आपके
1: हेल्थ
2: लिए
1: वाइज भी वो
2: बिल्कुल
1: भोजन
2: अच्छा नहीं
1: सही
2: है।
1: नहीं है
2: हाँ,
1: जी।
2: और अगर जहाँ कोई ऐसा घर हो मतलब जो इंडिपेंडेंट घर हो तो वो बायोगैस जरूर लगाए, उसका भी बेनिफिट हमने देखा है, बहुत यूजफुल है बायोगैस। तो ऐसे और सोलर के भी आजकल कितने छोटे छोटे डिवाइसेस निकले हैं, है ना, आज सोलर कुकर भी मिलता है, तो अगर आप तीन चार लोगों का बना रहे हो इतनी कोई बहुत फास्ट में बनाने की जरूरत नहीं है, तो सोलर में आप एक बार तड़का लगा के, क्योंकि धूप तो निकलने वाली है अभी समर में, तो उसको उससे तंग होने के बजाय क्यों ना उसका फायदा
1: उसका
2: लिया
1: फायदा
2: जाए।
1: लिया जाए।
2: तो ऐसे
1: बिल्कुल।
2: कुछ छोटे छोटे सोलर डिवाइसेस अगर हम अपने घर में भी यूज करते हैं तो काम भी बन जाएगा, एनर्जी भी सेव हो जाएगी, पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो ऐसे मुझे लगता है छोटे छोटे टिप्स हम इस्तेमाल कर
1: और
2: सकते हैं।
1: राजस्थान में बैठे हमारे सभी श्रोता साथी इसको बहुत बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सूर्य देवता बहुत ही खुश रहते हैं। जाते जाते मैं शीतल बहन और सुनंदा दीदी दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके निर्देशन में लगभग 170 के करीब ब्रह्मा कुमारीज के छोटे बड़े ब्रांचेस हैं, अलग अलग प्रकार से लोग आते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, आप महाराष्ट्र ही नहीं सब जगह जाते हैं भारत के, कई जगहों पे जाते हुए भी आपने कोई एक बात ऐसी देखी हो जो पूरे भारत को एक करता है? मतलब आप चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे आसाम जाएं, चाहे बंगाल जाएं, कहीं पर भी जाएं, बहुत भिन्नता है, लेकिन कोई एक बात आपकी नज़र में ऐसी पड़ी हो जो कि आपको लगता है नहीं, ये तो हर जगह सेम है, एक है, और ये भारत की विशेषता है, वो कौन सी बात होगी?
0: जहाँ तक मैंने देखा है, ये भारत की एक विशेषता ये है कि जब उसके घर में कोई मेहमान आता है, वो मेहमान की बहुत खातिरी करता है। एक झोपड़ी में भी अगर कोई मेहमान जाएगा ना, तो भी उसकी वहाँ खातिरी होती है। और एक राजा के घर में कोई मेहमान आता है, तो उस ढंग से उसकी मेहमान निवाजी होती है। तो मेहमान को भगवान समझकर, अतिथि को एक महान आत्मा समझकर उसकी परवरिश करना, ये मैंने भारत के सारे स्टेट में और 95% अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, मध्यम हो, सब लोगों के अंदर ये विशेषता मैंने देखी है और जो बहुत महान हमारे भारत को बनाती।
1: बहुत सुंदर। शायद इसीलिए भारत जो है इतना पुण्य भूमि माना जाता है, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं भारत में। शीतल बहन जी, आपको क्या लगता है कौन सी एक बात भारत को खास बनाती है?
2: जो बहन जी ने कहा उसे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। अतिथि देवो भव तो है ही है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर फैमिलीज के अंदर जो अपनापन है, कोई तो पूछने वाला है, लाइक सपोज बीमार पड़ते हैं तो कोई केयर करने वाली माँ है या पिता है या भाई है, तो मतलब एक दूसरे की जो केयर करने का संस्कार है अपने घर के अंदर, अतिथि को तो डेफिनेटली हम करते ही है, लेकिन एक दूसरे की केयर करना, एक फैमिली टाइम स्पेंड करना, तो ये जो फैमिली की फीलिंग है ना, एक अपनेपन की जो फीलिंग है, वो मैं देखती हूँ कि सब जगह है ही है। किसी भी स्टेट में आप जाओ, वो फैमिली की फीलिंग है। और मैंने अधिकतर ये सुना है जो विदेश में जाते हैं, वो बाकी तो साधनों से और ये सुविधाओं से तो संपन्न है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनापन, वो जो संबंध में प्यार है, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड है, एक दूसरे की केयर का संस्कार है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है, जो हमारे भारत में नहीं है। और यही, और वहाँ हम देखते हैं विदेश में बहुत जल्दी बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फैमिली से दूर भी चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन भी बनाना शुरू कर देते हैं और दूर हो जाते हैं रिश्तों से और इस सब से। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे 21 साल के हो गए, 25 साल के हो गए,
1: तो भी
2: परिवार के साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर एक बात है कि ये जो परिवार का फीलिंग है, एक आपका एक एसेट है ये परिवार भी, परिवार का प्यार भी, जो आपको आपकी बाकी डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है। तो ये मैंने भारत के हर स्टेट के अंदर जरूर देखा है।
1: और यहाँ हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथी भी, मैं कहता हूँ और मानता भी हूँ, एक परिवार के जैसे हैं। रेडियो केवल उनके लिए एक साधन नहीं सूचना का, लेकिन रेडियो उनके लिए एक परिवार है। और स्पेशली रेडियो मधुबन का जो परिवार है वो बहुत ही खास है। हमें गर्व होता है हमारे इस रेडियो मधुबन परिवार पर, क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं। लेकिन अभी हम समय की सीमा को देखते हुए आज के एपिसोड को हम फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आप दोनों ही जो पहला उत्तर आपके मन में आए आप उसको बताइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ऊर्जा क्या है?
0: ऊर्जा माने एक शक्ति है, जैसे शक्ति जहाँ होती है वहाँ निर्माण का काम होता है। अगर शक्ति नहीं होती है तो निर्माण नहीं होता है। जैसे अभी एक सोलर की ऊर्जा हमको मिलती है तो हम भोजन बनाते हैं, ये इनर्जी अपनी लाइट इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा मिलती है तो बल्ब जलता है, एसी लगता है। तो ऊर्जा माना
2: इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ड्राइव करती है। वैसे ह्यूमन को भी ड्राइव करने वाली चीज जिसको हम सोल कहते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक ऊर्जा वो आत्मा को या इस शरीर, मनुष्य के शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो समथिंग विच ड्राइव्स, दैट्स द एनर्जी,
1: चला रही। सेवा क्या है?
0: एक्चुअली सेवा माना किसी को सुख देना,
1: बहुत
0: जिससे दूसरों की प्रगति हो।
1: सेवा मतलब सुख देना, सामने वाले की प्रगति हो।
2: सेवा माना दुआ लेना का बहुत सुंदर साधन।
1: सेवा मतलब दुआ कमाने का साधन, बहुत बढ़िया। शांति क्या है?
0: शांति एक मन की स्थिति है जिसमें केवल होती है पॉजिटिविटी, केवल होती है प्यूरिटी, केवल

0: भारत हमारे लिए सब कुछ है,
1: जी
0: हमारी माँ भी है, हमारे पालनहार भी है, हमारे रहने का स्थान भी है, भगवान के आने का स्थान है। यहाँ से लाइट सारे संसार को मिलेगी, सारे संसार के परिवर्तन का आधार भारत है। भारत माना ही भरपूर,
1: भारत माना ही भरपूर।
2: भारत विश्व के लिए एक लाइट हाउस और एक माइट हाउस है, जहाँ से आध्यात्मिक प्रकाश सारे विश्व की ओर भी फैलता है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है। भारत में जो आज हम देखते हैं, जीवन जीने की कला बहुत सही तरीके से चल रही है। और एक माइट हाउस शक्ति का भी केंद्र है, जहाँ आध्यात्मिकता के लिए लोग भारत की तरफ ही मुड़ते हैं।
1: ये केवल कहने की बात नहीं, ये हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं। कभी भारत की तरफ से जो सेवाओं का विस्तार होता है, कहीं पर भूकंप हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये जो शीतल बहन ने आपने भी बोला था कि ये जो पारिवारिक भावना है, ये केवल भारत के अंदर तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व को अपना मानना। और ये शास्त्रों में भी जो कहते हैं, शुरू से हम कहते आए हैं, हमारे प्रार्थनाओं में हम ये गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सब का सुख चाहते हैं, केवल हम हमारे देशवासी सुखी हों ऐसा कभी नहीं चाहते। ये दर्शाता है कि भारत जो है विश्व के लिए एक लाइट हाउस है, जहाँ से प्रकाश चारों ओर फैलता है। लेकिन हमारे लिए आज सच में बहुत सौभाग्य की बात थी कि सुनंदा दीदी जी स्वयं और शीतल बहन ने भी समय दिया हमको, हमारे श्रोताओं से मिले आप, उनके साथ आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मैं कहूँगा वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें, प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि आज जिस तरीके से दरो दाम बढ़ रहा है जीवन शैली का, उसमें कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने जीवन को सहज बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, लेकिन केवल बचत के नाम से नहीं, लेकिन उससे अपने संस्कारों को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आज बहुत अच्छा सीखा आपसे, और मैं समझता हूँ मैं श्रोता साथियों ने भी सीखा होगा। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यशस्वी भारत कार्यक्रम का पार्ट एक भाग बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू शांतनु भाई और पूरा रेडियो मधुबन परिवार जो सुन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदी आपके मुझसे कुछ सुनना चाहेंगे?
0: सुनने वालों को भी मैं बोलेंगी कि आप केवल सुनना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऊर्जा बचत करना, संकल्पों की बचत करना, बचत का खाता बढ़ाना। आप सभी जो भी रेडियो मधुबन को सुनते हो, आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये रेडियो जो है वो ऐसे स्थान से प्रसारित होता है, जो स्थान आप देखेंगे तो आप ऐसा फील करोगे कि ये भारत का या विश्व का स्वर्गीय स्थान है।
1: जी,
0: जहां आप आएंगे तो केवल रेडियो मधुबन ही मुस्कुराता नहीं, लेकिन यहां आप आएंगे तो गेट से लेकर हॉल तक और हॉल से लेकर भंडारे तक सब जगह आपको प्रसन्नता से खिले हुए चेहरे दिखाई देंगे, और उससे आप भी प्रसन्नता सीखेंगे और भी कई सारी आध्यात्मिक बातें भी सीखेंगे, क्योंकि ये सीखने का टाइम है, ये परिवर्तन होने का टाइम है, ये कुछ बनने का टाइम है। तो आप सभी जरूर इसका लाभ उठाइए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच।
2: आप सभी ऐसे ही सुनते रहे और सदा मुस्कुराते रहे, और इस रेडियो मधुबन से बहुत सुंदर सुंदर बातें जो आप तक पहुंचती है अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, तो आप जरूर इसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाके इस बहुत सुंदर अनुभव कीजिए, एक जीवन जीने की सुंदर कला सीखिए, और आपका जीवन खुशियों भरा हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको सदा मिलती रहे, इस शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
1: दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही विशेष था, एक नहीं दो दो विदुषियों से हमें जानने को सुनने को मिला। सुनंदा दीदी जी का ये कहना कि जीवन शब्द में ही वन आता है, जीना ऐसा है जैसे वन नंबर के साथ जिए, एकदम अव्वल दर्जे का जीवन हो, लेकिन उसकी शुरुआत मूल्यों से होती है। मूल्य हर इंसान में है, केवल उन्हें बाहर लाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा ये मूल्य जो है, वैल्यू जो है, बचत का, हर वो चीज जिससे जीवन को जिया जा रहा है, हर वो वैल्यू या हर वो साधन जो जीवन को सहारा देती है, उसका बचत करना मेरा आपका हम सबका धर्म है। केवल इस बचत के एक संस्कार से व्यक्ति उदाहरण मूर्त बन जाता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और ऐसे ही भारत के विद्वान विदुषी रत्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रेडियो मधुबन परिवार हमेशा आपके साथ बना हुआ है, और आज जैसे आपने सुना भी कि भारत की

विशेषता ये पारिवारिक फीलिंग है जो कि हमारे इस परिवार में साफ झलकता है। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर मैं शांतनु लेता हूँ आपसे अलविदा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में दोबारा करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर है, और जिसमें हम लोग खास करके अपने मन और शरीर को कैसे हम लोग हील कर सकते हैं, तो इसकी जो टेक्निक है, इसकी जो फिलॉसफी है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप डाइटिशियन भी हैं, नेचुरोपैथ भी हैं, और काफ़ी लंबे समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। किस तरह से हमारा नेचुरल डाइट जो है हमें हेल्प करता है इस विषय को लेकर, और बॉडी में किसी भी तरह का अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तो हम लोग कैसे उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं आसान घरेलू तरीके अपनाकर, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को हम लोग जो है डाइट में अगर एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं या हम रिप्लेस करते हैं तो चीज़ें जो है अच्छी हो जाती हैं। तो वही बातें हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का विषय है कि टू हील माइंड एंड बॉडी। तो भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपका। ओम शांति। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग रूबरू होंगे। संतोष जी, हमेशा की तरह आप सभी की सेवा में उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। और अभी हमारे साथ अनघा और अंजना जी हैं, आप भी बहुत अच्छे गाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक गीत के द्वारा हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अनघा एंड अंजना जी, मैं चाहूँगा कि आप एक गीत स्वागत में संतोष जी और डॉक्टर भवानी जी के स्वागत में सुनाई जी और डॉक्टर भवानी जी के स्वागत में सुनाई।
1: ओम शांति। हम राग भूख का एक बंदिश सादर करना चाहेंगे।
0: आपकी आवाज नहीं आ रही है।
2: आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: ना भी आया,
2: ना भी आया।

जो ने नलना

0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा राग सुनाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, और अब डायरेक्टली मैं आपको जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर भवानी जी से। भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ओम शांति। बिल्कुल बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए,
0: और मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा विषय है उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए आप।
1: आज का जो है टॉपिक हमारा इजी टिप्स टू हील बॉडी एंड माइंड। तो हम बॉडी को हील, जैसे बॉडी के नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम वो बॉडी अपने आप हील होती है, माइंड को भी हम हील कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा वास्ट है, मैं शॉर्ट में शेयर करूंगी, हमारे पास समय की भी कमी होती है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको हम कहते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है। उसमें नंबर वन जो आदत है वो देर रात तक जागना। अगर देर रात तक जागने की आदत है, या हम एक्सेसिव शुगर इंटेक लेते हैं, चीनी वाली जो चीजें, चाहे वो चाय कॉफी में हो या मिठाइयाँ हो, बहुत सारा रिफाइंड शुगर अगर हम यूज करते हैं, उसके अलावा चाय कॉफी अगर हम ज्यादा लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हम ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये सब करने से हमारी जो इम्यूनिटी जो है डाउन होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको टैकल करने का तरीका क्या है? तो आज इस रेडियो मधुबन के माध्यम से मैं कुछ विशेष टिप्स देना चाहूंगी जो बहुत यूजफुल भी है और बहुत सिंपल भी है। तो फिजिकल हेल्थ को हील करने के लिए कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसे हमें खाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारा सिस्टम है, हर एक सिस्टम को हमें क्या कहते हैं, नेचुरली डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो नेचुरल डिटॉक्स हम कैसे करेंगे? शुरुआत हम लिवर डिटॉक्स से करते हैं। लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और उसको डिटॉक्स करते रहना बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसकी फंक्शनिंग सही होती जाएगी। तो लिवर में कुछ गड़बड़ी है, सबसे पहले तो ये हमें पता कैसे चलेगा? उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि जब हमारे मुंह से, जिसको हम बैड ब्रेथ कहते हैं ना, जिसे स्मेल आती है, तो बहुत लोग समझते हैं कि हमारे दांत में प्रॉब्लम है, ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम है, कैविटी हो गया होगा, तो ये समझ के बार बार ब्रश करते हैं। लेकिन आप देखना, ब्रश कितने भी बार कर लो या आप कुछ यूज कर लो मुंह में, बहुत लोग च्युइंगम चबाते हैं कि मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो लिवर जब हमारा कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू होता है या कुछ उसमें गड़बड़ी होनी शुरू होती है, तो एक मुंह से अलग से स्मेल आता है। वो इसलिए कि हमारा लिवर जो है बहुत अमोनिया बनाने लगता है, जिसका स्मेल हमारे मुंह से आता है। तो वो एक आप साइन कह लें, सिम्टम कह लें कि इसकी जरूरत है। दूसरा है कि बार बार इनडाइजेशन और ब्लोटिंग, मतलब पेट जो है फूलते रहता है बिना बात के। आपने ऐसा कुछ हैवी फूड खाया नहीं, लेकिन बहुत इनडाइजेशन होते रहता है रेगुलरली, पेट फूलते रहता है, बहुत ब्लोटिंग होती रहती है, मतलब लिवर में कुछ गड़बड़ है।
0: बिल्कुल
1: सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो स्किन है, वो चेहरा हो, हाथ हो, जनरली चेहरे और गले पे देखा गया वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, जिसका मतलब है हमारे लिवर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो अब घबराने की बात नहीं है, कोई कुछ छोटे छोटे हम घर पे आराम से नेचुरल रेमेडीज कर सकते हैं। तो इसको इसको एक तरह से मैं कहती हूँ इनएक्सपेंसिव वे टू डिटॉक्स द एंटायर बॉडी। तुम लिवर से शुरुआत करते हैं, सिंपल तरीका। और लेकिन आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जोश, कुछ गलत टेक्निक्स, मतलब बताई चीज को गलत तरीके से ले लेते हैं। तो ध्यान से आप सुनिएगा इसमें। हाँ, गलत किया तो फिर ये वो कहानी थी ना कि दो बहनें होती हैं राजकुमारियां, तो कोई कहता है कि 3 बार अगर डुबकी लगाओगी उस नदी में तो बहुत सुंदर बन जाओगी। तो बड़ी बहन जो है, छोटी बहन, 3 डुबकी लगा के सुंदर होके, खूबसूरत होके निकलती है। तो बड़ी बहन सोचती है 3 में जब ये खूबसूरत हो गई है तो मैं ज्यादा डुबकी मारू, तो ज्यादा डुबकी मारती है तो बदसूरत बन के निकलती है। ऐसे ही बचपन में दादी कहानी सुनाया करती थी। गलत हमें कुछ टेक्निक यूज नहीं करना, तो डिटॉक्स करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट काला मुनक्का होता है जिसको हम ब्लैक रेजिन्स कहते हैं। तो ये जो काली किशमिश होती है इसको हमें लेना है। किस तरह से लेना है, अभी ऐसे नहीं है कि रमेश भाई जी ले रहे हैं तो वो भी दो चम्मच ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ तो मैं भी दो चम्मच ले रही हूँ, कोई अभी जैसे हमारे संतोष भाई जी, ये ऐसे नहीं, सबका अलग अलग एक क्वांटिटी होता है। वो इसलिए हम सबकी हाइट हेल्थ अलग अलग है, मतलब हाइट और वेट अलग अलग है, हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, तो उसके लिए हमें अपना हिसाब कैसे हम क्वांटिटी देखें। तो हमारी जो ये मुट्ठी होती है ना, सबकी अपनी अपनी मुट्ठी की एक साइज होती है, तो इतना एक मुट्ठी आपका जो हाथ है आप किसी और के लिए अपने घर पे नहीं कर सकते, अपने लिए ही करना। तो एक मुट्ठी आपने इस तरह से काली किशमिश यानी कि ब्लैक रेजिन्स आपने लिया, 400 ml पानी लेना है और रात में इसको आप भिगा के रख देना, मतलब कम से कम 7 से 8 घंटा वो भीगना चाहिए। सुबह उठकर आप उसको इतना बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि वो 400 ml जो है 200 ml पानी बन जाए। उसके बाद जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म आप उस पानी को पीना, और वो जो काली किशमिश है उसको चबा चबा के खाना है, और ये एम्प्टी स्टमक खाली पेट में करना है, और इसको करना कितने दिन है, सिर्फ 3 दिन, मतलब आप रेगुलर कंटिन्यू मत करते जाना। और ये बहुत हैवी हो जाता है, तो जिस दिन जो 3 दिन आप करते हैं उन 3 दिनों आप 3 दिन आप नाश्ता मत करना, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। ये हम लिवर को डिटॉक्स कर रहे हैं नेचुरली, ये तो बहुत एक टेस्टी सा तरीका है लिवर को डिटॉक्स करने का, लेकिन जो डायबिटिक है वो इस टेस्टी तरीके को अपना नहीं सकते। तो डायबिटिक्स के लिए, जिनको डायबिटीज है उनके लिए आपको त्रिफला, ये नॉट सो टेस्टी वाला टेक्निक है लेकिन ऑप्शन नहीं है हम आपके पास, अब डायबिटीज अब जो हो गए हो तो त्रिफला चूर्ण जो होती है वो आपको एक चम्मच लेना है, रात को एक ग्लास पानी में आप भिगाना, सुबह उसको बॉईल करना, बॉईल करके उसको पीना, ये भी 3 दिन। तो हर 3 महीने में एक बार आप 3 दिन के लिए इसको करना, तो लिवर हमारी अच्छी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है, ठीक है, ये नंबर वन। सेकेंड, हमारा जो लंग्स है, लंग्स को भी रेगुलर डिटॉक्स करना होता है। तो लंग्स को रेगुलर डिटॉक्स करने के लिए ना बहुत अच्छा सा टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपके आसपास जब कोई होगा तब ये टेक्निक मत करना, क्योंकि वो समझेगा जानबूझ के ये लोग ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। तो टेक्निक ये है कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस ली, फिर हमको एक खांसी आती है तो हम खांसते हैं ना करके, तो हम मुंह में रुमाल रख के कपड़ा रख के खांसते हैं, तो ये खांसी हमें जबरदस्ती लानी है, थोड़े जोर से हमें लंबी गहरी सांस ली अभी तो हम लोग वर्चुअल स्क्रीन पे, अगर मैं आपके तो कुछ होगा नहीं, तो हम जब जोर से खांसते हैं तो आप देखना हम एकदम अंदर से वो खांसी निकलती है, तो ये हमारा लंग्स जो है इससे लंग्स की सफाई होती है, डिटॉक्स होता है। तो ये एक बहुत इजी सा तरीका, दूसरा है अनुलोम विलोम, तो लंग्स को डिटॉक्स करने का ये एक बहुत सिंपल मेथड है। तीसरा जो है स्किन, स्किन सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, स्किन को डिटॉक्स करना मतलब ब्लड साफ रखना है, ब्लड को प्योरीफाई करना है। ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए फिर से एक टेस्टी और एक नॉट सो टेस्टी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। टेस्टी टेक्निक ये है कि गाजर और ऑरेंज का जूस, अभी ऑरेंज का सीजन नहीं है तो सिर्फ गाजर का जूस आप बना के पी सकते हैं, और आपको बहुत फास्ट अपने स्किन को, स्किन पे ग्लो लाना है, स्किन को बहुत अच्छा करना है, तो ब्लड को प्योरीफाई करना है, उसके लिए बेस्ट है करेला। करेला और धनिया पत्ता मिलाकर इसको थोड़ा पानी डाल के आप मिक्सी में इसको अच्छी तरह से चला के इसको आप स्ट्रेन कर ले छलनी से, और इस जूस को एम्प्टी स्टमक सुबह पिए। ये आप कितने भी दिन पी सकते हैं, ऐसा नहीं है 3 दिन 4 दिन आप, क्योंकि ये आप पीना शुरू करेंगे तो कम से कम 3 महीने अगर आप पिएंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये स्किन के लिए है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हम जिसको हम रोज रोज तकलीफ देते हैं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि हमारी जबान कहती है भाई लाओ लाओ और लाओ, पेट कहता है ना ना मत दो, लेकिन हम सुनते नहीं है, देते रहते हैं। तो हमारे पेट बेचारा वो कितना स्ट्रेन लेता है ना, स्ट्रेस लेता है। तो पेट के लिए सबसे बेस्ट है अदरक जो होती है, अदरक को आप, क्योंकि गर्मी का मौसम है आप कहोगे और गर्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेना जरूरी है। हल्का सा अदरक आप घिस के ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो आप डाल लें उसमें खाना खाने के पहले, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के पहले बिल्कुल थोड़ा सा मुंह में डाल के आप चबा लें। उसके बाद आप अपना नाश्ता लंच डिनर करें तो अच्छे से पेट में डाइजेशन होगी। दूसरा है सौंफ। सौंफ को आप चबाते रहना, च्युइंगम चबाने की बहुत फैशन हो गई। आप मुंबई में आएंगे ना, सारे यंगस्टर्स कॉलेज के स्कूल के आपको च्युइंगम चबाते हुए दिखेंगे। तो मैंने अपने घर पे रूल बनाया है, घर में

0: जो बच्चे हैं उन लोगों को सिर्फ सौंफ दे के भेजती हूँ, तो सौंफ चबाते हैं, तो सौंफ जितना आप चबाओगे, हमारे इंडियन कल्चर में हमें पता है फूड हैबिट में डाइजेशन अच्छी होती है, तो ये कुछ सिंपल टेक्निक्स है जिससे हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं।
1: जी भवानी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किस तरह से हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे आपने बताया है और सभी लोग कर सकते हैं ऐसा आपने बताया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप बताते हैं या कोई बताता है डॉक्टर वगैरह, तो वो चीज़ें या तो क्लिनिक में जाके ही हो सकता है या फिर आपको हॉस्पिटल वाइज होके फिर करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीका जो आपने बताया है कि आप काला जो किशमिश है उसको भिगो के रखिए और फिर सवेरे उसको जो है पी सकते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं आप बहुत ही सिंपल करके बताए हैं तो अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग जैसे कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो उस समय हमें क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए या पहले प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहिए?
0: हाँ, जैसे आपकी अगर कुछ, जैसे एग्जांपल चलिए, लूज मोशंस अगर स्टार्ट हो गए तो वो टाइम पे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है घरेलू नुस्खे नहीं कर सके, पर जनरली हम लोग घबरा जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आई तो फटाफट वो ठीक होनी चाहिए, तो हम मेडिसिंस की ओर ही भागते हैं। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि हम कुछ नेचुरल करके देख लें, पर ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो आप पहले अपना जो भी तरीका है, जो क्विक तरीका आप उसको हील करना चाहते हो वो आप करके, फिर मैं ये कहना चाहती हूँ ऑडियंस को जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुन रहे हैं, कि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम आए फिर हम स्टार्ट करें। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना प्रोवर्ब, तो पहले से आप शुरू कर दीजिए। अभी जैसे एग्जाम्पल, टचवुड मैं कहूंगी, अभी मुझे कुछ है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन क्यों फिर आगे आए, वेट क्यों करें? तो करते रहे ना, 3 महीने में एक बार, कौन सी दिक्कत है, बहुत आसान है। थोड़ा सा अदरक रोज खा लिया आप, चलिए अदरक भी आपको घिस के खाने को टाइम नहीं है तो अदरक का पाउडर तो रहता है, तो उसको आप ले लीजिए और गर्म पानी में मिला के, तो सिंपल सिंपल तरीके हम, मुझे लगता है, अपनाना चाहिए पहले से ही, ताकि आपको कोई बीमारी छू ना सके। तो ये मैं बॉडी को हील करने के टेक्निक्स बता रही थी, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बहुत सिंपल सिंपल है, जो करते रहना चाहिए, क्योंकि कैसे होता है कि हम बीच बीच में हम छोड़ देते हैं, तो छोड़े बगैर आप नई नई चीजें है ना डिटॉक्स करने के लिए ट्राई करते रहना। उसमें एक और तरीका है जिसको ऑयल पुलिंग कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको आयुर्वेद में गंडूष या कवल कहा जाता है। तो गंडूष कवल दो अलग अलग है, पर उसको इंग्लिश में एक ही कहा जाता है, ऑयल पुलिंग। सो गंडूष का मतलब एक होता है कि आपने मुंह के अंदर आपने ऑयल भरा, तेल भरा, और आपने पूरा मुंह ऐसे भर के आपने रखा है। दूसरा होता है कि आपने मुंह में तेल डाला और एक साइड से दूसरे साइड, जिसको हम स्विशिंग कहते हैं, ऐसे आप उसको
1: ओके
0: करते हो। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है। इस किसके लिए मैं आपको एक, आपको मजेदार बात कहना चाहूंगी। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सब लोग घर पे ही थे, और तो कुछ था नहीं, घर के काम करना है और ये सब करना है, तो मैंने ऑयल पुलिंग के बारे में सालों से मैं सुनती आ रही थी, पर मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया था। और जब तक कोई भी चीज मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करूं तो मैं उस कॉन्फिडेंटली उस बात को बोल भी नहीं पाती हूँ, तो पहले मैं ज्यादा
1: बिल्कुल
0: बोलती भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो अभी फुर्सत है, करके देखे, तो मैंने स्टार्ट किया। तो पहले तो वो 2-3 मिनट से ज्यादा मुंह में रखना बहुत लगता इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ा के वो 25-30 मिनट तक हो गया। तो बहुत सिंसियरली 2 से 2.5 साल, मतलब मैंने शुरू का तो लॉकडाउन पूरा पूरा, उसके बाद भी मेरा कंटिन्यू चलता रहा, तो कम से कम 2 से 2.5 साल मैंने किए वो। और मैंने बाद में रियलाइज किया इस बात को, ये मुझे बहुत टाइम के बाद, 2 साल के बाद में रियलाइजेशन हुआ, मुझे है ना हमेशा दांतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता था, हमेशा बचपन से। तो कभी हर 6-6 महीने में जाना, रूट कैनाल कराना, फिर कुछ फिलिंग करना, ये रेगुलर हो गया था मेरा। मैंने रियलाइज किया लॉकडाउन में, एक दिन भी ना तो मुझे सेंसिटिविटी हुई, ना कुछ तकलीफ हुई दांत में, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम अच्छी तरह से वो ठीक होने मतलब हो गया अभी तक, मतलब कितना भी तो का थोड़े साल भी हो गए, अभी तो कुछ टाइम से मैंने रेगुलर भी नहीं हूँ, लेकिन टचवुड वो इतना अच्छे से ऑयल पुलिंग की वजह से हुआ। ये मुझे पता नहीं था कि दांत के प्रॉब्लम्स इससे ठीक होते हैं जैसे, है ना। तो हाँ, अब ये भी, और दूसरी बात मुझे और फनी लगी कि मेरे चश्मे का नंबर कम हो गया। तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया तो पता चला इसको आयुर्वेद में ऊर्ध्व चतुर्वत कहते हैं। ये वर्ड भी बड़ा डिफिकल्ट था, मुझे संस्कृत कोई खास आती नहीं है। तो ऊर्ध्व चतुर्वत का मतलब होता है कि यहाँ गले से लेकर ये जो अपना सिर तक का जो पोर्शन है, इसमें जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे आंख है, नाक है, कान है, सर है, जो भी है, तो सब पे ये इफेक्टिव है ऑयल पुलिंग। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती कि आप लोग शुरू कर दीजिए ऑयल पुलिंग, 5 मिनट भले करें लेकिन बहुत जबरदस्त उसका असर होगा।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता और दर्शक मित्र जो है इस बात को ध्यान में रखें और ऑयल पुलिंग का जो सिस्टम है उसे 5 मिनट 10 मिनट रात में तो आराम से कर सकते हैं। सोने के पहले आप 10 मिनट तो आराम से रख ही सकते हैं, तो यहाँ से शुरू करें, है ना। फिर जैसे आपको छुट्टी का दिन है सैटरडे संडे, उस टाइम पे 2-3 बार आप कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप इसको करिएगा। आइए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप सवाल डाल सकते हैं। तो कविता जी ने मैसेज करके बात लिखा है कि अच्छा आपने बताया, पहले से ही हमें हेल्दी रहना है, अदरवाइज बीमार पड़ने के बाद तो इलाज तो करना ही है। ऑयल पुलिंग का प्रयोग राइट रिपीट की जाए मैम। अच्छा, चलिए। नीता जी लिखती हैं कि ऑयल पुलिंग कैसे करें उसके बारे में, बस जो तेल, एक्चुअली में कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा अच्छा है ये उन्होंने बताया, तो उस ऑयल को थोड़ा सा 2-3 चम्मच जो है आप मुंह में रखिएगा, फिर पकड़ के रखिए उसको, है ना। और जितना ज़्यादा समय तक, आधा घंटा आपको बोला है, लेकिन आधा घंटा शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल होगा, आप 10 मिनट ही जो है पहले दिन कीजिए, दूसरे दिन फिर थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, ऐसे करके आधा घंटा तक अगर आप अपने ऑयल को मुंह में पकड़ के रखते हैं, और स्विचिंग करना मतलब ऑयल इधर उधर कर सकते हैं, नहीं तो आप मुंह फुला के रख सकते हैं हनुमान जी की तरह, और आराम से जो है आधा घंटा आपको उस पोजिशन में रहना है। तो ये है। तो आइए संतोष जी, मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग वापस निकलते हैं। जी
2: ओम शांति। सांसों के तार तारी में प्रभु प्यारे को पिरो लो, सांसों के तार तारी

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, आध्यात्मिक गीत।
0: थैंक
1: आयुष नाम जी ने भी याद भेजा है, नेताजी ने भी याद भेजा है, और कविता जी ने, संध्या पवार ने भी याद भेजा है, आप सभी को कविता जी ने भी याद भेजा है। तो आइए, आप सभी अगर कुछ सवाल, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे उसके ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं, ताकि आप इस चीज को समझ सके और नेचुरली हम लोग कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस विषय को जान सकते हैं। तो आइए, इंदु जी के भी याद किया है, गुजरात से कॉन्ट्रैक्टर इंदु भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने अभी अभी घुटने का रिप्लेसमेंट आपका हुआ है, शायद आपने किया है, तो घुटने के प्रॉब्लम्स में नी रिप्लेसमेंट करना कितना उचित है, या इसके लिए कुछ पहले से अगर हम प्रिकॉशन ले तो नी रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए भवानी जी, डॉक्टर जी।
0: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया अभी। तो प्रॉब्लम बढ़ने के बाद में जैसे हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं है, तो सर्जरी के लिए हमें जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर हमने शुरू से ही थोड़ा सा अपने हेल्थ पे अगर ध्यान दिया तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो नी आपको जैसे घुटने, जॉइंट पेन, जिसको शुरुआत तो जॉइंट पेन से होती है, फिर आर्थराइटिस, उसके बाद गाउट, उसके बाद में घुटने घिस जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम शुरुआत में ही, यानी कि टाइम रहते रहते, जैसे यंगर एज में, जैसे आपके घर में आप जो लोग जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, आप अपने अपने घरों में इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। बहुत ही सिंपल है, मैं कहती हूँ कि हर एक ने करना चाहिए, जो हमारे पुराने जमाने के लोग करते थे। अगर आपको याद हो ना, तो हमारे पुराने जमाने के लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो पान खाते थे। तो पान में चूना और सुपारी मिला के, मुझे भी याद है, और सुपारी भी कैसी थी पता है, वो मोटी मोटी ब्राउन आती थी। तो मेरे दादा दादी है ना, वो ऐसे हाथ में लेके बैठते थे, बहुत स्टाइल से कट करते थे उसको, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, ऐसे देखने में लगता था बड़े क्या ऐसे गांव के हैं, धोती पहने हुए ये। तो मैं तो कहती थी अपने दादा दादी को कि आप अपना स्टाइल चेंज करो, मेरे फ्रेंड्स आते तो आपका मजाक उड़ाते, पैंट शर्ट पहना करो। वो कहते
1: हाँ
0: क्यों करूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चूना जो है, जिसको इंग्लिश में स्लेक लाइम कहते हैं, ये सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, नेचुरल कैल्शियम। तो हम पान नहीं खाते हैं माना आज के दिन में, लेकिन हम उस चूने को तो यूज तो कर सकते हैं। तो चूने को
1: बिल्कुल
0: यूज करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, मैं तो कहती हूँ, एक डिब्बा है ना 20 रुपए का चूना, आप छोटी इतना बड़ा डिब्बा, तो 6 महीना चलता है, उसको कुछ भी नहीं होता, उसको बेचारे को फ्रिज की भी जरूरत नहीं है, बाहर पड़ा रहेगा वो। तो उसको आपको थोड़ा थोड़ा लेकर के, आप जैसे आपने अपनी दाल बना ली, दाल अपने गैस बंद करने वाले हैं, वो
1: जी
0: टाइम, जैसे 4 लोग हैं घर पे, इतना सा, इतना मतलब 1/4 चम्मच बोलते ना, इतना थोड़ा सा आप उसमें डालना और गैस को बंद कर देना और उसको मिक्स करना, आपकी सब्जी बन गई है, लास्ट में आप डाल देना, मिक्स कर देना। सपोज आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, क्योंकि ये सब चीजें ना जल्दी जल्दी याद नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल पानी तो हम लोग पीते रहते हैं सारा दिन। तो घर पे जब आप हैं एक टाइम, तो आप कुछ टाइम तो घर पे रहेंगे ना, पूरा दिन तो ऑफिस में नहीं रहते, तो थोड़ा सा कुनकुना पानी या गर्म पानी लेना, उसमें चूना मिक्स कर देना और पी लेना। वो माइक्रो मिनरल है, इतना सा ही हमारे बॉडी को चाहिए। लेकिन हम रेगुलर अगर इस तरह से चूना लेते रहेंगे अपने फूड में, अपने डाइट में, तो कभी भी हमें कैल्शियम से रिलेटेड ना डेफिशिएंसी ना प्रॉब्लम होगी। तो आपके जो घुटने हैं ना, स्वस्थ रहेंगे। ये शुरुआत में अगर कर लिया तो ये बहुत अच्छा तरीका है,
1: जी
0: जो
1: जी
0: आपने सवाल पूछा उसका ये जवाब है।
1: तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, इंदु कॉन्ट्रैक्टर जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में मैडम दे रही हैं, और बहुत ही अच्छा गीत संतोष जी ने गाया है, ऐसा मैसेज दिया है, थैंक यू इंदु कॉन्ट्रैक्टर आपका। आइए, अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे डिटॉक्सिफिकेशन की शुरुआत में आपने बता दिया लीवर के लिए, तो पेट को अभी गर्मी में, जैसे कहते हैं ना, बहुत गर्मी हो रही है तो कूल कूल रहना है, तो इसके लिए क्या, कौन से शरबत या किस तरह का जो है थोड़ा सा अगर हम लोग डाइट यूज करें जिससे हमें कूल महसूस हो।
0: तो पेट को कूल कूल रखना तो बहुत जरूरी है। पेट कूल कूल रहेगा तो अपना दिमाग भी कूल कूल रहेगा, क्योंकि अब मेडिकल साइंस भी कहती है गट ब्रेन का कनेक्शन है, पेट और ब्रेन का। तो पेट ठंडा
1: बिल्कुल
0: तो दिमाग भी ठंडा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नारियल पानी। नारियल पानी आप पी ले, वो भी आप सुबह, मतलब ये जो भी जूस होता है ना, सुबह आप 11 बजे के पहले पिए तो ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा तरीका है गुलकंद। गुलकंद जो है ना, वो हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो गुलकंद भी चीनी वाली गुलकंद नहीं, आजकल तो ऑर्गेनिक गुलकंद जिसमें बिना चीनी के होती है, शुगर फ्री, जो ऐसे वाले गुलकंद बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, या तो आप घर पे ही बना सकते हैं। गुलकंद बहुत पेट को ठंडक देता है। तो आप अपने कोई भी, जैसे आप कुछ भी
1: जी
0: तो अपने दूध में मिला दिया, पानी में मिला दिया, या आपने स्मूदी बना ली, या जूस कुछ किसी में डाल दिया, मीठा आपको पसंद है, तो गुलकंद पेट को ठंडक देगा। और इस तरह से ना, नॉर्मल जो वाटर है, रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं पिए, आप रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए। तो उसमें आप सौंफ जो होती है, सौंफ को डाल के रखे 3-4 घंटे के लिए, वो पी ले। आप बहुत सारे इन्फ्यूज्ड वाटर हम लोग कहते हैं इसको हमारे न्यूट्रिशन के लैंग्वेज में। तो हम पानी में ही कुछ ऐसी चीजें डाल दें समर में स्पेशली, ठीक है? तो एक तो तरीका इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने का, कि आप 1 ग्लास पानी लेना, उसमें ना इतना साइज का एप्पल, बस एक पीस एप्पल उतना डालना, थोड़े से पुदीने के पत्ते, उसको आप 3-4 घंटे छोड़ देना। फिर उस ये पत्ते को और एप्पल को निकाल के फिर ये पानी पी लेना। ये इन्फ्यूज ड्रिंक पेट को ठंडक पहुंचाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा 2 चम्मच सौंफ आपने डाल दिया, 3-4 घंटे रखा, वो आपने पी लिया, पेट को ठंडक पहुंचाएगा। फिर जो पंपकिन के सीड्स होते हैं, ये पेट इसी तरह से भिगा के रखना आप 2-3 घंटे, और पानी को पी लेना, सीड्स को आप फेंक देना। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपके पेट को ठंडक भी देगा, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, 100% रिजल्ट वाला है। तो ये आप पियोगे तो आपकी बीपी भी नॉर्मल होने लगेगी। तो ये कुछ, और जूस है, फ्रेश जूस है, तो ये सब चीजें, और बटर मिल्क है, छाछ, ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में। तो सुबह के वक्त दही ले ले, दोपहर को छाछ ले ले, तो ये सब आपके पेट को कूल कूल रखेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने पेट को कूल कूल रख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका आपने बताया, और निश्चित तौर पे आप सभी इस चीज को कर सकते हैं। इसके साथ में कई बार हमारा जो खाना है यहाँ पर ऑयली या फिर ऐसी चीजें हो जाती है जो फूड कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं होता है, तो इसका कैसे हम लोग ध्यान रखें? क्या हम लोग कुछ चूने की तरह कुछ मिला दे तो सब ठीक
0: तो आप पूछ रहे सवाल ये कि ऑयली जो हम खा लेते हैं, मुझे कुछ
1: जाए?
0: सुनाई नहीं दिया क्या ऑयली वाला आपने?
1: नहीं, बहुत ज्यादा ऑयली खाना वगैरह खा लेते हैं या फूड कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं खाते हैं, तो वो जैसे कि अभी गर्मी है तो दही चावल खा लेते हैं, या फिर नींबू राइस या फिर मैंगो राइस, ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो चीजें कितना फ्रूटफुल है, क्या फिर उसको अगर कर खाते हैं तो क्या करना चाहिए?
0: ये दही राइस तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट ही रिसर्च है। तो दही राइस आपको शायद पता नहीं, जिस साउथ इंडियंस, हमारी जो कम्युनिटी होती है, साउथ इंडियन कम्युनिटी, तो
1: जी
0: एक
1: जी
0: पूरा, आजकल कोई नहीं करता है ये सब, पुराने
1: हाँ
0: जमाने में करते थे, मैंने खुद देखा मेरी मम्मी को, नानी दादी को। तो चावल ज्यादा खाते हैं ना साउथ में, तो चावल
1: हाँ
0: एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उस चावल को
1: हाँ
0: क्या करते हैं, उसको उसमें पानी डाल देते हैं रात को, और उसको साइड में रख देते हैं, पूरी रात
1: हाँ
0: भिगाया रहता है। फिर सुबह क्या करते हैं, उस पानी के साथ ही उसमें दही डालते हैं, और उसको अच्छी
1: हाँ
0: तरह से मैश करके सुबह सुबह खाली पेट, ये जितने भी आप देखेंगे ना साउथ में जाएंगे, ये बहुत कॉमन नाश्ते की तरह होता है सुबह, क्योंकि लोग पर सुबह सुबह चावल कैसे लोग खाते हैं, पर ये है ना पुराने जमाने में, वो आजकल तो बहुत ही बहुत रेयर आपको दिखेगा ये, तो उसको वैसे ही खा लेते, उसमें नमक वमक कुछ नहीं डालते। एक एक चीज होती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जैसे अचार वचार होता है ना, तो वैसे खट्टा सी एक चीज होती है, ये एक फल होता है, उसको थोड़ा सुखा के बनाया जाता है ब्लैक सॉल्ट वगैरह डाल के, तो वो कॉम्बिनेशन खाया जाता है साउथ में। ये चीज मुझे है ना बहुत, क्योंकि मैं खुद ये ना मुझे पसंद नहीं करती थी, मैं बचपन में मैं खाती नहीं थी कभी, और अभी जब मैंने रिसर्च पढ़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ है कि कर्ड राइस, इस तरह का कर्ड राइस पुराने चावल का जो अगर आप खाओगे तो विटामिन B12 की लेवल बॉडी में बहुत बढ़ती है। ये पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया, जब बड़े बोलते थे तब मैं नहीं खाती थी, अभी मैं नया शुरू कर रही हूँ इतने सालों के बाद। तो कॉम्बिनेशन में कर्ड राइस तो समर के लिए बेस्ट है, लेकिन शाम के वक्त नहीं, आप दोपहर को सुबह इस तरह से ले सकते हैं। और दूसरा है कि जो आप नींबू राइस कह रहे हैं या जो मैंगो राइस, ये सब हेल्दी है, तो ये कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, ये तो हम
1: जी
0: फिजिकल
1: जी
0: लेवल पे कह रहे हैं कि टिप्स कि किस तरह से आप अपने बॉडी को हील कर सकते हो, लेकिन माइंड के लेवल पे भी हमें थोड़ी हीलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड मैं बहुत
1: बिल्कुल
0: थैंकफुल हूँ रमेश भाई जी आपके लिए, आप मुझे इतना अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये चाहती हूँ कि हर ऑडियंस सुने इस बात को, क्योंकि मैं एज अ डाइटिशियन इतना सारा नॉलेज रखा हुआ था फूड का, और मैं करती भी हूँ सब कुछ फॉलो, करती थी शुरू से, लेकिन मैं
1: बिल्कुल
0: सोचती थी फिर भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहते थे, बीच बीच में होता है ना। ऐसे मैं अपने आप को कंप्लीट हेल्दी करके उस टाइम पे मैं बोलती नहीं थी, कुछ ना कुछ शुरू रहता था। मैंने इस बात को रियलाइज किया जब मैंने कोर्स किया ब्रह्मा कुमारीज में आके, फिर मैंने योग सीखा, फिर राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, फिर अपने मन पे कैसे काम करना होता है, ये सब जब मैं समझने लगी, तो जब मैं माइंड के लेवल पे वर्क करने लगी, तब मैंने देखा कि हेल्थ जो जिसको हम कंप्लीट हेल्थ कहते हैं ना, वो अचीव किया। तो हम बॉडी के लेवल पे हर कोई मेहनत करता है आजकल, क्योंकि बहुत इजी हो गया, सब कुछ तो गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाता है, और बहुत लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करते भी हैं,
1: बिल्कुल
0: डाइट
1: बिल्कुल
0: पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेंटल लेवल पे है ना उस पे ध्यान नहीं देते। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा अपने माइंड के लेवल पे भी अपने आप को हील करना शुरू करें, जिसके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि गट ब्रेन कनेक्शन का मीनिंग ही वो है। माइंड अगर ठीक है तो पेट ठीक रहेगा, पेट ठीक है तो माइंड भी ब्रेन भी ठीक रहेगा, सही है ना। बचपन में आपको याद होगा ना, जब हम एग्जाम देने जाते थे तो फिर दही चीनी रेडी रखते थे ना बड़े मम्मी दादा,
1: बिल्कुल
0: तो दही क्या प्रोबायोटिक है, वो पेट में जाएगा तो पेट खुश है, पेट खुश है तो दिमाग खुश है, तो ऐसे हमें माइंड को भी हील करना पड़ेगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता दर्शक मित्रों को अच्छा लग रहा है। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक और बात, ENT के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या डाइट है? जैसे आपने वो ऑयल पुलिंग वाली बात बता दी, और खास ENT के लिए कुछ है क्या जो तीनों चीजों को, कई लोग है ना ईयरबड्स वगैरह ये करते हैं, कई लोग तो फिर चावी डाल देते हैं कुछ भी, अब वो ऐसे कहते हैं कि नेचुरली कान तो अपने आप ही खुद को क्लीन करता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ENT का कुछ जो है क्या किया जाए, या ऑयल पुलिंग जैसा कोई और सिस्टम है जिससे हमारी ENT के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए?
0: ENT के लिए तो बेस्ट तो ऑयल पुलिंग है। दूसरा जो होलिस्टिक मेथड है वो
1: जी
0: है हमिंग साउंड। हम
1: अच्छा
0: हमिंग साउंड

0: करते हैं, तो हमिंग साउंड कैसे करना है कि जैसे बीज हमिंग साउंड, पर उसके लिए ना एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है कि आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते वक्त ये जो टिप ऑफ द टंग है ये
1: जी
0: आप ऊपर ऊपर की तरफ टच होना चाहिए। जब आप टच करेंगे ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा, फिर जब हम वो जो हमिंग साउंड करते हैं बहुत इफेक्टिव होता है। तो जब हमिंग साउंड, पहला तो ऑयल पुलिंग ENT के लिए, सेकेंड है हमिंग साउंड करना, थर्ड है ओम ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग भी अ ओम जब हम चैंट करते हैं 11 बार 21 बार, तो उससे भी उस ध्वनि से भी ये क्लियर होती है, ये ENT की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये तो हो गया एक होलिस्टिक अप्रोच। लेकिन हम जब फूड की बात करते हैं तो हमारे ईयर्स नोज थ्रोट, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी है ना ठंडी चीज नहीं ले, क्योंकि हमें एक आदत हो गई ठंडा ठंडा के। गर्मी का भी मौसम है तो ठंडा कुछ भी होता है ना वो तामसिक होता है। जैसे फूड को कैटेगराइज करते हैं ना तामसिक राजसिक सात्विक, जैसे पानी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: लिया, पानी जो है फ्लोइंग होता है, वाटर फ्लोइंग होता है, कहीं भी आप डाल उसका शेप लेगा तो वो वाटर जो है राजसिक है, वो फ्लो करते रहता है बहते रहता है। उसी वाटर को जब हम फ्रीजर में डालते हैं और वो आइस बन जाता है तो वो तामसिक है, और वही वाटर जब हम बॉईल करते हैं और वेपर निकल के ऊपर उड़ता है तो वो सात्विक बनता है। तो आप याद रखना, कभी भी ठंडी चीज आप लोगे तो इन तीनों को इफेक्ट करेगा। तो ठंडी चीजों को जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। और दूसरी बात है बहुत ज्यादा खट्टा, मतलब एक्सेस खट्टा बहुत अच्छी बात है, उसमें टार्टरिक एसिड होता है जो जरूरी है, लेकिन ओवर खट्टा हम खाते हैं ना, चटपटा मुंह, जब जबान बहुत वो टंग मचलने लगता है तो बहुत वैसे खटपट चटपटा लेंगे तो उसमें भी फिर ENT की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कुछ कुछ सिंपल सिंपल हम चीजें ध्यान रखें तो हमारा ये ENT का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर भवानी जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ENT प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या करना है वो आपने बताया। ठंडी चीजें अवॉइड करें और उसे गर्म करके फिर आप अगर पीते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा एक्सेस खट्टा की जरूरत नहीं है, थोड़ा खट्टा चल जाएगा जो आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो ENT प्रॉब्लम भी आपके खत्म हो जाते हैं, और गर्मी के मौसम में कूल कूल रहने के लिए आपको बहुत सारी टिप्स मिल गए हैं। तो उसमें से कोई चीज जो आपको अच्छी लगती है उसका प्रयोग करें, और अगली बार हमें जरूर मैसेज करके बताइएगा। तो संतोष जी, थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत गाने के लिए, एंड डॉक्टर भवानी जी फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चलिए
0: थैंक
1: मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूंगा आपको सब बातें जो है क्लियर हुई होगी, नहीं तो एक बार एपिसोड रिपीट करके पूरा ध्यान से सुने, कागज पर लिख लें ताकि मिस ना हो कोई चीज और गलत क्रिया ना हो आपसे। तो प्रॉपर जैसे बताया गया वैसे आप करेंगे तो आपका हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस आपके हाथ में है। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में रखें, किसी और को या फिर डॉक्टर के हाथ में मत सौंपिए, क्योंकि आप भी नॉलेजफुल हैं और आपको नॉलेज मिल भी रहा है, तो इसका उपयोग करें। वैसे नॉलेज इज पावर कहा जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है ना, तो दोनों चीजें नॉलेज से मिल जाती है। तो ये आपका डॉक्टर का पैसा बच जाएगा तो आपका इनकम हो गया, और ये पावर भी बनेगा जब आप इसका प्रयोग करके अपने लाइफ को अच्छे सेट करेंगे, हेल्दी बनेंगे, है ना। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू के रहने वाले प्रवीणा जी राणा, जिनकी उम्र है 52 साल और जीवन के काफी अनुभवी है। आपने घर घर में काम किया है, झाड़ू पोछा लगाना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसी मातृशक्ति से आज आपको मिलवाएंगे। प्रवीणा जी नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार।
1: प्रवीणा जी कैसे हो आप?
2: बस मजे में।
1: आपके चेहरे की स्माइल देख करके बता रहे कि आप बहुत खुश हो।
2: हाँ दीदी।
1: अच्छा प्रवीणा जी, चलिए अभी वर्तमान के बारे में हम जरूर जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपका बचपन कहाँ पर बीता?
2: मेरा बचपन गुजरात में।
1: गुजरात में कहाँ पर?
2: पालनपुर।
1: ओ तो तमे गुजराती छो एम ने?
2: गुजराती छो।
1: शुभ बात छे। तो पालनपुर तो अपने आबू के पास में ही है।
2: हाँ पास में ही तो है पालनपुर।
1: अच्छा तो पालनपुर में आप कितने भाई बहन, किस तरह आपका बचपन बीता थोड़ा बताएंगे?
2: मेरे 3 भाई थे और 5 बहनें थे। हम पिताजी ऐसे दारू वारू पीते थे, शराब वराब, फिर हम भी दुख से ही भाई बड़े हुए हैं। ससुराल में आए तो ससुराल में ही ऐसा ही हमारे को देखने को मिला।
1: जी जी, ससुराल की बात जरूर करेंगे, थोड़े से बचपन की खट्टी मीठी बातें याद कर लेते हैं। कि आप बता रहे थे आप 8 भाई बहनों।
2: 8 भाई।
1: आपका नंबर कौन सा बनता है?
2: मैं तो लास्ट में हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, आप सबसे छोटे हो तो आपको सभी का प्यार मिला होगा।
2: नहीं नहीं, मेरे से छोटी और बहन थी, इससे बड़ी हूँ। 3 बहनें बड़ी थी हमारे से।
1: अच्छा तो आपका नंबर 7वें नंबर पर, 8 भाई बहनों में आपका 7वां नंबर।
2: 7वां नंबर। 3 भाई ऑफ हो गए मेरे
1: बचपन में ही।
2: नहीं बड़े होके, शादी शुदा होके, बच्चे बच्चे है इनके, अटक आ गए।
1: सॉरी, बात करेंगे आपसे इस बारे में भी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी आपने पढ़ाई कहाँ तक की?
2: मैंने नहीं पढ़ाई करी दीदी।
1: आप 8 भाई बहन में आपका 7वां नंबर बनता है, तो कहते हैं कि भाई बहनों को भी रहता है ना, खुद पढ़ाई नहीं करते लेकिन छोटे भाई बहनों के प्रति रुचि रखते हैं कि हमारे छोटी बहन छोटे भाई पढ़ाई करे।
2: हाँ, तो बहुत करा इन्होंने पढ़ाने का, पर हम खेलने कूदने में रहे। ऐसा समझ में नहीं था कि हमारे को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी।
1: कोई नॉलेज देने वाला नहीं मिला?
2: नॉलेज देने वाला नहीं मिला। और मम्मी भी बिचारी, ये भी हमारे छोटे छोटे थे, खूब दुख सुख करके इन्होंने बड़े किए, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमारी मस्ती में मस्त थे, ऐसे जब पता नहीं था कि हमारे को कभी जरूरत पड़ेगी हमारे को पढ़ने लिखने की, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाई करी। बहुत भेजा पर हमने पढ़ाई नहीं करी।
1: अच्छा तो मम्मी रुचि रखते थे पढ़ाई में?
2: हाँ ध्यान नहीं दे पा रही थी मम्मी, क्योंकि
1: 8 भाई बहन है इसलिए।
2: हाँ इसीलिए नहीं दे पा रही थी ध्यान। ये दुकान थी हमारे सब्जी की, तो मम्मी तो वहाँ पे व्यस्त रहती थी।
1: अच्छा मम्मी सब्जी बेचते थे। और पिताजी?
2: पिताजी सर्विस करते थे, पर बाकी वो शराब पीते थे।
1: सर्विस किस में करते थे?
2: ये चपरासी की।
1: स्कूल में?
2: नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल के अंदर चपरासी थे।
1: अच्छा तो आप 8 भाई बहनों ने मिलकर के आपके पिताजी को समझाया नहीं शराब के लिए कि भाई नहीं पीना चाहिए?
2: छोटे छोटे थे क्या समझावे, बड़े भी नहीं समझा पा रहे थे इनको, तो हम तो बहुत छोटे थे इनसे।
1: तो शराब पी करके घर में तो मारपीट नहीं करते थे?
2: नहीं ऐसे झगड़े टंटे होते थे, तो मम्मी बेचारी कहाँ कहाँ ध्यान देवे। ओ मजदूरी करके दुकान चला के सब्जी बेच के हमारा पेट भरने का लावे के हमारे में ध्यान देवे।
1: तो आपके पिताजी सारा पैसा शराब में उड़ा देते थे?
2: सारे पैसा उड़ा देते थे। तो फिर माँ को तो करना है कुछ ना कुछ काम।
1: तो आपकी मम्मी को कोई मदद करते थे?
2: नहीं कौन करने वाला है मदद आजकल।
1: नहीं जैसे आपके भाई बहन ऐसे बड़े भाई बहन?
2: बड़े था भाई, पर भाई भी ऐसा ही था झगड़ा हो एक नंबर का, ऐसा ही था व्यसन वाला।
1: पिताजी तो व्यसनी थे लेकिन भाई कैसे व्यसनी बने? आपके मम्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
2: भाई ने फिर थोड़े घड़ी पढ़ाई करी, फिर इसने नौकरी करी सरकारी, बड़ा साफ बन गया था ये तो। और इसने फिर कोई हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसने हम पांच बहने थी, तीन भाई थे। तो फिर शादीशुदा हो गया, तो फिर इनका अलग से करने लग गया। फिर पिताजी ऑफ हो गए, रिटायरमेंट हुए, तो फिर इनकी पेंसिल वेंसिल आती थी तो मम्मी इन सबका टेका लेके, सहारा लेके हमारे को शादी करवाई। घर गृहस्थी वैसा ही हमारी।
1: अच्छा, आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे? आपस में कभी झगड़ते थे या फिर खेल खेल में बचपन बीता?
2: बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी लाइफ जी हमने। पर पढ़ाई नहीं करी, हंसना खेलना कूदना खाना पीना बहुत अच्छे से खेल कूद करके हम बड़े हुए। कभी झगड़ा बगड़ा नहीं करा हमने कभी किसी से नहीं।
1: अच्छा, आपके मम्मी सब्जी का काम करते थे तो घर का काम कौन संभालते थे?
2: बहने थी और हमारे से बड़े, हमारी दीदिया संभालती थी सारा काम। फिर ये शादीशुदा होके गए घर पे ससुराल, फिर हम लोग ने करा। हम छोटे थे तो हमने फिर संभाला। फिर मेरी शादी करी गई तो फिर मेरी और छोटी बहन थी, फिर इसने संभाल लिया काम। तो विधवा हो गई शादी करके ससुराल जाते ही, तो इसकी पेंसिल वेंसिल मिली, पैसे वैसे इसके सर्विस करता था आदमी, तो बैंक का ऑडिटर था, तो इसके पैसे वैसे केस बेस करा हम लोगों ने। फिर पैसे थोड़े घने मिले तब मम्मी के पास में ही है।
1: अच्छा, अभी भी आपके मम्मी के पास ही रहते हैं?
2: हाँ, मम्मी के पास में ही है। फिर मेरे भाई और मेरे भाभी जो आदिपुर में रहते थे, फिर वो भी जल के मर गए, तो इसके बच्चे इसके हवाले आ गए, तीन लड़कियां एक लड़का।
1: जल के मर गए?
2: तो फिर
1: कुछ हादसा हुआ क्या?
2: हाँ, ऐसे चक्कर आए, आग लग गई थी, तो वो अंदर ही थे कमरे में, तो ये जल गए। फिर भाई भी टेंशन टेंशन में, ऐसा भाई को अटक आ गए। फिर तीन बच्चियां और एक लड़का, ये मेरी छोटी वाली बहन ने शादी करी, तीन लड़कियों की, अब भतीजे की शादी करके आई। सारा हमारे पियर में वही संभालती, भाभी नहीं संभालती, हमारी छोटी लड़की ही संभालती है।
1: अच्छा, बहुत देखो, कहते हैं कि कहाँ से कहाँ नसीब लेके जाता है। तो प्रवीणा जी, ये सब बातें हुई तब आप वही थे या आपकी भी शादी हो चुकी थी?
2: नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं ससुराल में थी, मेरे बच्चे थे, दो लड़कियां थी मेरे पास में।
1: अच्छा अच्छा, चलिए। और आपकी बहन जैसे बहुत कम एज में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी शादी नहीं करवाई?
2: नहीं, वो कहे के नहीं, मेरे को गिफ्ट दे के गए बोले भगवान। भाभी ऐसे ही बोलती थी के बोले ये बच्चे तुम्हारे को ही दे के जाऊंगा मैं, पर ऐसा मालूम नहीं था कि भाभी ऑफ हो जाएंगे, तो इसके ही हवाले आ गए सारे बच्चे। तो सबकी शादी कर ली इसने बहुत अच्छे से, जैसे माँ नहीं निभावे ऐसा इसने कार्य करा है, माँ से भी बढ़कर इसने करा है।
1: बच्चे भी रिस्पेक्ट देते?
2: हाँ, इसको ही मम्मी बोलते, मेरी बहन को ही, बुआ को ही मम्मी बोलते, माँ को और सबको। घर गृहस्थी संभाल रही है हमारे पियर में, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता।
1: वो कहते ना, त्याग उन्होंने भी किया ना,
2: इसने जीवन त्याग कर दिया। इसने शादी था, घनी शादी करने वाले तो आए इसके जीवन में, पर इसने मना कर दिया कि मेरा सुख संपत्ति यही है बच्चे। तो बच्चे बहुत इज्जत करते हैं इनकी, हमारे सारी पांचों ही फुआओं की इज्जत बच्चे बहुत करते कि नहीं हमारे मम्मी पापा यही है बोले।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि चलिए बड़े अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन छोटे भी उस बात को महसूस करते हैं, तब जाकर के मजा आता है रिलेशन में, कि रिलेशन मधुर बनते हैं। तो चलिए प्रवीणा जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, और भी अनुभव सुनेंगे, परंतु अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, वंदे मातरम कार्यक्रम अभी बाकी है, प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रवीणा जी राणा जो आबू के रहने वाले हैं, और आपके बचपन के बारे में काफी अनुभव हमने सुने हैं और भी सुनेंगे। तो प्रवीणा जी फिर से आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: अच्छा प्रवीणा जी, बचपन की बातें आपकी चल रही थी, कैसा लग रहा है बचपन की बातें सुन के?
5: बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, ये बचपन अभी भी याद आ रहा है मेरे को।
4: सही कहा, बचपन में लौट आए हैं तो बचपन लगता है कि जैसे बचपन ही बना रहे, बड़े होवे ही नहीं।
5: बड़े होके तो और जिम्मेदारियां पड़ जाती है अपने सिर पे, घर गृहस्थी की, सगे संबंधी की, सबकी।
4: जी जी, तो आप बता रहे थे कि 8 भाई बहनों, आपके मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया और आपको बड़ा किया साग भाजी बेच बेच करके। तो और भी आपके परिवार में किसी का सहयोग मिलता था या आपके मम्मी सभी कुछ करते थे?
5: नहीं, ऐसे मेरे मम्मी करते थे, थोड़ा घना देते थे पापा, थोड़े घने पैसे बचा के ऐसे थोड़े घने लेके आ जाती थी मम्मी झगड़े करके बच्चों को संभालने के लिए, थोड़ा घना मम्मी ने करा। फिर भाई ने नो सर्विस करी, कुछ भाई ने थोड़े घने पैसे दिए, ऐसे करके हमारा गुजारा। कि सब बहनों की शादियां कर दी मम्मी ने।
4: तो आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो पूरे दिन क्या करते थे?
5: ऐसे खेल कूद करना, फिर सब ससुराल चले गए शादी कर कर के, तो सारा घर गृहस्थी की, माँ के घर की, पियर की सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई थी कामकाज करने के लिए।
4: लेकिन जैसे कि पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे कढ़ाई बुनाई सिलाई गीत संगीत इनमें रुचि थी आपको?
5: नहीं दीदी, ऐसा टाइम ही नहीं मिला इतना हमारे को, काम ज्यादा था, खाना पीना बनाना करना वो सब कुछ करना था, तो फिर हमने पढ़ाई भी नहीं करी, ना कोई कढ़ाई बुनाई करी, कुछ भी नहीं करा।
4: अच्छा, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
5: 15-16 साल की थी।
4: 15-16 साल की एज में आपकी शादी करवा दी?
5: तो
4: शादी करके आप सीधे आबू आए?
5: सीधे आबू आए।
4: तो शादी के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए?
5: बहुत झेलना पड़ा मेरे को, बहुत संकट का सामना करना पड़ा, पढ़ करके रही।
4: मतलब कैसे? जैसे आपके पियर में बहुत बड़ा परिवार था, ससुराल में कितना परिवार था?
5: ससुराल में थे पर कम परिवार था, पर धंधा रोजी नहीं थी। फिर मैंने काम धंधा चालू करा, मैं बंगलो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे बर्तन ऐसे करके मेरे बच्चों को बड़े करे मैंने।
4: तो आप शादी करके अपने ससुराल में आए, उस समय सभी साथ में रहते थे परिवार वाले?
5: नहीं, जेठ जेठानी अलग रहते थे, मेरा देवर मेरा ससुर ये हमारे साथ में रहते थे, ननद बनंद वो दोनों मियाँ बीवी अलग रहते थे।
4: और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे?
5: नहीं, दुकान थी किराने की, पर कहते हैं कि एक जना कमाने वाला होते, 100 जने खाने वाले होते तो कहाँ से चले। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने फिर सप्लाई करी, माल करा, धंधा करा, अमूल्य के पे अहमदाबाद जाके पैकेट लेके आते थे, करा इन्होंने भी, पर मैंने भी डट के सामना करा।
4: तो आप जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जाते थे, कभी पियर में भी किया आपने झाड़ू पोछा?
5: नहीं, वहाँ की बहुत अच्छी जिंदगी जीती मैंने, बहुत बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने वहाँ पर।
4: जी जी, तो यहाँ पर आप झाड़ू पोछा के आपको मतलब अंदर से आपको आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, या परिवार वालों का दबाव था?
5: नहीं, मेरे को अंदर से कि मैं मेरे आदमी के साथ में कंधा मिला के चलो। ऐसे ही झोपड़ा था, घर मकान नहीं था हमारे, झोपड़ा था ससुर का दिया हुआ, फिर इनों को मैंने बनवाया, बहुत ऐसे मैंने संकट से झेला है।
4: तो आपके जैसे पियर वालों ने देखा नहीं था आपका ससुराल?
5: नहीं देखा था, इन्होंने देखा था क्योंकि मतलब गरीब लोग है, मेरी बच्ची को रखेंगे ये लोग अच्छे से, पर मैं अब पियर वालों को हम नहीं बताते थे कभी क्या मेरे को ये तकलीफें पड़ी, ये तकलीफें से सामना करना पड़ा। पियर वाले हमारे में हेल्प करते थे, मम्मी फिर मम्मी को दिखा कुछ कि बेटी मेरी तकलीफ में, तो फिर ये हेल्प करते थे थोड़ा घनी हमारे को, थोड़ी घनी कोई भी मेरी जरूरत के सामान थोड़ा घना देते थे करते थे।
4: जी जी, तो इधर आपके कितना बड़ा परिवार था, जैसे आप कह रहे थे ना ननन देर सास ससुर सभी?
5: सास नहीं थे, ससुर थे, फिर ननद थी दो, फिर मेरा आदमी ने घर वाला नहीं सारा करा।
4: अच्छा, और किराने की दुकान अकेले आपके घर वाले चलाते थे? हाँ, दुकान अच्छी चलती थी?
5: नहीं चलती थी, फिर वो लॉस में आ गए थे, दुकान बंद पड़ी गई, लॉस में आ गए, फिर ऐसे ही छूटी मजूरी करी, धंधा कर, पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है, इतने पैसे ही नहीं थे कि हम सामान डलवावे किराने के और दुकान खोले वापस, इतना कुछ था ही नहीं। बच्चे थे छोटे छोटे थे, मैं भी काम पे जाती थी, वो भी इनके काम करते थे, जैसे तैसे करके थोड़ी घनी बचत करके फिर ये मकान करवाया बनाया मैंने।
4: जी जी, तो जैसे आप फर्स्ट बार झाड़ू पोछा करने, तो शादी के कितने समय बाद आपने ये काम चालू किया?
5: मैंने 5-6 साल बाद।
4: अच्छा, 5-6 साल के बाद आपने ये झाड़ू पोछे का काम चालू किया, तो 5-6 साल आपने क्या किया घर के कामकाज?
5: छोटे बच्चे थे और घर का ही काम करके बैठी रहती थी।
4: और कहते हैं ना कि जैसे घर में कमाई नहीं आती है तो अक्सर तू में होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो घर में चाहिए होता है रोजी। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता था, आपके हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा?
5: हाँ, होता था, बहुत होता था, कोई सगे वाले आते थे करते थे, मैं बहुत तकलीफें सहन करती थी, फिर किसी को कुछ अच्छा से इनकी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं गुस्से होती थी, झगड़े करती थी कि भाई तुम ऐसा ला के नहीं देते। फिर मैंने किसी ने आप जैसे किसी ने मेरे को बताया कि ये बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बोले काम धंधा पकड़ लो, बोले फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर एक घर लिए दो घर लिए, ऐसे करके मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता ही गया, करती होंगी 4-5 हजार का काम, 10-12 घरों में काम करती थी तो 4-5 हजार रुपये आते थे।
4: कितने रुपये से आपने शुरुआत की, फर्स्ट काम आपने क्या किया और कितने रुपये लिए मंथली?
5: 250 रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े करे मैंने।
4: ये कितने साल पहले की बात होगी?
5: ये होगी दीदी ज्यादा टाइम के,
4: तो 250 रुपये में सारे ही काम।
5: फिर 550 रुपये ऊपर नीचे के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सारे करती थी मैं, 550।
4: घर का सारा काम करना, उसके बाद बाहर का करने जाना?
5: फिर बाहर का करने जाती, बच्चों को रात को तैयार करके सोती करती, 1:30-2 बजे तक तो मैं रात का घर का काम करती थी मैं, वो काम करके बच्चों को सुला के, फिर बच्चों को ब्रश करवा के चाय पिला के, फिर बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मैं काम पे जाती, तो शाम को 4:30-5 बजे घर पे आती, तो बच्चे मेरे घर में ही खेलते रहते बंद करके, मैं काम करके आती।
4: जी, और परिवार में आपके अन्य सदस्य भी थे ना, ननंद दियर, फिर इनको कौन?
5: हाँ, तो शादी होगी थी दीदी, पर वो आते जाते रहते थे, इसके आदमी तकलीफे देते थे तो भाई के ही घर पे आवे ना, कहने का जा रहे, माँ बाप तो थे नहीं, तो भाई भाभी हम समझदार थे तो हमारे को ही रखना पड़ता था सबको, जेठ जेठानी ने कभी नहीं रखा इनको, मैं अभी भी मैं ही संभालती हूँ इनको, कोई भी तकलीफ आती करती तो मैं ही जाती हूँ, मैं ही संभालती हूँ दोनों बहनों को।
4: बहुत अच्छी बात है प्रवीणा जी, कहते हैं कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, और आज आपकी काफी स्थिति चेंज हो चुकी है, इस पर भी जरूर हम गौर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं गीत, तो आइए और भी सुनेंगे आपके अनुभव, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth. And after many, many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है। और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बिन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है और वो है, जब मैं कहूंगा वन तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए। ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे। राइट। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना। जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके। यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और प्रवीणा जी राणा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, जैसे आपने अपने जीवन के काफी अनुभव सुनाए हैं, आपने बताया कि आप पालनपुर से शादी करके यहाँ आए, तो देखिए गुजरात के कल्चर और राजस्थान के कल्चर में काफी भिन्नता है, तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा या एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा?
3: समय लगा था दीदी, मेरे को बहुत समय लगा था। ये हिंदी बोलना नहीं आता था और राजस्थान बोली नहीं आती थी मेरे को। अब मैं सारों में सेट हो गई हूँ।
2: जी जी, अब तो इतने साल हो गए जो
3: मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती में बातें करती थी। ये हिंदी क्या बोलते है क्या समझ में नहीं आ रही था मेरे को कि कैसे बोलते है हिंदी ये लोग, अब सब समझ गई हूँ।
2: वो कहते हैं कि एक पत्थर को भी पीट पीट करके मूर्ति बना देते हैं, उसको भी ठोक बजा गए तो इंसान तो फिर एक्टिव हो ही जाता है। लेकिन जब आप पहली बार इधर आए तो मतलब आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि हमारी बच्ची गुजराती, मतलब हम गुजरात के रहने वाले राजस्थान में देंगे तो ये कैसे उस कल्चर को अपनाएगी, क्या करेगी, क्योंकि भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो कौन क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आता।
3: नहीं, मेरे पियर वालों ने ऐसा ही सोचा था कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, अच्छे घर में जा रही मेरी बच्ची, तो बोले धीरे धीरे सीख। फिर पिताजी शराब बरब पीते थे करते थे, तो फिर मम्मी कहे कि मेरी इज्जत रह जावे, आजकल टाइम खराब है, बोले बच्चिया, बोले मेरे पांच लड़कियां है, इसे करके मम्मी ने फिर जाता दे दी थी बेटियों को, देखा नहीं के बोले हमारी कास्ट में ही दी सब जगह पांचों बहनों के।
2: जी जी हाँ, सब यही सोचते ना, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि वहाँ चलो अपने आप जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचा होगा।
3: तो हम अच्छे से ही रह रहे हैं, पर तकलीफें तो घनी हैं।
2: जी जी, पर जैसे आप इधर आए है ना, तो फिर आप कैसे समझते थे, आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको राजस्थानी नहीं आती थी, तो कोई कुछ कहता तो आप कैसे समझ पाते थे?
3: समझ आती थी, थोड़ी घनी आती थी, मैं ज्यादा जवाब नहीं देती थी इन लोगों को, ऐसे ही घूंघट में रहना करना, मान सम्मान से रहना, ही राजस्थान में बहुत मैंने देखा है यहाँ पर।
2: तो उस समय आपके हस्बैंड साथ देते थे आपका?
3: बिल्कुल साथ देते थे मेरे को।
2: तो कोई चीज अगर समझानी हो तो आपके हस्बैंड समझाते थे कि इसको ये बोलते? गुजराती आती थी उनको?
3: नहीं, वो थोड़ी घनी समझ में आती थी इनको, दुकान थी वहाँ पे, कोई गुजराती रहते थे थोड़े घने, तो उनकी लैंग्वेज इनको समझ में आती थी, फिर वो मेरी भी लैंग्वेज समझ देते कि मेरे घर वाली वो कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी समझी, मेरे को समझे, मैं इनको समझी।
2: चलिए, आपके पारिवारिक तंगी थी, पैसों की तंगी थी, बाकी घर में शांति थी?
3: पैसों की तंगी थी पर घर में शांति थी। फिर मेरे हस्बैंड के साथ में मैंने भी काम धंधा खूब करा।
2: तो जैसे आपने झाड़ू पोछा करने की सोची तो आपके हस्बैंड ने मना तो किया होगा कि नहीं करना है?
3: हाँ, मना करते थे, पर कहते हैं कि एक बार इंसान को पैसे हाथ में आ जाते तो फिर इंसान को लालच सी पड़ जाती। मैं मेरे काम काज में इतनी मस्त थी कि किसी के सामने ध्यान नहीं देती थी, खाली मेरे बच्चों के अलावा, कि भाई मेरे बच्चे पढ़ लिखे करे, इसके अंदर ही ध्यान देती थी, ज्यादा नहीं।
2: तो आप अपने बच्चों को छोड़ करके फिर इस तरह आपने शुरुआत की, तो आपके ससुर जी ने मना नहीं किया कि ये काम नहीं करना है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
3: हाँ, ऑब्जेक्शन तो उठाए थे इन्होंने के बोले नहीं करना ऐसा काम, बंगलों का काम तो इसमें क्या हो गया, कोई चोरी चिनाली तो कोई खराब धंधे तो करने जाते नहीं, करते अच्छे लोगों के मुंह ही लगते, अच्छे घर में जाते हैं, अच्छे संस्कार पाते अपन, अच्छों के मुंह लगते, तो इसीलिए फिर हमने मैंने काम धंधा जारी रखा।
2: नहीं, कहते हैं ना कि भाई चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन काम करना पाप नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, काम काम ही होता है।
3: काम काम ही होता है दीदी, इसीलिए मैंने काम को खूब अहमियत दी।
2: जी जी, मेहनत की आपने और मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। तो आप मतलब पूरे दिन आप बाहर का काम करते थे, घर का भी काम करना, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर आप रेस्ट कब करते थे?
3: 2-3 बज जाते थे सोते करते। सुबह फटाफट 7 बजे तो उठ जाना पड़ता था मेरे को, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता करवा के फिर स्कूल भेज के फिर 9 बजे मैं थोड़ा घर का काम करके फिर 9 बजे काम पे जाती।
2: सुबह 9 बजे?
3: सुबह 9 बजे तक तो मैं फ्री हो जाती थी घर का करके, तो 15-16 घर के काम करती थी।
2: बहुत काम करते थे। तो कहते हैं कि भाई काम करने जाते हैं तो कोई किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है या फिर भोजन बनाया बच गया वो भी हेल्प मिल जाती है, बच्चों के कपड़ों की भी हेल्प मिल जाती है, तो आपने इस तरह की हेल्प ली कभी?
3: नहीं दीदी, मैंने पैसों की अहमियत दी, मैंने ऐसी हेल्प में कभी लेती ही नहीं थी। मैंने मेरे घर की मिर्ची रोटी खिलाई होगी, पर मेरे घर की खिलाई है मेरे बच्चों को।
2: खुददारी से जीवन जिया,
3: दूसरे कोई देते बेचारे बापड़े करके मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने सामना करा, काम धंधा करा, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, भले थोड़ा लाके खाते थे पर अच्छा खाते थे।
2: जी जी बिल्कुल, कहते ना ये भी अपना अपना स्वाभिमान होता है। काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान में रहना ये एक विशेषता है।
3: बस यही मेरा बड़पन है कि मैं मेरे ही स्वाभिमान में रही हूँ।
2: जी जी, तो आपके जैसे बेटियाँ भी है, तो आप अपने बेटियों से क्या अपेक्षाएं रखती है, मतलब किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जैसे आपके तो पेरेंट्स में मतलब पिताजी तो शराब पीते थे, माँ बेचारे सब्जी का काम, इतने भाई बहनों की पालना करना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी बेटियाँ पढ़ रही है?
3: नहीं, मेरी 2 बेटियाँ ससुराल है और एक छोटी वाली ये मेरे पास है।
2: तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? आपने तो पढ़ाई नहीं की, पर आपके बच्चों को तो पढ़ाया, बेटियों को?
3: हाँ, 7th क्लास पढ़ी, फिर वो तकलीफें घर के अंदर, वो मकान बना दिया, फिर तकलीफें बहुत आई हमारे को, फिर बच्चियों ने दोनों बहनों ने स्कूलें छोड़ दी। फिर
2: घर के अंदर मकान बना दिया बोले तो?
3: नहीं, झोपड़ा था, मैंने मकान बनाया, थोड़ा कर्जा हो गया था, फिर बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर घर में तकलीफ देख रहे थे, तो फिर इन्होंने बिचारी ने काम करा दोनों बहनों ने।
2: देखिए पढ़ाई का तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे नियम है कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाई कराती है, तो बेटियों के तो शुरू से मेरे ख्याल से सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है।
3: नहीं, सरकारी स्कूल थी पर दीदी फिर पूरा नहीं जाता था घर में, सरकार इतना तो नहीं देती थी हमारे को कि हमारा पेट भरे, इसीलिए फिर बच्चियों ने फिर मम्मी के तुम्हारे साथ में लगूंगी काम धंधे पे, फिर ये हमारे साथ में हम तीनों माँ बेटियां काम करते।
2: अच्छा, बेटियां भी हेल्प कराने आते थे आपके?
3: छोटी थी तो ये मेरे हेल्प करवाने आते, फिर दिखने जैसी हुई, फिर सगाई करी, शादी करी, इनका घर गृहस्थी ये संभाल रही है। छोटी वाली थी, इसने 8वीं पास करी, इसने छोटी वाली ने, वो भी फिर बहने शादी करके गई, तो फिर इन्हों को भी ऐसा लगा के भाई मम्मी अकेले बेचारे करते थे, इसने स्कूल छोड़ दी, फिर तो फिर घर पे बैठ के एग्जाम दे रही थी, फिर वो दे ही नहीं पाई बापड़ी, काम धंधे के आगे पढ़ाई नहीं कर सकी।
2: अच्छा, तो अभी छोटी वाली बेटी भी मतलब पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और आपके साथ हेल्प करते?
3: हेल्प करती मेरे साथ।
2: तो अभी आप क्या करते हो काम?
3: अब बेटा कमाता है, थोड़ा घना चलता रहता है जैसे तैसे। बेटी अभी जाती थी काम पे, फिर इसने छोड़ दिया, छोरी कपड़ों की दुकान पे जाती, इसने छोड़ दिया अभी।
2: अच्छा, कपड़े की दुकान पर जॉब करते?
3: जॉब करती थी तो उसने छोड़ दिया, तो अभी ये अभी करने सोच रहे हैं भाई कहाँ कहीं अच्छा मिल जावे तो वापस लग जाऊं।
2: जी जी बिल्कुल। तो प्रवीणा जी, और भी आपसे हम आपके अनुभव सुनेंगे, परंतु समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं वंदे मातरम कार्यक्रम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। प्रवीणा जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीणा जी, अपने जीवन के उतार चढ़ाव सारी बातें आपने बताई है कि किस तरह आपने स्ट्रगल किया है, बच्चों को बड़ा किया है। बच्चे बड़े होने के बाद आपको काम करने देते थे या फिर आपने काम छोड़ दिया?
1: नहीं, बच्चों ने मना करा कि मम्मी आपने बहुत संकट करा है, बोले अपनी अब मम्मी हम जाएंगे तुम खाओगे बैठ के, घर को संभालो। काम धंधे करने में कोई खराब नहीं है।
0: काम तो आपके हस्बैंड के बिजनेस सेट हुआ या नहीं हुआ?
1: नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही धंधा करता है, यही खुली मजदूरी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं, बाकी मैं जरूरी नहीं समझती। अभी बच्चे संभाल रहे तो मैं इनके पास ये इनका छोकर थे, इसीलिए मैंने काम धंधा बहुत करा, पर इज्जत की रोटी खाई है मैंने। मैंने शान से जी, उन शान से ही वही रहना है मेरे को। इसीलिए मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बोले नहीं काम धंधा, बोले मम्मी आपने खूब करा, अब मत काम करो।
0: जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि काम करने की शर्म नहीं है लेकिन इज्जत से रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे घरों में जाते थे काम करने के लिए, कभी आपके काम से किसी ने नाराजगी जताई?
1: नहीं, सब खुश थे, मेरे को देख के बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे हंसमुख आ गई। मैंने कभी ऐसा दुख कभी मन पे ही नहीं लाई कि मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं इतनी दुखी चल रही हूँ, सबके सामने हंस के सामने आई हूँ। तो सब काम वाले, सब बंगलों वाले, सब सेठानियां खुशी थी मेरे को, प्रवीणा प्रवीणा करके करती। ऐसे नहीं कि मैंने इज्जत की रोटी खाई है, वहां पे भी पूरा घर बार मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे, कभी वहां से वहां नहीं हुई चीजें इनकी।
0: कहते खुश रहना सबसे बड़ा गुण है और हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि सारे दुखों को अंदर दबा करके हमेशा चेहरे पर स्माइल रखी है और यही होना चाहिए सही मायने में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटियों को सातवीं तक पढ़ाया और सबसे छोटी वाली को आठवीं तक पढ़ाया है ना, और बेटे को?
1: बेटा वो भी नौवीं तक पढ़ा है और एक बेटा अभी छोटा वाला है, नौवीं में आया है। तो बस इसका एडमिशन कहाँ करावे, कैसे करे, अभी सोच रहे इसकी फीस वीस जमा करनी है और सोच रहे वहां तक हाथ पैर मारेंगे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा बंदोबस्त, फिर काम धंधा करके इनको तृप्त कर देंगे।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आज आपको अफसोस होता है आपने पढ़ाई नहीं की जो?
1: बहुत अफसोस होता है, बहुत, कि खेल कूद में हम लगे रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने तो बापड़ी ने रिश्वत खिला के भी हमारे को पढ़ाने को भेजा, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पढ़ाई के ऊपर, कि पढ़ाई क्या चीज है, खेल कूद करने में खूब ध्यान दिया हमने।
0: इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बेटियां तो अब आपने छुड़वा दी, बाकी सबसे छोटी बेटी उसको तो आप पढ़ा सकते हो।
1: हाँ दीदी, तो दे रही है, अभी कह रही कि मम्मी देखती हूँ मैं एग्जाम दूंगी घर बैठ के। तो ऐसा थोड़ा घर में सही चल रहा है तो बोले मम्मी मैं करती हूँ, बोले एग्जाम दूंगी, लड़की कह रही है।
0: जी जी, और अभी आप वर्तमान में अपने घर के मकान में हो?
1: हाँ, अभी तो मेरे घर के मकान में ही हूँ मैं, मेरे घर के मकान में ही हूँ, मेरे बच्चों के साथ में हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत खुश हूँ।
0: बच्चे आपका कहना मानते?
1: बिल्कुल मेरा कहना मानते हैं, मेरे बच्चों के अंदर मेरी सारी खुशी मेरे बच्चों में ही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के अंदर बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इज्जत दे देवे, एक रोटी देवे दो टाइम इज्जत की, बस वही मेरे लिए काफी है।
0: जी जी, तो प्रवीणा जी आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, आपको इससे क्या सीखने को मिला?
1: मैंने हर चीज को हंस के सामना करा, डट के कर रहा सामने, कभी हार नहीं खाई मैंने, अभी तक की भी टक्कर ले रही हूँ उससे ही, पर कभी दुख ऐसे नहीं समझा कि मेरे को तकलीफ हुई हो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा।
0: तो हमारी जो बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस वही कि डट के सामना करो किसी भी चीज का, ऐसे नहीं समझने का कि छोटा बड़ा, काम काज ही है, इसको छोटा बड़ा मत समझा करो, ऐसे डट के सामना करो, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा, मालिक चाहेगा तो।
0: जी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, बस उसमें आप कहते हैं कि लगन से काम करते रहो और हमेशा खुद को खुश रखो, ये सबसे बड़ा गुण है जैसा कि प्रवीणा जी के अंदर है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन आज भी इनके चेहरे पर हम भी देख रहे हैं अभी जो इतना अनुभव इनका सुना है कि लगातार इनके चेहरे पर स्माइल ही रही, कहीं शिकन की बात ही नहीं। तो सचमुच जीवन में तो उतार चढ़ाव सभी के आता है, लेकिन स्वयं को दूसरों के सामने मुस्कुराहट के साथ पेश करना ये सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और इस तरह आप अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। स्वयं में जिस गाँव और जिस अंचल में पले बड़े वो गाँव और अंचल कभी नहीं भूल पाते हैं। कहीं भी रहे तो अपना गाँव याद आता है, क्योंकि गांव को स्वर्ग कहते हैं। बोले कुछ भी रुखा सुखा हो फिर भी अपना गांव अपना लगता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम हर जगह जाते हर वर्ग से मिलते तो हमें खुशी मिलता है, क्योंकि सरकार का जो मंच है आसपास का गतिविधि सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन मिला हुआ है। तो इस अंचल का गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और सभी वर्ग से रूबरू कराते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि समुदाय तक पहुँचे ये हमारा मंशा है। और हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड में हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, और पर्यावरण में फास्ट सब्जेक्ट है, विशाल विषय है, जितना भी ले कम ही होगा और हम उसी में रहते हैं और उससे हम लाभ लेते हैं। कभी कभी खेती कर देते हैं जिसका चलता हमें खेती सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे देंगे उस तरह हमें मिलता है। तो हमारा ऊपर निर्भर करता है हमारा प्रकृति। तो प्रकृति का बात करते हुए, एनवायरमेंट का बात करते हुए, आज हमारा साथ हर एपिसोड की तरफ आज भी श्रीमान भोपाल राम पुरे जी उपस्थित है, जो कि पर्यावरण के ऊपर में बहुत कुछ जाना है और रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी करते रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और कराते रहते हैं। तो उनको स्वागत करते, श्रीमान जी आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो आप अपना परिचय इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए, ऐसे तो हर एपिसोड में आपका इंट्रोडक्शन हमारा इंट्रोडक्शन चलता ही है, फिर भी आज का कार्यक्रम को लेकर जब आए तो आज का विषय क्या रहेगा और क्या फायदा होगा?
1: सर नमस्कार। सर आपके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसमें किस प्रकार से हमारे वातावरण में चेंजेज हो रहे हैं, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े एरिया से संबंध रखता है। और जहाँ जलवायु का मतलब है वह है, सामान्य तौर पर हम सभी समझें तो 100 वर्षों के मौसम का, वार्षिक मौसम का जो औसत है सामान्य तौर पर 100 वर्षों तक का, उसको हम जलवायु कह सकते हैं। क्योंकि जो मौसमी परिवर्तन है, जैसे ऋतु चक्र, ऋतु में परिवर्तन है, सर्दी गर्मी बरसात, एक वर्ष का, ये एक वर्ष का हुआ, इस तरह से लगभग 100 वर्ष की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हम जलवायु कह करके, उसमें जो चेंज हो रहे हैं ड्रास्टिक, उसको हम जलवायु परिवर्तन से जानते हैं।
0: शुरू से अभी तक,
1: हाँ, लगभग 100 वर्षों तक का औसत जी, वो जलवायु परिवर्तन के अंदर आता है। बाकी जो दैनिक रूप से होता है वो तो मौसमी परिवर्तन है, दैनिक परिवर्तन है, वार्षिक परिवर्तन है, वो नहीं। 100 वर्षों तक की सामान्य स्थिति जो मौसम की रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं, और उसमें जो चेंज होता है वो जलवायु परिवर्तन है। और वो धीरे धीरे, जैसे 100 वर्ष का है तो वो धीरे धीरे किस तरह से जो वातावरण की जो अवस्था है, जिसमें तापमान है, वर्षा का मात्रा है, इन सब में लेकर के जो प्रकृति पर असर होता है वो जलवायु परिवर्तन है।
0: बहुत अच्छा बात बताया, जलवायु मतलब हम ऐसे सोचे थे, लेकिन
1: सर यही बात सर समझाना चाह रहे हैं आपके साथ में। हमने कक्षाओं तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर दिक्कत एक दूसरी आई कि उन बच्चों में वो समझ लाने का जो प्रयास हो रहा है, सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो चीज उन बच्चों तक जा पा रही है नहीं जा पा रही है, वो आपके साथ रह करके हमने देखा। अब जब कक्षा कक्ष में हम जाते हैं तो उनके समझ के लेवल को पता करना चाहते हैं, वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो फिर हम उस पर ज्यादा बातचीत कर ही नहीं पाते,
0: ठीक है,
1: वो अपने को रुकना पड़ता है।
0: वो भी परिवर्तन हो चुके हैं,
1: वो भी परिवर्तन हो गया है। तो बच्चे बहुत अच्छे रिसेप्टर होते थे।
0: आपका एज कितना है?
1: सर मेरा है 63।
0: और 63 में जब आप 11 क्लास में पढ़ रहे थे,
1: जी जी, सर उस समय बहुत उत्साह
0: परिवर्तन स्टूडेंट का, जो उस समय का स्थिति आप कैसे था और आज का स्टूडेंट का हम देख रहे
1: हैं। जी बिल्कुल, कक्षा कक्ष में आपकी अपेक्षाओं के साथ में मैंने भी आपसे निवेदन किया, आपने भी मुझे सहयोग किया, हम कक्षा कक्ष में गए, विभिन्न परिवेश की कक्षाओं में गए,
0: पर वो भी परिवर्तन हो चुका,
1: वो भी
0: हम जैसे थे उस तरह बच्चे नहीं,
1: हमने ये मैंने ये सोचा था उसमें सर कि हम वहाँ जा करके वो बच्चे कुछ बोलेंगे तो हम वो करके बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में 3 दिन का आपका हमारा ऐसा अनुभव रहा, ये मतलब रूबरू अनुभव, कि जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर उनको अपन क्या कुछ कहते रहे वो उनके ऊपर से निकलेगा,
0: तो फिर परिवर्तन
1: वो सर बड़ा ही सर उनके रिसेप्टर्स बहुत अच्छे।
0: 5 साल का पहले का जो
2: और जल व्यवहार आज का अंतर होगा ना
1: जी सर बिल्कुल
2: सोचो वो दिन और आज दिन हम चाहते हम जैसे थे कि बच्चे वैसे रहे हो नहीं पाएगा
1: सर वास्तव में बच्चे या तो बहुआयामी हो गए हैं क्योंकि ब्रेन तो वही है तो या तो उनका ध्यान भटक रहा है या उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए हो सकता है वो इसको कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाए ये मेरे लिए आज का भी आश्चर्य था तो जब बच्चा समझे नहीं तो हम फिर उनको समझाने का ज्यादा प्रयास करें इसका भी कोई अर्थ नहीं कोई अर्थ नहीं पर प्रैक्टिकली ये एक तरह से रिसर्च हो गया कि बच्चों में अगर कोई बात ले जा रही है सर तो आपने ही मेरे से बात की थी कि सारा नॉलेज है उन पर वो ले तब तक तो देना ठीक है जब वो ले ही नहीं पा रहे हैं फिर
2: देने से कोई फायदा नहीं
1: तो कई बार अपन कहते हैं ना
2: बीज में जाकर पहाड़ी में
1: ऐसे ही लगा देंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना
2: बीज का भल्लू
1: तो इसलिए ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ तो सर पहले सर वो जो समय था उसमें नदियों में पानी बहता था हम नदियों में नहाने जाया करते थे हम पैदल चला करते थे सर मैं स्वयं रोज 13 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ करके वापस आता था घर पे रोज की 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा में पढ़ाई होती थी सामान्य तौर पे सभी की जो बच्चा 11वीं में आ गया 12वीं में आ गया महाविद्यालय लेवल तक जाने के उनको पैदल जाना पड़ा हमको 10-12 किलोमीटर साइकिल से भी जाना तो सर वो जो उसमें बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी वो भी अच्छी थी लगन भी बहुत अच्छी थी तो मुझे लगता है मैं ऐसा ही ये भी एक परिवर्तन है बच्चा चलना नहीं चाहता सर जब हम कहते हैं उसको 2 किलोमीटर चलना तो वो पैदल चलना नहीं चाहेगा आज की तारीख में तो ये थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला तो जो आप बता रहे थे कि उसमें कैसे किए थे उसमें सर एक संभावना जो निकली आज मैंने सोचा कि जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं वही बच्चे लेकर के उन्हीं के साथ काम किया जाए आम बच्चों को साथ में रखेंगे सर तो वो परिणाम नहीं आएगा जो लाना है लेकिन जैसे उस स्कूल विशेष में बड़ी कक्षा के वो बच्चे जो 6-12 के होने चाहिए सामान्य तौर पर वैसे सभी बच्चे होंगे उसमें कम से कम 4-5 बच्चे रुचि जो लेने वाले उन्हीं को ये बात बताई जाए
2: और ये चीज जो शिक्षक है ना उनको बलिवंत जानना
1: उन्हीं को बताना है
2: टैलेंट है बच्चे हर साल लगाव है पढ़ रहा थे जानते
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बोलने में
1: एक्सपर्ट होना चाहिए
2: तो वो बच्चे सिलेक्ट करके
1: तो वो सर वही बच्चे उनके स्कूल में फिर जब जब आगे आएंगे ना वो उन बच्चों को प्रेरित करते रहे तो ये सर इसका एक नया मॉडल हो सकता है कि 5-7 स्कूलों से उन बच्चों को इकट्ठा किया जाए जो भी 2-2 5-5 और 5-7
2: उसका तो डिबेट भी रख सकते हैं
1: डिबेट रख सकते बिल्कुल सर तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा करके और उनको जब अपन थोड़ा संबोधन देंगे ना तो निश्चित रूप से वो बच्चे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे इसका ये मॉडल हो सकता है क्योंकि जो नहीं चाह रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा तो ये उसमें थोड़ा सा एक अपन इसको एज चैलेंज इसको लेते हैं तो वो कर सकते हैं तो सर जो ये जलवायु परिवर्तन है
2: जी
1: ये बच्चे के या व्यक्ति के या उस पर्यावरण के क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है तो यहाँ पर अब उस जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने में एक सर बहुत बड़ा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड
2: ओके
1: और वो हरित गृह प्रभाव का कारण है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक शब्द इसमें बहुत ज्यादा काम में आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो ये है कि जो ऊपर से वायुमंडल में जो अधिक मात्रा में CO2 है ग्रीन हाउस अपने कार्बन डाइऑक्साइड है सूर्य से आने वाली कम दैर्ध्य की तरंगों को तो वायुमंडल में प्रवेश करने देती है लो डेंसिटी कम तरंग दैर्ध्य वाली लेकिन जब पृथ्वी पर जाकर के वो हाई डेंसिटी में बदल जाती है उसकी तरंग दैर्ध्य हाई हो जाती है उसको वो रोकती है
2: कार्बन डाइऑक्साइड
1: जी हाँ तो कम दैर्ध्य वाली तो नीचे आने देगी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है और हाई वो जब पृथ्वी पर जाती है उसके बाद वो हाई हो जाती है और उसके बाद में जब वो ऊपर उठती है तब उसको वो रोकती है और इससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उस आवरण से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो जब रोकती है तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है मतलब वो कितना आने देती है और फिर कितना नहीं जाने देती फिर वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है और इसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट
2: नुकसान कर
1: हाँ सर नहीं सर ये नुकसान तो करता है लेकिन एक सीमा के बाद बहुत बड़ा नुकसान करता है भाई जैसे उसका लेवल जैसे अभी जो आदर्श स्थितियां हैं जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल रहा है तो वो सामान्य तौर पे अच्छा हो सकता है लेकिन उससे जो अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो विकिरण बाहर नहीं जाएगा और उनको वो अवशोषित कर लेगा और इससे जो तापमान बढ़ेगा वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है वहां तक तो ठीक है क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब उससे अधिक बढ़ जाएगा या उसका प्रभाव कम हो जाएगा वो जो कैसे ज्यादा हो जाएगी तब उसका या तो उसका आवरण कमजोर हो जाएगा जब वो अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब टेम्परेचर बढ़ेंगे वो अतिशय टेम्परेचर बढ़ेंगे वो व्यक्ति को हर तरफ से जीवों को, प्रकृति को, सभी को सब तरह से प्रभावित करेगी, दुष्प्रभावित करेगी, और वो उसके शरीर पर या अन्य अन्य तरीके से हर एक जीव को वहां पर प्रभावित करेगी। जैसे इसमें अपन ये ले सकते हैं, जैसे कुछ पक्षी मर जाते हैं, विलुप्त हो रहे हैं, प्रकृति भी विलुप्त हो रही है, वन औषधियां हैं, बेले हैं, वो विलुप्त हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बरसात कम हो रही है या अधिक हो रही है। तो मतलब जो सस्टेन करना चाहिए उस वातावरण में, जिस औषधि को, जिस पेड़ पौधे को, जिस जीव जंतु को, जिस अच्छे जीव को, जिस हानिकारक जीव को बैलेंस के साथ में जो डेवलप करते हैं, वो सब इम्बेलेंस हो जाएंगे, और उनके इम्बेलेंस होने से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा, जो हमारे विकास को दुष्प्रभावित करेगा। तो सर, ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसमें कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस में जो प्राकृतिक कारण है वो सर जल वाष्प है।
2: जल वाष्प
1: जी
2: ऊपर जाता है,
1: एवोपरेशन, कितना टेम्परेचर है वो इन सबको मिला के कितना बढ़ गया, तो एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है,
2: नीचे तो खाली हो गया पानी,
1: नीचे खाली हो गया, फिर वो जहाँ अच्छा होगा वहाँ जाके बरसेगा।
2: कहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
1: मतलब जहाँ पर हरित ग्रह है, जहाँ पर बैलेंसिंग प्रकृति है,
2: वहाँ पर
1: जहाँ वो वहाँ पर बादल आकर्षित होते हैं, वहाँ बरसात कर जाते। जैसे अपने सर आबू पर्वत क्षेत्र है ना, ग्रामीण अंचल में बरसात कम होती है, लेकिन आबू पर्वत के उस एरिया में आप चले जाओ, पहाड़ी एरिया, वहाँ बरसात
2: बादल बादल पूरा नजदीक दिखाई दे रहा।
1: क्यों सर, क्यों?
2: यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा,
1: और बरसात भी रोज होती है, रोज होती है, थोड़ी थोड़ी रोज होती है, तो वो प्रकृति भी हरी भरी रहती है, पहाड़ भी वहाँ पर है,
2: बैलेंस
1: तो वहाँ बैलेंस
2: इम्बेलेंस
1: इम्बेलेंस है, इसलिए इम्बेलेंस है तो कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कम हो जाती है, कभी नहीं होती, तो फिर वो वाटर टेबल को प्रभावित करती है। इसका सारा प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब जैसे सर जलवाष्प के बाद में अगर अपन ले तो इसमें आता है मीथेन गैस, CH4। CO2 की बात तो अपन ने कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड की, अब CH4 है, फिर ओजोन है, ये भी इसी तरह से इनकी जो परसेंटेज है वो कम या ज्यादा होने पर उससे संबंधित जितने भी जीव हैं छोटे बड़े वो सारे के सारे उसमें या तो जीते हैं या फिर वो मर जाते हैं। तो वो संबंधित जो प्रभाव है उसको वैसा ही छोड़ते हैं ताकि उसका जो बैलेंसिंग है वो उसमें से खत्म हो जाती है, तो वैसा प्रभाव वो छोड़ेंगे। तो ये तो सार सब हो गए प्राकृतिक कारण, जिसमें ओजोन भी एक है। सर इसमें ऐसा माना गया है कि अपनी जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो गया है सर, अंटार्कटिका के एरिया में वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है। वो जो छेद हो गया मतलब वो अपनी छाता की तरह से काम करता है, जो हानिकारक किरणें आती है ना सूर्य की, उनके लिए वो एक छाता की तरह हमारा काम करता है।
2: कहने मतलब हम घर में छत बना दिया,
1: हाँ,
2: लीकेज होता है,
1: छेद हो गया,
2: दिक्कत
1: उसमें छेद हो गया,
2: तो हमें बहुत दिक्कत होता है बारिश के टाइम में।
1: तो सर ये
2: डर रहता है, तो इस तरह ओजोन लेयर का जो आपने बात की छेद हो गया, तो ये भी पूरा हमारा प्रोटेक्ट था
1: जी, हाँ
2: प्रोटेक्ट आउट नहीं रहेगा,
1: वो प्रोटेक्शन वाली छाता वो हमारी छिन्न भिन्न हो गई है,
2: जो भी डैमेज तरफ जा रहा है,
1: डैमेज हो गई है।
2: तो क्या होगा अस्तित्व
1: सर, उसका इतना खतरनाक असर होगा सर कि उससे नीचे जितना भी ग्लेशियर्स वगैरह है ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स वो सर पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा सर,
2: पूरा बाढ़ आएगा,
1: अतिवृष्टि होगी,
2: बाढ़ भी आएगा सब कुछ,
1: और सर वो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो समुद्री किनारे जितने शहर है ना वो सब डूबने के कगार पर है।
2: फिर भी तो मकान बनाते जा रहे हैं,
1: बनाइए तो फिर कहाँ दिक्कत, नदी के बीच में बनाइए तो फिर आप बहे भी जाएंगे,
2: समुद्र का बीच में भी मकान
1: सर, इसलिए तो अपने कई बार सुनते हैं
2: बैलेंस नहीं हो पा,
1: कई बार सर अपन सुनते हैं कि साहब अतिवृष्टि होती है, बादल फट जाता है, अभी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, ये सर क्लाइमेटिक चेंज है सर। जब नदी के किनारे जब लोगों ने मकान बना लिए, जो नाला था उसकी जगह पर मकान बना लिए, फिर कहते हैं कि साहब बाढ़ आ गई ना, लोग डूब रहे हैं, व्यवस्था करो, फिर क्या व्यवस्था होगी, व्यवस्था
2: सरकार तो उसको दे देता है,
1: रास्ते में ही तुमने बना दिया, सरकार ने पट्टे काट दिए, रास्ते में बना दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना,
2: आपने जगह में जो रहना चाहिए हम उस जगह में,
1: बस उस जगह पर हम गलत काम कर रहे हैं, तो फिर प्रकृति छोड़ेगी क्या, उन्होंने छोड़ा हुआ, उनके जाने का रास्ता चाहिए, पानी के जाने के रास्ते में आपने मकान बना दिया तो फिर वो तो मकान में ही घुसेगा, फिर हम सरकार को दोष देते हैं।
2: मकान क्यों बना रहे इतना सर, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा था, उनको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना,
1: तो सर
2: कहाँ लाएंगे
1: सर, जगह तो है ना सर, जगह व्यवस्थित जगह पर आप रहिए ना, जगह व्यवस्थित पर रहना चाहिए,
2: हम जो चाहते हैं उस तरह होना चाहिए ना,
1: ये बात वो प्रकृति का सब फिर वो तो वही अतिक्रमण हो गया ना।
2: नहीं
1: सर, आप रहे तो
2: यहाँ पर रहेंगे तो इतना दूर में रहेगा तो पानी यहाँ पर मिलेगा नहीं। नदी का किनारे समुद्र किनारे में रहेगा तो हमको पानी का बिना हम रह नहीं सकते।
1: तो फिर समुद्र के अंदर ही रह जाओ ना, पानी मिल जाएगा। तो प्रकृति अपने को समेट लेगा।
2: पानी वहाँ पर बसवास करते हैं सर।
1: सर पानी के किनारे तो बसिए, पानी का एक एरिया छोड़ के तो बसिए, कहाँ मना ही कहा है। जब आप पानी के क्षेत्र में आप रहने लगेंगे तो पानी आपको अंदर नहीं लेगा,
2: वो उस समय देखा जाएगा बोलते हैं।
1: तो सर वो ग्रीडीनेस आपका जो लालचपन है वो प्रकृति फिर आपको माफ नहीं कर।
2: अभी बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं
1: सर,
2: जल महल कहते हैं। चार तरफ टापू में हम रह रहे हैं ऐसे जो
1: सर, यही चीज भावना, यही सही चीज सर मुझे देख करके एक याद आता है सर। अभी सर घटना हुई है गोवा में, जिसमें बिना परमिशन के किसी होटल वाले ने, बिना परमिशन के होटल वाले ने उसमें छोटी सी झील बना दी,
2: समझ गए,
1: तो और उसमें होटल बना दिया।
2: अट्रैक्शन
1: सर वो इतना बढ़िया होटल बनाया कि फॉरेनर्स वगैरह सब वहीं आते, और वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा था और संकरा प्रवेश का रास्ता था, उसमें आग लग गई, 50 लोग जल करके मर गए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है।
2: ये तो अति ना सर,
1: तो अति है। अच्छा सर वो पता किया,
2: मतलब जब मनुष्य का ग्रीडी का अति मैंने बोला
1: है सर, पर जब पता किया तो पता चला कि वो सारा अवैध था। तो जब अवैध था, प्रकृति की जगह आप जा करके बैठ गए तो पैसा भले ही कमा लो, वो लोग मर गए, अब सारी हालत सबकी खराब है, तो फिर गलत का तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा।
2: चलते हैं जो अच्छा आदमी को भी जाकर इनकार करना पड़ रहा है, वो बेचारा मैं गलत किया है।
1: जी हाँ जी,
2: फिर मेरा सदारे गोपाल राम जी थे तो उसको चलो पकड़ेंगे।
1: बिल्कुल सही बात।

0: आप कुछ नहीं किए, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम में कर दिया, मैंने कुछ गलत किया,
1: ठीक है,
0: कोई देखोगे अरे पवित्र का शब्द गोपाल राम जी थे
1: जी
0: पकड़ते हैं
1: बिल्कुल,
0: आपका उसे कुछ
1: लेना देना
0: नहीं। तो सर होटल वाला को कितने होटल का इस तरह परेशान हुआ होगा
1: सर, तो वो देखिए बिल्कुल सही
0: हिसाब किताब बनता, देखिए सर
1: सही बात है सर,
0: कोई हिसाब किताब कभी का होगा
1: बिल्कुल
0: हिसाब किताब को जन्म का, तो जाकर उससे
1: वो पूरा हो गया,
0: ये पूरा कर्म का सिद्धांत।
1: तो सर देख लिए ये कर्म का सिद्धांत कैसा नुकसान हुआ, तो जो प्रकृति का अतिक्रमण किए तो ये लालचपन ने तो भारी नुकसान कर दिया इनका।
0: आज का संसार कौन ऐसे जो अभी जो कॉलेज समय जो चल रहा है
1: जी जी,
0: साइंस का पूरा भौतिकवादी सब हो चुके हैं
1: जी जी जी जी,
0: तो ये चीज कैसे कंट्रोल होगा,
1: बस सर
0: जानेंगे
1: कंट्रोल के लिए तो
0: क्योंकि ये तो रीजन सबको पता है,
1: हमको
0: तो अनुभव भी है,
1: आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा
0: तो उसके लिए क्योंकि आवश्यकता है, कारण तो सबको मालूम है
1: जी जी,
0: आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, आप भी इंटरनेट में गूगल पूछेंगे तो क्यों
1: बता देगा, बता देगा,
0: लेकिन हमें इससे कैसे निजात पाए और हम बचेंगे कैसे, मैं खुद
1: जी जी बिल्कुल सही कहा,
0: तो मैं खुद को बचाऊंगा तो मुझे देखकर सभी लोग बचेंगे
1: बिल्कुल,
0: ये क्योंकि स्व परिवर्तन ही हमारा नारा है,
1: स्व परिवर्तन ही सभी में,
0: क्योंकि आज सभी लोग उंगली उधर तुम करो
1: तुम करो तुम करो
0: बोलकर आज तक इतना जो 100 साल का आप देखा है ना परिवर्तन,
1: इसलिए
0: 100 साल का पहले जो स्थिति था पर्यावरण का
1: जी हाँ जी,
0: खुशी गोकुल गांव था,
1: सब आनंद था,
0: भाईचारा था, कोई ताला नहीं था,
1: कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं था,
0: भाई तुम लेना तो ले मेरा भी बहुत है यार,
1: सही बात है,
0: और आप बुलाते भाई लो हमारा
1: बिल्कुल सही
0: गन्ना बहुत है
1: बहुत है, हाँ एक दूसरे को बांटते थे बांटते थे,
0: तो समय परिवर्तन था और आज का समय में
1: जी,
0: तो 100 साल में कितना विकसित वो भारत है, लेकिन विकसित किसमें, भौतिकता में,
1: भौतिकता में हो गया है,
0: प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है उसको कोई देख नहीं रहे, अब जिसका चलते उसका भोगना हमको
1: पड़ेगा,
0: कोरोना क्या है पार्ट है,
1: हाँ हाँ वो इसका पार्ट ही है, वो भोगना पड़ा भोगना पड़ा,
0: शेर बड़ा हर रोज कुछ ना कुछ
1: होता ही
0: हो रहा है,
1: होता ही
0: आज यहाँ तो कल हुआ परसों हुआ,
1: महामारी भी सर ऐसे ही
0: सब चीज हो रहा है,
1: सारी महामारी,
0: तो इसका कारण जब तक नहीं होगा रूट ग्रास रूट हमें जाएंगे तब जाकर सभी लोग उसको पहचानेंगे तो बच सकते, सभी नहीं बचेगा तो कुछ तो बच जाएंगे,
1: कुछ तो बचेगा ही सर, प्रकृति तो बचा
0: जानेंगे, अल्प विराम का बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, तो आज का विषय भी बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि सर का जो सिलेक्शन बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट सही में आज देखने को
1: मिला, जी हाँ बिल्कुल मिला,
0: क्योंकि सरकार का जो भावना है कम्युनिटी को एंगेज करो रेडियो मधुबन में
1: जी,
0: तो आज किवली से हमारा जो भाई साहब है पूरे लगे रहता हर एपिसोड में कुछ ना कुछ जो विशेषता है उसको देने के लिए, और प्रकृति हमें कितना देता है, हमें तो कुछ देना सीखे करते थे
1: हम भी तो समर्पित रहे प्रकृति को,
0: जानेंगे अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछला लिंक में हम चल रहे परिवर्तन और 100 साल का कम नहीं है, उसमें कितना अंतर आ गया प्राकाश और पाताल जैसे। तो ये परिवर्तन समय अनुसार हो रहा है और प्रकृति में हम जो रह रहे पशु पंछी जीव जंतु सभी का अपना अपना जो भाव और भावना समय अनुसार बदलता है। जैसे हम छोटे बच्चे उसमें भावना कम था, बड़े हुए उसका भावना और कुछ क्रिएटिव बना, इसके बाद फिर उसका ऐसे ही प्रकृति भी जो इतना साल तो पहुंचा है। तो कोई भी चीज का सत्व रजो तमो होता है सर, अच्छा बुरा बुरा तब तक
2: तीनों
1: आना चाहिए। प्रकृति का जो शुरू में अच्छा था जो आपने बताया ब्रेक का पहले, ये सत्वगुणी जलवायु था,
2: सत्वगुणी
1: सब चीज सुखदायी था,
2: बिल्कुल सही।
1: लेकिन आज सोचना पड़ रहा है कैसे बचाए हम खुद।
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: संदर्भ में ये जो बात चल रहा है उसका कारण तो हमें थोड़ा बहुत जान गए,
2: थोड़ा बहुत थोड़ा सा
1: निवारण करने के लिए हम कैसे जिम्मेवारी, सरकार, हम, आप, जो भी हमारा सभी सुन रहे प्रकृति का जितना भी घटक है वो भी अपना कार्य करेंगे तो जरूर हम प्रकृति को बचा पाएगा और समय अनुसार बच जाएगा भी। तब तो ऐसे प्रश्न उत्तर हम कैसे बचा, जरूर बचेगा, बोला आज नहीं तो कल
2: बचेगा बच्चा। सर देखिए सर, अपन उसके बचाव पर आते, इससे पहले थोड़ा सा हमने प्राकृतिक कारण जाने थे हरित ग्रह के, अब थोड़े मानव जनित कारण थोड़ा सा उसमें प्लस है कुछ।
1: जी जी बताएं।
2: जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है सर, ये आंकड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, वो सर 76% तो ये रिस्पॉन्सिबल है।
1: 76%
2: उसका प्रभाव होता है हरित ग्रह पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर। CH4 का होता है 16%, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है 6% और सर फ्लोरिनेटेड गैसेस का होता है 2%, जिसमें सर है ना आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी चीजें। ये जो सर उत्सर्जन है ना, ये सर कहाँ से होता है, ये सर जैसे AC से होने वाला उत्सर्जन है
1: जो घर में यूज करते हैं।
2: जी हाँ सर,
1: जैसे कार में भी एसी यूज,
2: कार में एसी का यूज करना है, ये इसी पर मैं संकेत कर रहा हूँ। और भी जहाँ भी जैसे
1: एसी से इतना गैस आप,
2: जी सर ये नुकसान करती है, 1% है इसका। और सर जैसे फ्रिज में होने वाला जो गैसेस वगैरह है, ये भी इसके ऊपर इम्बेलेंसिंग में बहुत बड़ा कारक बन जाती है। अब उसका जितना ज्यादा उपयोग बढ़ेगा तो भारी नुकसान करने वाला है,
1: बढ़ रहा
2: बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला।
1: सभी का घर में चाचा मामा का।
2: अच्छा सर, इसका तो इतना बड़ा नुकसान होगा सर कि जैसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और अपन ये सारे जो ब्लैक कार्बन वगैरह, ये सभी मिल करके ये दहन से उत्पन्न होने जा रहा, आंशिक दहन से, जो ईंधन का आंशिक दहन है सर, किसी भी ईंधन का, जैसे गाड़ियों के इंजन वगैरह है, उन सबके दहन से जो भी ये प्रोड्यूस होता है, ये भी सर वातावरण को बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। सर अब मैं फ्रिज की बात कर रहा था सर, सर जहाँ तक फल सब्जी और एक सीमित समय तक उनके संरक्षित करने वाली बात है, वहां तक तो हम भी सहमत है, साइंस सहमत है, लेकिन जब उसकी अति हो जाती है तब तो वो नुकसान ही करेगा ना
1: सर। अति क्यों होता है
2: सर? अति बस वो मानव इतना लालची हो गया, वो सब जगह अति, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आगे से आगे जब उसको फ्रिज में रख जाओ तो क्या सर उसमें गुण रहेंगे क्या?
1: लेकिन उसका यूज नहीं हुआ तो फिर और प्रोडक्ट आ गया तो कहाँ रखेंगे
2: सर? वो तो बराबर है, वो एक सीमा तक, वो उसका एक लेवल हो जाएगा कि जैसे अधिकतम जनसंख्या जब भूख से प्रभावित हो रही है वहाँ इसका स्टोर करना कर लीजिए, लेकिन जब छोटे मोटे आप लोग उपयोग करते हैं वो तो मत कीजिए ना सर। मेरा निवेदन हर बार, मैं पर्यावरण के एक तो अंत पर्यावरण की बात करता हूँ जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, और एक सर अभी मैंने अभी ढूंढा है एनवायरमेंट माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात, ये नया शब्द भी इसमें नया जोड़िए आप, आपके विश्वविद्यालय की तरफ से जोड़ दीजिए। वो माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि हम एक व्यक्ति उसमें क्या छोटा सा सहयोग कर सकते, आपका हल्का भोजन बचा करके, आपके पानी को शुद्ध करके पीना, आपके गंदे पानी को शुद्ध करके अपनी क्यारियों में डालना, आपके 40 माइक्रो जो माइक्रोन का जो प्लास्टिक है उसको यूज रीयूज न करना, ये काम तो आप और हम कर ही सकते हैं ना?
1: कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं।
2: सर ये इट इज माइक्रो मैनेजमेंट सर, बड़ा मैनेजमेंट सरकार करे, उससे भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करें, जो जिम्मेदार संस्थान है एनजीओ वो करें, लेकिन मेरा माइक्रो मैनेजमेंट
1: जो राष्ट्र नहीं कर पाएगा तो ऊपर वाला तो कर लेगा,
2: वो उससे बड़ा मैनेजमेंट कर। तो सर मैं माइक्रो मैनेजमेंट की ये बात करता हूँ सर इसके अंदर, कि आप खुद के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट ये करें, अपने विचारों को माइक्रो मैनेज करें और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का जितना हो सके उतना प्रयास करें। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है,
1: एज एंड इसलिए आप सबको बोल
2: तो मैं सबसे अपेक्षा भी तो करूंगा ना, आप खुद का खुद करो, आपका आप करूंगा, आपका आप कर लूंगा, आपका आप कर लूंगी, जैसे आप नहीं कहते आप करो आप करो आप करेंगे तो सभी का सुविधा हो जाएगी,
1: आपको कोई दिक्कत नहीं आता जैसे आप करते हैं, लोग नहीं करते उनको दिक्कत आ रहा है, ऑब्स्टेकल आता है,
2: तो हम इसलिए नहीं करते। इस मुहिम में जुड़ना है सभी को, नहीं तो फिर वो प्रकृति है ना, वो आपको नदी में मकान बनाओगे वो उठा के बाहर ले जाएगी, आपका मेहनत काम नहीं आएगा, इसलिए सही दिशा में काम करें, तो माइक्रो मैनेज करें आप अपने आप। बस सर बात वही
1: हुई, नहीं कर पा रहे लोग, हम कर पा रहे हैं तो हम लोग कर पा रहे हैं।
2: आपको सर दृढ़ निश्चय होकर के,
1: दृढ़ता निश्चय सब गुण होकर के
2: फिर
1: अंतर में सक्षम होना चाहिए,
2: फिर
1: मैं तो बार बार वही कहता हूं
2: सभी के लिए भलाई का संकल्प करना पड़ेगा अपने मन में, तब जा करके ये काम होगा।
1: तो आपका वृत्ति
2: खुद को पहचानो, खुद को पहचानो,
1: वृत्ति में क्या सुभावना सबका प्रति रहे,
2: सुभावना रहे
1: प्रकृति का प्रति, आपका आसपास जो भी आपका प्रकृति दिखाई दे रहा है सबका प्रति सुभावना।
2: तो सर जैसे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये कई बार मैं भी सर कभी कभार मुरली हाथ में लिया करता हूँ, बाबा की मुरली भी आती है, मैं एक सामान्य मुरली की बात करता हूँ, हाथ में लिया करता हूँ और सर रोज सुबह में एक बार बजाता भी हूँ, तो सर उसकी आवाज कितनी मधुर है,
1: कृष्ण को प्रिय था और आप
2: तो सर वो मुरली वो प्रकृति से आवाज लेती है, वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति
1: अच्छा
2: को
1: बात बता दिया आपने,
2: तो सर करना ही पड़ेगा।
1: चार जो अलंकार है सर नारायण का हाथ में,
2: जी हाँ जी हाँ,
1: जैसे बांसुरी कृष्ण का देखा दी,
2: कृष्ण जी हाँ,
1: शंख
2: हाँ हाँ
1: बता दिया ना,
2: बिल्कुल शंखनाद, तो वो शंखनाद आपको करना पड़ेगा,
1: शंख तो वो तो देखे है लेकिन आपका जो मुख है ना सर,
2: जी जी,
1: ये आपका शंख होना चाहिए,
2: ठीक बात है,
1: अच्छा बोले,
2: अच्छा बोले, मीठा बोले, मीठा बोले, धीरे बोले,
1: सही बोले
2: और कर्ण प्रिय बोले,
1: बोले और जहाँ आवश्यकता है उतना बोले,
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो सर ये जो शंख चक्र
2: जी गदा और पद्म
1: आप तो दो चीज बताए,
2: जी जी जी,
1: शंख का जो नाम लिया, तो शंख हमारा मुख जो है,
2: जी जी,
1: शंख जैसे आवाज निकलता, शंख से क्या
2: होता है आवाज, आवाज निकलता है, आवाज निकलती
1: नहीं निकलता, हम
2: उसमें बोलेंगे फूंक मारेंगे तो आवाज करेगा,
1: तो मारने वाला कितना एक्सपोर्ट होता है,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: व्यक्ति सर जो शंख को चलाता है,
2: चलाता है सही, बिल्कुल सही बात,
1: शंख जिसको बोलते हैं उस तरह ये मुख, ये हमारा
2: शंख, ये शंख ही है, शंख ही समझो,
1: शंख को चलाने वाला कौन है,
2: ये तो ऊपर वाला,
1: ऊपर वाला तो सबका शंख अच्छा होता है,
2: सबका अच्छा बजाता है,
1: ऊपर ऊपर अच्छा नहीं बज रहा ना सर, शंख कौन बजा, खुद बजा रहे हैं,
2: हाँ हाँ हाँ,
1: ऊपर वाला कैसे बजाएगा,
2: हाँ वो बजवाता है तब प्रेरणा से बजाते हैं,
1: ना प्रेरणा तो प्रेरणा जब देता तो मैं अच्छा क्यों नहीं बजाते हैं, ये उसका बात मानते नहीं,
2: वो उसके बात
1: सोचने के बाद, सर ये सोचने के बाद मैंने गहरा से बोल रहे
2: जी बिल्कुल सही कहा,
1: शंख अपने व्यक्ति में गांव वाला नहीं करता है, शंख जो बनाए वो नहीं बजाता है सर,
2: ठीक बात,
1: शंख आप खरीद ले,
2: जी जी बिल्कुल,
1: अभी बजाएंगे आप,
2: ठीक
1: तो आप जैसे फूकेंगे उस तरह आवाज,
2: आवाज करेगा, करेक्ट करेगा, करेगा
1: उस तरह, ये मुख सर भगवान ने हमें दे दिया है,
2: जी जी,
1: माँ बाप हमें
2: दे दिए
1: शरीर में मुख, तो उसको नियंत्रण कौन बोलता है, मैं
2: बोलता हूँ,
1: ऊपर वाला नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता है तो शंख हमारा अच्छा बोलता
2: है, अहम बोल रहा है, अहम को मिटाने वाली बात,
1: मैं जो व्यक्ति जो आत्मा जो प्राण है
2: आत्मा,
1: हाँ ये मुख से बोलता है, वो चेतना है, ये जड़ है,
2: बिल्कुल वो चेतना है,
1: हाँ ये जो सब तक हम चेतना मैंने आज निवारण का बात कर रहे हैं,
2: जी बिल्कुल,
1: सभी लोग इसका ऊपर में रिसर्च कर बहुत कुछ बोल, जैसे आपने बताया,
2: जी हाँ जी,
1: सबको पता है गीता में सब
2: सबको सब जगह मिल जाएगा, आप बता रहे सब जगह मिल जाएगा,
1: निवारण करने का उपाय कौन बताए,
2: बिल्कुल सही बात है,
1: तब तो हम जानेंगे ना भाई सर,
2: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: धूप हो रहा है सबको पता है, लेकिन धूप से निजात पाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, छाया,
2: बिल्कुल छाया में जाना
1: पड़ेगा, हमारे दिमाग में होना,
2: दिमाग में हमारे संकल्प,
1: छाया जो मालूम नहीं तो हम वहाँ भी बैठेंगे,
2: बिल्कुल सही,
1: गर्मी में, अरे गर्मी में क्यों बैठेंगे, चलो अच्छा जगह में
2: छाया में बैठे, छाया में
1: उस तरह,
2: जी हाँ बिल्कुल,
1: ये चीज हो रहा है,
2: जी जी हो रहा है,
1: और आगे बढ़ेगा,
2: आगे बढ़ेगा, नहीं नहीं
1: कैसे होता है तो अभी 10 साल पहले हो जाता है,
2: हाँ सही बात है,
1: ट्राई किए उस समय भी, मतलब हम जैसे कितने लोग ट्राई किए होंगे,
2: जी जी किए ही होंगे, ट्राई
1: कर रहे हैं,
2: चल ही रहे हैं,
1: चल रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे, फिर भी
2: बहुत कर रहे,
1: कर फिर भी
2: बहुत लोग कर,
1: फिर भी कुछ तक
2: एक सीमा तक ही हो रहा है,
1: जो इतना पर्याप्त नहीं है,
2: पर्याप्त नहीं कर पा रहे, पर्याप्त नहीं कर
1: नहीं पा रहे, क्योंकि जितना हमको अति आवश्यकता
2: जी,
1: सिर्फ पांच लोग से नहीं होगा, सभी लोग
2: सभी करेंगे, अपने अपने स्तर पर करेंगे, सब जुटेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे। सर यही बात माइक्रो मैनेजमेंट वाली है कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो हो जाएगा,
1: और शुरुआत तो
2: हमसे ही
1: होगी, हमसे भी होगा
2: शुरुआत,
1: और
2: सभी
1: करेंगे नहीं, शुरू कर दीजिए
2: जी, बिल्कुल सही बात, शुरू करना है।
1: जैसे आज हम एपिसोड का बात करेंगे, कल वो सोचा है लेकिन करेंगे, कल कौन देखा है,
2: नहीं नहीं नहीं, कल का तो पता ही नहीं, पता ही नहीं,
1: बारिश आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ होता, हमारे हाथ में नहीं ना,
2: कुछ भी हाथ में नहीं,
1: तो अभी जो है हमारे हाथ में
2: उसको कर डालिए,
1: करना
2: कर डाल,
1: ये चीज पॉइंट आउट सर,
2: बिल्कुल
1: अभी जो करना है, अच्छा चीज तुरंत,
2: बिल्कुल तुरंत कीजिए,
1: तब देखना सक्सेस, आज सक्सेस मिल गया ना,
2: बिल्कुल सर वो तो मिलेगा, हमने दो तीन दिन देखा, अब पता चला कि भाई हमारी जो दिशा उधर से जा रही थी, वहाँ तो अपनी बात को लेने वाली नहीं, आप बांट रहे हैं लेकिन लेने वाला ही नहीं है, तो फिर जहाँ चीज जो ग्रास्प करने वाले हैं वो उस चीज को उसी स्थान से रखा जाए, उसका उपयुक्त जगह,
1: इसको विवेक बांध कहते हैं सर,
2: बिल्कुल विवेक,
1: हम विवेक बांध होकर हमें हम ट्राई देखे यहाँ पर ट्राई किए नहीं, और फिर दूसरा
2: बिल्कुल करना, बिल्कुल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा,
1: हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुँचा,
2: लक्ष्य के लिए सारे सरल रास्ता अपनाना भी तो पड़ेगा,
1: कर रहे हैं सब, करना भी चाहिए
2: जी हाँ जी,
1: और सर जैसे अपना निवारण तो मेन आवश्यकता,
2: मुख्य आवश्यकता निवारण,
1: क्योंकि निवारण सभी लोग जानेंगे तब जब करेंगे, नहीं जानेंगे तो करेंगे, कोई मतलब मैं कैसे करूँ, प्रश्न आएगा ना,
2: बिल्कुल वो कहेगा कि कैसे किया जाए,
1: आप कर दो, सभी लोग करना चाहिए, अरे करेंगे तो ठीक, काम हो जाते
2: हैं, वहाँ पर
1: उसका विधि बताओ,
2: कीजिए ना, इसकी विधि क्या है, विधि क्या है,
1: तो ये होना,
2: तो इसमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा, स्वयं स्व को पहचानो
1: सर, स्वयं ही दुख और सुख का
2: कारण है,
1: कारण है,
2: स्वयं ही, अच्छा स्वयं ही है,
1: अच्छा फूकेंगे तो अच्छा बजेगा, फूकेंगे नहीं तो पीछे से करेंगे तो आवाज आएगा,
2: बिल्कुल आवाज ही, सही जगह से उसको सही उपयोग करेंगे तभी जाके उसका सही अर्थ भी निकलेगा,
1: राइट,
2: नहीं तो नहीं निकलेगा,
1: इसलिए समय का मांग जो है खुद को पहचान,
2: खुद
1: और खुद का जो कर्म खुद, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, भगवान भी अंतर्जन बोलते कि जानता तो आपको रोक देता है,
2: सही बात,
1: खराब हम जो कर रहे थे, गलत जो हो रहा है,
2: जी जी,
1: भगवान इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा,
2: नहीं नहीं, भगवान ने तो आपको सही कर्म करने के लिए
1: ज्ञान दे दिया, करना तो आपको मार कर,
2: अब जैसे आप सामान्य तौर पर बता रहे हैं कि ज्ञान सबके पास है ही है ना, जैसे पर्यावरण सब जगह मिल रहा है, सब जगह, आप क्यों दौड़ रहे हैं, आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम समझाने का एक प्रयास करें कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखो, ऐसे नहीं, उसका व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारो, उस पेड़ को लगाओ, उस पौधे को लगाओ, उसका क्या फायदा है, उसकी क्या छाया मिलेगी, उसका क्या फल मिलेगा, वो आपको उसके
1: निवारण का एक कारण है, निवारण का एक पॉइंट स्टेप,
2: बिल्कुल एक स्टेप है, आपको करना
1: स्टेप तो चलना पड़ेगा ना भाई, छत का जाना है तो पहला स्टेप तो
2: पहले स्टेप तो पूरा करना पड़ेगा,
1: स्टेप बाय स्टेप
2: करना तो पड़ेगा ही, करेंगे तभी कुछ न कुछ तो होना है
1: जी,
2: अब नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा,
1: और तो ये सब देखिए पर्यावरण के साथ हम दोस्ती लगाकर बहुत अच्छे से करेंगे सहयोग कर, हमें बहुत सुकून मिलेगा, इसको मिले चाहे नहीं मिले,
2: नहीं सर
1: हमको मिलेगा, और हमारा वाइब्रेशन से दूसरा तक पहुंचेगा,
2: सभी को सुकून मिलता ही है, पर्यावरण और प्रकृति तो सबको सुख नहीं दे रहा,
1: दाता है सर,
2: वो दाता है, और वो वही चला रहा है, सृष्टि भी वही चला रहा है, पूरी सृष्टि उसी के हिसाब से चल रही है, सारा कंट्रोल भी उसी के हिसाब से हो रहा है,
1: लेकिन मालिक बनकर बैठा है,
2: बिल्कुल
1: मनुष्य,
2: हाँ मनुष्य मालिक बन करके बैठा है, जी मालिक है तो नहीं वो लालची मालिक बन करके बैठा है, पर मालिक है तो नहीं
1: जी, बस और क्या कहना चाहेंगे सर, आज तो टॉपिक तो इतना देखेंगे अगला एपिसोड में, आप क्या कहना चाहेंगे, आज का जो मूल मंत्र है कारण और निवारण, हमें हर एपिसोड में
2: ये तो लेते ही है,
1: क्योंकि उस समय दे देंगे तो फिर कल कौन देखेगा, पांच एपिसोड 15 एपिसोड में आएगा, इंतजार क्यों करेगा,
2: सही बात है, नहीं करेगा, हर एपिसोड में अपने को निवारण
1: और निवारण देना है
2: सर, इसका निवारण तो यही है कि आप इस प्रकृति के प्रति समर्पित होकर के काम करना शुरू कर दीजिए, दृढ़ संकल्पित होकर के, खुद को पहचान कर, इस प्रकृति से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप इसके लिए एक बार शुरुआत कर दीजिए, सभी अपने अपने स्तर से, तो हम उस लक्ष्य को पालेंगे जहाँ तक जाना है,
1: तो श्रोता मित्र रुग्राम वासी सुन ले, जो आवश्यकता है भाई, शुरुआत तो खुद से करना ही पड़ेगा, और सभी लोग जैसे इस खुद से करेंगे तो भाई किसको कोई बोलने का नहीं, तुम करो बोल के, कहीं सब इस तरह से समझ जाएंगे, और शुरुआत हम खुद करें व्यक्तिगत
2: स्तर,
1: सरकार जितना करना वो अपना स्तर पर कर रहा है,
2: तो हम अपना सब जगह काम हो रहा है,
1: जानकर हमें प्रकृति हमें दिया है, हम उसको रिटर्न देने का समय आया है,
2: बिल्कुल
1: बहुत कुछ जो किए भूल जाओ,
2: हाँ
1: अभी जो करना है अच्छा काम
2: शुरुआत करो, उसकी शुरुआत करो,
1: हम करेंगे आप करेंगे तो सभी लोग हो जाएंगे
2: और माइक्रो मैनेज कीजिए अपने आप को, सभी को थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे ढेर लग जाएंगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।
1: एग्जांपल जैसे सेतुबंध रामचंद्र इसका रामायण में सुने हुए,
2: बिल्कुल सामान्य तौर पे आता है
1: छोटा सा
2: एक एक पत्थर और एक गिलहरी वो लोटपोट करके रेत डाल रही है कि मैं भी सहयोग कर रही हूँ,
1: नया दुनिया जो आने वाला है तो हम सब करेंगे सहयोग, तो मांग रहा
2: ऐसा सहयोग हम भी कर रहे हैं
1: तो जरूर हो
2: तो हो जाएगा हमारा उसमें सर योगदान तो हो जाएगा।
1: कभी कभी बोल ज्ञान का परमात्मा का ऊपर वाला का क्यों, क्योंकि वो सहयोग मांग रहे हैं हमें आवश्यकता है क्या।
2: हाँ तो
1: उस समय हम शास्त्र में पढ़े हैं भाई रामचंद्र चाहेंगे तो बात नहीं कर पाते, उनके पास शक्ति नहीं
2: था, कर सकते
1: कर सकते, क्यों उसको सहयोग लिया।
2: बिल्कुल सही बात, क्यों वो चाहते थे कि वो भी सहयोग करे
1: तो उनका नाम आए।
2: बिल्कुल सही बात है,
1: जो करेगा सो पाएगा। तो आज परमात्मा जो चाहते हैं
2: जी
1: दुनिया को अच्छा दुनिया बनाने के लिए विश्व गुरु तक लाने के लिए, तो विश्व गुरु तो बनेगा क्यों, हम इसलिए सहयोग दे रहे
2: तो हम भी पुण्य के भागी बने
1: भागीरथ, इसलिए हमारा लक्ष्य यही था। अभी जो समय आ रहा है अच्छा समय जो आएगा
2: जी, जी।
1: समय हम अच्छा बन जाएंगे और हम परमात्मा का काम में सहयोग करेंगे
2: करें।
1: तो हमारा काम सफल हो जाएगा और परमात्मा भी कोई करे नहीं, इतिहास में हमारा स्मरण वाक्य में
2: नाम लिखा जाएगा।
1: लिखा रहा है
2: लिखा जाएगा,
1: लिखा जाएगा अभी भी हम
2: पहुंचे गिलहरी का लिखा गया है, चिड़िया की चोंच का पानी जाने में। अब ये देखो यही तो चीजें समझाती है कि आप जितना हो
1: सर,
2: उतना
1: ये जब मैंने लेता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, जी।
1: कोई बोला अरे तुम पर्यावरण के बारे में क्या तुम रोक पाएगा, अरे मैं नहीं रोक पाएगा जिसका रोकना है।
2: अरे सर पर्यावरण से शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम उस ऊपर वाले को धन्यवाद कर पाएंगे,
1: सर
2: आत्मज्ञान होगा तो अपन संकल्प से अपना काम कर पाएंगे वहीं पर।
1: अच्छा बात, संकल्प से ही
2: संकल्प से और अपनी साधना से अपने राजयोग से हम इस काम को जब करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता आपके कदमों में हो,
1: क्योंकि जो विश्व रचयिता जिसको कहते हैं, विश्व का मालिक जो प्रकृति पति जिसको कहते हैं रचयिता, सर रचयिता एक शब्द है।
2: बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: रचना हम सब है, एक प्रकृति भी रचना है लेकिन रचयिता
2: सर देखिए इसमें एक चीज कही गई है, एक चौपाई में बोल रहा हूँ सामान्य समझ में आ जाने जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ाव ही शाखा।
1: क्या बात,
2: तर्क करके कोई चीज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है विश्व को, आपको तो सुकर्म करना है बस,
1: कर्म योगी है
2: बस, कर्म किए जाओ
1: योग युक्त होकर
2: बस,
1: आराम से निस्वार्थ
2: बस,
1: तो जरूर इसका निवारण एक ही है जिसे हम लास्ट में बता भाई सबका मूल आधार है जो परमात्मा प्रति और खुद का प्रति विश्वास होना,
2: विश्वास होना चाहिए
1: और दृढ़ता आना चाहिए आत्मा में, दृढ़ता जो बात
2: सुकर्म किए जाओ
1: किए जाए, जैसे बिल्ली हो चाहे हमारा पंछी अपना दृढ़ता दिया भाई हम करे
2: करे बिल्कुल, तब जाकर
1: बाघ हाथी सभी था जंगल में आग लगा तो भाग गए
2: बिल्कुल, लेकिन वो करने लगे
1: करने लगे तो उसका आज
2: नाम है नाम है।
1: तो हम सब कौन है एक एक
2: बिल्कुल
1: उसको सहयोग करने के लिए, आग को ये जंगल में आग लगे दुनिया पूरा जंगल जैसे
2: जल रहा है,
1: जंगल जल रहा है ना,
2: जल रहा है
1: जहाँ भी जाए स्टेप बाय स्टेप जल
2: जल जल रहा है
1: जल रहा है जल रहा है जल रहा है, राख हो जाएगा
2: बिल्कुल,
1: हो गया कि नहीं सर।
2: बिल्कुल सर,
1: आग लग गया मीन्स रुकने वाला,
2: वो आग लग ही गई है, इम्बेलेंसिंग हो रहा है वो आ गई है,
1: घर घर में अशांत
2: हाँ अशांति है वही आग है,
1: सुख नहीं वही आग है, वो स्थूल चल आग तो बिल्कुल देगा
2: जी जी,
1: हेलीकॉप्टर में पानी डालकर
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन इस ये जो आग लगा है
2: हाँ उसके लिए हाँ उसके लिए तो आपको अपने स्तर से ही जागना होगा,
1: ये खुद को लिबाना होगा सर, कोई आएगा तो
2: दूसरा नहीं आएगा,
1: आएगा फिर भी आप उसके बात मानना पड़ेगा।
2: हाँ, हाँ, बिल्कुल तब ना
1: तब आपको ध्यान से
2: सुनना।
1: तो ये था हमारा निवारण का स्टेप है,
2: नमस्कार
1: राज्यों का और जो आत्मचिंतन
2: बस, बस
1: प्रकृति चिंतन पर्यावरण चिंतन करिए,
2: ये सब चिंतन करिए, स्वस्थ बनिए और राजयोग कीजिए,
1: अंतर आत्मा से निकलेगा सर ये गारंटी है, अंतर आत्मा खुद बोले कब तक मैं दस रत्नाकर भी अपना चेंज हो गया,
2: बिल्कुल बिल्कुल सर
1: डाकू पंचम सिंह
2: सब सब चेंज हो सब चेंज हो,
1: चंडा शोक से
2: सर अभी कितने
1: ये सर
2: कितने नक्सलवादी समर्पण किए
1: सब करेंगे, समय करते ही रहेंगे, समय आ रहा है और समझदार सभी
2: समझदार
1: हम समय समर्पण कर लेंगे, जैसे आपने समर्पण की भावना की दृढ़ता ली
2: इसी से होगा,
1: इससे होगा और ये सब आध्यात्मिक प्रेमी सभी है
2: सभी मिलकर
1: आज हमें प्रकृति यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम ब्रेक करेंगे
2: बिल्कुल,
1: जरूर हमें अपना स्तर को अपना स्थिति को आ पाएंगे, ये ही निवारण का एक रास्ता है
2: तरीका है,
1: और ये कोई मनुष्य कोई शास्त्र पाए स्वयं जो डायरेक्टर है जो निर्देशक है जो रचयिता है उनका ही, नहीं तो हमारे पास कैसे आया,
2: सही बात है उन्हीं का निर्देश है।
1: हम आत्मा में वो चीज जब रखेंगे तो जरूर आपको कैसे लगा जी आत्मा का जो स्वधर्म है
2: जी जी जी
1: वो आज नहीं है।
2: हाँ हाँ स्वधर्म की तरफ जाएंगे तभी होगा तभी होगा
1: परधर्म है सर अशांति
2: अशांति अशांति
1: अपवित्रता
2: शांति और आनंद में रहने वाली है
1: आत्मा है लेकिन उसको क्या कर दिए अशांत कर
2: अशांत कर दिए
1: वातावरण का चल अशांत हो गया घर में जाते
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोई कुछ बोल मारपीट हो जाता घर
2: में सही बात है सही
1: तो अपना सौदर में शांति प्रेम आनंद और ज्ञान
2: सभी कुछ सभी साथ में
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जाते अपना एक पॉइंट बताया सबका मूल जो निवारण है खुद को पहचाना और खुद क्या कर खुद से और आत्मा से
2: जग जाओ
1: जग जाओ।
2: धन्यवाद साहब धन्यवाद
1: धन्यवाद आज के लिए हमें दीजिए इजाजत इसी एपिसोड में आप यहाँ तक रखते हैं फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे श्रीमान गोपाल राम पुरेश जी से।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे थारी कंचन सी का यारों भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। जीवन एक सुख दुख चढ़ाई उतराई का खेल है। प्रत्येक मानव जीवन में खुशी या गम के पल आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान हर समय गम की अनुभूति में ही अगर रहे तो सुख का अनुभव कब कर सकेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि संगीत ही एकमात्र सहारा हो जाता है ऐसे पलों को सहजता से गुजारने के लिए। वर्तमान समय विभिन्न साधनों द्वारा मन को प्रफुल्लित तो किया जा सकता है, मगर सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं कि बिना संगीत के जीवन अधूरा है। ऐसे ही हर पल को जीने के लिए संगीत रूपी आधार को सिखाने के लिए हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, जितने सारे लिसनर है सबको प्रणाम करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने संगीत का आधार या संगीत का हमारे जीवन में क्या रोल है,
1: हाँ जी,
0: इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की। तो सच में जीवन में अगर संगीत न हो तो हम गेस कर सकते हैं कि क्या हो जाता।
1: हाँ जी, सुख दुख का खेल में अगर कुछ तो चाहिए, दवाई चाहिए, ये संगीत एक दवाई जैसी है
0: जी।
1: अगर संगीत हर समय काम काज करते उसके धंधा धड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन के टाइम हम संगीत सुन सकते हैं, संगीत कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, भारीपन जो होता है मन की, जो भारीपन हो वो निकल जाते हैं।
0: जी जी जी, बहुत बड़ा फायदा
1: भी
0: संगीत
1: है।
0: का हमारे जीवन में।
1: हाँ जी।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा नया राग लेकर आए हैं?
1: हाँ, आज बहुत सुंदर राग है पटदीप।
0: पटदीप?
1: हाँ हाँ जी, बहुत सुंदर राग। इसमें जैसे कि हमने पहले भूमपलासी राग सिखाए थे, उसमें गा और नी कोमल था
0: जी,
1: लेकिन खाली उस राग को अगर नी शुद्ध नी में बदल दिया जाए तो पटदीप राग हो जाते हैं।
0: बस इतना सा फर्क,
1: बस, क्योंकि वो भी ठाट काफी है, इसमें भी ठाट काफी है, तो खाली नी सा गामा पानी सा नी धापा मगारे सा एक जैसी है, लेकिन खाली इसमें नी शुद्ध है।
0: Okay.
1: पटदीप राग में नी शुद्ध है और गा कोमल है, और भीमपलासी में गा नी दो कोमल है
0: जी।
1: तो इसको थोड़ा हम परिचय देते हैं पटदीप राग की। ठाट है काफी, तो ओरफ संपूर्ण की जाती है। वादी जो है, वादी स्वर है पा, और समवादी है सा। समय जो है दिन में चौथा प्रहर, मतलब 3 से 6।
0: अच्छा।
1: इसमें हम बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा है पटदीप राग।
0: ओके।
1: शांत प्रकृति का राग है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें गा कोमल सर है और बाकी सब सर शुद्ध है। अच्छा, हम क्या करते हैं अभी थोड़ा आरोहण अवरोहण करके सुनाते हैं, पकड़ करके सुनाते हैं लिसनर को, ठीक है? अगर लिख लेते हैं तो अच्छा है।

0: さがれさ。इसमें जो है भीम पलासी अगर हम करते हैं नी सा गा रे सा, ये भीम पलासी है
1: जी।
0: और अगर हम करते हैं नी सा गा रे सा, खाली ये अंतर है भीम पलासी राग के साथ जो प्रदीप राग जो है
1: जी।
0: इसका अंतर है, बाकी सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो लिसनर को बहुत अच्छा से ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध नी है, नीसा गा कुमल है, मापा नीसा और अब संपूर्ण है सानी धापा मागा रीसा।
1: सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब समानता है।
0: समानता है
1: जी।
0: ठीक है, अभी क्या करते हैं लिसनर, अगर किताब पेंसिल लिख लेते हैं, स्वरलिपि देंगे
1: जी,
0: तो इसमें क्या है थोड़ा सा, अभी जितना हम ऊपर जाएंगे चढ़ते जाएंगे थोड़ा तो टाफ आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये ताल तीन ताल की है, लेकिन इसका जो मुकरा जो होता है, हमने कभी फाक से लेते हैं, कभी सोम से लेते हैं, लेकिन हम सोम से फाक से नहीं लेते हैं। तीन ताले जब गिरते हैं, जैसे ना तीन तीन ताल, 12 मात्रा से उठाना है, 12 13 14 15 16, मतलब मुकरा है 5 मात्रा की।
1: ओके,
0: तीन ताल जो है, तीन ताल जब लास्ट ताली गिरेंगे उसके पहले मात्रा से लेना है, मतलब 5 मात्रा से लेना है, मुकरा 5 मात्रा की है। तो हम बोलते हैं तो सम 5 मात्रा की बात गिरेंगे, पा मा पा गा मा, लिसनर को भी शायद याद है गा कोमल है
1: जी,
0: पा मा पा गा मा पा, ये जो पा है इसके ऊपर सम गिरते हैं। ठीक है, पा मा पा गा मा पा नी ई सा आ रेनी सा, रेनी एक साथ है, ऊपर की सा है, रे ऊपर की है, रेनी सा ऊपर की है, धा धा पा पा मा पा गा आ, ये तक है फर्स्ट जो लाइन है इसका है। अगर पा आते हैं बीच में, पा है वो 5 मात्रा की जो है, हमने पूरा मात्रा ले लिया, 16 मात्रा ले लिया, फिर से मैं दोहराती हूँ कैसे करना है, पा मा पा गा मा पा नी ई सा आ रेनी सा धा धा पा पा मा पा गा आ नी सा, ये जो नी है नीचे का है, नी सा गा मा पा नी ई सा ऊपर की है, धा पा आ पा मा पा गा मा, फिर से ओ आएंगे, जैसे हमने 5 मात्रा किया। जब हम उसको स्वर में सजाएंगे या बोल से सजाएंगे तब लिसनर को शायद पता लगेगा,
1: चल जाएगा।
0: तो अंतरा भी दे देती हूँ, अंतरा क्या करते हैं, हम फाक से लेते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे 5 मात्रा की है, जब हम करेंगे ना वो लिसनर को पता पड़ जाएगा। तो फाक से शुरू करेंगे, मा पा गा मा पानी सा सा नी ई सा गा, ये जो ऊपर की है, सा ऊपर की है, गा की ऊपर की है, नी ई सा गा रेसा नी धा पा, रेसा जो है ऊपर की है, मा पा गा मा पानी सा सा ऊपर की है, सा सा नी ई सा रे ऊपर की है, रे सा रे नी सा रे ऊपर की है, सा ऊपर की है, नी धा पा पा मा पा गामा, ये जो है 5 मात्रा जो है इसमें आ गया, पा मा पा गामा, ये मुकरा है, पा मा पा गामा, हम जब करेंगे ना पता पड़ जाएंगे
1: जी।
0: तो हम शुरू करते हैं, ठीक है।

0: ये जो हमने साई किया है पामा पागामा हम करते हैं वो उसके साथ पूरा करके फिर पामा पागामा करते हैं
1: जी।
0: फिर से एक बार सुनाती हूँ।

0: रखे। श्यामली जी, अंतरा हम आपसे जरूर सुनेंगे, सीखेंगे भी।
1: हाँ जी,
0: लेकिन अभी समय कहता है एक अल्प विराम लेते हैं और उसमें हम अपने श्रोता मित्रों को एक सुंदर सा मीठा सा गीत सुनाते हैं, पट्टदीप राग से संबंधित। श्रोता मित्रों, आप इस गीत का आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने पटदीप राग के बारे में श्यामली जी से सुना और अभी हम उनसे आगे भी जानकारी लेंगे। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है और आगे आप हमें क्या सिखाने वाले?
1: हाँ, हमने जो अंतरा जो स्वर लिपि दे दिया वो थोड़ा सुनाते हैं, कैसे उसको फाक से शुरू करते हैं। थोड़ा पहले तो पांच मात्रा की मुखड़ा करेंगे, करने के बाद सोम गिरेंगे, सोम के और भी आठ मात्रा करेंगे, तब जाके फाक आएंगे। तो हमने पा नी किया है, उसके बाद सा आ रेनी सा हमने किया है, वो अगर निकल देते हैं लिसन के सुविधा की लिए कि पानी वो जो नी लगा देना है,
0: ओके
1: रखना है, ठीक है, हम करके सुनाते हैं। पा

0: अभी शायद लिसनर को मैं
1: समझ में आ गया होगा,
0: समझ में भी आ गया। अब अगर नहीं भी होता है तो अगर जो तबला ठेका बजाते हैं अगर उनसे सलाह करते हैं या गुरुजी के पास तो शिक्षा लेना ही है, तबला जो ठेका दे रहे हैं वो जो ये है तबलिया है वो आपको दिखा देंगे।
1: अच्छा,
0: वो भी आपको
1: वो भी गाइड कर सकते,
0: गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ताल में उठाना है। पहले पांच मात्रा की मुकरा है, उसके बाद सोम कहाँ गिरता है, कहाँ से वो अंतरा लेना चाहिए। हाँ, पूरा हमने नी किया, साड़ एनिसा नहीं किया है, नी पूरा उतना तक करना है जो सुंदर लगता है। अगर साड़ एनिसा अच्छा नहीं लगता है, जो अगर हम अगले एपिसोड में आप जब बंदिश बना देंगे, बैठा देंगे, तब जगह और भी पक्के हो जाएंगे। अच्छा। अगर इसमें आ कर सकते हैं, जितना आ करेंगे उतना उसको समझ में आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, मेहनत मुक्त हो जाएंगे जब हम बंदिश दे देंगे।
1: कोई भी राग हो मगर उसको आकार के साथ किया जाए तो ज्यादा सहजता हो।
0: अच्छा, हाँ, जी,
1: जी। तो श्यामली जी आगे आप क्या सिखाना चाहेंगे?
0: मैं एक प्रदीप राग के ऊपर छोटे से गीत करना चाहती हूँ।
1: अच्छा,
0: कृष्ण जी का जो छोटे जो बचपन है उसके ऊपर आधारित है। हम करते हैं, बोलते हरी मधुर बोल।
1: ओके,
0: बहुत सुंदर है। मैं प्रदीप राग के ऊपर करती हूँ।
1: मगर ये बंदिश के आधार पर आप नहीं?
0: ना ना, ये छोटे से गीत के जैसे करती हूँ।
1: हाँ जी, ठीक है जी जी।

0: श्यामली जी, ये छोटा सा गीत तो आपने सुनाया, लेकिन जाते जाते आप बिना गीत सुनाए तो नहीं जा सकते।
1: हाँ जी, एक बहुत अच्छा फिल्म है चुपके चुपके
0: जी,
1: उसमें जो चुपके चुपके चल रही पूरा भैया जो गीत है,
0: अच्छा
1: लता जी का है कंपोजिशन, बहुत सुंदर। तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है
0: जी जी।

0: ये समय भी चुपकी चुपकी चुपकी आगे बढ़ते
1: है। लगे तो अच्छा है।
0: नहीं, लिसनर को जरूर अच्छा ही लगता होगा क्योंकि आप चुन चुन के हर राग के गीत लाते हैं और बहुत दिल से गीत को गाते हैं तो दिल तक छूता है। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको चुपके से इजाजत और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
1: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
2: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
3: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
4: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज विज।
2: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
4: चीज नहीं दादी, रीज रीज।
5: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
4: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
2: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
6: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
2: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
6: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
7: जाह्नवी क्यों फंसा रही है वीरू को?
6: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
5: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, पीर पीर।
8: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
5: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
8: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
4: तुमने।
8: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
5: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
2: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम, तू कर।
4: घूम नहीं दादी, ग्रूव।
2: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
5: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना?
2: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन में एक निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
6: और हम क्या है दादी?
1: इस सवाल का जवाब है किसी के पास? पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
9: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
10: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
9: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
10: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
9: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
10: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
9: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
11: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
9: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
11: कम उम्र?
5: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
9: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
11: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
5: लो आ गए वो।
12: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाईसा घर में। हाँ, चलो
13: हाँ, बढ़िया
12: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
13: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
12: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
14: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
12: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
14: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
13: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
12: शांति चुप हो जा, जमाई सा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
14: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
15: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
14: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
15: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
14: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
12: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे, इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
5: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
10: हाँ जाती हूँ।
5: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है।
10: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
5: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
10: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
5: इसी बात का तो डर है।
10: हा? कुछ कहा आपने?
5: नहीं नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
10: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
5: क्या?
10: अरे मजाक कर रही थी।
5: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
11: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
5: चल ठीक है अब नाश्ता करने चलें।
1: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
11: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
16: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
17: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

खिलते हैं तब जब उसकी रहमत हो। उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। नहीं अब हक मुझको।

है वही, ये कैसे समझाऊं मैं? मेरी नजरों में अब है वही, ये कैसे समझाऊं मैं? बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं? बस गया इनमें अब बसने वाला, कोई और कैसे समाऊं मैं? कोई और कैसे समाऊं मैं?

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

शांति। आज है 31 अगस्त 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, बाप जब आते हैं तो बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं और इस रूहानी ड्रिल में कुछ डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हाथ ऐसे करो, पैर ऐसे करो। नहीं, ये ड्रिल साइलेंस में की जाती है। सुप्रीम टीचर जो गीता का भगवान भी है, वह बैठ बच्चों को योग की ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, वास्तव में ये ड्रिल बहुत गुप्त है और ड्रिल इसीलिए सिखाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स रुष्ट पुष्ट हो, हेल्दी हो, निरोगी हो। तो इसलिए बाबा कहे, तुम 21 जन्मों के लिए इस मनमना भव की ड्रिल से बहुत बहुत रुष्ट पुष्ट बनेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो कितनी अच्छी ड्रिल है ये। ड्रिल है मनमना भव, जहां यही हमें समझाया जाता कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव तो एवर हेल्दी एवर वेल्थी बन जाएंगे। सिखाने वाला कौन है? ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, ये ड्रिल कोई ब्रह्मा नहीं सिखाते हैं, परमात्मा आकर के सिखाते हैं। तो परमात्मा का पैगाम सभी को सुनाओ, सभी को ये पैगाम देते चलो और उन्हों का भाग्य भी जगाते चलो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्म के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर है, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भूलकर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। बाबा कहते, सबको यही पैगाम दो, अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है, वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें कहना पड़ता है। जिस्मानी ड्रिल में कहना पड़ता है, यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। ये ड्रिल भी गुप्त है। बाबा कहते, ये ड्रिल बहुत गुप्त, हर एक अपनी रीति से कर रहा है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव के ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाबा कहते, ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं, मन मना भव इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। बाबा कहते, भव का अर्थ ही है
कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे, भव मन बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं, भगवान तो उनको ही कहा जाता है, जिनकी पूजा भी होती है, शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहेंगे। ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं, बल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा कह रो ब्रह्मा, वह तो गुप्त हो गया, शिव बाबा तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े। ब्रह्मा तो प्रजा पिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजा पिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है, निराकार बाप गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में भी डिफिकल्टी होती है, मेहनत लगती है, मुश्किल होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, या नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम बच्चे पत्र के ऊपर लिखते हो, क्या लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो यह भी याद करने की युक्ति है, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी बाबा कहे याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है, सिवाय परम पिता परमात्मा के। पतित पावन एक परम पिता परमात्मा ही है, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते, फादर है तो सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, ये मनुष्य नहीं जानते। तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, मनुष्य जब नहीं जानते तो कल्प की आयु को लाखों साल कर दिया। अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है, कायदा है, ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है, बिलवेड मोस्ट मनाती प्यारा,
बिलवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। सबसे प्यारा, अति प्यारा कौन है? जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुखहर्ता सुखकर्ता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है, पुरानी दुनिया को आग लगनी है। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी? विनाश होने बिगर दुनिया पावन नहीं बन सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम वाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं। इस समय कलयुग में है नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करके ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे, पुरुषार्थ करके पावन बनेंगे, फिर एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती है। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह है टॉकी धाम। मूल वतन है शांति धाम, जहां कोई आवाज नहीं। सूक्ष्म वतन है मूवी धाम, जहां इशारों से कार्य चलता है। और ये स्थूल वतन है टॉकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, थोड़ा समय आना जाना है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य को इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। उन क्या कर्तव्य करते हैं ये पता नहीं। 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। यह है लीप योग, अर्थात जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा युग है, दो युगों को जोड़ने वाला। यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो।
बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे सदैव मन मना भव, बाप बच्चों को कहते बच्चे सदैव मन मना भव, बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है, वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है, वह तो एक ही सदगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। शरीर छूटा तो सब कुछ छूट गया, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छर सदृश वापस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। हु बहु कल्प पहले मुआफिक बाबा आकर हम बच्चों को ये रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सत्युग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है, अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है, यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हैं ना। बाबा कहते अब घर चलना है क्योंकि बहुत थक गए हो ना। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहां भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। मधुबन आते हैं तो किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। बाप सन्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मां में कम याद करो। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो
और दूसरों को भी निमंत्रण दो, बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहां तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है, योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे, योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था, इसलिए कहते योगाग्नि योग अग्नि के समान है। बाप इशारा देते हैं, क्या इशारा देते हैं? अपने को आत्म समझ, मुझे याद करो, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरी। यह भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो उच्च ताकत वाले भी जाए शरण लेते हैं। यहां तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा, बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं, प्रेरणा करने वाले की तो जयंती मनाने की दरकार नहीं। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीव में आती है, शरीर रूपी चोले में आती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है, आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहां तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। यह है विषय सागर, कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं, तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, सीढ़ी में ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं, जो सीढ़ी चढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर समझ जाते कि इसकी तकदीर में ही नहीं है। दो चार वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी है। भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं, तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं, तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं,
तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जो आधा कल्प के लिए सारे दुख दूर हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरी पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात उच्च पद में नाम पीछे कर लेना। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वह भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र है।